ओम शांति। शिव बाबा हमें मनुष्य से देवता बनाने आए हैं। हमारे मन को, हमारी बुद्धि को और हमारे संस्कारों को पूरा स्वच्छ करने, उन्हें मूल स्थिति पर ले जाने के लिए हमें ज्ञान दे रहे हैं। हम पहचानते चलें स्वयं को और अपने मन को निर्मल करते चलें, बुद्धि को स्वच्छ और सद्विवेक से भरपूर करते चलें और अपने संस्कारों को बड़ा सुखदायी, बहुत पवित्र और जैसे हमारे संस्कार सतयुग में थे वैसे ही बनाते चलें। कईयों के संस्कार उनको बहुत परेशान करते हैं। किसी में काम का संस्कार बहुत होता है तो विषय विकारों के बिना रह ही नहीं पाते। किसी में क्रोध करने का संस्कार होता है, छोटी बातों में भी क्रोध करते रहते हैं। किसी में रूसने का संस्कार होता है, किसी में जिद करने का संस्कार होता है, किसी में दुखी रहने का संस्कार होता है, किसी में कड़वे वचन बोलने का संस्कार होता है, दूसरों को देखने का संस्कार, सदा दूसरों के बारे में सोचने का संस्कार यानी परचिंतन का संस्कार। ये सब संस्कार अब हमें बदलने हैं। हमारे संस्कार तो बहुत डिवाइन हैं। याद करें अपने उस सुंदर स्वरूप को, सतयुगी स्वरूप को, याद करें अपने पूज्य स्वरूप को, जिसमें हम दाता हैं, जिसमें किसी से कुछ भी लेने की इच्छा हमारे पास नहीं है, केवल देने वाले हैं। कईयों में मांगने के संस्कार होते हैं, मान शान के पीछे भागने के संस्कार होते हैं। वे कोई भी कर्म तभी करते हैं जब वहां से मान मिलता हो, यदि मान नहीं मिलता तो वो उस सेवा को छोड़ देते हैं। इन सब संस्कारों का हमें संपूर्ण रूप से त्याग करना है तो अपना एक संपूर्ण स्वरूप अपने सामने इमर्ज करें। अपने से कुछ दूरी पर एक चित्र बना ले अपना, ये है मेरा संपूर्ण स्वरूप जिसमें मेरे संस्कार संपूर्ण सुखदायी। विदेही स्थिति के संस्कार संपूर्ण पावन और निर्मल, बिल्कुल निश्चिंत, जिसमें कोई मैल नहीं, जिसे कोई चिंताएं नहीं, जो बहुत लाइट हैं, हल्के रहने के संस्कार हैं। ऐसा अपना स्वरूप सामने बनाएं और संकल्प दें, मेरे संस्कार तो ये हैं, ये वर्तमान संस्कार मेरे संस्कार नहीं हैं। बहुत अच्छी ये मनोवैज्ञानिक विधि है अपने को ट्रेंड करने की कि जो हमारे वर्तमान संस्कार हैं, जिनके कारण हम अपने संगठनों में, अपने परिवारों में या सेवाओं में सफल नहीं हो पाते, शांतिमय वातावरण नहीं रख पाते, उन संस्कारों के लिए हम रोज कम से कम 5 बार ये फीलिंग दिया करें, ये मेरे संस्कार नहीं हैं, ये तो रावण के संस्कार हैं। इन पराये संस्कारों को मैंने अपना कैसे मान लिया, मैं कैसे कह सकती हूँ कि मेरे अंदर बहुत फीलिंग का संस्कार है, ये संस्कार मेरे अंदर है ही नहीं, ये तो मायावी संस्कार है, मेरे संस्कार तो ये हैं जो सामने खड़े हैं। ऐसे अपने स्वरूप को देखते हुए अपने को जब बार बार पावरफुल स्मृति दिलाएंगे, मेरे संस्कार ये नहीं ये हैं, तो संस्कार बदलते जाएंगे। जो गलत संस्कार हमारे अंदर आ गए हैं क्योंकि हमने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, ये मेरे नहीं हैं, तो मेरा साथ छोड़कर चले जाएंगे। और जिन्हें हम एक्सेप्ट कर लेंगे ये संस्कार मेरे हैं, वे संस्कार पुनः पुनः हमारे अंदर भरते जाएंगे। तो आज सारा दिन अपने दिव्य संस्कारों को देखेंगे, विशेष रूप से अपने भविष्य स्वरूप के नशे में रहेंगे। मेरा स्वरूप
तो ये है, अपने देव स्वरूप को बार बार इमर्ज करेंगे और बाबा से बुद्धि योग लगाएंगे कि बाबा आप हमें इतना बड़ा भाग्य देते हो, हमारे सोए हुए भाग्य को जगाते हो। आज बाबा से बातें करते रहेंगे, उसे थैंक्स देते रहेंगे और महसूस करेंगे कि बाबा सर्वशक्तिवान तो हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया है। ओम शांति।

0: याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। उत्कृष्टता अपना बखान खुद करती है। उत्कृष्टता हो तो उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं होती। जहां बखान करने की जरूरत पड़े वहां उत्कृष्टता आपको शायद ही मिले। जो ठीक है वह ठीक ही है और जो ठीक नहीं है वह ठीक ही नहीं है। फिर भी हमें विवरण देने की, स्पष्टीकरण देने की, सही ठहराने की, दलील देने की और औचित्य सिद्ध करने की प्रवृत्ति होती है। जरा ध्यान दें, यदि एक बार आप अपने मन को कुछ ऐसा करने की प्रवृत्ति में ढाल लेते हैं जो ठीक नहीं है, तो आप आत्मविनाश वाला बटन दबा रहे हैं। जो मन उत्कृष्टता के अभाव को सही सिद्ध करना सीख लेता है वह समझौते पर उतर आना भी सीख जाता है। वह समझौते के साथ जीना सीख जाता है। यदि आपको 100 में से 88 अंक मिले हैं तो यह एक तथ्य है कि 12 अंकों की कमी रही है। आप कितना भी स्पष्टीकरण दें, कितने भी तर्क दे लें, आपके 12 अंक कम ही रहेंगे। मौखिक जमा खर्च उन 12 अंकों की कमी कभी पूरी नहीं कर सकता। आप 88 को 100 के रूप में साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हालांकि आप खुद जानते हैं कि 88 केवल 88 ही होता है। कहावत है कि यदि कोई झूठ 1000 बार बोला जाए तो वह सच बन जाता है। हो सकता है कि दूसरों के लिए वह सच प्रतीत होने लगे, लेकिन आपको तो हमेशा यह सच पता ही रहेगा कि वह झूठ है। आप कब तक बिल्ली को शेर बताते रहेंगे? न तो आप इस तथ्य से मुंह मोड़ सकते हैं और न ये तथ्य आपसे मुंह मोड़ सकता है। दलीलें या स्पष्टीकरण किसी कमी की भरपाई कभी नहीं कर सकते।

0: नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह.
1: दुनिया बनाई मैंने हाथों से.
0: वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड.
1: मिट्टी से नहीं जज्बातों से.
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

यदि आपका लक्ष्य 40 लाख का था लेकिन आप 36 लाख तक ही पहुंच पाए हैं तो आप लक्ष्य से नीचे ही रहे हैं। यदि मुलाकात का निर्धारित समय 11 बजे था और आप 11:15 पर पहुंचे हैं तो इसका अर्थ है आप देर से आए हैं। हर संभव तरीके से हर बात के भरपूर विवरण, दलील और स्पष्टीकरण के बावजूद यह तथ्य अटल और अड़िग रहता है कि आपने लक्ष्य पूरा नहीं किया है और यह कि आपने समय की पाबंदी का सम्मान नहीं किया है। उत्कृष्टता के अभाव के लिए खुद को सांत्वना और तसल्ली दे देना अपने जीवन में आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। इससे आप लक्ष्य को पाने में हर बार पिछड़ जाएंगे और वह क्षमता पा लेने में भी आप पिछड़ जाएंगे जो आप पा सकते हैं। उठो, जागो, जो ठीक नहीं है वह ठीक ही नहीं है। 6:01 का समय 6 बजे का समय नहीं हो सकता। सोमवार केवल सोमवार ही होता है। दोष रहित होना संभव है, उत्कृष्टता बनाए रखना संभव है और इसका शुभारंभ ऐसा स्वभाव बना लेने से होता है जिसमें आप सर्वोत्तम से कम किसी भी चीज से समझौता करने से साफ इनकार कर देते हैं। जीवन के साथ यह विचित्र बात है कि यदि सर्वोत्तम से कम किसी भी चीज से आप समझौता करने से इनकार कर देते हैं तो फिर आप उस सर्वोत्तम को हासिल कर ही लेते हैं। उत्कृष्टता के अभाव से आपको पीड़ा पहुंचनी चाहिए। जब आपको पीड़ा पहुंचेगी तब आप निर्देश देंगे। जब आप निर्देश देंगे तो आप सृजन करेंगे। सृजित हो जाएं, उत्कृष्टता का सृजन करें। आपका काम ही आपके बारे में बताए, आपको उसके बारे में बताने की जरूरत ना हो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टूडे। एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

एक अधेड़ सज्जन शिकायत कर रहे थे, मैंने अपने माता पिता से कभी कोई सवाल नहीं किया, उन्होंने मुझसे जो भी करने के लिए कहा मैंने वही किया। मैं अपने माता पिता का बहुत आदर करता था, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है। जब भी मैं उसे कुछ करने के लिए कहता हूँ तो मुझे उसके क्यों, क्या, कैसे और क्यों नहीं के जवाब देने पड़ते हैं। आजकल के बच्चे बड़ों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते, यह सच नहीं है। बात केवल इतनी ही है कि संबंधों का स्वरूप बदल गया है। बीते वर्षों में संबंधों का आधार भावना हुआ करता था, आज संबंधों का आधार सूचना है। कुछ वर्ष पहले यदि कोई बॉस अपनी टीम के किसी सदस्य से कोई कार्य करने के लिए कहता था तो उस सदस्य का त्वरित उत्तर हुआ करता था, समझिए हो गया। आज टीम का सदस्य उस काम को करने से पहले पूछता है, यह क्यों किया जाना चाहिए, किस लिए किया जाना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आज टीम का सदस्य बॉस का आदर नहीं करता, बल्कि बात बस इतनी सी है कि वह पूरी जानकारी हासिल कर लेना चाहता है। इस अर्थ में संबंधों में बिना सवाल किए हुकुम बजाने वाली बात अब नहीं रह गई है। हालांकि संबंधों की गुणवत्ता में किसी तरह की कमी नहीं आई है, आज की बुद्धि तो बस यह पूछती है, या तो अपना यह निर्णय लेने के बारे में मुझे पूरी जानकारी दो, या मुझे वह सारी सूचना दो जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि मुझे यह कार्य करना चाहिए। हो सकता है कि अपने पिता के इशारे भर से आप उन्हें पानी लाकर दें, लेकिन हो सकता है कि वही काम करने से पहले आपका बेटा दो चार प्रश्न करे। जो बात महत्वपूर्ण है वह यह कि वह भी आपके लिए पानी ले आएगा, बशर्ते उसे इस बारे में पूरी बात बता दें। इस अर्थ में बालक और माता पिता के बीच के संबंधों में कोई कमी नहीं आई है, केवल संबंधों का स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है।

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
1: इधरा इधरा इधरा, क्या पहुँचा दोगे हैं? कहाँ पहुँचा दोगे? मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे हैं? ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेबरा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

जी जब फोन पर माँ को बताते थे कि लंच पर आज उनके साथ 3 लोग और आएंगे, तो माँ केवल ठीक है कह दिया करती थी। अब यदि यही बात अपनी पत्नी को बतानी पड़े तो वह पूछेगी, कौन कौन आएगा, कब आ रहे हैं, उनकी पसंद क्या है, कब तक रुकेंगे। लेकिन फिर भी वह उनके लिए खाना जरूर बनाएगी। इस अर्थ में वैवाहिक संबंधों में निष्ठा में कमी नहीं आई है। बात इतनी सी है कि संबंधों का स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है। संबंधों का आधार भावना से हटकर सूचना पर आ गया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी समर्पण की गुणवत्ता में कोई परिवर्तन आया हो ऐसा नहीं लगता है। जो परिवर्तन आया है वह है बिना कोई प्रश्न उठाए समर्पण कर देने का स्थान अब पर्याप्त प्रश्नोत्तर के बाद होने वाले समर्पण ने ले लिया है। तो क्या अर्जुन और इस स्थिति में कोई अंतर है? संबंधों की गुणवत्ता में कोई गिरावट नहीं आई है। हाँ, उसमें संप्रेषण और सूचना की मांग जरूर बढ़ गई है। सूचना का आदान प्रदान और संप्रेषण अब संबंधों की जीवन रेखा बन गए हैं। विवरण अब जरूरी हो गए हैं और स्पष्टीकरण अनिवार्य। यह परिवर्तन न तो बेहतर है और न बदतर, यह तो बस एक नया परिदृश्य है। इस परिवर्तनशील संसार में ऐसा परिवर्तन तो प्रत्याशित ही होना चाहिए। अब केवल करो कह देना पर्याप्त नहीं रह गया है। पर्याप्त विवरण व स्पष्टीकरण दें और फिर कहें करो, और वह कर दिया जाएगा। विश्वास संबंधों का आधार होता है, लेकिन अब विश्वास बस यूं ही नहीं कर लिया जाता। सूचना विश्वास का आधार बन गई है और इसीलिए संबंधों का भी। लेकिन यह बात हमें जरूर याद रखनी चाहिए कि सभी संबंध सिर्फ सतह पर ही रहते हैं। भीतर गहराई में आप हमेशा अकेले ही होते हैं। भले ही हजारों लोग आपके चारों ओर हों, फिर भी अपने एक अंश में आप हमेशा अकेले होते हैं। आप इस संसार में अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। मुक्ति यह जानने से आती है कि अस्तित्व का अकेलापन ही आपका सच्चा स्वरूप है। इस अंतराल से संबंध जोड़ें तो आप आश्रय बन जाएंगे अथवा खुद आश्रित हो जाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे सुप्रभात में रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ये संसार एक विशाल कुरुक्षेत्र है और हमारा जीवन एक महाभारत। हमारा कुरुक्षेत्र कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। अपनी महाभारत कभी हम शस्त्र के बिना लड़ते हैं, कभी शस्त्र के साथ, कभी अपने शत्रु के विरुद्ध और कभी अपने विरुद्ध। न्याय के लिए, सत्य के लिए, अधिकार के लिए। इस संघर्ष में हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा विश्वास है, सबसे बड़ा शस्त्र हमारा कर्म है।

0: में बाबा ने दादियों को जो प्यार दिया वो निस्वार्थ प्यार कहीं और पाना बहुत ही मुश्किल है। जब भी मैं कभी ये सोचता हूं कि क्या ये संभव है, इस पुरानी दुनिया में रहते भी कोई आम सांसारिक बातों से बच सकता है, तो मुझे जवाब मिलता है कि हां, ये संभव है। मैंने इसे फलीभूत होते हुए भी देखा है। यही तो जादू है ईश्वरीय प्यार और पालना का, जहां हर कोई अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहता है। मैं मधुबन इस बात का साक्षी रहा हूं। परमात्मा के जो चरित्र और कर्तव्य मधुबन ने देखे हैं, वो मधुबन कभी भी भूल नहीं सकता। दादी रत्न मोहनी जी की बात करें तो वे बाबा की अनन्य बच्ची रही हैं, जिन्हें स्वयं परमात्मा ने कुछ गुण और विशेषताएं ऐसी दी हैं जो दादी जी अपने चरित्र और चित्र के द्वारा सभी पर बरसाती रहती हैं। वे ऐसी महान आत्मा हैं जो बिना किसी स्वार्थ के बस देने का ही सोचती हैं। देना भी कोई स्थूल रूप से नहीं, बल्कि वो ईश्वरीय पालना देती हैं जो केवल भगवान ही दे सकते हैं। उनकी दिव्य रूहानी दृष्टि, चित्त की शीतलता, वृत्ति की रूहानियत हर आत्मा के दिल की प्यास बुझा देती है। ये सारे ही गुण दादी जी के बरसों की त्याग और तपस्या का फल है। ऐसी निर्मल और पुण्य सनीरा दादी जी, जिनकी वृत्ति दूसरों के भी पाप को नष्ट कर दे, हमने देखा है कि कैसे दादियों ने विश्व परिवर्तन के लिए अपना तो जीवन सफल किया ही, दूसरों का भी सफल कराने के निमित्त बने। तभी तो वे जगत वंदिता मां कहलाई। शक्ति वंदन के आज की श्रृंखला में हम स्नेहल दीदी से दादी जी के जीवन के कुछ बहुमूल्य ज्ञान रत्नों को सुनेंगे।
1: शक्ति वंदन में आइए सुनते हैं उन महानुभावों से जिन्होंने दादी रतन मोहिनी जी के अंग संग रहकर उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में अनेक शिक्षाएं प्राप्त की, उनके जीवन से ओतप्रोत होकर अपने आप को धन्य महसूस किया। सुनते हैं उनके अनुभव उन्हीं के मुखारविंद से।
2: एक बार बारिश का मौसम था तो कुछ ऐठन होती है या कुछ दादी को कुछ पाँव में तकलीफ हो रही थी, तो क्लास के बाहर उतरने लगी तो मैंने देखा दादी का पाँव बहुत सूजन आ गया है। तो मैं अपना हेल्थ के कारण थोड़ा, मुझे थोड़ा जानकारी रहती थी, मम्मी भी ऐसे ही कुछ न कुछ प्रयोग करती है, तो मैंने कहा दादी आपको तो ये बहुत सूजन आई है, इसमें एक नुस्खा है, छोटा सा हल्का सा है वो करना होता है, सूजन है तो मेहंदी और गेरू वो लगाने से सूजन चली जाती है, आप करेंगे? तो दादी ने बहुत मुझे प्यार किया, बोला क्यों नहीं करेंगे, आप बोल रहे हो तो जरूर करेंगे। तो मैं डायरेक्ट दादी से नहीं मना, पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए साथ वाली बहन को बोला, तो उन्होंने बोला आप डायरेक्ट पूछो, दादी के साथ आते जाते हो, बात करते हो। तो दादी ने बहुत अच्छे से उसका मना रिप्लाई दिया और एक बहुत एनर्जी आ गई, मना जैसे नहीं किसी

0: चेक होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, ऐसी मेरे अंदर वो एनर्जी आ गई। फिर दादी ने कंटिन्यू वो 2-3 दिन किया, सूजन खत्म हो गई। तो दादी हर चीज माना जो अच्छी चीज है, वो चाहे कोई छोटा बोल रहा है या बड़ा बोल रहा है, वो नहीं देखती थी, लेकिन इससे फायदा होने वाला है वो देख करके स्वीकार करती थी, चाहे वो भोजन की बात है। एक बार ऐसे ही मैं 15-20 दिन दादी के साथ में रात को मालिश के लिए मैंने पूछा, दादी मैं आपके पाँव की मालिश करती हूँ ताकि ये प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाएगी। दादी ने कहा नहीं नहीं जरूरत नहीं है। फिर बहुत फोर्स करने के बाद बोला ठीक है आपकी इच्छा है तो आओ। फिर वो माना दादी की सेवा करने में मुझे अच्छा लगता था, लेकिन दादी को ये होता था कि ये बच्ची आ रही है, इनका कुछ न कुछ फायदा होना चाहिए। तो दादी ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करती थी, उस समय मुरली लेके पढ़ती थी और हम दो बहनें रहती थी, मैं और कॉटेज में एक बहन उसके साथ में। तो दादी मुरली पढ़ती थी और हमको पूछती थी, सवाल पूछती थी कि क्या बोलेगा बाबा अभी, माना नेक्स्ट डे आने वाली मुरली पहले पढ़ती थी। तो वो मैं बाबा की याद में सेवा कर रही हूँ तो मुझे वो टचिंग हो जाती थी, तो मैं तुरंत बोल देती थी। बाकी बहनें अपने इसमें नहीं बोल पाती थी तो मुझे बोलती, दादी बहुत माना अप्रिशिएट करती थी कि अच्छा आपका ज्ञान योग अच्छा है, आप बहुत अच्छे करते हो। तो इस प्रकार से दादी ने हमेशा उमंग उत्साह बढ़ाया और हमेशा मुझे शक्ति भरी। और अभी भी दादी के साथ जाते हैं, मिलते हैं, तो यही अनुभव होता है कि एज एक सिर्फ नंबर है, लेकिन अभी भी वो स्थिति, संपन्न स्थिति जो आज सबको अनुभव होती है, ये संपन्न स्थिति दादी की उसी समय 13 साल पहले मैंने अनुभव की थी। क्योंकि आज हेल्थ के हिसाब से या उम्र के हिसाब से जो भी शरीर का प्रॉब्लम है, दादी बोलती कम है, लेकिन एक ही शब्द ऐसा बोलेगी जिसमें सार आ जाएगा और इशारे से बात करेगी। एक होती है मुख की भाषा, एक होती है नैनों की भाषा, एक होती है संकल्प की भाषा। तो मेरा तो ये अनुभव है कि दादी ज़्यादा से ज़्यादा संकल्प मेरा कैच करती है, और कभी मैं जैसे डल हो जाऊँ, लो हो जाऊँ, तो दादी सपने में भी आती है और सपने में सिर पे हाथ घुमाएगी या मुरली सुनाएगी, ऐसा ऐसा कुछ न कुछ इंडिकेशन मिलता है, या बाहर वॉकिंग करते टाइम मिल जाएगी। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि दादी मुझे अभी भी सूक्ष्म में चाहे प्रैक्टिकल में वो पालना दे रही है।
1: जब दादी को आपने इतनी करीबी से देखा है, समझा है, सो दादी की क्या उम्मीद या अपेक्षा रहती थी समर्पित बहनों को लेकर के? क्योंकि दादी तीनों तरीके से समर्पित बहनों के साथ जुड़ी हुई है, उनका ट्रेनिंग होना, उनका एक समर्पित लाइफ बनाना, फिर उनकी फाइल बनाना, फिर उनका एक सेंटर का सर्टिफिकेट बनाना। तो मतलब एक बहन या कुमारी जब इस ऑर्गेनाइजेशन में आती है, इस यज्ञ में आती है, उसकी पूरी जर्नी के साथ दादी जुड़ी हुई है। तो क्या विजन लेकर के चलती थी दादी बहनों के लिए?
0: दादी को कुमारियाँ मना बहुत पसंद है, और जब भी ट्रेनिंग में कुमारियाँ आती हैं तो दादी उनको क्लास कराना, पालना देना, वो तो सब होता ही है। और लगभग जैसे मैंने देखा है दादी को, जो समर्पित बहनों की फाइल्स आती है तो दादी एक एक अक्षर भी पढ़ती है, और विशेष उसमें एक सवाल होता है कि आपका अमृत वेला ज्ञान योग ठीक है, क्या क्या आपको पसंद है? तो 4 सब्जेक्ट जैसे है तो उसमें चारों में क्या क्या टिक किया है, तो अगर किसी का कम ज़्यादा है तो नोट भी दादी लिखती थी। और दादी को हमेशा कोई भी सामने आवे, विशेष टीचर बने, तो दादी पहले ये सवाल पूछती है कि आपका ज्ञान योग ठीक है, अमृत वेला करते हो? तो एक बार की बात मुझे याद आती है कि दादी ऑफिस में आई और दादी की सीट के बैक साइड में ही मेरी सीट होती थी, एक बीच में कांच का पार्टीशन है, लेकिन दादी जो भी बात करती है मुझे सुनाई देता था। तो दादी भाई साहब से पूछ रहे थे, आप 2-3 दिन से दिखाई नहीं दे रहे, अमृत वेला भी नहीं है या मुरली क्लास में भी नहीं दिख रहे, क्यों मिस कर रहे हैं? लेकिन दादी का यही शब्द बोलना, वो बोलने का भाव जो मैं अभी एक माना बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन एक उसमें एक जैसे एक टीचर होता है बच्चे स्टूडेंट को जैसे पूछता है कंट्रोल, माना क्यों नहीं स्टडी कर रहे हो, इस हिसाब से दादी पूछ रही थी। तो मैंने अंदर ही अंदर सोचा पीछे बैठ के कि अच्छा हुआ दादी मुझे नहीं पूछ रही है। लेकिन फिर कारोबार हो गया, उसके बाद में दादी लास्ट चक्कर लगाती हैं तो मेरे पास दादी आई, फिर मुझे देख करके मुस्कुरा रही थी। फिर दादी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा जोर से ऐसा, और थोड़ा अंगूठे से प्रेस भी किया, मुझे थोड़ा चुभा भी, लेकिन एक अलग एनर्जी आ गई और पूछा, तुम अमृत वेला करती हो? नहीं करती, करती ऐसा नहीं करती हो? और जोर से हंसने लगी, क्योंकि मैं डेली अमृत वेला दादी के सामने करती थी। डेली अमृत वेले गुड मॉर्निंग होता, मुरली क्लास में गुड मॉर्निंग होती थी, और अभी कुछ दिनों से मैं दिख नहीं रही थी और मुझे डर था कि दादी मुझे ना पूछ ले, इसलिए दादी ने मना हंस के पूछा, तो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, दादी मैं कल से आती हूँ। फिर बाद में धीरे से बोला, दादी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। फिर नेक्स्ट डे दादी ऑफिस में आई तो मुझे खास पूछताछ किया कि क्या क्या है, आपको तबीयत ठीक है? मैंने कहा, दादी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, तो सुबह में थोड़ा मैं आ नहीं पाती, उठ नहीं पाती हूँ। तो मुझे टिप्स दिया, अच्छा ऐसा करो, पूरा गले से लेके छाती में पूरा ऑयल सरसों का तेल लगाओ, और गर्म कपड़ा हमेशा पहन के रखना, क्योंकि यहाँ ठंडी बहुत होती है, भले आपको गर्मी लगे लेकिन गर्म कपड़ा पहन के रखना, और टैबलेट एक होती है, आप डॉक्टर से जा कर के टैबलेट लो तो आपको ठीक रहेगा। फिर जापान में दादी जब गई थी तो वहाँ की ठंडी दादी को भी सूट नहीं हुई थी, तो वो अनुभव दादी ने बताया था कि वहाँ हम गए थे तो मुझे भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन ऐसा करने से मैं भी ठीक हुई थी। तो वो जैसे मुझे लगा कि दादी मुझे एक अपने अनुभव से सीख दे रही है, पालना दे रही है, और सच में मैंने ऐसे ही किया, और नेक्स्ट डे से मेरा थोड़ा कम हुआ, फिर मैं अमृत वेला करना स्टार्ट किया। तो दादी का बहनों के लिए विशेष ये होता है कि आप टीचर हो तो टीचर को अगर कुछ पढ़ाना है तो पहले खुद को चार गुना पढ़ना पड़ता है। अगर एक लेसन पढ़ाना है तो उसको चार गुना पढ़ना पड़ता है, इसलिए दादी हमेशा ऑफिस में ही ज़्यादा हमारा मिलना होता था। तो दादी आते ही पहले पूछती थी, सब लोग मुरली में सुनी या ऑफिस में आकर के आपने योग किया, मुरली क्लास किया? हम मुरली का सार प्रश्न उत्तर और वो सब पढ़ते थे। तो इस तरीके से दादी का सबके ऊपर अटेंशन होता था कि यहाँ सिर्फ क्लर्क नहीं हो आप लोग, हमें आपका सिर्फ काम नहीं लेकिन आपका फर्स्ट काम है अपने आप की सेवा करना, योग करना, ज्ञान योग करना। तो ऐसा ही हर एक के प्रति भी होता था। और ये भी देखा कि कोई आकर के दादी को बहुत बातें सुनाता, दादी ऐसा, दादी वैसा वैसा, लेकिन दादी अपने काम में मना सुनते हुए भी नहीं सुन रही है। एक बड़ा भाई आकर के कुछ कुछ सुना रहे हैं तो उनको ना भी नहीं कह सकते कि चुप रहो, ऐसा भी नहीं कह सकते। दादी अगर कहे ऐसा तो वो तो चुप हो जाएगा लेकिन बुरा मान जाएगा। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि दादी सुनते हुए भी नहीं सुन रही, अपना काम कर रही है चुपचाप। फिर लास्ट में एक ही बात बोली कि हम इन बातों में नहीं जाते हैं, जिसका जो कर्म है, जिसका जो है उसके हिसाब से वो चले। हम हमारा काम है शिक्षा सावधानी देना, मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो एक लाइन में वो भाई भी साइलेंस हो गए और फिर दादी से और भी कुछ बात करके चले गए। तो वो स्थिति इतना सुनने का है, आधा घंटा एक घंटा इतनी बातें सुनाई, लेकिन उतनी सुनने की शक्ति भी कैसे आती है। दादी एकदम उपराम उसमें हो गई, भले वो कारोबार कर रही है, कागज पढ़ रही है, फाइल साइन कर रही है, लेकिन वो उपराम स्थिति में वो सुनते हुए वो काम कर रही। तो ये होती है अपनी ज्ञान योग की शक्ति, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं, या मेडिटेशन की शक्ति होती है। उस अनुसार ही इनका जीवन माना एक खुद का जीवन नहीं है, जिसने परमात्मा के ऊपर अपने आप को बलिहार कर दिया और स्वयं परमात्मा ने इनकी पालना की। कम बात नहीं है कि 14 साल तपस्या ही करते रहे, कहीं बाहर ना निकले। तो एक बार हम कॉटेज में जाते थे, वहाँ योग करते थे ऑफिस वाले सभी भाई बहने मिल करके दादी के सामने बैठ करके। तो दादी पूछती थी कुछ न कुछ, अनुभव पूछती थी या कुछ सवाल पूछती थी। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, दादी आपके साथ तो ब्रह्मा बाबा था और आपने तो 14 साल तपस्या की, हमारे पास इतना टाइम कहाँ है? तो जैसे मैंने बोला कि आपके साथ ब्रह्मा बाबा था, तो दादी ने ऐसे देखा, दादी ने कहा कि क्या बाबा अब नहीं है? माना एक ही शब्द कुछ बोला, दादी का वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका मीनिंग ये था कि बाबा अब नहीं है, अभी भी बाबा है और 14 साल वो हमसे कराया, लेकिन ये तो आपके ऊपर है ना। एक जैसे बात को प्रेशराइज करना, प्रभाव एक ही बात को उठाना, फिर 14 साल का मुझे अनुभव, इतना मैं कैसे करूं, कारोबार करते हैं सब करते हैं, तो उस बात को हल्का कर दिया कि आपके ऊपर है, इतना टेंशन इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आपका अंदरूनी पुरुषार्थ ऐसा चलता रहे। क्योंकि हमारे सामने भल 14 साल तपस्या बट्टी थी, लेकिन हमारी भी सेवाएं तो थी, क्योंकि शरीर है तो सेवाएं तो करनी ही है, खाना पीना कपड़े धोना सब कुछ करना होता था। तो ऐसे आपका भी यही समझ करके आप अंदर से अपना पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से समय समय पर दादी हमें शिक्षाएं भी देती थी और अपने अनुभव के साथ हमको आगे बढ़ाती थी।
1: जैसे आपने ऑब्जर्व किया, दादी की क्या हॉबीज रहते थे, दादी को क्या पसंद होता था?
0: दादी को पसंद तो सब कुछ है। दादी को सबसे ज्यादा पसंद अपना ज्ञान योग, उसके सिवा कुछ नहीं। मुरली लिखना या बैठेंगी तो कुछ न कुछ लिखते रहना, और ये भी बोलती थी कि आप भी लिखो। बाकी अगर हम पिकनिक में गए तो वहाँ भी दादी हमारे साथ खेलती थी। जैसे मैं नई नई आई थी तो दादी को पता नहीं था कि मैं आई हूँ पिकनिक के लिए। मुझे बोला था कि आज पिकनिक है, सबको बुलाया है, तो पीस पार्क में हम यहाँ से शांतिवन से गए थे। तो दादी को लगा कि मैं नहीं आई हूँ, तो खास एक बड़ी बहन को बोला, स्नेहल आई है क्या, देख के आओ। तो उसने बोला, आपका नाम स्नेहल है? मैंने कहा हाँ मैं स्नेहल हूँ, दादी पूछ रही आपके बारे में। तो मुझे इतना अंदर से वो गदगद हुआ कि दादी मुझे पूछ रही और नाम सहित पूछ रही है। तो मैं जाकर के दादी जहाँ बैठी है उधर जाकर के दादी को विश किया, बात किया। तो ऐसा हर बार दादी मेरे साथ, माना अच्छा मेरे को अनुभव रहा। यहाँ पर भी शांतिवन में भी जब भी पिकनिक होती या कुछ स्पेशल भोजन होता था तो बुलाते थे, तो दादी खास बोलती थी कि स्नेहल आई है नहीं। किसी को नाम लेके याद नहीं करती थी, लेकिन मुझे करती थी। तो मुझे बड़ा अंदर से नशा होता था, बाहर से नहीं बोलती थी लेकिन अंदर से बहुत नशा, जैसे कि दादी मुझे पूछ रही है और मैं, दादी ने मुझे रखा है। तो ये बात तो मैं बार बार बोलती हूँ कि दादी ने मुझे खुद, जैसे नहीं एक जौहरी होता है, तो जौहरी क्या करता है, परखता है सच्चा हीरा या झूठा हीरा। तो दादी का नाम जैसे रतन मोहिनी है, तो ये नाम बाबा ने दिया है, तो ये नाम सार्थक है। दादी ऐसे ही पूरा परख करके मुझे सेवा में दादी ने आगे बढ़ाया। लेकिन सिर्फ दादी ने बढ़ाया ऐसी बात, माना ये तो 100% है, लेकिन उसके लिए मुझे भी अपना पात्रता को बढ़ानी पड़ी, मुझे तपस्या करनी पड़ी, और कितना मैं जेन्युइनली कर सकती हूँ वो भी दादी देखती थी। तो दादी ने जैसे फर्स्ट टाइम मुझे बुलाया तो अपना टाइमिंग पूछा, कब आ सकती कब नहीं आ सकती है, क्या क्या टाइमिंग आपका रहेगा। मैंने कहा दादी मैं तो फ्री हूँ, साथ साथ मैं ये सब काम भी करती हूँ, लेकिन मैं आ सकती हूँ। बोल तो दिया, लेकिन थोड़े समय के बाद मैं कर नहीं पाती थी, क्योंकि अकाउंट करना भी बड़ी बात होती है। शॉप का अकाउंट करती थी और कुछ पढ़ाई भी कर रही थी, तो थक जाती थी, शाम को नहीं आ पाती थी। तो कुछ समय मैंने शाम को आना छोड़ दिया था। फिर दादी पूछती थी बहनों को कि स्नेहल आती है, तो बहनें बोलती थी नहीं आती है, वो बोलती मुझे काम है। फिर एक बार हम गए दादी से मिलने, ऐसे ही डेली मिलते तो थे, कुछ बात हुई। दादी ने बोला आप तो नहीं आते हो ना शाम को, आपका शाम का पहले पक्का करो। दादी कहीं भेज किसी प्रोग्राम में जाने के लिए, ऐसी कुछ बात थी। तो मुझे बड़ा अंदर से वो लगा कि अरे मैं ऐसा मिस कर रही हूँ, दादी ने मुझे सिलेक्ट किया, दादी ने मुझे कैपेबल समझा और मैं मिस कर रही क्यों, तो मैं थक जाती हूँ, बस इतनी बात है। फिर उस दिन से मैंने अपने आप को निश्चय कराया कि नहीं, मुझे दादी ने सेवा के लिए आगे बढ़ाया, जीवन बनाया, तो मुझे वो सेवा करनी ही है, आगे बढ़ना ही है। तो इस प्रकार से अभी पूरा टाइम फुल टाइम सेवा करती हूँ। तो जो एक दादी का हमारे पास पुराना फोटो है, तो जैसे आते ही फर्स्ट हम परमात्मा को याद करते हैं, तो ऐसे ही मुझे दादी से भी प्रेरणा मिलती है कि इस समय में अगर दादी मेरे साथ है, दादी साथ ही है, लेकिन इतना है कि दादी ऑफिस में कम आती है, तो दादी मुझे क्या इशारा देती, क्या समझाती, तो उससे मुझे अच्छी प्रेरणा मिलती है और कारोबार भी सहज होता है। और दूसरा है कि अभी अभी की बात है, जैसे कोरोना का टाइम था, तो कोरोना के टाइम में सबको अपने अपने जगह पे बैठना था, दादी भी अपने रूम में ही थी, लेकिन व्हाट्सएप में वीडियो कॉल हमने किया था। तो जब तक बड़े भाई बहने नहीं आ रहे थे तो मुझे बोला कि आप दादी से बात करो। और कोरोना के कारण जो माहौल था हम सबको पता है कैसा था, और कुछ डिस्टर्बेंस मेरे मन में चल रहा था क्योंकि हमारे लौकिक परिवार में सबको कोरोना हो गया और उन्होंने बोला आप बिल्कुल मत आना, तो एक वो अलग टेंशन थी। और भी यहाँ पर भी मना जिसको कोरोना हो रहा है वो आइसोलेट हो जाते थे, तो इस बीच में कुछ आपस में मनमुटाव जैसे भी हुआ। तो ये बात इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि दादी भले दूर है लेकिन वीडियो कॉल मैंने किया। अभी मेरे मन की स्थिति जो है दादी से बात करने जैसी नहीं थी, पर मुझे बोला गया दादी से बात करो तो मैं क्या बात करूं वो भी सोच रही थी। फिर मैंने कहा दादी अभी आज क्या बात करना, दादी को दादी से क्या हम बात करें, दादी आज का वरदान ये था। लेकिन उसी वरदान को लेकर के मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा, दादी ने वो सब बातें छोड़ करके मुझे एक आथत दिया। वो पता नहीं मैं तो सामने नहीं हूँ लेकिन मेरा संकल्प मेरा विचार दादी ने कैच किया और दादी ने कहा जो भी हो रहा है जो भी होता है और जो जो जो भी कर रहा है वो अपना कर रहा है, अपना खाता बना रहा है, तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो इतना शब्द बोला तो मेरे मना आंखों से आंसू आने लगे कि दादी को ये बात कैसे पता चली कि मैं अंदर में डिस्टर्ब हूँ दूसरे के कारण। तो इतना मना दादी का जो कहते हैं इंट्यूशन है मेरे साथ या इंटरलिंक है वो शब्द नहीं आ रहा है, तो इतना दादी अभी भी मुझे पालना देती है। तो इस प्रकार से दादी का सिर्फ दादी ही है जो अभी आज के टाइम में इतनी पालना दे सकती है। मैंने तो जैसे ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा लेकिन यही कह सकती हूँ कि जिस रथ ने माना शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा इनकी पालना की तो ये कम नहीं है, ये बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं। तो इनके माना पालना में मैं पल रही हूँ, इनके आशीर्वाद से मेरी जीवन जैसे बन गई है। तो बहुत बहुत मेरे दिल से दादी के लिए बहुत दुआएं निकलती हर पल।
1: सो दादी की इस 100 साल की जो जर्नी है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी?
0: तो बचपन से ही दादी ने भगवान के कार्य में अपना जीवन दे दिया और अभी 100 साल की जर्नी में पहुँचे हैं। तो दादी तो हर तरह से संपन्न और संपूर्ण है और दादी की आशीर्वाद, दादी की पालना और प्रत्यक्ष रूप में दादी हमारे साथ ही है और साथ ही रहेगी अंत तक, यही शुभ भावना है।
2: जैसे कोई मिठास किसी ने चखी हो और वो स्वाद बुद्धि में बैठ जाए फिर बस उस स्वाद की याद रहती है जो हमारे मन और चित्त पर स्मृति के रूप में सुरक्षित रहती है, बस यही है परमात्म प्यार जो भुलाए नहीं भूल सकता कोई। इसको वो ही समझ सकता है जिसने इस प्यार का स्वाद लिया हो। मधुबन ने भी इस प्यार के स्वाद को चखा है, तभी तो आज तक भक्ति मार्ग में भी मधुबन का इतना गायन है कि मधुबन पुण्य भूमि, महान भूमि, मधुर भूमि, परमात्म अवतरण भूमि है। भक्ति में भी गायन है कि मीरा ने जहर का प्याला पिया परंतु उसका प्रभाव मीरा पर नहीं हुआ। सुनने में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये कोई जादू है लेकिन ये ईश्वरीय प्रेम है जो सुरक्षा कवच के रूप में हमारे साथ साथ रहता है। यज्ञ पिता, आदि पिता ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ की स्थापना से ही माताओं और कन्याओं को निमित्त बनाया। ब्रह्मा बाबा स्वयं परमात्मा के दिव्य रथ थे जिनके तन में परमात्मा का अवतरण हुआ और वे परमात्मा के कार्य के निमित्त बने। और मैं क्या बोलूं मधुबन होने की कहानी।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास न करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा न करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में स्वागत है आप सबका, नमस्कार। इन दिनों जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो जुड़ा है हमारी जिंदगी से, और वो है डिप्रेशन। क्या ये एक बीमारी है? क्या हम और आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं? कैसे हमें पता चल सकता है कि हम डिप्रेशन में हैं? या फिर किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम अपनों से डील कर रहे हैं जो डिप्रेशन में हो? यही सारे मुद्दे हैं जिन पर हम अभी तक चर्चा करते आ रहे हैं। कई बातें सामने आए हैं, कई आगे आने वाली कड़ियों में सामने आएंगी। आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वो ये कि जब अचीवर्स या वो लोग जो बहुत एम्बिशियस होते हैं अपनी एम्बिशन को नहीं पा पाते, नहीं पहुँच पाते उस मुकाम तक, तब जब डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो फिर क्या करना चाहिए, और ऐसी कई और बातें हैं जो बातचीत के दौरान निकल कर आती हैं। तो चलिए बातचीत का ये सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, आपका हार्दिक स्वागत।
3: नमस्कार।
2: और डॉक्टर गिरीश पटेल के बारे में बता दें कि 7 किताबें आ चुकी हैं इनकी, जो कि जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, पॉजिटिव जो जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स कैसे होने चाहिए। 30 साल से ये जुड़े हैं ब्रह्मा कुमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ, और सबसे बड़ी बात यह है कि साइकोथेरेपी के क्षेत्र में इतना कुछ आप अचीव कर चुके हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत अच्छी आप बातें हमारे साथ करते आए हैं। और हमारे साथ हर बार की तरह ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी है, आपका भी स्वागत करते हैं।
4: ओम शांति।
2: ओम शांति। डॉक्टर साहब, आज जो मुद्दा हमने लिया है, इतने ईमेल्स आए हैं, इतने कॉल्स आए हैं हमारे पास, पूरे जो हम डिप्रेशन की बात करते आ रहे हैं वो हम कॉल्स लेंगे, वो ईमेल्स भी पढ़ेंगे, लेकिन जो पहली बात हम करना चाहते हैं कि अचीवर्स जो होते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अचीव करते आए हैं, तब वो जब वहाँ पहुँचना चाहते हैं और नहीं पहुँच पाते, तब उस डिप्रेशन से या वो जो एक शॉक लगता है कि अरे मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था और मुझे नहीं मिला, वो एक मेजर शॉक है, उसे कैसे फेस करना है ताकि वो डीप डिप्रेशन में ना जा पाए।
3: बिल्कुल प्रैक्टिकल बात आप बता रहे हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल सिंपल सॉल्यूशन भी बताता हूँ। पर थोड़ा मुश्किल लग सकता है, परंतु ये बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि बहुत बड़ा एम रखिए, अपना गोल है वो बहुत बड़ा रखिए। ऐसा भी लगे कि शायद ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा मेरा गोल है वह रखिए जरूर, परंतु आज आप जहां भी हैं वहां पूरी तरह से अपने आप को सेटिस्फाइड फील करें। पर कॉन्ट्राडिक्टिंग भी लग रहा है, परंतु पॉसिबल है। ये क्यों पॉसिबल है कि आपको बहुत बड़ी चीज अचीव करनी है तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, टाइम को ठीक से मैनेज करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, यह सब इंग्रेडिएंट्स है। वो कब होंगे? इफ यू आर सेटिस्फाइड। अगर आज मैं असंतुष्ट हूं, समझो मैंने सोचा मुझे 100 किताबें लिखनी है, इट मे बी एन इम्पॉसिबल गोल। अगर मैं वो सोचता ही रहूं तो कुछ भी 10 पेज भी नहीं लिख पाऊंगा। परंतु अगर आज भले मेरी 7 किताबें भी पब्लिश हुई, ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड, लेट मी डू हार्ड वर्क,
2: आई कैन वर्क स्टिल देयर,
3: या दैट गोल इज देयर, इफ आई एम सेटिस्फाइड आई माइट बी एबल टू वर्क 18 आवर्स अ डे, कुछ अच्छा स्टडी कर सकता हूँ, सर्च कर सकता हूँ, और मे बी 100 पर नहीं पहुंचा, 50, 60, 70 पर तो पहुंच जाऊंगा। तो ये बैलेंस मैं समझता हूँ बहुत ही जरूरी।
2: बहुत आपने आज सुंदर बात ये कही कि गोल्स, कई बार क्योंकि कंफ्यूजन होने लगता है कि क्या, एक और बात जो आती है कि क्या मैं डिजर्व करता हूँ वो गोल अचीव करना, क्या मुझ में वो काबिलियत है कि मैं वो गोल तो रख लेता हूँ कि मैंने एक सपना तो देख लिया कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगा, क्या मुझ में काबिलियत है, ये भी एक सवाल उठता है।
3: क्यों तो सब में है, बिकॉज आवर ब्रेन इज सेम।
2: ओके,
3: आइंस्टाइन्स ब्रेन एंड ऑर्डिनरी पर्सन्स ब्रेन वाज ऑल द सेम, उसमें कोई फर्क नहीं था, आइंस्टाइन का ब्रेन ऑर्डिनरी व्यक्ति जैसा ही था। तो परमात्मा ने हम सबको एक जैसा दिमाग दिया है, उसमें तो फर्क नहीं है, सिर्फ अभी उसका उपयोग हम कैसे करें वह महत्वपूर्ण है, और वो हर व्यक्ति कर सकता है ना। तो काबिलियत सबके अंदर है, सिर्फ हमें प्रॉपरली प्लानिंग करनी।
2: बहुत सुंदर बात सिस्टर शिवानी ये आ रही है सामने कि गोल हम कितना भी हाई रख सकते हैं, दैट्स लाइक स्काई इज द लिमिट जैसे हम बात करते हैं, लेकिन आज के वक्त में मैं सेटिस्फाइड रह के जहाँ पे भी मैं हूँ यहीं से मैं अपनी वो जर्नी शुरू करूँ वहाँ तक पहुँचने की, तो उसमें मेरा इंटरनल जो स्टेबिलिटी है वो बहुत मायने रखेगी.
4: हाँ,
2: यहाँ ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि ये पूरे सफ़र में भी रहे,
4: क्योंकि सफ़र करते हुए ऑब्स्टिकल्स आएंगे और हो भी सकता है कई बार बीच में से लगे कि उधर तक पहुँचना इम्पॉसिबल है, बट लाइक वी शेयर्ड इट इज़ नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज द जर्नी. तो हम सबसे पहले यही कोशिश करते हैं कि एक लक्ष्य रख लें, बहुत ऊंचा लक्ष्य रख लें, लेकिन उसमें फर्मली बिलीव करें. यू नो मोस्टली ये हो जाता है कि लक्ष्य रख लेते हैं और पीछे ये थॉट लगती है कि ये बहुत मुश्किल है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं. कई बार आसपास के सभी लोग कहते हैं कि ये असंभव है, आप ये नहीं कर पाओगे, तब डिमोटिवेटेड हो जाते हैं. तो अपनी थॉट्स ही हमें उधर तक पहुँचने में जैसे एक रुकावट बन जाती है. जो चीज़ हम सोचेंगे फुल कन्विक्शन के साथ, उसमें फुल बिलीव करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि वो नहीं होगा. इम्पॉसिबल कैन हैपन बिकॉज सिचुएशंस, पीपल, एवरीबडी, वो बनती ऐसे जाएंगे कि आपकी थॉट ही जैसे सत्य होती जाएगी, प्रैक्टिकल आपके लिए होती जाएगी, प्रोवाइडेड इट इज़ 100% कन्विक्शन. एक भी नेगेटिव थॉट बीच में नहीं आनी चाहिए कि ये नहीं होगा, ये मुश्किल है, ये होना है, ये हुआ ही पड़ा, ये मुझे करना है.
2: ये पर अचीव कर पाना कि एक भी थॉट नेगेटिव ना आए, इट्स लाइक अगेन अ बिग अचीवमेंट.
4: नो, बट देन फिर अगर वो नेगेटिव थॉट आ रहा है, देन आई हैवंट सेलेक्टेड माय गोल प्रॉपर्ली. यू सी, गोल मतलब वो चीज विच आई फर्मली बिलीव कि मैं अचीव कर सकती हूँ. तो अगर मैं ही रखूं कि मुझे 5 साल में ये बनना है और मैं ही उस 5 साल के दौरान सोचूं कि ये तो बहुत मुश्किल है, देन आई हैव नॉट सिलेक्टेड द राइट गोल. तो इसलिए गोल बनाने से पहले अच्छी तरह से सोच के आप गोल को बनाइए, लेकिन फिर उसके ऊपर 100% कन्विक्शन कि इस पे चाहे कुछ पे हो जाए, चाहे कितनी भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए, आई एम गोइंग टू अचीव दिस. तो वी सी के इम्पॉसिबल हैपन, ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो भी खत्म हो जाएंगे. लेकिन अगर मेरी अपनी नेगेटिविटी, इसे इट इज आर थॉट विच अट्रैक्ट्स, जो क्वालिटी ऑफ थॉट होगी वैसी सिचुएशन, वैसे ही लोग अट्रैक्ट मेरी तरफ होते जाएंगे. सो नेगेटिव विल अट्रैक्ट नेगेटिव, पॉजिटिव विल अट्रैक्ट पॉजिटिव. तो पॉजिटिव थॉट, फर्म बिलीफ एंड लिविंग इन द प्रेजेंट. कई बार हम वो बना के बस उसी में खोए रहते हैं, मुझे ये करना ही है, ये करना ही है, तो उससे एक अटैचमेंट हो जाता है
2: और आज को भूल जाते हैं. बिल्कुल.
4: एंड इट्स ऑल्सो वी लूज आर आइडेंटिटी इन दैट. इट्स नॉट कि मैं ये हूँ, मुझे वो बनना है, नहीं, मैं वो हूँ. यू नो, जैसे एक डॉक्टर बनने का एम्बिशन रखा, तो वो अपनी आइडेंटिटी ही उसमें समा देते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ. तो कई बार अगर बाय चांस नहीं बन पाते तो अपनी आइडेंटिटी ही फिर खत्म हुई दिखाई देती है, तब वो डिप्रेशन. अगर ये हो कि मैं एक यू नो इंडिविजुअल एंटिटी हूँ, ये मैंने अपना रोल चूज किया है, अगर सिचुएशन डिड नॉट परमिट और मैंने वो रोल नहीं प्ले कर पाए, देन देर आर सो मेनी अदर रोल्स. लेकिन इफ आई डिड नॉट मेक इट अ रोल, आई मेड इट दिस इज आई, देन वो फिर बहुत ज्यादा आप डिप्रेशन में चले जाएंगे.
3: अच्छी बात इसमें शिवानी बेन ने बताई हुआ है, कहीं एक्सपर्ट्स है जो बहुत ही फेमस हुए, हाई अचीवर्स, उन्होंने भी कहा है कि 1-2 मास पहले भी हम सोच भी नहीं सकते थे वो चीज को मैं अचीव कर पाऊंगा, लेकिन हम क्योंकि उसके पीछे लगे रहे, एफर्ट्स करते रहे, तो सचमुच अचानक ऐसी क्षण आई कि जब एक क्वांटम जंप हो गई और हम उस स्टेज को अटेन कर पाए. और बात यह भी है कि भी अगर हम कोशिश करते रहे ना तो वो होता है.
2: लेकिन यहाँ डॉक्टर साहब, जो जितने भी आ रहे हैं हमारे पास मेल्स आए हैं, उसमें बात यही है, स्पेशली 10th, 12th एंड सिविल सर्विस. सिविल सर्विसेज का इतना ज़्यादा है लोगों के साथ प्रॉब्लम कि वो वही करना चाहते हैं, उसको अचीव कर लेना चाहते हैं और वो नहीं कर पाते, तो लगे रहते हैं जितने भी चांसेस आते हैं, उसके बाद देयर इज अ मेजर डिप्रेशन, कुछ और नहीं कर पाते, कुछ और करने की इच्छा ही नहीं रह जाती, कुछ और नहीं करना चाहते और सब कुछ जितना पोटेंशियल था वो भी नहीं अचीव कर पाते. अगर मैंने वो गोल रखा है और मैं कांस्टेंट पॉजिटिव थॉट के साथ, मुझ में आपने कहा कि हर एक में कैपेबिलिटी है, तो मैं करता भी जा रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, नहीं अचीव कर पा रहे,
3: तब ये सोचना है. जैसे अभी ऐसी स्टेज हो गई, जैसे मैं सिविल सर्विस की बात है कि ये स्टेज हो ही गई, तो तब हमें यह सोचना है कि भी मेरी कैपेसिटी तो बढ़ी, इतनी जो पढ़ाई की उसके लिए जो प्रिपरेशन किया उससे आपकी बुद्धि का विकास हुआ है ना, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ी, और अब आप और शायद क्षेत्र आपको बदली करना पड़ेगा, मे बी यू विल डू MBA और यू विल डू समथिंग एल्स, और आपने क्या वहाँ वो काम में आएगा।
2: लेकिन उसमें पीयर प्रेशर इतना हो चुका होता है, यू नो लाइक सारा पूरा समाज हमारे साथ जो हमारे अपने हैं उनका भी इतनी हमसे उम्मीदें बन चुकी होती हैं, हम शायद उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके होते हैं, क्योंकि वो उनका जो डाउन, उनको जो डिप्रेशन होता है, क्योंकि मैं हम देखा ये गया है कि सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं, पूरे का पूरा घर डिप्रेस हो जाता है। सो वो ये मास डिप्रेशन का क्या किया जाए
3: ना, जैसे शिवानी बहन ने कहा वो ठीक है कि मैं वो रोल हूँ ऐसे नहीं कि मैं उसको अचीव कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर हो गया ही नहीं, आई एम पुटिंग एफर्ट, शायद मैं डॉक्टर नहीं हुआ, मैं और कुछ बन सकता हूँ। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, वन बिल गेट्स को लीजिए, ही वॉज अ वेरी डिफिकल्ट चाइल्ड, कहते उसकी माँ उसको साइकोथेरेपिस्ट के पास बहुत समय तक ले गई, माँ थक गई परंतु बच्चा नहीं सुधरा, परंतु जब उसने अपनी कंपनी शुरू की तो देन ही हैड अ किलर इंस्टिंक्ट कि मुझे नंबर वन होना है, और सचमुच हो गया।
2: नहीं, बिगड़े हुए बच्चे तो सुधर जाए और बहुत अचीव कर जाए वो तो एक बहुत बड़ी बात लगती है, जो अचीवर्स होते हैं प्रॉब्लम वहां आती है कि जो फर्स्ट से लेकर टेंथ तक टॉपर रहे हैं वो जब टेंथ में परफॉर्म नहीं कर पाते या जितनी उम्मीद थी वहां कर नहीं कर पाती, तभी तो सुसाइड्स के केसेस होते हैं। या वो उस पूरे डिप्रेशन को वो कैसे हैंडल करे, फेलियर का हैंडलिंग जो है ना।
4: लेकिन सुसाइड का जो केस है इट इज मोर ड्यू टू नॉट बीइंग एबल टू फेस अदर पीपल, आई फील। लोग क्या कहेंगे या उस टाइम स्टूडेंट में तो ये कहेंगे कि पेरेंट्स क्या कहेंगे, इट्स मोर दैट फियर, वो फियर हमें सुसाइड की तरफ शायद अगर बच्चे को, क्योंकि बाकी बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं, फेल तो बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों को ये इंटरनल अश्योरेंस है कि मेरे पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, यू नो दैट एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, जहां मुझे पता है कि मुझे रिजेक्शन मिलेगा, आई डोंट वांट टू फेस दैट रिजेक्शन।
2: इफ वी लुक बैक, पिछले साल के ही रिजल्ट्स में एक ऐसी बच्ची थी जिसका रीचेक जब किया गया तो उसके 95% आए, और उससे पहले ही वो सुसाइड कमिट कर चुकी थी क्योंकि उसकी परसेंटेज 80s में थी। तो ये इतनी बड़ी एक विडंबना है।
4: लेकिन वो रीचेक करके 95 हुआ, लेकिन अगर नहीं भी 95 होता तो भी क्या
2: क्या था।
3: हाँ, मैं आपको और एक बार बताता हूँ ना, आई हैव बीन शेयरिंग दिस प्रैक्टिकली, मतलब उसको पॉजिटिवली लेना इस बात को, जैसे कहते हैं कि जो लोग भी ए ग्रेडर्स है ना, इवन इन मेडिसिन वी नो कि जो फर्स्ट हमारे पास जब MBBS करते गोल्ड मेडल्स जिनको आए थे, इनफैक्ट नो दे वर्क अंडर बी ग्रेड वालों के,
2: दे हैव टू
3: नो नो बी ग्रेड वाले शायद प्रोफेसर्स बन जाते हैं और उनके अंडर में वो काम करते हैं। कैसे सी ग्रेड वाले हैं ना, वो बहुत बड़ी हॉस्पिटल्स खोल लेते हैं और उसके ओनर्स बनते हैं, और कहते हैं नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ले रहा हूँ, कहते डी ग्रेड वाले हैं तो ना पॉलिटिशियन बनते हैं और सारे नेशन को रूल करते। अल्टीमेटली नो इट्स नॉट द ग्रेड विच यू गेट, नो हाउ यू डेवलप अदर एस्पेक्ट्स क्वालिटीज इन योर लाइफ एंड यू कैन अचीव बेटर सक्सेस।
2: दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू नो जो एकेडमिक अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं हम कि एकेडमिक अचीवमेंट्स, हाँ, बट कई बार भारत में तो हम ये देखा गया है कि उसको हम इतना फोकस बना के हम जब चल रहे हैं, खासकर स्कूल तक जो लेवल तक है, और जो एकेडमिकली अचीवर्स हैं वो कल्चरली भी अचीव कर रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो डिबेट्स में भी अच्छा कर रहे होते हैं, बाकी कॉम्पिटिशन्स में भी होते हैं, लेकिन जहाँ उनको फेलियर आ जाता है, एनी टाइम कमिंग सेकेंड बिकम्स डिफिकल्ट, यू नो वो डिप्रेशन, क्योंकि काउंसलर से अगर आप बात करें तो दैट इज़ अ मेजर क्वेश्चन, यू नो लाइक एक तो वो लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा नहीं अचीव कर पा रहे, एक वो जो ज्यादा अच्छे अचीवर्स हैं उनके लिए सेकंड आना एक मेजर प्रॉब्लम है,
3: किंतु वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में नहीं ले सकते,
2: तो उसको कैसे कर सकते हैं।
4: आई थिंक दे नीड टू टॉक टू देमसेल्व्स,
2: यस
4: अगेन, बिकॉज आई नो समबडी हु वाज गोइंग थ्रू दिस थिंग एंड शी वाज कमिंग फर्स्ट थ्रू आउट, एंड वो बार बार फर्स्ट आने की एक एडिक्शन से जैसी हो गई थी कि अब फर्स्ट ही आना है, और वो फर्स्ट आने के लिए वो इतना ज़्यादा मतलब एफर्ट करती थी, लेकिन एफर्ट करने के दौरान टेंशन भी बहुत हो जाती थी, तो वो जो प्रेशर से जाती थी उस एग्जाम्स के दौरान, आई यूज्ड टू ऑलवेज टेल हर इज इट वर्थ इट कमिंग फर्स्ट लाइक दिस, मतलब अगर आप फर्स्ट आ भी जाते हैं इसके बाद यू रियली हैवंट एंजॉयड योर ईयर, यू आर नॉट एंजॉयिंग योर कॉलेज लाइफ, टॉक टू योर सेल्फ, क्या होगा अगर आप सेकेंड आएंगे तो।
2: अच्छा, वो कॉन्स्टेंट इस जुगाड़ में भी रहते हैं कि दूसरे के कितने नंबर आए हैं, क्या मेरा आधा परसेंट भी उससे ज्यादा है, क्या वो उसका कम है कि नहीं है, यू नो लाइक इतना ज्यादा कंटिन्यूस इस प्रोसेस में, और जहां उनका आधा परसेंट भी कम हुआ मेजर डिप होता है, लाइफ स्टेट मेजर डिप्रेशन में चली जाती है इतनी छोटी उम्र में। सो
3: दे शुड टेक इट एज अ चैलेंज,
2: हाँ,
3: जैसे सेकंड आया तो फर्स्ट वाले ने मेरे से ज्यादा एफर्ट की होगी। आप बोल रहे तभी मुझे मेरा एग्जाम्पल याद आया। आई वॉज इन फैक्ट कहेंगे कि डल स्टूडेंट टिल सेवन स्टैंडर्ड, इवन टीचर्स डांटते थे कि अरे तेरा भाई पढ़ता है तू नहीं पढ़ रहा है। ऑटोमेटिकली एट्थ में ये आया कि भी बहुत पढ़ना चाहिए, अनलेस आई स्टडी आई डोंट हैव फ्यूचर, और फिर बहुत पढ़ने लगा। तो मे बी टेंथ में सेकेंड आई, इलेवंथ में फर्स्ट रैंक आई। तो जब मेरी फर्स्ट आई ना, तो जिसकी फर्स्ट हमेशा आती थी ही वाज थ्रू आउट फर्स्ट, आई रिप्लेस्ड हिम, तो वो सेकंड हो गया। तो देन ही वेंट इनटू डिप्रेशन।
2: यस, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग।
3: सो नो देयर ही नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये बंदे ने बहुत मेहनत की है, तब ये मेरे आगे निकल गया थोड़ा, तो लेट मी टेक इट एज अ चैलेंज। चलो एक साल तो ये आ गया, बी नेक्स्ट ईयर आई विल पुट मोर एफर्ट देन हिम एंड आई विल बिकम फर्स्ट।
4: नो बट इट्स आल्सो दैट like he said he was somebody else was first fir ye first aa gaye, but that doesn't mean ki is vyakti ki performance kharab ho gayi, it just meant somebody else came and performed a little better. to hum apne aap ko demean kyon karna shuru kar dete hain na ki mera acha nahi hua, and it's just that somebody worked a little harder. So I think the process should be ki aap us year ke dauran aap apna best effort kare, lekin when the result comes then there should be acceptance. Because us time turmoil nahi hona chahiye. Everything that we want to do, we do it during the year, and usme bhi with enjoyment, you know, internal enjoyment.
2: कुछ ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं हम जो हम ये स्टूडेंट्स को ये बताया जा सके। इनफैक्ट राइट नाउ आई हैव अ मेल, मैं इस पर ज़रूर बात करना चाहती हूँ। ये विनय हैं जो दिल्ली में ही पढ़ते हैं, एंड दिस इज़ वॉट हिज प्रॉब्लम इज ऑल्सो कि ट्वेल्थ तक ही हैज़ बीन एन अचीवर। हर क्लास में मैं फर्स्ट आता रहा और IIT का एग्ज़ाम मैंने दिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, उसमें भी फर्स्ट 100 में था, एंड आई वाज एन अचीवर। अब फर्स्ट सेमेस्टर तक आते आते, अभी उन्होंने IIT ज्वाइन किया है, कि अभी आई फील दैट आई डोंट टू डू एनीथिंग, दैट्स व्हाट ही सेज कि मुझे लगता है कि सब कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आई वॉन्ट टू रिनाउंस द वर्ल्ड, यू नो, मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूँ, मैं अपने माँ बाप को कैसे बताऊँ ये बात, क्योंकि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। सडनली मुझे लग रहा है कि कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैंने इतना कुछ तो अचीव कर लिया, क्या हुआ ये क्या है ये एक्चुअली ये विनय की नहीं, ये कई टॉपर्स की मैंने देखा है कि इवन पंजाब यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट्स के साथ ये एक वर्कशॉप हुआ था, तब भी ये बात हुई थी, टॉपर्स के साथ ये भी आज के दौर में प्रॉब्लम आ रही है। दे सडनली फील यू नो इतना अचीव करते करते एक इतनी छोटी उम्र में ही, अब कितने 16-17 साल के ही होंगे, कि एक ऐसी वक्त आता है कि वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग, ही क्या है, दिस इज अगेन अ डिप्रेशन।
3: या इट इज डेफिनेटली डिप्रेशन, और भी स्टडी करना चाहिए अगर सचमुच हमें उसे एनालिसिस करना हो तो, लेकिन फिर जो सिम्टम्स है उसके आधार से यही लग रहा है। अभी ऐसे केस में कॉज क्या है कि भी ऑल ऑफ अ सडन कुछ मैं ऐसा सोचने लगा कि भी मैं नहीं कर सकूंगा, मैंने एफर्ट की, बट नो एट अ स्टेज पर्सन गिव्स अप।
2: नहीं, he says कि I've been achieving, अभी IIT में भी first 100 में आए, तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि मैं अब छोड़ देना चाहता हूँ सब कुछ।
3: Still if he's achieving then one reason can be that endogenous depression, if it has happened all of a sudden then that is one of the possibility। और बात ये भी संभव है कि भाई वो जो competition उसको face नहीं कर पा रहे, capacity है लेकिन competition को face नहीं कर पा रहे,
2: या फिर कहीं कभी ऐसा भी होता है कि ऊंचाई पे पहुंच के तो मैं अकेला हूँ, मेरे लेवल का तो कोई है ही नहीं, यू नो कई बार ऐसा भी होता है कि
3: इस स्टेज पे नहीं होगा, ये और हायर स्टेज पे हो सकता है। नहीं, जैसे किसको नोबेल प्राइज मिल जाए तब कई बार ये स्टेज आती है कि सब कुछ पाना था पा लिया, नाउ देयर इज नथिंग, नो आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड
2: एंड आई फील अलोन, यू नो लाइक टॉप पे आप अकेले होते, ये एक बिलीफ एक और लेके चलते हैं हम कि हम जब चोटी पर होंगे तो हम अकेले होंगे, सो डज इट रियली हैपन।
4: आई थिंक इट्स आल्सो बिकॉज़ समवेयर आप मटेरियलिस्टिकली चाहे एजुकेशन चाहे प्रोफेशनली आप बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, लेकिन आप ये सब कुछ चाहते थे कि ये आपको खुशी दे, ये आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन दे। आपको बहुत सारी डिग्रीज मिल गई, बहुत सारा धन या सब कुछ मिल गया, लेकिन वो नहीं मिला जिसको आप ढूंढ रहे थे, तब कहीं ना कहीं लगने लगता है इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ पा लिया लेकिन वो नहीं मिला जो ढूंढ रहे थे, तो इस सब को छोड़ दो अब उसको ढूंढना शुरू कर दो। यू नो यू जस्ट टेक द एक्सट्रीम पाथ कि पहले आप सिर्फ भौतिकता की तरफ ही भाग रहे थे, अब आप सोचते हो इससे वो मिल नहीं रहा, अब इसको छोड़ दो, अब आप संन्यास या जैसे आपने कहा यू नो रेनाउंस द वर्ल्ड, बट इट्स नीदर ऑफ द टू, इट्स सपोज टू बी बोथ, दैट इज द बैलेंस कि आप खुशी संतुष्टता से भी भरपूर होते जाएं और भौतिक जो आपको प्राप्तियां चाहिए उसको भी करते जाएं. जब आप वो करते जाएंगे आई थिंक ये स्टेज कभी नहीं आएगी बिकॉज यू गोइंग टू एंजॉय द प्रोसेस. ये क्या हो रहा है, मे बी यू आर नॉट एंजॉयिंग द प्रोसेस. तो कहीं ना कहीं अगर हम जैसे सपोज हम यहाँ से बॉम्बे जा रहे हैं, अगर हम जा रहे हैं द जर्नी इज एब्सोल्युटली मिजरेबल, यू नो आप बिल्कुल जर्नी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप डेस्टिनेशन पहुँच के भी खुश नहीं होंगे. कहेंगे यू नो दैट होल जर्नी टेक्स इट्स toll on you, so you don't enjoy where you have reached. So it's important to enjoy through the process. And तब वो तभी होगा अगर आप हल्के रहकर पढ़ रहे हैं. You know, sometimes with students that is what is happening. कि वो इतना tightness to be first, इतनी anxiety, वो सब कुछ discharge कर रहा है उनको अंदर से.
2: वही कि वो मुझे पहुंचना, मुझे वो addiction ना.
4: बिल्कुल.
2: First आने की addiction.
4: फिर वो first आना भी वो खुशी नहीं देगा जो उसे देनी थी क्योंकि आपने पूरा साल enjoy नहीं किया. तो वो प्राप्ति भी बहुत ज्यादा सुख नहीं ले सकती है. एंजॉय, आई थिंक वी नीड टू लर्न टू एंजॉय लाइफ. एंजॉय इन द सेंस इंटरनली बीइंग वेरी हैप्पी एंड एक्सेप्टिंग. एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी मतलब एक कला है जो हमें सीख लेनी चाहिए और वो संपूर्ण विश्वास के साथ कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे लिए बिल्कुल सही हो रहा है. बिकॉज इट एक्चुअली हैपन्स लाइक दैट. अगर हम डिटैच्ड होकर देखें हमारे साथ जो कुछ हर स्टेप पे हो रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट परफेक्ट एंड बेनिफिशियल. जिसके लिए हम कहते हैं ड्रामा, ये पूरा जो ड्रामा चल रहा है दिस इज एक्यूरेट परफेक्ट एंड बेनिफिशियल. इसमें कुछ भी चेंज होने की एक्चुअली आवश्यकता नहीं है. एंड व्हेन आई लुक एट इट लाइक दैट आई रियलाइज एवरी सीन इससे अच्छा सीन
2: और नहीं हो सकता था. विनय को आप भी कुछ कहना चाहेंगे कि सिस्टर शिवानी ने तो यही कहा कि जो है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और जो जर्नी है, जो जर्नी हमने ली है उसे दोनों तरफ का बैलेंस बना के कि एक स्पिरिचुअलिटी का एक एस्पेक्ट तो है ही कि एक हम इंटरनलाइज कर लें कि भाई मैं खुशी मेरे अंदर ही है उसे ही अचीव करूं और ज़रूरी नहीं है हर कदम पे ही फर्स्ट आना है, हर बार फर्स्ट आना है. आपने कहा कि वो सेकंड टाइप की ये हो सकती है, यू नो सेकंड टाइप का डिप्रेशन हो सकता है जिसमें केमिकल चेंजेस की हमने बात की थी.
3: एंडोजेनस डिप्रेशन.
2: हाँ, एंडोजेनस जो है तो उसमें इनको क्या सलाह देंगे?
3: एंडोजेनस डिप्रेशन में तो मेडिसिन की जरूरत है. नहीं, एक बार एक्सपर्ट है वो कोई प्रोफेशनल उसको जज कर पाएगा. अपने आप भी भले कोशिश करे और ये ट्राई करे कि भी कहां पर मेरे विचारों में गलती है. उन्हें वास्तव में यह प्रॉब्लम विचारों से, अगर स्टिल इफ इज अचीवर वहां कोई तकलीफ नहीं हुई है तो फिर तो उसको एंजॉय करना सीखे. इफ ही फील्स कि भी शायद मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा, कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, तो इनसिक्योरिटी के थॉट्स भी हो सकते हैं.
2: इतना बड़ा अचीवर साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाएगा, ये भी एक मिथ है. ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर हम इतने इंटेलिजेंट हैं तो हम साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों जाएंगे, हमारी प्रॉब्लम नहीं है. आई एम रियली थैंकफुल ही मेल्ड इट टू अस, अदरवाइज वी ऑलवेज फील वी आर वेरी इंटेलिजेंट कि हमें साइकियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं है. या एक और बात की, अगर हमें ड्रग्स लेते हैं तो वो हैबिट फॉर्मिंग है. यू नो हमें ड्रग्स नहीं चाहिए क्योंकि ड्रग्स लेंगे तो हमें हैबिट हो जाएगी. ये दो मिथ हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि ये सही है या गलत.
3: बहुत अच्छा कि साइकेट्रिस्ट के पास जाने में फायदा ही है. नहीं, और अच्छा साइकेट्रिस्ट आपको ऐसी दवाई नहीं देगा. इफ यू डोंट नीड ही विल टेल यू कि भी आपके स्टेज परफेक्ट, आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, ये दो तीन और स्टेप्स अपनाइए है और अगर आवश्यकता है तब ही वह देंगे. दूसरी बात, जो मेडिसिन है हैबिट फॉर्मिंग नहीं है. एक्चुअली दिक्कत कहाँ होती है पता है कि भाई सचमुच जो न केवल डिप्रेशन और सारी की सारी साइकेट्रिक बीमारियों को आप देखो तो अगर ठीक से इलाज किया जाए शुरू में तो 80% बिल्कुल ठीक हो जाते. लेकिन जो 80% ठीक हो गए वो किसी को नहीं बताएंगे कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास गया या मैं ठीक हुआ. ही विल नॉट टेल अ सिंगल पर्सन.
2: But why? This is again
3: it's sort of a stigma.
2: Belief system.
3: और वो जो 20% जो सिर्फ ठीक नहीं हुए ना उसी को हम बार बार देख रहे हैं. ये तो ठीक नहीं हुआ, देखो 6 साल से दवाई ले रहा है, 10 साल से ले रहा है, ठीक नहीं हुआ. इसलिए हमें लगता है कि साइकेट्रिक मेडिसिन्स आर हैबिट फॉर्म. अगर प्रॉपरली ली जाए एंड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत लंबा नहीं लो, 1 साल भी 1.5 साल लेनी पड़ती है वास्तव में कई बार. हाँ, उतना समय आप लो तो नो इट्स नॉट एट ऑल हैबिट फॉर्मिंग. इवन इन ओल्ड एज समटाइम आई से इवन इफ यू हैव टू टेक इट लॉन्गर डोंट वरी, क्योंकि और उसकी कोई ऐसी साइड इफेक्ट नहीं है. यंगर वंस को हम कहेंगे कि टेक इट फॉर अ शॉर्ट व्हाइल, लंबा नहीं लो,
2: लेकिन लेना पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं,
3: लेना ही चाहिए.
2: और ओवर इंटेलिजेंट लोगों के लिए, यू नो लाइक चलते चलते हम ये बात करना चाहेंगे कि ओवर इंटेलिजेंट यूथ, ओवर इंटेलिजेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, वी कैन डू इट, वी कैन हैंडल एवरीथिंग एंड देन व्हेन दे आर नॉट एबल टू हैंडल, जब नहीं हो पाता तब सब कुछ टूटता हुआ नजर आता है. हाउ टू
4: दे आर नॉट बीइंग रियलिस्टिक, दे आर ट्राइंग टू बी परफेक्शनिस्ट व्हिच इज नॉट पॉसिबल. यू नो हम एक एम रख सकते हैं बट वी हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट हैपेंस ऑन द वे. हम कई बार अपनी गलती को नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि हमारे से गलती कैसे हो सकती है, हमें कम मार्क्स कैसे मिल सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है. सो ये मतलब यू नो टू मेक योर सेल्फ वेरी टाइट कि आई एम परफेक्ट, दिस इज नॉट पॉसिबल, इट विल ओनली मेक माई लाइफ डिफिकल्ट. अगर हमें परफेक्शन अचीव करनी है देन आई कैन बी परफेक्ट इन माई स्टेट ऑफ माइंड, दैट्स पॉसिबल, क्योंकि उस पर कोई और सिचुएशन का कंट्रोल नहीं है. मेरे एम पर, मेरे जो गोल पर है उस पर बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं, माई फैमिली, माई सिचुएशंस, माई ओन हेल्थ, बहुत सारी बातें, लेकिन मेरे स्टेट ऑफ माइंड इज द ओनली थिंग जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है. सो इफ आई रियली वॉन्ट टू एम फॉर परफेक्शन आई एम देयर, तो उससे क्या होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ बाहर कोई भी गोल अचीव हो या नहीं हो, आई विल स्टिल बी हैप्पी एंड आई वॉज अचीविंग माई गोल ओनली टू बी हैप्पी. सो इफ आई कैन बी हैप्पी विदाउट रियली रीचिंग देयर, वेयर इज द डैमेज डन, आई एम स्टिल हैप्पी. द होल एम वॉज टू बी हैप्पी बट आई थॉट आई विल बी हैप्पी ओनली आफ्टर रीचिंग देयर, बट आई कैन बी हैप्पी विदाउट रीचिंग देयर एंड आई कैन बी हैप्पी वाइल गोइंग देयर
2: इन द प्रोसेस. एक्चुअली आई एम हैप्पी. तो डॉक्टर साहब, एक जो हमारे पास जितने भी इंफॉर्मेशन आ रही है, जितने भी लोग हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, एक बात जो सामने आई यूथ के लिए जो थी कि अचीवमेंट की, दूसरा है मोहब्बत, प्यार, रिलेशनशिप्स. यू नो नेक्स्ट कड़ी में, नेक्स्ट एपिसोड में हम ज़रूर उस पर बात करेंगे कि मेजर डिप्रेशन का कारण जो यूथ में है वो एक है कि प्यार में धोखा या प्यार में अचीव ना कर पाना या फिर प्यार ना मिल पाना जो वो सोच रहे हैं, एंड व्हाट इज़ द रियल एसेंस ऑफ लव एक्चुअली, यू नो, एंड रिलेशनशिप्स. तो आज हमने अचीवर्स की बात की और ये बात सामने आई कि गोल रखा जाए, गोल एक बड़ा होना चाहिए सामने, लेकिन जो आज जिस सिचुएशन में है वो रियलिटी भी हमारे सामने होनी चाहिए, उसे रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए. तो डॉक्टर गिरीश पटेल एंड सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. डिप्रेशन एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम और आप रूबरू होते हैं, लेकिन इस पूरे सफ़र में हम ये जान रहे हैं कि ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जिससे हम बाहर नहीं निकल सकते. आज अचीवर्स की बात की, अचीवमेंट की बात की, अचीव करना चाहिए, एम्स होने चाहिए, बड़े गोल्स रखिए, लेकिन आज अपनी सच्चाई जो है उससे भी वाकिफ रहिए. हमने आपसे वादा किया अगली कड़ी में मोहब्बत को लेकर आएंगे कि आज की युवा पीढ़ी किस तरह से मोहब्बत को देखती है, किस तरह से प्यार के रिश्तों को देखती है और किस तरह से जब उनमें असफल हो जाती है तो डिप्रेशन की तरफ बढ़ सकती है, कैसे उससे निकल सकते हैं, इसके बारे में अगली कड़ी में बात करेंगे. लेकिन अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप भी हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं. हमारा फ़ोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही. अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत. नमस्कार.

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज़ हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सबसे बड़ा ज्ञान स्वयं को जानना है। मन का मंथन करें, विचारों को शुद्ध करें और आत्मा की शांति का अनुभव करें। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग राजस्थान, गुड मॉर्निंग गुजरात, गुड मॉर्निंग आप सभी को जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं। तो आप सभी का नई किरण इस कार्यक्रम में स्वागत है। शुक्रवार का दिन है, जुम्मे का दिन है, 7 अगस्त 2026 आज का तारीख है। भारतीय समय के अनुसार देखा जाए तो राष्ट्रीय संख्या 1948, 16 गते 22 श्रावण शुक्रवार आज है और विक्रम संवत 2083 श्रावण कृष्ण पक्ष नवमी शुक्रवार कृतिका आज है। हेलो जी नमस्कार।
2: हेलो जी नमस्कार, भाव जी नमस्कार। आप आ जाते तो हमारी खुशियाँ इतनी बढ़ जाती है, बात लग चुकी है। माता जी को भी याद करते रहते हैं अपन।
1: जी जी जी,
2: माता जी का गाना है ये शारदा माँ हमारे अज्ञानता को दूर कर देना। आवाज आ रही है सर?
1: बिल्कुल।
2: सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुरेश भाई तीनों
1: अज्ञानता
2: भाई है, सुभाष भाई है और वो भूरा राम जी भी कभी कभी राम राम करते हैं, उनको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार है।
1: बिल्कुल,
2: आपको भी प्रणाम है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सबको प्रणाम। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए आज हम लोग कुछ खास लोगों की जीवन कहानी से आपको रूबरू कराते हैं और अभी कार्यक्रम को एक नए मोड़ पे ले चलते हैं। आज हम लोग जैसे कि गुरीलाल जी याद कर रहे थे और अज्ञानता से दूर हमें ज्ञानी बनाए, ऐसी प्रार्थना जो है माँ शारदे से सरस्वती वंदना के रूप में करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका सुबह जो है बेहतर हो जाएगा और एनलाइटमेंट मिलेगी आपको। तो थोड़ा सा आप अपने अंतर मन की तरफ झांकिए और वहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा जगाते हुए माँ शारदे को नमन करते हुए अपने अंधकार को मिठाकर ज्ञान का प्रकाश अपने अंदर महसूस कीजिए इस सुंदर भजन के साथ। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बहुत ही प्यारा सा माँ शारदे का सुंदर गीत आपने सुना। आशा करूँगा सुबह सुबह जब हम लोग इस तरह के सुंदर भजन सुनते हैं तो जीवन जो है खुशियों से भर जाता है और हमारा जीवन जो है एनलाइटमेंट हो जाता है। सुबह का समय ही ऐसा होता है कि भक्ति का समय होता है। अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने आप से बातें कर लेते हैं, अपने आप से जुड़ जाते हैं और उसमें किसी इष्ट की या किसी शक्ति को याद करते हैं तो उनका अनुकंपा आपको मिल जाती है और आप अपने जीवन में बेहतर महसूस करने लगते हैं। एक सुबह जो है, जैसे हम लोग कहते हैं कि ब्रेकफास्ट में तगड़ा होना चाहिए। तगड़ा क्या होगा? फिर आप सोचते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ विटामिन सिरप या फिर अपन जूस पी लेते हैं या ड्रिंक पी लेते हैं, ऐसा सोचते हैं, है ना। तो लोग बहुत करके जैसे कि दूध के अंदर हनी मिला के पीते हैं या फिर कुछ पाउडर मिला के पीते हैं जिससे उनको लगता है कि हमारा पूरा दिन जो है हेल्दी रहेगा। शरीर हेल्दी हो सकता है आप खाने से, लेकिन मन भी तो आपका हेल्दी रहना चाहिए। तो मन हेल्दी होने के लिए आप क्या करते हैं बताइएगा। आप मुझे फ़ोन करके 9414151415 इस नंबर पे, और मैं चाहूँगा कि मन को हेल्दी रखने के लिए आप थोड़ा सा चिंतन मनन ज़रूर कीजिए। शांति में एक कोने में बैठकर जो है परमात्मा को याद कर लीजिए, उससे आपके मन को जो है फ्रेशनेस मिलेगा, मन आपका खुशी और उमंग से भरपूर हो जाएगा। तो है ना कमाल की बात। तो इसका आप अभी से प्रयोग कीजिए ऐसी शुभ आशा के साथ। चलिए, आज के दिन में विशेष रूप से जो लोगों का जन्मदिन है उसमें खास व्यक्ति का जन्मदिन है, उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, गुलशन बावरा जी का। जी हाँ, हिंदी फिल्मों के बहुत ही पॉपुलर गीतकार रहे। उनका मूल नाम था गुलशन कुमार मेहता, लेकिन उन्हें बावरा उपनाम से फिल्मों में काफ़ी प्रसिद्धि मिली और फिर बाद में इनका जो इतना नाम हुआ कि फिल्म उद्योग में बावरा नाम से ही इनको गुलशन बावरा नाम से पुकारा जाने लगा। साहित्यिक सोच थी और गुलशन बावरा संगीत से काफ़ी लगाव रखते थे, इसलिए रेलवे में काम करते हुए उनकी जो है फिल्म उद्योग से जुड़ना आसान हुआ जब वो गीत लिखना शुरू किया। तो आइए इनकी कहानी और बताता हूँ मैं आपको, लेकिन अभी आपको ले चलता हूँ इनका ही एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपको सुनाने वाला हूँ, गुलशन बावरा जी का लिखा हुआ एक बहुत ही पॉपुलर गीत आपके नाम अभी। और अगर आपने गुलशन जी के कुछ गीत अगर सुने हो तो उनके बारे में ज़रूर बताइए, उनके गीतों के बारे में जिक्र कीजिए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुंदर रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बड़ा ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे, गुलशन भावरा का खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे, जिसे मन्नाड़े ने बड़े प्यार से गाया था। जंजीर फिल्म का ये खूबसूरत गाना अभी आपने सुना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और मुझे लगता है कि हम सभी जिस तरह से कार्यक्रम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और शांति वन में आज से एक सुंदर जो है रिमझिम शुरू हो गया है मैराथन का। आप कुछ समय से जो है देख रहे हैं मैराथन की तैयारियां, न्यूज़ वगैरह में भी आप सुन रहे हैं। और 9 अगस्त को ये पूरा मैराथन जो है सुबह 5:30 से 9 बजे तक होने वाला है आबू राज में। और ये आबू से यानी शांति वन के मनमोहिनी वन, जहां से शुरू होकर सीधे माउंट आबू पांडव भवन तक 21 किलोमीटर का मैराथन रन होगा। और इसमें आप सभी जानते हैं कि सभी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब लोग जो हैं आने लगे हैं आज से। तो ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरह से आप भी इसमें जुड़ सकते हैं, लेकिन उस समय जो है सवेरे 5:30 से 9 बजे तक आबू जाने का रास्ता जो है बंद रहेगा, क्योंकि इसमें सारे मैराथन दुनिया भर के लोग आए हैं और सब दौड़ेंगे। तो आप भी हिस्सा बन सकते हैं शुरुआत में और आखिरी में, लेकिन आपको थोड़ा सा जो है कोऑपरेशन ज़रूर करना पड़ेगा। और शुरू में आना हो तो 5:30 बजे आइए, और फिर बाद में ऊपर जाना हो तो आप 9 बजे के बाद आ सकते हैं। और शुरू शुरू में आप 5:30 से 6 के बीच में आकर सभी मैराथन रनर्स को क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन दे सकते हैं और उनको जो है गुड विशेस दे सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है, और 9 अगस्त को एक ऐसा मैराथन जिसे 5:30 से 9 बजे तक तलेटी आबू रोड से शुरू होकर आबू राज मार्ग पर यातायात उस समय पूर्ण बंद रहेगा। यदि किसी को इस अवधि में आबू राज से बाहर जाना हो तो कृपया 5 बजे से पहले चेकआउट कर ले। सभी मार्ग 9 बजे तक पुनः 9 बजे के बाद ही खोला जाएगा। तो आप उस समय को ज़रा इंटीमेट कर लीजिए, ध्यान रखिए 9 तारीख सुबह 5 से 9 के बीच में। हेलो जी, नमस्कार।
1: हाँ जी सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हम शांति सुरेश भाई बोलता हूँ जटाना से। कैसे हो सर?
0: बढ़िया बढ़िया, आप बताइए, आप कैसे हैं सुरेश जी?
1: बस अच्छे हैं, बैठे हैं, काम कर रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, अच्छी बातें हो रही है। मैराथन के बारे में जो आप बता रहे हैं 5:30 बजे से शुरू हो जाएगा कल।
0: जी कल नहीं होगा, 9 तारीख को, परसों
1: 9 तारीख को।
0: हाँ, अभी लोग आए हैं, अब उनका जो है 1-2 दिन राजयोग शिविर का चलेगा।
1: तो कितने किलोमीटर की दौड़ है सर?
0: 21 किलोमीटर।
1: 21 किलोमीटर, तो कहाँ से कहाँ जाना?
0: आबू रोड मनमोहिनी वन से लेकर ऊपर माउंट आबू, माउंट आबू का रास्ता पूरा।
1: अच्छा, इतने तो कठिन है ऊपर जाना।
0: हाँ, गाड़ी से ही 1.5 घंटा लगता है, आपको 3 घंटे में पैदल पूरा करना है।
1: सही बात है, तो ये तो गाड़ी की तेज से चलना पड़ेगा, तभी तो पहुंच जाएंगे वहाँ।
0: चलना नहीं, भागना पड़ेगा ऊपर पहाड़ी में।
1: भागना पड़ेगा नहीं, ऐसे हमारे तो कई सारे ऐसे जवान हैं, वो भाग जाएंगे और पहुंच जाएंगे।
0: हाँ हाँ, वो तो है, जिनको आदत है, जिनका पूरा प्रैक्टिस है, वो तो भागेंगे।
1: हर साल होती है मैराथन, तो प्रैक्टिस भी होती है।
0: जी जी,
1: और सही है, चलो ये भी एक अच्छा है कि 21 किलोमीटर की दौड़ 3 घंटे में पूरी करनी है, और वो भी माउंट चढ़ना है। कभी कभी गाड़ियों भी कभी कभी ऊ करती है, चल नहीं पाती है, जो ऊपर नहीं जा सकती है, तो दौड़ना है। तो चलो अच्छा, बाबा सबको एक कहते ना कि सबको बाबा कष्टी तो होगी, लेकिन जरूर बाबा साथ देगा और हमारे मित्र पहुंच जाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो चलो सबको शुभकामनाएं हम देते हैं कि सब हमारे मित्र पहुँच जाएंगे आराम से ऊपर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका,
1: सबको शुक्रिया शुक्रिया। और संतोषी माँ का गाना सुना देना, संतोषी माँ की आरती बहुत दिनों से नहीं सुनी है, बहुत दिनों से आरती नहीं सुनी है, तो आरती सुना देना सर।
0: जी जी जी,
1: ठीक है, हमारे गुरा राम जी, गुरी राम, हमारे सुगना बहन, हमारे संचन भाई, सभी को राम जी, सभी को नमस्ते हमारी तरफ से सर। ओम शांति, ओम शांति।
0: ओके सूर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तो आइए, वक्त हो गया है अब जो है 8:36 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ। तो एक और खूबसूरत सा गीत आपको सुनाएंगे और मुझे लगता है कि गुलशन बावरा का जो गीत है आप याद कराइए, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आपको याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, और अगर उनकी कोई गीत आपने सुना हो या उनके बारे में कभी सुना हो तो वो भी बता सकते हैं हमें।

चलिए अब सीधे चलते हैं और गीत सुनते हैं उषा मंगेशकर की आवाज़ में, मैं तो आरती उतारूँ रे संतोष मां, सुनते रहो बस।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को और बढ़ा देते हैं। आज हम लोग बात करने वाले डॉक्टर अंकुश जी से, तो अगली आवाज़ आप सुनेंगे डॉक्टर अंकुश जी का, बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू। ओम शांति।
0: ओम शांति।
1: वेरी गुड, आई एम वेरी गुड।
0: मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए, किस प्रोफेशन में आप काम करते हैं और कितने समय से हैं?
1: जी, मैं ऑप्थल्मोलॉजिस्ट हूँ और मैंने रेटिना स्पेशलिटी किया है, सुपर स्पेशलिटी।
0: जी जी।
1: तो रेटिना इज लाइक बैक ऑफ द आई, आँख का पीछे का पर्दा होता है, उसका सुपर स्पेशलिटी किया हुआ है। और
0: अच्छा,
1: ये प्रोफेशन में मैं लगभग मतलब एजुकेशन कम्प्लीट करने के बाद अभी 8-9 साल हो रहे हैं।
0: तो आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा बताइए हमें।
1: मैं जलगांव महाराष्ट्र से हूँ, वहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ।
0: जी जी जी। तो आई स्पेशलिस्ट बनना या रेटिना स्पेशलिस्ट बनना, इसके पीछे कोई कहानी है या आपको लगा कि इसमें भी काम करना चाहिए?
1: एक्चुअली बचपन से ही मतलब मेरे माइंड में कोई डाउट ही नहीं था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। तो उस हिसाब से ही पढ़ाई करते गए। MBBS होने के बाद हर एक के एक दो ऑप्शंस रहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो एक वो मन में था, एक तो कार्डियोलॉजिस्ट बने या तो ऑप्थल्मोलॉजिस्ट बने।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो वाबा ने चुन के दे दिया।
0: अच्छा, आई स्पेशलाइजेशन करते वक्त आपको, यानी पहला जो ऑपरेशन या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वो अपना एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है, या आप अंडर ट्रेनिंग में भी हम लोग काम करते हैं तो कभी हम लोग कुछ चीज़ें जैसे डेलिकेटेड ह्यूमन बीइंग्स को टच करना और उसके साथ ऑपरेट करना, या ऐसे माइंड में था कि नहीं? तो पहली बार जैसे ना किसी नए आदमी को अगर इंजेक्शन भी पकड़ लेता है, वो TT का इंजेक्शन हो या डायबिटीज़ का इंजेक्शन लगाने में सोचना पड़ता है। घर में किसी माँ को डायबिटीज़ हो जाता है, रोज़ वो इंसुलिन लेना पड़ता है, तो फर्स्ट टाइम लगाते वो सोचता है कि लगाओ कि नहीं लगाओ। तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंस आपका?
1: एक्चुअली क्या है कि जैसे मैंने बताया कि मुझे बचपन से मतलब डॉक्टर बनना था, तो इसलिए उस बारे में कोई फोबिया भी नहीं था।
0: अच्छा अच्छा।
1: या फिर माइंड में ही था कि अपने को अभी ये करना ही है, इसलिए वो बहुत स्मूथली हुआ।
0: अच्छा अच्छा।
1: और दूसरी बात जो आपने कहा कि फर्स्ट सर्जरी का,
0: जी जी जी,
1: तो एक्चुअली टीचिंग में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ये मेरी फर्स्ट सर्जरी और ये पूरी हो गई। वो दैट इज सो स्टेप बाय स्टेप, मतलब ऐसी कोई स्टेज नहीं उसमें कि मुझे अभी सर्जरी नहीं आ रही और अभी आ रही है। इट इज वेरी स्मूथ। तो वो स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप
0: ट्रेनिंग में ही आपको सारी चीजें सीखने को मिल जाता है और वहीं पर।
1: और मेरा मतलब खुद का ही एक परसेप्शन था, जो भी मेरे सीनियर्स या टीचर्स थे, फॉर्चुनेटली बहुत रिनाउंड सर्जन थे, तो उनको देख के मेरे मन में वो रहता कि मुझे ऐसा करना है,
0: ऐसा करना है।
1: तो वो था कि मैंने सीखा भी अच्छे लोगों से, तो ऑब्वियसली अपने टीचर्स गुरु अच्छे होते तो हम भी वैसे ही बनते।
0: बहुत अच्छी बात है आपने।
1: और मेरे टीचर्स का भी मतलब वो कॉन्फिडेंस था, पेशेंट आता है या सर्जरी शुरू करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हमारे दिमाग में क्या बोलते हैं उसको, एक अप्रोच या प्रोटोकॉल रहता है, तो वो एक बार आपको फिक्स हो गया तो आप स्मूथली वो सब चीज़ें करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपने सीखी है और उसको प्रॉपर माइंड में है।
1: हाँ।
0: और व्यवस्थित आप करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
1: और मतलब बचपन से स्पिरिचुअलिटी में है तो कभी वो चीज़ का कभी कुछ प्रेशर नहीं फील हुआ।
0: डॉक्टर अंकुश जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि आप कुछ एक्सपीरियंस अपने ट्रेनिंग के समय के बताइए, यूनिक एक्सपीरियंस।
1: यूनिक एक्सपीरियंस मतलब बहुत ईगरनेस रहता था।
0: हाँ।
1: कि मैं कब ये करूँ। तो लेकिन मैंने जैसे कहा कि ये स्मूथ ट्रांजिशन है, पहले दिन मैं फर्स्ट स्टेप करूँगा, फिर मेरे टीचर देखेंगे ये कर रहा है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप अगली स्टेप दूंगा।
0: जी जी।
1: तो क्योंकि ह्यूमन टिश्यू हैंडलिंग है, तो इवन इफ आई एम डूइंग गुड, वो डायरेक्टली हरीली मतलब आगे नहीं बढ़ाते।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, जब दे फाइंड इट कि ही इज़ वेरी फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट इन वन स्टेप, तो फिर सेकंड स्टेप में जाते हैं। तो काफ़ी स्मूथली मैं एक एक स्टेप को लर्न करते गया, वीडियोस देखना, सीनियर्स के सर्जरी करते हुए मैं मतलब घंटों देखता था। कैसे इंस्ट्रूमेंट पकड़ रहे हैं, किस एंगल से पकड़ रहे हैं, क्या थिकनेस हो रहा है, क्या आ रहा है, किस क्या चीज़ आ रही है, तो मतलब मैं करने से पहले वो सब चीजें दिमाग में
0: रख देती हूँ,
1: बनी हुई थी बस अभी सिर्फ वेट कर रहा था कि मेरे हाथ में कब आए और सब कुछ अच्छा होते भी गया। तो यूजुअली मतलब फाइनल ईयर तक मुझे ऐसा था कि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी मेरे टीचर्स मुझे करने देते थे क्योंकि अच्छा। उनको भी उतना कॉन्फिडेंस आ जाए था कि
0: बिल्कुल
1: कि ये कर सकता है। तो मतलब इसमें मेरा कहने का मुद्दा यही है कि अगर आप पहले से दिमाग में उसको प्रॉपरली एनालाइज कर ले, सीख ले, सोच ले, तो नॉट ओनली सर्जरी या आए लेकिन किसी भी फील्ड में आप स्मूथली आगे
0: बिल्कुल हर जगह जो है आप सॉफ्टवेयर के साथ अच्छी तरह से आप मैनेज कर लेते हो तो फिर हार्डवेयर आसान हो जाता है। आपका मन अगर चीज़ों को करने के लिए तैयार है और आप में उत्साह है तो वो आसानी से फिजिकल एस्पेक्ट में आराम से हो जाता है। बहुत अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर अंकुश जी। मैं चाहूँगा कि आप जैसे बहुत सारे डॉक्टरों को मैंने देखा कि डॉक्टर होते हुए भी वो संगीत के साथ बड़े अच्छे जो है रैपो बनाते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स अच्छे सिंगर भी होते हैं तो मैं चाहूँगा कि आपका संगीत के प्रति क्या आस्था है और किस तरह के गीत संगीत आप सुनना पसंद करते हैं और एक पसंदीदा गीत का एक लाइन ज़रूर बताइए हमें।
1: गीत संगीत तो सभी को अच्छा लगता ही है क्योंकि वो माइंड को साइलेंट भी करता है, फ्रेश भी करता है। मेरा खुद का थोड़ा सा म्यूजिक से रुचि रहा है। मैं खुद एक कीबोर्ड
0: अच्छा बजाते
1: बजाता हूँ बट एजुकेशन और उसमें ज़्यादा थोड़ा ध्यान नहीं दिया। कीबोर्ड फ्लूएट ये सब मैं बजाता था अभी काफ़ी, लेकिन ये है कि स्टडीज़ है कुछ है तो उसके दौरान अपन थोड़ा एक बैक ऑफ द माइंड म्यूज़िक रहता है। जैसे बाबा भी हमको मिला है स्पिरिचुअल लाइफ में तो लगता है और लौकिक में भी वो चीज़ है। ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, ए जाने वफा तुम खूब मिले।
0: चलिए डॉक्टर अंकुश जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है। आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लगेगा। मोहम्मद रफ़ीस साहब का गाया हुआ ये खूबसूरत पुराना गीत आपने याद कराया। तो लीजिए अब ये गाना सुनते हैं, उसके बाद फिर डॉक्टर अंकुश जी से बातें करेंगे। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं, डॉक्टर अंकुश जी से बातें हो रही हैं और बड़ा ही प्यारा सा मोहम्मद रफ़ी का गीत आपने सुना और दिल आज खुशी से पागल है। बड़ा ही मोटिवेशन वाला गीत है जहां पर हम सभी को एक मोटिवेशन मिलता है पुराने गानों से। तो आइए डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बीच बीच में बोल रहे थे हम बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी में हैं, कौन सा संस्थान से आप जुड़े हैं और कैसे इस संस्थान में आप अभी तक जुड़े हुए हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पकड़ के रखी?
1: मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ।
0: अच्छा।
1: और बचपन से ही मतलब माता जी के साथ, हमारी माता जी संस्थान से जुड़ी थी, तो उनको उनके साथ जाते जाते हमको भी उसमें रुचि आने लगी। और काफ़ी एक बाल विकास व्यक्तित्व शिविर होता है, उसके अंदर हम मधुबन में आए थे पहली बार और तभी से इन चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ता गया। और ये चीज़ इतनी मेरे जीवन में अच्छी रही कि ऑब्वियसली डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई भी काफ़ी करनी होती है, तो स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन ये मुझे उसमें भी फ़ायदा करता था।
0: बिल्कुल। तो कौन सी एक चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्ट किया ब्रह्मा कुमारी में?
1: कैसा है कि ये चीज़ जो है ना करने में बहुत सरल है, मतलब ऐसा कभी लगा नहीं कि ये बड़ों के लिए है, मेरे लिए नहीं है, या फिर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी ये इससे कुछ रिलेटेड नहीं है। तो एक वो सिंप्लिसिटी सी, उसमें कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता था मेडिटेशन के कारण, तो सेल्फ डेवलपमेंट में थोड़ा हेल्प किया ऐसा लग रहा था।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए डॉक्टर अंकुश जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, क्योंकि घर का माहौल ऐसा था और पिताजी माताजी वगैरह सब जो है परिवार के लोग इस मार्ग में चल रहे हैं, तो बचपन से ही आपको एक जैसे कहते हैं कि गिफ्ट मिल गया स्पिरिचुअलिटी और फिर इसी संस्कार के साथ आप जिए पले बड़े, अच्छा लगा आपको। और जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करते थे उनका कॉन्सेंट्रेशन जो है आपका बढ़ता गया और लाइफस्टाइल में ये पहले से ही इनबिल्ट होता गया आपके पास। फिर आपको एक्स्ट्रा जैसे किसी नए व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना, समझना, उसे एक्वायर करना लाइफ में या संस्कार में लाना, ये बड़ा एक पुरुषार्थ लगता है, जो पुरुषार्थ आपको नहीं करना पड़ा। क्योंकि कई बार हमारे पास जो लोग आते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में जाने के लिए, उनको जो है कुछ चीज़ें बड़ी बाधित कर देती है, खाने पीने को छोड़ना है, नहीं ये करना है, ना वो करना है, तो वो चीज़ें उन्हें जो है बार बार जो है पीछे ढकल देती हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि इन चीज़ों को वो समझ लेते हैं तो वो अपने नेचर को बदलते हैं और इसे एक्वायर करके अपने लाइफ को स्पिरिचुअल बनाते हैं। और ये आप लकी हैं कि बचपन से वो चीज़ आपको गिफ्ट में मिल गई।
1: तो एक एक चीज़ है एक्सेप्ट करना। हाँ। और दूसरी चीज़ है आगे चलते रहना।
0: बिल्कुल।
1: तो भले ही वो एक्सेप्ट करना मेरे लिए इजी रहा होगा, लेकिन चलते रहना जो है वो भी इजी रहा है।
0: इजी रहा है।
1: हाँ। मतलब जहाँ भी हम गए, अभी मेडिकल की एजुकेशन होती है काफ़ी लंबी होती है, MBBS होता है, फिर बीच में प्रैक्टिस होती है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन होता है, बीच में कोर्स होते हैं, तो अपना अलग अलग सिटीज में जाते हैं, कुछ जाते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपरली रेगुलरली फॉलो करते रहे तो उसको आपको अलग से कुछ करना है ऐसी बात नहीं है,
0: इट
1: बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, होते रहते।
0: सही बात है। डॉक्टर अंकुश जी, जाते जाते मैं चाहूँगा एक छोटा सा मैसेज, आपको बहुत सारे लोग रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, तो उन सभी के लिए एक संदेश के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे?
1: दो संदेश बताता हूँ मैं, एक तो मेरे दिल रिलेटेड आँखों के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, तो आँखों की कई सारी बीमारियाँ जो है आजकल वो अच्छी तरह से ट्रीटेबल है, मतलब विद द टाइम, जो मेरा स्पेशलिटी है रेटिना, इसमें काफ़ी सारी बीमारियाँ जो पहले जिसके इलाज होते नहीं थे तो आजकल उसके इलाज होते हैं, बस यही है कि उसका अर्ली डायग्नोसिस इम्पॉर्टेंट है, तो जल्द जल्द अगर निदान होता है तो उसका ट्रीटमेंट संभव है, विजन सेव किया जा सकता है। इसलिए आपको आँखों के लिए कोई भी अगर परेशानी महसूस हो रही है
0: जी,
1: तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को एक बार तुरंत दिखाइए विदाउट वेस्टिंग द टाइम। और दूसरा स्पिरिचुअलिटी के लिए मैं कहूँगा कि ये चीज़ हर एक ने एक बार करके देखनी चाहिए।
0: अच्छा।
1: तो, हाँ, जब करने के बाद ही ये चीज़ अपने को समझ में आती है, ऐसा नहीं है कोई मतलब चीज़ नहीं कि मैंने आपको दे दी और आपने ले ली। तो स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, तो आपको एक बार अनुभव करना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अंकुश जी, बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया कि आज समय ऐसा आ गया कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा विकसित हो गई और मेडिकल फील्ड में टेक्नोलॉजी जो है हमेशा जो है अपग्रेड होता रहता है। और आँखों के इस सर्जरी में आपने बताया कि बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आए जिसके लिए पहले हम लोग असंभव समझते थे, वो चीज़ें आज संभव हो गई हैं। और आसानी से आप थोड़ा सा जो है अवेयर खुद को होना है कि आपको अगर कहीं कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो तुरंत आप विद इन टाइम न गवाते हुए डॉक्टर से आप कंसल्ट करें तो आपका इलाज संभव है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे लेट करते जाएंगे तो संभव चीज़ें भी असंभव में बदल सकती हैं। तो आपके ऊपर है कि आप कितना जागरूक है और कितना अपने लिए समय निकालते हैं। और दूसरा, डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा बताया कि वो मेडिटेशन करते हैं तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, क्योंकि आपके पास नॉलेज है और लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है तो वो नॉलेज भी आप दे नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप नॉलेज लेने के बाद एक्सपीरियंस करते हो तो वो आप आसानी से दूसरों को दे सकते हैं, आप दूसरों को समझा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर स्पिरिचुअलिटी आपके पास है तो सीमित नहीं रहती है, वो दूसरों को स्प्रेड होती जाती रहती है।
1: एक बार अनुभव करना,
0: बिल्कुल एक बार एक्सपीरियंस आपको कर लेना है। तो आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में ज़रूर जाएं। अगर आप मुझे सुन रहे हैं अभी तो मैं चाहूँगा कि आज शाम को ही आप ज़रूर पहुँचिए सेंटर पे और वहाँ पर जाइए, सुने, समझे और एक्सपीरियंस करें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर से एक बार डॉक्टर अंकुश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से, मंगल कामनाएं करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी जानकारी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। आप सुन रहे हैं, थैंक यू।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। डॉक्टर अंकुश जी से बातचीत हो रही थी आँखों के बारे में, बहुत ही सारी सुंदर बातें आपने बताया और मुझे लगता है कि आपको जब भी आँखों के बारे में कुछ ऐसी लगे तो जो है इसके लिए आपको थोड़ा सा तुरंत जो है डॉक्टर से कंसल्ट करके ही बाकी की बातें आगे कर सकते हैं। तो आइए, वक्त हो रहा है समाचारों का, समाचार आप डाउनलोड होने वाले हैं थोड़ी देर में और आपको समाचार भी सुनाएंगे। और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आप गुलशन बावरा जी के कुछ गीत अगर याद कर लेते हैं तो हमें बताइए। और इस बीच बुराराम जी ने याद भेजा है और सभी को याद किया बड़े प्यार से, और उनके एक मित्र है उनको भी याद किया है उन्होंने, बुराराम जी। तो आप सभी को शुभकामनाएं दी। और जैसे मैराथन की बात हो रही है और मैराथन 9 तारीख को सुबह 5:30 से 9 के बीच में ये पूरा जो है कार्यक्रम चलेगा, 3-4 घंटे का प्रोग्राम रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप अगर ऊपर जाना चाहते हैं, ऊपर से आना चाहते हैं तो उनके लिए ये विशेष संदेश है। सॉरी, उनके लिए विशेष संदेश ये है कि 9 तारीख को अगर आप सुबह 5 बजे से 9 के बीच में कोई ट्रैवलिंग न रखें और नीचे से अगर आप ऊपर जा रहे हो तो आप भी 5 बजे से 9 बजे के बीच में, क्योंकि पूरा रास्ता बंद रहेगा, बैरिकेड लगे होंगे, पुलिस वगैरह होगी, तो इसीलिए आपको जाने नहीं मिलेगा। तो आप या तो 5 बजे के पहले निकल जाइए या फिर 9 बजे के बाद प्लान कीजिए। तो 5 से 9 के ये 4 घंटे में रास्ता बंद रहेगा, तो आप इसका ध्यान रखें सभी जो भी मुझे सुन रहे हैं। इस 9 तारीख को मैराथन का प्रोग्राम है माउंट आबू, आप 5 बजे से लेकर 9 बजे तक नहीं जा सकते। तो चलिए आप ध्यान रखें, और आप आते हैं तो मैराथन देखने का आनंद लेना है तो ज़रूर आइएगा। आप सभी का स्वागत है। मैराथन रनर्स को आप गुड बाय कर सकते हैं और उनसे गुड विशेस दे सकते हैं उन्हें और उनसे मिल सकते हैं। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ चलिए, वक्त हो गया है समाचारों का, सीधा समाचार सुनते हैं, उसके बाद फिर बातें करते हैं। सुनते रहो मस्कराते
3: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम

0: विश्व पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है।
1: भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम 6 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है। इससे राज्य की अनुसूचित जनजाति समुदायों की लंबे समय से प्रलंबित मांग पूरी हुई है और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन तथा सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति समुदायों को लंबे समय से अपेक्षित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉ. सावंत ने इस कानून को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सबका साथ सबका विकास की भावना को प्रतिबिंबित करता है। महेश सोप्रेक, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान साधनों के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है।
2: सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर मामूली शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं PSP और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली भुगतान और संरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है। सदन द्वारा पारित संशोधन में उस मौजूदा कानून प्रावधान को हटाने का प्रयास किया गया है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर व्यापारी छूट दर MDR वसूलने से रोकता है। वहीं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर NEFT के माध्यम से किए गए रियल टाइम भुगतानों पर पहले से ही ऐसा शुल्क लगता है। UPI लेनदेन अब तक ऐसे शुल्कों से मुक्त रहे हैं। भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तन कराधान पर व्यापक कानून का हिस्सा है जिसे मंगलवार को सदन में पेश किया गया। सदन की कार्यवाही के पहले स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर लोकसभा में विधेयक पारित किया गया। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार कई अहम कदम उठा रही है।
3: देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसी के आधारित अगले दिनों पर हम ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ब्यूरो ऑफ नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी गठन करेंगे जिससे जनता की अपेक्षा के मुताबिक हम अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में हम जो तरक्की की है आज दुनिया ने देखी है। पोर्ट्स इंडस्ट्री मैरिटाइम एक्सपर्ट टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म।
0: देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल Agni-4 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने इस मुद्दे को सुलझाने में राज्य सरकार से बातचीत करने के लिए 11 सदस्यीय दल का गठन किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में चल रहा आंदोलन एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है।
4: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 14वें दिन भी जारी है। राजधानी रांची में 6 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल शाम आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फ्लैशलाइट मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद रांची सदर के SDM रजत कुमार और ADM धनंजय कुमार ने धरना स्थल पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की। छात्र नेताओं का कहना है कि कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से वार्ता

0: कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातचीत के लिए दरवाजे खुलने के बयान के बाद छात्रों ने सरकार से वार्ता के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्षी एनडीए विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर सीबीआई जांच की मांग की। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यदि 13 अगस्त तक राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो वो भी छात्रों की भूख हड़ताल में शामिल होंगे। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार होगा। कुल 22 बुनकरों को उनके शिल्प कला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। 2 प्रकाशन अर्थ और रूट तथा मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर पारंपरिक कानी बुनाई और वॉल हैंगिंग बुनाई की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से शिल्पकला, कौशल और देश के हथकरघा बुनकरों के समर्पण का उत्सव मनाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। समाचार कक्ष से मैं जया भारत।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
3: मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और केवल बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से अमेरिका जाने वाले पर्यटकों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी आव्रजन प्रणाली के दुरुपयोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। एक रिपोर्ट।
4: व्हाइट हाउस के अनुसार आदेश में विदेशी नागरिकों के उन बच्चों की श्रेणियों की पहचान की गई है जो अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक अपवादों के तहत जन्मजात नागरिकता के पात्र नहीं होंगे, जबकि दूसरा आदेश देश और गृह सुरक्षा विभागों को जन्म पर्यटन को समाप्त करने का निर्देश देता है, जिसमें विदेशी नागरिक मुख्य रूप से अपने बच्चों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से अमरीका की यात्रा करते हैं। समाचार कक्ष से मनोज।
1: मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम, माहे, उड़ीसा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा हो सकती है। असम में इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार करगोलाघाट और उदालगुरी जिलों में बाढ़ से एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। राज्य में अब तक 480 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सरायदेव जैसे सर्वाधिक प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। बाढ़ के बाद की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य शिविरों और चिकित्सा सेवाओं को तेज कर दिया है। जल जनित बीमारियों की रोकथाम और प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा। अश्मिता चालिहा का सामना जापान की हिना अकेची से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद प्रियंका। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में लागू नहीं हो सकती क्रीमी लेयर प्रणाली। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के हलफनामे को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। मंत्रिमंडल के फैसलों पर भी अखबारों की नजर है। हिन्दुस्तान ने लिखा है बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन योजना को मंजूरी। सीएनजी और पीएनजी में क्रमिक तरीके से 5% तक बायोगैस को मिलाया जाएगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है देश में डीप फेक कंटेंट से निपटने के लिए नए आईटी नियम लागू। अब 36 नहीं 3 घंटे में हटाना होगा एआई से बना फर्जी वीडियो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है बीमा दावा निपटान में देरी पर 2% ब्याज के साथ दावे की रकम दी जाएगी। दावे की प्रक्रिया पारदर्शी आसान और जवाबदेह बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए गए। जेंजी हमारी पीढ़ी से अधिक ईमानदार, उनकी बात सुननी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को अमर उजाला सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। 2013 के दुष्कर्म मामले में तहलका के पूर्व संपादक तेजपाल को 10 वर्ष कैद की सजा मिलने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों ने दिया है। हिन्दुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है तरुण तेजपाल के प्रति नरमी बरतने का आधार नहीं है, महिला सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं उनका पालन होना ही चाहिए। वायुसेना की पहली महिला टॉप गन बनी भावना कंठ। राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि स्क्वाड्रन लीडर भावना ने ग्वालियर स्थित टेक्सटिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का प्रतिष्ठित लड़ाकू प्रशिक्षण कार्यक्रम फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा कर ये उपलब्धि हासिल की।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: सृष्टि

अर्थिषाधिके शरण्यै त्रयम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टकं।

सिद्धिर्भवतु मे सदा सरस्वती महाभागे विद्याकमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी।

श्रुता हूँ, आप सब लोग खाना तो खाते होंगे ना। है तो थोड़ा सा अलग हटके, थोड़ा सा वेयर्ड सा सवाल, मगर कहीं ना कहीं मेरे प्रोग्राम की शुरुआत शायद ऐसे ही होती है। हाँ, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ खाने के बारे में। तो दोस्तों, खाना खजाना होता है, क्या आप ये लोग जानते हैं? अरे नहीं, आप वो वाला खाना खजाना तो नहीं सोच रहे हैं, वही जो संजीव कपूर का आया करता था। नो, नॉट एट ऑल, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपसे बात कर रही हूँ उस खाने की, भोजन की, जो वास्तव में हर किसी के लिए, यानी कि किसी के लिए भी खजाना यानी कि ट्रेजर से कम नहीं होता है, या किसी दौलत या किसी निधि से कम नहीं होता है। तो आप में से कुछ श्रोता बंधु तो शायद ये जान ही चुके होंगे कि खाना खजाना कैसे होता है। तो बताते हैं, जिन्होंने अपने घर में अपनी माँ को, अपनी दादी को, अपनी नानी को पुराने समय में खाना बनाते हुए देखा होगा, तो चलिए मैम शुरुआत करते हैं खाना खजाने की। तो मैं आपको बता रही थी कि पुराने समय में, और हम इधर देखेंगे तो हालांकि समय बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, लगभग 35 से 40 साल का ये टाइम पीरियड है, तो जब हमारी मम्मी, दादी, नानी जो खाना बनाती थी, तो सबसे जो शक्तिशाली उसमें एलिमेंट होता था वो उसका यूज़ करती थी। और आपको पता है वो शक्तिशाली एलिमेंट क्या होता था? वो होता था खाने में प्यार, प्यार और ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, उनका प्यार से बनाया गया खाना हमारे तन और हमारे मन को खुशी से भर देता था। तो आप में से बहुत सारे लोग इस बात से एग्री करते होंगे, तो चलिए इसी बात पर मैं आपको सुनवाती हूँ खाने से रिलेटेड बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

चलिए, आपने बहुत खूबसूरत गीत सुना, आशा करती हूँ आपको ये गाना बहुत पसंद आया होगा। तो मैं बात कर रही थी खाना खजाने की, आप तो क्या जैसे खाना शक्तिशाली बनाने के लिए जो हमारी दादी नानी होती थी सबसे ज़्यादा प्यार से खाना बनाया करती थी, और उनका प्यार से बनाया हुआ खाना हमारे को पता हमारे तन और मन को बहुत खुशी से भर देता था। तो दोस्तों उस वक्त ना तो कोई मसाले की भरमार होती थी, बस वही सिंपल से मसाले, और खाना इतना स्वादिष्ट होता था कि उस खाने का स्वाद हम अपने पूरे जीवन भर नहीं भूल पाते हैं। और आपने अपने घरों में एक चीज़ और नोटिस की होगी कि घर में जो गुथे हुआ आटा होता था उसको हमेशा कपड़े से ढककर रखा जाता था, और चाहे परिवारजनों के अलावा और भी कोई लोग आ जाते, मतलब उसी समय मान लीजिए कोई आ गए गेस्ट आ गए, तो उसी आटे से पूर्ति हो जाया करती थी। तो है ना कमाल उस प्यार की भावना का जिससे हम सभी लोग चला करते थे। और साथ ही आप में से शायद कुछ लोगों ने ये भी ज़रूर देखा होगा कि रसोई में एक लाइन खींच दी जाती थी। कुछ अगर नए लोग सुन रहे होंगे जिनकी उम्र छोटी, वो सोचते होंगे किचन में लाइन का क्या मतलब है, लेकिन उसको बोला जाता था कि जो रेखा खींच जाती थी उस रेखा के अंदर क्या होता था, जो खाना बनाने वाली मम्मी या नानी या दादी जो भी होते थे वो बैठे होते थे, और सबको उस लाइन के बाहर खाना परोसा जाता था। और अगर कोई लाइन को क्रॉस करके आ जाता था, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो वो लाइन के अंदर से आपको हाथ डाल के बाहर आपको परोसा हुआ मिलेगा, लेकिन अगर कोई उस लाइन को क्रॉस करके चला जाता था तो वो पूरी किचन को अशुद्ध माना जाता था, और होता ऐसा था कि दोबारा उसको किचन को शुरू किया जाता था। तो ये जो हमारी बहुत ही शुद्धता से खाना बनाने की परंपरा रही है, तो वही हमारे लिए हमारे जीवन में किसी खजाने से कम नहीं है, और मैं समझती हूँ आप बहुत सारे लोग इस बात से ज़रूर एग्री करते होंगे। तो चलिए इसी बात पर एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आपको सुनवाते हैं खाने का बहुत सुंदर गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

तो श्रोताओं, आपने इस गाने का जरूर बहुत आनंद लिया होगा। तो हम बात कर रहे थे खाना खजाने की। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे घर में बहुत शुद्धता से खाना बनाया जाता था सभी घरों में, और होता क्या था, सबसे पहले किचन साफ, और उससे पहले हम लोग नहाकर भगवान की याद में पूजा आरती करने के बाद फिर कहीं किचन में प्रवेश होता था हमारा, तब कहीं जाकर किचन का काम शुरू हुआ करता था। तो मतलब यहाँ पहले भगवान से संबंध बनाते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे, तब हम जब किचन की शुरुआत करते थे तो भोजन भी कितना शक्ति से परिपूर्ण हुआ करता था। एक बात और, आप में से कुछ लोगों ने शायद ज़रूर देखी होगी कि जो शादी विवाह वाला घर होता था उसमें जो आजकल तो शेफ़ हो गए हैं, हलवाई हो गए हैं, वो लोग खाना बनाते हैं, लेकिन उस समय महाराज खाना बनाया करते थे। और महाराज उनको बोलते थे कि जो एक स्पेशल मेन जो हुआ करते थे, और जब वो खाना बनाने के लिए आते थे तो पहले जो भट्टी लगाई जाती थी उसकी पूजा करते थे, और महाराज के लिए स्पेशली खाने मतलब बिना सिले नए कपड़े होते थे, वो पहनकर वो खाना बनाया करते थे। और कहते हैं कि ना महाराज हम उसको बोलते, और उनका बनाया गया खाना इतना शुद्ध, इतना अच्छा हुआ करता था कि बहुत मतलब लाजवाब था वो खाना। तो जो महाराज हम बोलते हैं वो उसको कहते हैं जो कि बहुत ही पौष्टिक, स्वादिष्ट और ज्ञानवर्धन तरीके से भोजन को बनाते हैं। तो एक चीज़ आपने और देखा होगा कि मैंने तो अपने घर में देखा था कि जो मेरे चचेरे दादाजी थे, परिवार काफ़ी बड़ा था उनका, और वहाँ एक रसोईया रखा होता था, क्योंकि जिस घर में 30-35 ऐसी टाइप के पहले तो परिवार हुआ करते थे तो रसोईया हुआ करता था, उसको भी बड़ा आदर सम्मान प्राप्त था, और बड़े उसको अच्छे से हम लोग बोलते थे भैया को। तो रसोईया को भी एक परंपरा हमारे घरों में रही है, जहाँ ज़्यादा बड़े और मतलब अच्छे खासे अगर कोई रिच लोग हैं तो वो रसोइये को रखने का सिस्टम भी वहाँ हुआ करता था। और अब तो वैसे शेफ आ गए हैं, लेकिन उन रसोइयों को भी बहुत सम्मान दिया जाता था, क्योंकि काफ़ी बड़े परिवार को संभालना एक दो लोगों के बस की बात नहीं हुआ करती थी, तो उनको भी बड़ा उच्च सम्मान प्राप्त था। तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से खाना बनाया करते थे, बहुत प्यार से खाना खिलाया करते थे। तो जो हमारा ये पूरा विधि विधान है तो वो हमें बहुत शक्तिशाली भोजन प्रोवाइड कराता था। तो साथ ही साथ एक बात मैं आपको और बताऊं, वो ये है कि खाने से पहले मंत्र बोला जाता था। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, स्कूल में पढ़ा करती थी, तो जो टीचर थे सारे बच्चों को एक साथ बिठाते थे और हमें मंत्र बुलवाते थे, वो मंत्र मुझे आज भी याद है। ओम सहना भवतु सहनेव भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस सुनावधि समस्तु मा विधि विशावहै ओम शांति शांति शांति। उसके बाद सब बच्चे हाथ जोड़कर प्रेयर किया करते थे, उसके बाद ही हम लोग भोजन ग्रहण किया करते थे। तो यहाँ जो परंपरा है हमारे हिंदू समाज में, आप में से बहुत लोग हुए जैसे खाना खाने बैठते हैं, तो शायद आज भी बहुत कुछ लोग इस बात को करते हैं कि थाली के चारों तरफ गिलास में से पानी लेके उसको चारों तरफ थाली के फेरते हैं, और जो खाने का छोटा छोटा पीस होता है उसको निकाल कर साइड में रखते हैं, हाथ जोड़कर फिर हम खाना खाते हैं। तो ये जो सारी विधियाँ हैं भगवान को खाने से पहले धन्यवाद देने की और खाने के बाद भगवान को धन्यवाद देने की, जो सारी चीज़ें हैं, और ये हमारे अंदर एक बहुत ऊर्जा का संचार करती हैं। मंत्र है, प्रार्थना है, भगवान से हम आशीर्वाद लेकर खाना खाते हैं तो हमारे भोजन में, हमारे शरीर में बहुत ऊर्जा जागृत होती है, जिससे कि हमारा शरीर बहुत अच्छा चलता है। तो इसके बाद ही हम भोजन करते हैं, क्योंकि धन्यवाद की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हमें हमेशा बहुत सेफ रखती है। तो जैसे प्रकृति है, प्रकृति को हम धन्यवाद देते हैं कि जिस प्रकृति से हमें अन्न आ रहा है उसका हम धन्यवाद करते हैं। तो हालांकि आजकल ये सारी बातें बहुत ख़त्म हो गई हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर हम ये करना शुरू कर दें, उस प्रकृति को धन्यवाद दें जो कि हमारे लिए भोजन उपजाती हैं, चाहे आज कितना भी ख़राब क्यों ना समय सही, लेकिन हमारे पास तो भोजन आ रहा है ना, तो उन सभी लोगों को भगवान को धन्यवाद दें, तब जाकर अगर हम भोजन ग्रहण करें तो ये बहुत शक्तिशाली एक एलिमेंट है जो हमारी लाइफ के लिए काम करता है। तो चलिए, आपने इतनी सारी बातें सुनी, एक और गीत मैं आपको सुनवाती हूँ भोजन से रिलेटेड। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहो, मुस्कुराती रहो।

वेलकम बैक टू द शो। तो दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं खाना खजाना की। तो खाना हमारे लिए खजाना कैसा हुआ, ये आपने अभी तक कनेक्ट करके मेरी बातों से आइडिया तो लगा लिया होगा कि हमें कितनी सारी शक्तियाँ मिलती हैं। यहाँ एक बात मैं आपको और बताती चलूँ कि भोजन जो है हमारे शरीर के लिए औषधि का काम करता है, यानी कि मेडिसिन का काम करता है। तो जैसे आपने देखा, एक्चुअली खाना शुरू से ही मेडिसिन तो रहा ही है, आपने देखा होगा। हालांकि बहुत आजकल सीन चेंज हो गया है, मगर विशिष्ट रोगों के उपचार के रूप में इसका मतलब सेवन निर्धारित किया जाता है। जैसे आयुर्वेद में तो शुरू से ही भोजन के किस तरीके से खाना चाहिए उस पर बेस्ड है आयुर्वेद हमारा। लेकिन आपने आजकल देखा होगा कि जैसे ये आपका नेचुरोपैथी, इसका लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग करने लगे हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि किस तरीके से भोजन को किस रूप में हम करें जिससे हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए। तो इस तरीके से जब चिकित्सा पद्धति में हम उसे हम करते हैं, जो कि शुरू से रहा है, तो विदेशों में भी आजकल इस चीज़ को मतलब बहुत प्रेफरेंस देने लगे हैं। तो हमारे देश में तो परंपरा रही ही है, लेकिन क्योंकि हमने इसको इग्नोर कर दिया और इधर उधर का खाना शुरू कर दिया, तो उसके परिणाम स्वरूप जो हमारे शरीर पर जो ख़राब असर पड़ रहा है, फिर उसको सुधारने के लिए हमें बिल्कुल नेचुरल वे में ही जाना पड़ता है। तो जो खाना है, इस तरीके से खजाना हमारे लिए हो जाता है अगर हम उसका इस्तेमाल उसको उसी तरीके से करें जो कि हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि जो हमारे भोजन का रोज़मर्रा का संबंध है, वो सूर्य के नियम के अनुसार चलता है। आप सोच रहे होंगे सूर्य भोजन का हालांकि क्या मतलब होता है, लेकिन दोस्तों सूर्य और भोजन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे कभी क्या सोचते हैं कि सूर्य का नियम जो होता है कि जब सूर्य जागता है तब हमारा शरीर जागता है, इसलिए मॉर्निंग में क्या होता है, थोड़ा हल्का नाश्ता करते हैं, और जब सूरज हमारे सर के ऊपर रहता है यानी दोपहर होती है तो बहुत अच्छा भरपेट हम भोजन करते हैं, और शाम को फिर बड़ा कहते हैं ना, हल्का खाना खाओ, शाम को सिंपल सा भोजन रहता है। तो इस प्रक्रिया से हमारी बॉडी का पूरा मैनेजमेंट बिल्कुल सही रहता है और बहुत सुचारू रूप से चलता है। तो अब ये बात सही है कि देखिए किस तरीके से भोजन हमारे शरीर के लिए औषधि बना। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपने सुना होगा कि जैसा अन्न वैसा मन, यानी किस तरह से कमाए गए पैसे से हम अपने घर में अगर भोजन ग्रहण करेंगे तो हम बिल्कुल वैसे ही बन जाएंगे। आप में से मुझसे बहुत ज़्यादा लोग शायद इस बात को जानते होंगे कि पुराने समय में जब पानी भी पीते थे तो बहुत सोच समझ के किसी के हाथ का पानी पीते थे, और खाना खाना तो शायद बहुत दूर की बात थी, क्योंकि पानी में जो वाइब्रेशन होते हैं सबसे जल्दी ग्रहण होते हैं। हालांकि पहले, अब तो विज्ञान ने भी पूरी तरीके से साबित कर दिया है कि पानी में बहुत ज़बरदस्त वाइब्रेशन होते हैं, और कहते थे ना हम किसी के हाथ का पानी नहीं पीते हैं, तो हर किसी के हाथ का पानी नहीं पीते। और कहते नमक अगर खा लिया तो फिर तो हमारी नेचर ही बदल जाती है, मतलब खाली नमक खाने का मतलब ये नहीं कि आपको खाली सॉल्ट ही खाना है, इसका मतलब होता है खाना खाना, यानी हम जब किसी के घर का खाना खाते हैं तो किस तरीके से हमारे वाइब्रेशन हमारे पूरे चेंज हो जाते हैं। तो इस रिलेटेड आपने व्हाट्सएप पे बहुत सारी कहानियाँ आप सुनते होंगे कि एक साधु था, साधु ने किसी चोर के घर का भोजन ग्रहण कर लिया और उसका वैसा ही प्रभाव आया, वो चीज चुरा के चल दिया। तो हालांकि चीज़ें तो सही होती हैं, जैसा अन्न वैसा मन होता है, और सबसे बड़ी बात, जिस विचार के साथ आप भोजन बनाते हैं वही 100% असर करते हैं खाने वाले के ऊपर। तो दोस्तों, आपके ऊपर निर्भर करता है कि अगर इस खाने को आपको खजाना बनाना है तो आप जिसको कितना देना चाहेंगे, जो आप देंगे वही आपको वापस मिलेगा। और साथियों, भोजन बनाने के वक्त अगर हम उस वक्त को उत्सव की तरह बना लें तो पूरे समय को उमंग उत्साह से भर लें तो हमारा समय बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और भोजन बना के खिलाना है तो दोस्तों, अब आप सोचते होंगे कि ये उत्सव किस तरीके से बनता है ना, थोड़ा अजीब, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। जब आप खाना बनाते हैं तो पहली बात तो आप फ़ोन पर डिस्कशन ना करें, बातें ना करें, क्योंकि जो उसके वाइब्रेशन है वो भोजन ग्रहण करेगा और जो खाने वाला होगा उसके अंदर भी सेम वही चीज़ आएगी। और फिर उसके बाद में अगर आप गुस्से में हैं या आप चिड़चिड़े हैं तो आप प्लीज़ खाना बिल्कुल मत बनाइए। आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके जो भी पसंदीदा गीत होते हैं, भगवान के गाने आप चला सकते हैं। अगर किसी को भगवान के गीत पसंद नहीं है तो जो नॉर्मल म्यूज़िक आप सुनते हैं वो आप चला सकते हैं, तो वही वाइब्रेशन में जाएंगे और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। अगर आपको किसी को ये भी पसंद नहीं है तो चलिए, जैसे आप लोग भागवत है, पुराण है, या भगवान की कथा सुनते हैं, वो आप भोजन करते समय लगाएंगे तो आप देखिए वही सारे वाइब्रेशन जब आपके भोजन में जाएंगे, और जब आप लोगों को वही खाना परोसेंगे तो लोग आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। तो
इस तरीके से जब हम भोजन बनाते हैं और किसी को भोजन पर बुलाते हैं तो वो लोग हमारे बनाए गए भोजन की बहुत तारीफ़ करते हैं। और आपने सबने एक बात तो नोटिस की होगी कि जो दिल से तारीफ होती है वो हमें बहुत खुश कर देती है और लगता है हमारी मेहनत वसूल हो गई। लेकिन उससे पहले अगर आप ये चीज़ें अप्लाई करें कि गुस्से में खाना ना बनाएं, चिड़चिड़े होकर खाना ना बनाएं, फ़ोन पे बात करते हुए खाना ना बनाएं, जो चीज़ें हैं आप करें उस सब की तरीके से हर दिन होगा और आपको एक्चुअली बहुत खुशी होगी जब आप ये चीज़ें अपने किचन में अप्लाई करना शुरू करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक बात मैं और आपको बताऊँ कि ये जो खाना किस तरीके से खजाना हमारे जीवन में रहा है वो ये है कि भोजन पर जाते हैं, बुलाते हैं लोगों को, तो ये जो हमारी इंडियन कल्चर का एक पार्ट रहा है, सभ्यता संस्कृति को ना हमारी साथ साथ आगे बढ़ाता है। और ये भोजन पर बुलाना, इनवाइट करना, ये बहुत पुरानी परंपरा रही है कि हम किसी के घर परिवार सहित खाने पर जाते हैं, कोई हमारे यहाँ खाने पर आता है और मतलब इतना अच्छा जो हमारा रिलेशनशिप होता है किसी के साथ मेंटेन होता है, तो देखो इसका कितना अच्छा असर होता है। और जब लोग आपकी तारीफ़ करते हैं कि और जो तब आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। साथ ही साथ मैं समझती हूँ ये बातें तो आप ग्रहण कर ही रहे होंगे और शायद कहीं ना कहीं आप मेरी बात से ज़रूर एग्री करते होंगे। आगे अगर हम बढ़ें तो एक बात हम और बताएं आपको कि

0: ए चिड़िया
1: का काम करता था और आज भी वो करता है अगर हम इस तरीके से सोच समझकर खाना बनाएं जो कि हमारी मम्मी या दादी नानी बनाया करती थी, क्योंकि उस समय चीज़ें नहीं हुआ करती थी। बहुत प्यार, बहुत ही मोहब्बत के साथ घर में सबके लिए खाना बनाओ। एंड वन मोर थिंग, जो बहुत से लोग कहते हैं शॉर्ट में खाना बनाओ, तो मेरे से भी कभी बात होती है, मैं पूछती हूँ जो गेस्ट आते हैं कि खाने में क्या बनाऊँ, तो कभी क्या होता है टाइम कम होता है तो बोलते हैं अरे शॉर्ट में कुछ बना लो, तो मैं हमेशा बोलती हूँ खाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। खाना जो होता है बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरीके से बनाया जाता है, तो आप भी अपने घरों में इसी तरीके से डेफिनेटली खाना बनाते होंगे। दूसरी बात यह है कि जो खाने से हमें पोषण मिलता है, जो जो हमारी जो विरासत रही है, एक मानसिक प्रक्रिया रही है। तो कभी दिखता है दोस्तों, एक बात आपको और बताते चलें कि इंडिया के साथ साथ हमारी फॉरेन में भी जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययन में कहा गया है कि समान रूप से जैसे भोजन करने से सामाजिक संबंध और खुशहाली की भावना बढ़ती है, तो हुआ ना एक साथ भोजन करना यानी खुशी का खजाना जो आपको मिलता है। और ये बात हमने और आपने भी घरों में देखी होगी, खाने के वक्त जब हम एक साथ खाना खाते हैं तो कितना खुशगवार माहौल होता है। हमारे भारत में कितना भी सामाजिक परिवेश बदल जाए, लेकिन जब तक हम साथ ही लंच और डिनर कर सकते हैं हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा खाने का माहौल बहुत अच्छा होता है। आजकल होता है शहरों में दोनों ही वर्किंग होते हैं, चाहे एक लंच हम साथ में करें चाहे डिनर साथ करें, परिवार में सबको साथ में बैठ कर ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए कितना हमें खुशी मिलती है भोजन एक साथ करने में। तो क्योंकि ये भोजन हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग होता है और ये मात्र जीवन निर्वाह का साधन नहीं होता है, बल्कि स्वयं को अव्यक्त करने, दूसरे से जुड़ने और समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने की बेहतरीन परंपरा जो है हमारा भोजन रहा है। और साथियों, जैसे आपने सुना होगा कि भोजन और भजन एकांत में करना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एकांत मतलब आप अकेले बैठ जाएं। हाँ, कोशिश ये करिए कि खाना खाते समय ज़्यादा बोलें नहीं और जैसे टीवी और ये म्यूज़िक ना चलाएं, क्योंकि आजकल क्या होता है घर तो बहुत छोटे होते हैं तो उसमें ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को अपनी लाइफ में अपना लें कि चुप रह के हम खाना खाएं, तो यही खाना हमें कितनी ज़्यादा शक्ति देता है। तो देखिए साथ साथ ये भी आपने जैसे सुना कि इस तरीके से हमें खजाना मिलाना, तो देखने में इनविजिबल है लेकिन ये खजाने हमारे जो हमारे जीवन है, जो हमारी बॉडी है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि आपने और सुना कि इतिहास और विरासत का जो मूल्यों को आगे बढ़ाने का प्रतीक होता है ये हमारा भोजन होता है। तो जो शुद्ध होता है भोजन वो तो बिल्कुल कमाल का होता है। मैं अगर शुद्ध भोजन की बात करूँ तो मैं बात कर रही हूँ प्योर सात्विक भोजन की, क्योंकि जो हमारी बॉडी डिज़ाइन होती है वो नॉन वेज के लिए नहीं होती है, वो हमारी वेज के लिए ही बॉडी डिज़ाइन होती है। तो जब हम, आपने देखा होगा कि व्रत में कई दिनों में भी जब हम ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारा तन मन बिल्कुल स्वस्थ और हल्का रहता है, क्योंकि इसी तरीके से हमारी जब बॉडी को डिज़ाइन किया गया है तो इस तरह से जब हम भोजन करते हैं तो ये भी हमारे लिए खजाने की तरह होता है। दूसरी बात यह है कि घर पर बनाया गया जो भोजन होता है दोस्तों, वो अमृत तुल्य होता है, कि और उसको हम बहुत अच्छे व शुद्ध विचारों के साथ तैयार करते हैं, तो ऐसा भोजन खाने वालों के लिए वरदान होता है। और ऐसे बने भोजन से जो परिवार को एक सूत्र में पिरो देता है, एक साथ परिवार को मिला देता है, प्रेम की भावना आपसी संबंधों में पनपती है, तो साथ ही ये हमारे शरीर को बहुत स्वस्थ और निरोगी बनाता है। तो इतनी

0: सारी बातें मैंने आपको भोजन के बारे में बताई, तो चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: धत तेरी की, फूंक फूंक कर चू

ये चूल्हा, ये चौका, ये झाड़ू, ये बर्तन, ये आटा बटाटा, ये गड़बड़ गुलाटा और ये और वो और धर तेरी की। पर सब दिन हो तन एक समान पंछी, काहे होत उदास।

हजार दिन होंगे गरीबी के, जिस दिन खलास गरम गरम गरम गरम कचौरी पूरी खूब।

साथ रोज मेरी सलामी को तोप चलेगी, रोज मेरी सलामी को तोप चलेगी।

0: एक रोज हमारी भी ताल गलेगी।
1: तो श्रोताओं, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे थे खाना खजाना। तो आपने बहुत सारी बातें आज मेरे से सुनी कि खाना किस तरीके से हमारे लिए खजाना होता है। तो यहाँ मैं बात कर रही थी शुद्ध और सात्विक भोजन की। तो शुद्ध और सात्विक भोजन जो है हमारे शरीर के लिए एक निधि की तरह काम करता है और इस तरीके से हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। और एक बात मैं आपको और बताती चलूँ, जब हम इस तरीके का भोजन ग्रहण करते हैं तो जब हम परमात्मा के साथ जब मेडिटेशन करते हैं यानी हम योग लगाते हैं तो जो हमारा मेडिटेशन का कनेक्शन है वो परमात्मा से बहुत जल्दी बनता है। एक बात और जो हमें बहुत बड़ी मिलती है इस टाइप का भोजन खाने से वो होती है एकाग्रता हमारी, जो कि हमारे जीवन में बहुत बड़ी पूंजी होती है। और साथ ही ये भी विकसित होती है कि जो हमारी कला है उसमें हम प्रवीण होते चले जाते हैं, क्योंकि हम भोजन तो बनाते ही हैं, खिलाते ही हैं। तो लेकिन हमें ये नहीं सोचना है कि मतलब तीनों टाइम मुझे खाना बनाना है, आज भी बनाना है, कल भी बनाना है। अरे खाना बनाना है, बहुत खुशी से खाना बनाइए। और अगर हमारी बनाई गई रेसिपीज जो हमारे घर में बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो हमारे खाने को अब पाकर खाकर खुश होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, तो उससे हमें दुआएं भी मिलती हैं। तो देखो ना, दुआओं का धन कितना बड़ा खजाना है जो हमें हमारे बुज़ुर्गों के द्वारा मिलता है। और इस आशीर्वाद और दुआ में बहुत बड़ी ताकत होती है। साथ ही हमें मिलता है तन व मन का और धन का खजाना, क्योंकि जो हमारा तन स्वस्थ रहता है हमारा मन स्वस्थ रहता है, और जब हमें बीमारी नहीं होती है हमारा मतलब धन की बचत होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें एकमात्र भोजन से ही हमें मिलती हैं। यदि हम उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर बनाएं और बहुत ही प्यार से खिलाएं, कभी ये ना सोचें कि नहीं ये काम जल्दी से निपटे, प्लीज़ ऐसा कभी मत सोचिएगा। बहुत अच्छी भावना से जब हम भोजन खिलाते हैं तो उसका असर दूसरे पर ज़रूर होता है, और यही भोजन आपके परिवार में प्रेम दे रहा है, स्वास्थ्य दे रहा है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो आप देखिए इसका परिणाम कितना अच्छा होता है। और मैं समझती हूँ दोस्तों आज का ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा, आया है तो आप ज़रूर फ़ोन कीजिएगा। इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा। ओम शांति।

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। बढ़ाए प्रकृति की ओर दोस्ती का हाथ, कैसे जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, अगर अपच की समस्या है तो क्या करेंगे, सोचिए जरा। हम तो उपाय देंगे ही, लेकिन आप भी जरा सोचिए। और जी हाँ, आज सिखाने वाली हूँ सलाद, परंतु कौन सा वाला वो तो आप आशियाना सुनेंगे तभी जान पाएंगे। और स्पोर्ट्स का जीवन में कितना महत्व है और हमारी बहनों को बेटियों को खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, इस तरह के हम खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें करेंगे। एक विशेष जो एक बिटिया आई है उसके साथ, और आप सभी भी जुड़ेंगे, ठीक है। और आज की पहेली तो बड़ी शानदार है, पहेली पूछने वाली हूँ, ठीक है, जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। तो ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, बढ़ाइए प्रकृति की ओर दोस्ती का हाथ। बढ़ाइए प्रकृति की ओर दोस्ती का हाथ कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे। इस सृष्टि रंगमंच पर सदियों से पुरुष अर्थात आत्मा प्रकृति का खेल चला आ रहा है। प्रकृति से हमारा तात्पर्य पांच तत्वों जल वायु आकाश अग्नि और धरती से है। अनंत काल से प्रकृति हमारी पालना करती आ रही है, परंतु हमने कभी रुककर मां प्रकृति को धन्यवाद भी नहीं किया है ना। यूं तो भक्ति में हम पांचों तत्व का पूजन वंदन करके मतलब प्रकृति का मान रखते हैं। सदियों से हम इस तरह पूजा और वंदन करते हुए उनका मान रखते आए हैं, परंतु निश्चिन प्राकृतिक आपदाओं से आहत होते मनुष्य का मन अब प्रकृति का उतना मान नहीं रख पा रहा है। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, कभी कड़ाके की ठंड में ठिठुरते होठ, कितनी ठंड है कह करके प्रकृति के प्रति असंतुष्टता जताते हैं। कभी तपती धूप में पिघलते हौसले प्रकृति को बदनाम कर जाते। कभी बारिश में हुए कीचड़ से प्रकृति कुरूप नजर आती। मतलब कि चाहे मौसम कोई भी हो, खुले दिल से प्रकृति के प्रति अपनी असंतुष्टता का प्रदर्शन प्रत्येक जन करता ही है। वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति का कोई दोष नहीं है। जैसा मनुष्य होता है वैसे ही उसके आसपास की प्रकृति होती है। प्रत्येक के घर का वातावरण आबोहवा एक दूसरे से भिन्न होती है। मंदिर के पवित्र वातावरण और किसी कत्लखाने के वातावरण में जमीन आसमान का फर्क होता है। है तो वही पांचों तत्व सभी जगह एक ही, फिर भी वहां रहने वाले मनुष्यों के मन का प्रभाव प्रकृति पर पड़ने से ये अंतर दिखाई देता है। जापान के वैज्ञानिक इमोटो ने पानी पर किए गए प्रयोग से ये बात सिद्ध की थी कि किस तरह मानव मन में उत्पन्न विचारों का प्रभाव पानी पर गहरा पड़ता है। ऐसे ही बहुत समय पहले लूथर बर्बेंक नामक वैज्ञानिक ने कैक्टस से बात कर करके एक बिना कांटों वाला कैक्टस उगाया था। इसके अलावा वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि पौधों को यदि हल्का क्लासिकल संगीत सुनाया जाए तो पौधों पर सकारात्मक परिणाम देखने में आते हैं। इन सब बातों से हम ये तो समझ ही रहे हैं कि किस तरह ये प्रकृति मनुष्यों के संकल्पों और क्रियाकलापों से प्रभावित होती है। जिस तरह राजा के महल की वस्तुएं और एक गरीब की झोपड़ी में मौजूद वस्तुओं में फर्क दिखता है ना, ऐसे ही एक सकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति और नकारात्मकता से भरे व्यक्ति के रहने के स्थान का वातावरण अलग अलग महसूस होता है। मेरे प्यारे श्रोताओं, व्यक्ति के निवास स्थान को देखकर उसकी मानसिकता का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। हम जितना जितना स्वयं को सकारात्मक ऊर्जा से भरते जाते उतना उतना हमारे आसपास का वायुमंडल भी शक्तिशाली बनता जाता है। आदिकाल में जब मनुष्य आत्माएं सतो प्रधान थी तब प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात सुखदायी थी, तो आज तप प्रधान क्यों बनी है सोचिए। इसलिए प्रकृति की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें प्रकृति के प्रति सकारात्मक रहना है और सकारात्मक वाइब्रेशन हमें फैलाना है। ये हुआ आज का सुंदर सा विचार जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: नमस्कार, मैं हूं सुरेश वाडकर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पे। आप सब मुस्कुराते रहें, आनंद में रहें और गुनगुनाते रहें।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे अपच पर। भाई देखिए, गर्मी के मौसम में अपच की समस्या बढ़ जाती है। अपच या खाना न पचने पर खाद्य प्रणाली के अंगों में दर्द होने लगता है, गैस भरती है जिसमें भारीपन, बेचैनी, जी मिचलाना, बमन वगैरह वगैरह चलता रहता है। अग्निमांद, अपच, अजीर्ण, बदहजमी सभी का अर्थ एक ही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, कि खाने का नहीं पचना, जो भोजन हम कर रहे उसका नहीं पचना। तो बदहजमी में क्या होता है, दस्ते भी लग सकती है या फिर गैस, वमन ये होने की शक्यता रहती है। तो बदहजमी के दस्तों को संग्रहणी भी कहते हैं। तो अपच की समस्या है तो बहुत ही सुंदर आपको उपाय दे रही हूँ, इसको आप आजमा करके अपने अपच की समस्या पर निजात पा सकते हैं। देखिए, हींग, छोटी हरड़, सेंधा नमक और अजवाइन सब आप समान मात्रा में लीजिए, ठीक है। और सब को समान मात्रा में लेकर के इसको पीस लेना है, पाउडर बना लेना है। फिर एक चम्मच तीन बार पूरे दिन में गर्म पानी से फाकी लेना है, सुबह, दिन में और रात को। सुबह उठने के बाद एक बार ले लीजिए आप नन्हे कोटे, फिर दिन में ले लीजिए कि भोजन के डेढ़ दो घंटे के बाद, दो घंटे के बाद, फिर आप रात को सोने से पहले ले लीजिए। तो ये जो अपच की समस्या है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। क्या क्या लेनी है फिर से दोहरा रही हूँ। हींग लीजिएगा, छोटी हरड़, सेंधा नमक और अजवाइन समान मात्रा में लेनी है सभी, ठीक है। जैसे एक एक छोटा चम्मच ले रहे तो सभी एक एक छोटा चम्मच लीजिएगा। फिर इन सभी को पीसिएगा, पाउडर बना दीजिएगा और इसके तीन बार फाकी लेनी है दिन में, पूरे दिन में। तो फाकी लेकर के नौ सेका पानी आपको पीना है, इससे अपच की समस्या ठीक हो जाएगी। और भी सुनेंगे आप अगला उपाय। एक चम्मच पीसी हुई अजवाइन और स्वाद के अनुसार सेंधा नमक मिलाइए और भूखे पेट पानी से फाकी लीजिएगा। खाली एक चम्मच पीसी हुई अजवाइन ले लीजिए और उसमें स्वाद के अनुसार सेंधा नमक मिलाइए और भूखे पेट आप वही सुबह सुबह नन्हे कोटे आप इसकी फाकी लेकर के नव सेका पानी आप पी लीजिएगा, इससे भी अपच की समस्या ठीक होगी। अगर ये नहीं कर सकते तो और भी सुनेंगे आप सुंदर सा उपाय, कि 25 नीम की पत्ती, 3 लौंग, 3 काली मिर्च, इन सबको पीस करके थोड़ा पानी और शक्कर मिला करके सुबह शाम रोज आप 3 दिन पीजिए। 3 दिन में ही आपको आराम महसूस होगा। 25 नीम की पत्ती, 3 ले लीजिए लौंग, 3 काली मिर्च, इन सबको पीसिए और इसमें थोड़ा सा शक्कर और पानी मिला करके गट गट गट गट गट पी जाइए, ठीक है। ऐसा आपको 3 दिन तक लगातार करना है, सुबह और शाम, तो अपच की समस्या में राहत मिलेगी। और लास्ट उपाय आपको बता रही हूँ कि खाना नहीं पचता है, बदहजमी हो जाए तो एक दिन केवल पानी पीकर ही रहे, अन्य कुछ भी नहीं खाना है। कब्ज रहे तो फिर आप भोजन के साथ घुट घुट पानी पीते रहिए, ठीक है। सुबह उठते ही एक गिलास पानी पीना जरूरी है। तो अगर संग्रहणी है, बदहजमी है, तो उस दिन आप कुछ मत लीजिए, खाना मत खाइए, पूरे दिन आप ऐसे ही उपवास करिएगा, बीच में घुट घुट पानी पी लीजिएगा, ठीक है। तो आपके वापस हाजमा सिस्टम, मतलब उसका लेवल आ जाएगा, बैलेंस बन जाएगा वापस, ये जो अपच की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। और लास्ट उपाय यही है कि कब्ज रहता है तो भोजन के साथ घुट घुट पानी पीजिए और सुबह उठते ही एक गिलास पानी तो हमेशा पीना ही है। तो ये हुए उपाय आज के सुंदर से नुस्खे। और आइए अब आज के पहेली की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहेली ध्यान से सुनिएगा और सोच समझ करके जवाब दीजिएगा, बहुत ही सरल पहेली है, आराम से आप जवाब दीजिएगा। चार

जाए। चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए, शांत रेवे तो खुद ने निहारू, हलचल में तो मिट जाए। क्या चीज है पहेली? बहुत ही सुंदर और सरल है। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज की पहेली का जवाब दे सकते हो। आइए अब एक गीत सुनने के बाद पुनः हम आशियाना में आगे बढ़ेंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: आप हबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो हम व्यंजन तो जरूर सिखाएंगे, परंतु क्या बात है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, बहुत ही सरल आपको पहेली पूछी है, फिर भी सोचिए सोचिए, कोई बात नहीं, सोचने का अवसर तो मिलना ही चाहिए, समय तो आपको मिलना ही चाहिए और आप सोच करके जवाब जरूर दीजिएगा। आज की पहेली फिर से दोहरा रही हूँ, चारे

जाए, चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए, शांत रहे तो खुद ने निहारू, हलचल में मिट जाए। बहुत ही सरल है, जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही आवश्यकता है। ये चीज नहीं है तो जीवन नहीं है। अब आप सोचिए, मैंने बहुत ही अच्छा हिंट दे दिया आपको, ठीक है? अब तो आपके लिए सरल हो चुकी है पहेली, तो जवाब जरूर दीजिएगा। रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15। और अब पधारिए आशियाना के किचन में, आज बना देते हैं सलाद। परंतु कौन सा वाला? केरी और दाल का। वैसे तो सलाद हर मौसम में खाना चाहिए, लेकिन गर्मी के मौसम में तो ऐसी चीजें खाने की ज्यादा इच्छा होती है ना? रोटी के ऐसा लगता है रोटी बहुत कम खाए, कुछ फल फ्रूट, जैसे फल फ्रूट में भी पानी वाले फल फ्रूट, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, अंगूर है, आम तो भाई वैसे ही गर्मी का सीजन का राजा ही है ये तो, सब फलों का। तो इस तरह की चीजें खाने की ज्यादा इच्छा रहती है। तो सामग्री आप लेंगे, पेन और डायरी तैयार है ना? बिल्कुल लिख लीजिएगा। चने की दाल 1 कप, कच्ची केरी आप लीजिएगा 1/2 कप, मतलब कद्दूकस किया हुआ, ठीक है? और तेल ले लीजिए 2 बड़े चम्मच, कड़ी पत्ता लीजिए 5-6, नमक और चीनी अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। फिर आप लीजिएगा हल्दी पाउडर भी अपने टेस्ट के हिसाब से। हरी मिर्च का पेस्ट लेना है आपको 1 छोटा चम्मच, और राई, हींग, जीरा तड़का के लिए ले लीजिए थोड़ा थोड़ा सा। हरा धनिया अपने स्वाद के अनुसार, मतलब आवश्यकता के अनुसार लीजिए, और जीरा पाउडर लेना है 1 छोटा चम्मच। तो ये सलाद की सामग्री हो चुकी है, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ। देखिए, सलाद भी बहुत तरीके से बनाया जाता है। वैसे आप कच्चा भी मिक्स करके खा सकते हैं, लेकिन दाल के साथ आप कैसे खाएंगे? तो आपको एक अलग ही प्रकार का सलाद सिखा रही हूँ। चने की दाल 1 कप, कच्ची केरी कद्दूकस की हुई 1/2 कप ले लीजिए, 2 बड़े चम्मच क्या लेना है? तेल 5-6 लीजिएगा, कड़ी पत्ते, नमक, हल्दी पाउडर, चीनी, ये सब अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। फिर हरी मिर्च की पेस्ट लेनी है 1 छोटा चम्मच, राई, हींग, जीरा तड़का लगाने के लिए लेना है थोड़ा थोड़ा सा आवश्यकता के अनुसार, हरा धनिया भी अपने आवश्यकता के अनुसार लीजिएगा, और जीरा पाउडर लेना है 1 छोटा चम्मच। आइए अब केरी और दाल का सलाद कैसे बनाएंगे, विधि आपको बता रही हूँ। चने की दाल को 3-4 घंटे के लिए आप पानी में भिगो दीजिए, ठीक है? फिर पानी निकाल करके बिना पानी दरदरा पीस लीजिए। तेल में राई, जीरा और थोड़ी सी हींग डाल करके तड़का लगाइए। अब इसमें पीसी हुई हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डालकर थोड़ा सा इसको फ्राई करिए। इस तड़के में हल्दी डाल करके तुरंत दाल में डाल दीजिए। अब दाल में बाकी सभी सलाद की सामग्रियां डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और गैस तुरंत बंद कर दीजिए। ठंडा होने पर सलाद सर्व करिए, पिरसिए। तो ये बन गए केरी दाल का सलाद। फिर से दोहरा रही हूँ विधि। देखिए, इसको भी आप 2-3 तरीके से बना सकते हैं। एक बार तो विधि यही दोहराऊंगी, फिर इसकी दूसरी विधि भी आपको बताऊंगी। आप क्या करेंगे, चने की दाल जो हमने ली है ना, इसका 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए। फिर पानी निकाल दीजिए 4 घंटे के बाद, और इसको दरदरा ऐसे ही पीसिए, पानी नहीं रखना है, ठीक है? फिर आप तेल रखिए कढ़ाई में, और तेल गर्म हो जाए तो इसमें राई, जीरे का तड़का लगाइए, थोड़ी सी हींग भी डाल दीजिए, और तड़का लगाना है। अब इसमें पीसी हुई हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डालकर थोड़ा सा इसको फ्राई करिए। इस तड़के में हल्दी डाल करके तुरंत दाल डाल दीजिए, ठीक है? अब दाल में बाकी सभी सलाद की सामग्रियां डाल करके अच्छी तरह से मिला लीजिए और गैस बंद कर दीजिए। ठंडा होने पर आप सलाद पिरस सकते हैं। एक तो ये तरीका। दूसरा ये है कि आप चने की दाल को 4 घंटे के लिए पानी में तो आपको भिगोना ही है, ठीक है? तो फिर आप दाल की मात्रा थोड़ी सी कम कर लीजिए, और भिगो दिया 4-5 घंटे के बाद पानी निकाल दीजिए, और इसी दाल में आप कैरी कद्दूकस करके डालिएगा। फिर इसी में आप स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए, हरा धनिया डाल दीजिए, जीरा पाउडर डालना है, और काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा, ठीक है? तो ये सब डाल करके आप कच्चा ही खाइएगा तो भी स्वादिष्ट लगेगा, ठीक है? अब आपको जिस तरह खाना हो खाइए, मैंने आपको विधि बता दी है। भले आप इस तरह छोक लगा कर खाइए, भले आप कच्चा खाइए। तो ये बन गया केरी दाल का सलाद। अब मैं आपको एक और सलाद सिखाऊंगी, परंतु कौन सा वाला वो तो आप ब्रेक के बाद ही जान पाएंगे।
तो आज की पहेली फिर से दोहरा रही हूँ। चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए, शांत रेवे तो खुद ने निहारू हलचल में मिट जाए। अब ये पहेली का जवाब आपको देना है। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज की पहेली का जवाब दे सकते हो। अब हम सुनेंगे यहीं पर एक प्यारा सा गीत, उसके बाद पुनः आपसे मिलेंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन। आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बना रहे थे केरी और दाल का सलाद। ठीक है, अब मैं दूसरा भी आपको सलाद ही सिखा रही हूँ, क्योंकि भाई सलाद का नंबर लिया है तो मैं आपको पूरा ही सिखा देती हूँ। इच्छा हो ऐसा सलाद बना करके खाइएगा, लेकिन गर्मी का मौसम है, अपना ध्यान रखिएगा और इस तरह पानी वाली चीज़ें ज़्यादा खाइएगा। सलाद में जो हम चीज़ें डालते हैं उसमें भी पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे खीरा ककड़ी है, हरा धनिया है, पालक है, ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। तो मैं आपको मिक्स सब्जी का सलाद अब सिखाने जा रही हूँ, परंतु आप जानते हो परंतु मैंने क्यों बोला है, पहेली फिर से सुना रही हूँ इसलिए बोला है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा कि पहेली क्या है। चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए, शांत रहे तो खुद ने निहारू हलचल में मिट जाए। अब ऐसी कौन सी चीज है जो हलचल होते ही फिर हम स्वयं के फोटो को नहीं देख सकते, स्वयं के चेहरे को, स्वयं को नहीं निहार सकते, बाकी आराम से हम निहार सकते हैं। अब मैंने इतना हिंट दे दिया हो, अब इससे ज्यादा नहीं दे सकती मैं। अब आप सोचिए कि इसका जवाब क्या होगा। और अब मिक्स सब्जी का आपको सलाद सिखा रही हूँ। इसके लिए आप सामग्री लीजिएगा, पत्ता गोभी बारीक कटी हुई, ठीक है, एक कप ले लीजिए, भले आप कद्दूकस करके एक कप ले लीजिएगा। पालक ले लीजिए बारीक कटा हुआ आधा कप, ककड़ी एक छोटी लेनी है आपको, ठीक है, टमाटर एक लेना है, अंकुरित मूंग आधा कप ले लीजिए, नींबू का रस आधा छोटा चम्मच लेना है, चीनी अगर पसंद है तो लीजिएगा, स्वाद के अनुसार, नहीं हो तो कोई बात नहीं मत लीजिएगा। फिर आप लीजिएगा नमक अपने स्वाद के अनुसार, काली मिर्च पाउडर भी अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा और नारियल कसा हुआ लीजिएगा दो छोटा चम्मच। यही सामग्री है जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पत्ता गोभी कद्दूकस की हुई लीजिएगा एक कप, फिर पालक ले लीजिएगा, मतलब ये सब धुलाई करके ही आपको लेना है, ठीक है, पालक लीजिएगा बारीक कटा हुआ आधा कप, ककड़ी एक लेनी है, उसके भी गोल स्लाइस कर लीजिएगा छोटी वाली ककड़ी, फिर टमाटर भी एक लेना है, इसको भी आप बारीक उतर लीजिएगा, और ककड़ी को भी आप स्लाइस मत करिए, इसको भी कुतरिएगा, क्योंकि हम स्लाइस वाला सलाद नहीं बना रहे हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा अंकुरित मूंग ले लीजिएगा, नमक काली मिर्च पाउडर अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा, नींबू का रस आधा छोटा चम्मच लेना है और नारियल कद्दूकस किया हुआ दो छोटे चम्मच लीजिएगा। अब मैं आपको मिक्स सब्जियों का सलाद कैसे बनाया जाता है सिखा रही हूँ। सामग्री सारी इकट्ठी कर ली, अब इन सभी सामग्री और अंकुरित मूंग को सभी को मिक्स कर देना है और एक जार में डाल करके अच्छी तरह इसको मिला लेना है। इसके बाद नींबू का रस, चीनी, काली मिर्च पाउडर और नमक मिला दीजिए, इसमें नारियल मिला करके सब मिक्स करके आप पिरसिए, ठीक है। तो ये बन गया, इसको हम एनर्जी सलाद भी कह सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें एनर्जी की है, तो एनर्जी से भरी हुई। तो क्या करेंगे, जो भी हमने सलाद किया, जो सब्जियां सवार के रख रखी है, जैसे कि पत्ता गोभी, ककड़ी, पालक, टमाटर, ये सब आप मिक्स कर दीजिएगा, ठीक है। और इसमें ही आप मूंग भी, जो अंकुरित मूंग लिए हैं, इनको भी मिक्स कर दीजिएगा और स्वाद के अनुसार नमक और काली मिर्च भी डाल दीजिएगा और नींबू का रस भी निचोड़ करके सबको मिक्स कर दीजिए, ठीक है। और फिर आप जब प्लेट में रखते हैं ना सलाद, तब ये कद्दूकस किया हुआ नारियल ऊपर से डालिएगा तो एक डेकोरेट लगेगा और सलाद को देखते ही इच्छा होगी कि अरे भाई ये स्पेशल सलाद है, ये तो मैं ज़रूर खाऊंगी, ऐसी इच्छा हो जाएगी।
तो भोजन के पहले एक प्लेट सलाद खा करके फिर आप भोजन करें, ताकि क्या है कि रोटी कम खाएंगे और ये सब्जियां ज़्यादा खाएंगे तो एनर्जी बनी रहेगी। आप सुबह भी खा सकते हैं, जैसे नाश्ता नहीं करके सलाद खा सकते हो। अब आपकी इच्छा पर छोड़ा कि आप कब खाते हो, ठीक है। तो आइए, दोनों ही प्रकार के सलाद बन चुके हैं, लीजिए एक स्वच्छ थाली। थाली में आप दो प्लेट में दोनों ही सलाद रखिए, फिर जो भी सब्जी चपाती जो भी बनाई है वो भी रखिएगा। तुलसी पत्र और जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए, ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद अब आप पूरे परिवार सहित, बच्चों सहित, मेहमानों सहित आनंद लीजिएगा। कौन कौन से सलाद का? केरी और दाल का और मिक्स सब्जी वाला, दोनों ही सलाद का आनंद लीजिए। और फिर आज की पहेली की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। चार

ऐसी क्या चीज है जो शांत रहने पर हम आराम से निहार सकते हैं स्वयं को उसमें, और जब हलचल होती है तो मिट जाता है सब कुछ। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज की पहेली का जवाब दे सकते हो। आप सुनेंगे गीत, उसके बाद पुनः हम आपसे रूबरू होंगे, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: रुक, ओए रुक, ओए रुक, हेलमेट कहाँ है तुम्हारा?
1: सर वो सर सर
0: ओए क्या सर सर करके सरसरा रहा है भाई? आए ओए तुम्हारे सर के लिए ही बोल रहा हूँ।
2: ओए चेहरे से तो समझदार लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो, वो इतनी धूप है धूल है वो कम से कम अपने चेहरे का ही ख्याल रख लो, तो ये चमकते हीरे जैसा चेहरा कहीं जीरे जैसा नहीं हो जाए।
1: सर आगे से ध्यान रखूंगा।
2: तो आगे से तो नहीं, मुझे तो तुम पीछे से निकलने वाले लगते हो है?
0: पर मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार। कड़क, पहले वो सामने की दुकान से लो हेलमेट फिर गाड़ी।
3: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
4: छोटी सी मुसीबत से जो घबरा जाए वो अनाड़ी होता है। छोटी सी मुसीबत से जो घबरा जाए वो अनाड़ी होता है। हार को भी सामने देखकर जो लड़ जाए वो खिलाड़ी होता है। हार को भी सामने देखकर जो लड़ जाए वो खिलाड़ी होता है। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में अब हम खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि स्पोर्ट्स का हमारे जीवन में कितना महत्व है और विशेष करके स्पोर्ट्स पर बहनों पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगा दिया जाता है, खुल करके बहनें सामने नहीं आ पाती है, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। हमारे सामने बैठी है सेजल। सेजल गोस्वामी आबूरोड की रहने वाली है और 10th क्लास अभी एग्जाम दिया है 10th का और 11th में आई है। तो सेजल को स्पोर्ट्स का बहुत ही शौक है, तो सेजल से तो बातचीत करेंगे ही, लेकिन आप भी जरूर जुड़िएगा। आपको तो आप जानते ही हो कि भाई खुशनुमा जीवन में आपका खुलकर स्वागत है और आज की पहली भी बहुत ही सुंदर है जिसको दोहरा रही हूँ। बीच में भी आप फोन कॉल्स करके पहली का जवाब दे सकते हो। चार खुणारी बावड़ी भरी ही लोरा खाए, शांत रहे तो खुद को निहारू हलचल में मिट जाए। ऐसी कौन सी चीज है जो शांत रहने पर स्वयं को देख सकते और हलचल में ये मिट जाती है? जवाब देने के लिए और खुशनुमा जीवन में जुड़ने के लिए नंबर हमारे है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और खुशनुमा जीवन में भी आप अपने बात रख सकते हो, प्रश्न का इस पहेली का जवाब भी दे सकते हो। आइए सेजल से मिलते हैं। सेजल आपका स्वागत है रेडियो मधुबन में। सेजल आपको स्पोर्ट्स का बहुत ही शौक है, आप कौन कौन से स्पोर्ट्स खेलती है?
5: जैसे कि रनिंग है, कबड्डी है, मतलब और भी कई खेल है।
4: जी जी, हमारे श्रोता बंधु भी जुड़ चुके हैं। हेलो
6: हेलो।
4: हाँ जी नमस्ते कमलेश बहन।
6: हाँ नमस्कार जी, थोड़ा कसरत की है
4: जी
6: खेलने के लिए
4: जी।
6: तो उसमें मेरे को समझ में आ रहा है थोड़ा कि भाई समुंदर समुंदर ही होता है तो
4: अच्छा।
6: बहुत ज्यादा आवाज आती है, शांति से देखे तो मजा आता है।
4: अच्छा
6: हेलो।
4: हाँ जी हाँ जी सुन रही हूँ मैं।
6: हाँ
4: हाँ
6: जी।
4: अच्छा
6: आज का मेले का उत्तर है मैडम जी समुंदर।
4: अच्छा ठीक है,
6: क्योंकि और... उनको देखने के लिए अपन शांति से देख सकते
4: हैं,
6: हलचल रहती है, आवाज होती है पानी की बहुत, तो शांति से देखे तो उसमें निहारने में मजा आता है।
4: अच्छा
6: ठीक है मैडम।
4: और कमलेश बहन आप जुड़ ही चुके हैं रेडियो मधुबन से, तो स्पोर्ट्स के बारे में बताएंगे, आपको स्पोर्ट्स का शौक है?
6: इसका मैडम
4: आपने कभी स्कूल में आपने जैसे कि अपने कंपटीशन होता है ना 100 मीटर की दौड़, 500 मीटर की दौड़, दो टांग रेस, फिर कभी कबड्डी खो खो, इस तरह के गेम आपने खेले?
6: हाँ जी मैडम जी खेले थे।
4: तो आपको कैसा लगता है इस तरह का गेम खेलना?
6: बहुत मजा आता है, आनंद आता है बहुत, इससे बहुत एक्सपीरियंस, शरीर भी अच्छा रहता है।
4: जी जी जी
6: बहुत तो, मजा आता है
4: जी। तो ये कम हमारी बहनें थोड़ा कम खेलती है, आप क्या कहना चाहेंगे?
6: ये तो मैडम सबको खेलना चाहिए, ये तो अपने शरीर के लिए अच्छा रहता है, ये भी एक योगा है।
4: बहुत सुंदर, परंतु है ना जो माता पिता ज्यादा परमिशन नहीं देते बच्चों को, वो माता पिता की नजर में क्या होता है, अरे उछल कूद नहीं करना है, शांति से रहना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है, आप क्या कहेंगे?
6: नहीं मैडम जी, पढ़ाई की जगह पढ़ाई

0: ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, पढ़ाई जैसा ही है।
1: बहुत ही अच्छी बात है कि ये भी पढ़ाई अपनी जगह है और गेम्स अपनी जगह है।
0: हाँ सही बात है मैडम
1: जी,
0: ये भी जीवन में बहुत जरूरी है।
1: बहुत सुंदर। तो ठीक है कमलेश बहन, और भी आप कुछ कहना चाहेंगे? कभी आप किस में भाग लेते थे, कौन से गेम आप खेलते थे?
0: मैं तो मैडम जी बास्केटबॉल में खेलती थी, खो खो में खेलती थी।
1: क्या बात है।
0: हाँ कबड्डी कबड्डी सब में भाग लेती थी, जीतती थी मैं तो और बार।
1: अरे वाह, तभी आप फिट एंड फाइन है।
0: घर वाले घर नहीं परमिशन नहीं देते, साथ ही तक ही पढ़ी, ज्यादा नहीं पढ़ी
1: जी,
0: पर जब तक पढ़ी तब तक मजे लिए हमने खूब।
1: बहुत अच्छी बात है, खुलकर जीवन जीना चाहिए।
0: हाँ,
1: और स्टूडेंट लाइफ तो बात ही क्या कहना है, गोल्डन लाइफ है।
0: तो वो तो इसमें तो किसी को मानती नहीं थी, खेलने के लिए भागती थी।
1: बहुत सुंदर।
0: और शौक नहीं था मैडम जी, और कोई शौक नहीं था मुझे, एक तो खाना बनाना, नई नई चीजें सीखना
1: जी,
0: और ये खेलना कूदना, गाने गाना।
1: बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर।
0: तो
1: ये भी किसी से कम नहीं है, आप वैरायटी खाना बनाकर परिवार वालों को खिलाओ, वैसे ही वो खुश रहेंगे कि अरे वाह क्या भोजन मिला है। इंसान काम करता है 24 घंटे, लेकिन खाना अच्छा मिल जाता है तो सारा टेंशन खत्म हो जाता है,
0: सब खत्म हो जाता है, शांति हो जाती है, आत्मा को तृप्ति हो जाती है।
1: जी जी जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश बहन, बहुत सुंदर आपने बात की है।
0: थैंक यू
1: जी। तो सेजल आप क्या कहेंगे गेम्स के बारे में, जैसे आपको रुचि है, आप टूर्नामेंट में भी जाते हैं?
2: एक बार गए थे।
1: अच्छा, फिर क्या रिजल्ट रहा?
2: मतलब आगे जाने, मतलब फर्स्ट आए थे।
1: फर्स्ट आए? कौन सी क्लास में आप गए थे टूर्नामेंट में?
2: छोटे ही थे उस समय, तो मतलब होंगे 6th 7th में।
1: अच्छा, और कौन सा गेम खेला था आपने?
2: बैडमिंटन में।
1: अच्छा, अरे वाह। कौन से गांव आप गए थे टूर्नामेंट में?
2: अनादरा।
1: और वहाँ से जीत के आए, उसके बाद कभी जाना नहीं हुआ?
2: उसके बाद स्कूल की तरफ से कभी लेके तो गए नहीं।
1: हेलो
3: हेलो, हाँ नमस्कार दीदी, मैं सुरेश भाई दानेरा।
1: हाँ जी नमस्कार सुरेश भाई, कैसे हो आप?
3: बस अच्छे है, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं।
1: जी जी जी। सेजल हम आपसे बात जरूर करेंगे, हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं तो इनसे बात करेंगे। अच्छा सुरेश भाई, स्पोर्ट्स के बारे में आप क्या कहेंगे?
3: बस जीवन जी। में दीदी इंसान के लिए, खास करके यंग इंसान के लिए स्पोर्ट का बहुत महत्व है, चाहे कुछ भी स्पोर्ट खेले। और अभी जो आपने बात भी बताई कि लड़कियां जो बहुत, अब तो ऐसा हो रहा है कि लड़कियां भी आगे आ रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन गांव में अभी भी बहुत कम, जैसे ही बड़ी होती है तो शादी कर दी जाती है, और गांव की ऐसी जो रीति रिवाज है। और मैं पहले की बात बताऊं तो लड़कियां लगभग 5 साल से ऐसी खेल खेलते, जो 5 पत्थर के लेते वो नाम भी पता नहीं, वो खेलते किसी को भी।
1: सितोलिया?
3: अरे हाँ वही, नहीं जीतने देती, या रस्सी कूद में, ऐसे बहुत सी ऐसे खेल है वो बचपन में बहुत हमने भी खेले हैं।
1: जी क्या बात है। जी
3: जी, तो सभी को, माँ बाप को बस ये समझ लेना चाहिए कि किसी भी लड़की को अगर स्पोर्ट में, किसी भी स्पोर्ट में रुचि है तो जरूर आगे बढ़ाने की कोशिश करे, वहीं पर रोक दिया ना जाए, तो बस मैं यही कहना चाहूंगा।
1: जी जी, बहुत सुंदर बात आपने कही है।
3: और जी, और जो आपकी पहेली है थोड़ी सी कठिन है, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ तो मेरे हिसाब से आईना होना चाहिए, आईना।
1: अच्छा,
3: तो कांच बोलते हैं हम। हाँ
1: ठीक है, तो आप कार्यक्रम सुनिएगा, आपके प्रश्न का जवाब जरूर हम देंगे, पहेली का जवाब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए बहुत ही सुंदर बातें हो रही हैं। तो सेजल आपकी ओर बढ़ते हैं हम फिर से, आपने बताया कि आप बैडमिंटन खेलते हैं, और किस किस में रुचि है, और क्या आप ही खेलते हो या आपके क्लास के लगभग सभी बच्चियां खेलती हैं?
2: सारी बच्चियां खेलती हैं।
1: अच्छा, तो जैसे आप एक बार टूर्नामेंट में गए, दूसरी बार नहीं गए फिर?
2: दूसरी बार स्कूल की तरफ से लेके नहीं गए कभी।
1: अच्छा, जीत करके आए फिर भी?
2: जीत करके आए, फिर स्कूल वालों ने नाम तो लिखवाए थे, पर कोरोना आ गया था बीच में, इसलिए वो मना हो गया।
1: अच्छा, तो अब कोरोना तो हट गया है, अब फिर से आप बच्चियां मिल करके सर से बात कर सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं?
2: बीच में हुआ था तो मतलब बॉयज का था, गर्ल्स का नहीं था।
1: अच्छा जी जी जी। तो बहुत सारे देखते हैं हम गांवों में क्या है माता पिता, जैसे सुरेश भाई भी बता रहे थे कि गांवों में माता पिता थोड़ा अलाउ नहीं करते बच्चियों का, बच्चों को तो परमिशन दे देते लेकिन बेटियों को परमिशन नहीं देते, क्या कारण है?
2: उनके तरफ से रीति रिवाज होगा शायद कोई कि मना करना, पर मना नहीं करना चाहिए, इस पे उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए।
1: जी जी।
2: गांव की हो या शहर की हो, कोई ना कोई खेल खेलने देना चाहिए।
1: जी जी। तो सेजल आपको तो घर से मना नहीं करते हैं?
2: नहीं, मुझे पूरी छूट है।
1: चलिए अच्छी बात है। तो यहीं पर अब हम एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौट रहे हैं। आप जो भी जुड़ना चाहते हैं खुशनुमा जीवन में, अपनी बात रखना चाहते हैं, जिसको भी स्पोर्ट्स का शौक है, जो खेलते हैं वो भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। हमारे श्रोता बंधु का जाते जाते फोन उठा देते हैं। हेलो।
4: हेलो, ओम शांति।
1: हाँ जी नमस्ते, ओम शांति मंजू जी, कैसे हो आप?
4: बस बढ़िया है।
1: बहुत अच्छी बात है, हमेशा खुश रहिए।
4: से बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है।
1: जी जी। आप भी कुछ कहेंगे स्पोर्ट्स के बारे में? आपको शौक रहा है, कभी आपने भी गेम्स खेले?
4: बिल्कुल, इतने मतलब खेलते थे, खेल बैठे घर पे, अंदर बाहर मैदान में, अब तो याद ही नहीं है। मतलब हर प्रकार के जो गेम होते थे सब खेले थे बच्चे थे तब।
1: जी जी जी।
4: और मेरे को कैरम खेलना बहुत अच्छा लगता था, हम स्टूडेंट लाइफ में टीचर के साथ भी खेलते थे, फिर घर पे छुट्टियां होती थी तब भी खेलते थे, और भैया वगैरह ये क्रिकेट खेलते थे तो कभी कभी हमें भी बॉल फेंकने का मौका मिलता।
1: अच्छा, बॉलिंग करते थे आप?
4: दोनों ही,
1: बैटिंग और बॉलिंग।
4: हाँ, बहुत अच्छा लगता था।
1: जी,
4: उनको
1: जी,
4: भी
1: जी।
4: अच्छा लगता था, हमको भी। लेकिन आजकल है ना लड़कियां बहुत आगे बढ़ गई है, खेल मतलब खेल के मैदान में हर जगह अव्वल रहती है लड़कियां, और खेलना भी चाहिए। हमारा मानसिक और शारीरिक विकास ये मतलब खेल से बहुत ज्यादा बढ़ता है, और खुद में आत्मविश्वास बढ़ता है, और दिमाग के घोड़े तो ये खेल में ही दौड़ते हैं।
1: जी
4: बिल्कुल, इतना मतलब हर खेल में दिमाग का ही उपयोग होता है सबसे ज्यादा तो।
1: जी।
4: और दिमाग के साथ साथ अपनी बॉडी भी मजबूत रहती है।
1: बहुत सुंदर। तो मंजू जी, गांवों में अभी भी माता पिता थोड़े बेटियों को परमिशन नहीं देते, आप क्या कहेंगे?
4: देते भी है, कम लोग हैं जो नहीं देते हैं आजकल तो। मतलब ऐसा कोई परिवार भी नहीं है हमारे आसपास देखें तो, लड़की स्कूल पढ़ाई नहीं कर रही है या किसी खेल में भाग नहीं ले रही है, सांस्कृतिक प्रोग्राम हो या खेल कूद का हो, हर प्रकार के प्रोग्राम में जाती भी है और अव्वल भी रहती है, कबड्डी तक ऐसे खेल, खो खो है।
1: जी चलिए, बहुत अच्छी बात है, गेम्स में आगे बढ़ना ही चाहिए, रहना ही चाहिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, परमिशन हाँ, सभी को मिलनी चाहिए।
4: दस साल में तो बहुत परिवर्तन हो गया।
1: जी जी जी जी। और आज के पहेली का जवाब देंगे?
4: पहेली का जवाब पानी हो सकता है मैडम जी, और क्या।
1: अच्छा ठीक है, आप कार्यक्रम सुनिएगा, हम आपके जवाब जरूर सुनाएंगे।
4: बावड़ी तो आपने बोल दिया, पानी है।
1: ठीक है, तो देखते हैं आपका जवाब सही है गलत है, वो आप सुनिएगा कार्यक्रम। ठीक है,
4: कोई बात नहीं, ये भी एक दिमाग की प्रैक्टिस है। पूछते रहो हमेशा।
1: जी शुक्रिया,
4: धन्यवाद।
1: हाँ जी, तो आइए यहीं पर हम भी एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधु।

चलती हवा के कान में जलते हुए दीपक ने ये बात कही। चलती हवा के कान में जलते हुए दीपक ने ये बात कही। मेरे हौसले के आगे तेरी कुछ भी औकात नहीं। मेरे हौसले के आगे

0: तेरी कुछ भी औकात नहीं। हेलो
1: हेलो शमन जी।
0: हाँ जी नमस्कार कंचन भाई, कैसे हो आप?
1: बस नमस्कार नमस्कार बहन जी। दुकान पे एक काम करते
0: हैं जी जी,
1: लड़का खेती का काम पूरा हो गया, उस लड़का काम करना पड़ेगा क्योंकि आस पास शादी अच्छी भाइयों का जो लग्न की चीजें
0: जी जी
1: कपड़े दे देने पड़ेंगे, तो सुबह शाम काम चलता है, दोपहर तो गर्मी बहुत पड़ती है
0: जी,
1: तो रेस्ट भी करना
0: जी जी बिल्कुल, और सुबह सुबह हो जाता है वो हो जाता है, फिर गर्मी तो है ही है।
1: हाँ सुबह में उसके बैठ जाना पड़ता है ना, उसके पूजा पाठ करके आ जाते हैं दुकान पे
0: जी जी जी। तो कंचन भाई स्पोर्ट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप भी कभी खेल कूद किया करते थे?
1: हाँ जी बहन जी, स्पोर्ट्स की बात चल रही है तो देखो हमारे यहाँ स्कूल थी तो व्यायाम का पीरियड रहता था। व्यायाम पहले तो क्या था, टीचर किए हुए व्यायाम टीचर्स होते थे
0: जी,
1: तो 4 से 5 बजे एक घंटे हमें मैदान में ले जाते थे और कबड्डी है, खो खो है, ऊंची कूद है, ये सब हमें करवाते थे
0: जी।
1: ठीक है, तो हम भी भाग लेते थे और हमारे यहाँ आस पास आदिवासी एरिया है तो बहनों ज्यादा करके कई जिला पहुंचे थे, पढ़ते थे बाला बैग बच्ची बैग ये सब बहने भी और धनुष सिर काम था
0: जी,
1: ऐसा ये भी बहने भाग लेती थी। अब तो ये बंद हो गया है बहन जी, ये सब है ना व्यायाम का कोई ये ही बंद हो गया है पीरियड, और कोई शिक्षक भी नहीं है, कोई टीचर भी नहीं है,
0: तो समय के साथ विकास होना चाहिए उसकी जगह बंद हो गया।
1: हाँ बंद हो गया, और जिसने देखो सीपीएड बीपीएड ये सब किया है ना जिसने
0: जी,
1: वो अभी घर पे बैठे ये वो भर्ती या होती ही नहीं।
0: अच्छा
1: क्या करे यार
0: जी जी जी जी,
1: तो वहाँ से शुरू होता था हमारे हमारी बात करे तो, ये तो सब अब तो टेक्नोलॉजी और इंटरनेट और ये सब कंप्यूटर ये सब आ गया है तो छूट गया है
0: जी जी जी। और कंचन भाई आज की पहेली का जवाब देंगे?
1: पहेली क्या है
0: जी? पहेली है, चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए, शांत रहे तो खुद को निहारू हलचल में मिट जाए। कोई बात नहीं
1: तो
0: सोचिएगा
1: जी,
0: आप सोच के फिर से आप जवाब दे सकते हो, ठीक है?
1: हाँ जी
0: हाँ जी, शुक्रिया। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, सेजल हमारे साथ बैठे हुए हैं। सेजल आपके यहाँ पर जैसे आपने कहा कि बाहर ले जाना बंद कर दिया कोरोना के बाद, है ना, टूर्नामेंट्स में अभी तक नहीं हुआ है लड़कियों के। अच्छा, तो आपके स्कूल में होते
2: हाँ।
0: अच्छा, और ग्रुप वाइज होते हैं या क्लासेस टूर्नामेंट होते हैं, किस तरह के होते हैं?
2: ग्रुप वाइज होते हैं।
0: ग्रुप वाइज होते हैं तो उसमें आप भाग लेते?
2: हाँ।
0: अच्छा, कितने गेम्स आप खेल सकते हैं?
2: बैडमिंटन, बहुत तरह के गेम्स खेल सकते हैं।
0: नहीं, जैसे एक स्टूडेंट को कितने गेम्स खेलने की छूट है टूर्नामेंट में, कंपटीशन में?
2: तीन
0: गेम्स। तो आप कौन कौन सा खेलती हो?
2: बैडमिंटन, दो पैर और रस्सी कूद।
0: अच्छा, तो सभी बच्चे तीन तीन गेम्स खेलते हैं या फिर अपनी इच्छा के अनुसार?
2: अपनी इच्छा के अनुसार।
0: अच्छा, बाहर लेके जाते हैं टूर्नामेंट में तो वहाँ पर कितने गेम्स खेले जाते हैं?
2: उधर तो किस तरीके से तुम्हें कौन से गेम से लेके जा रहे हो उस तरीके के गेम खेलाए जाते हैं।
0: अच्छा,
2: एक गेम के ऊपर
0: एक गेम ही होता है। तो गेम्स खेलने के फायदे क्या है, स्पोर्ट्स में जो हम भाग लेते हैं उससे क्या फायदा मिलता है?
2: गेम्स खेलने के बहुत फायदे हैं,
0: जैसे कि
2: उससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और हमारे अंदर एनर्जी भी बनी रहती है। मोटे लोग भी गेम खेलते हैं
0: जी,
2: तो जिनकी वजह से उनके जो बॉडी है ना वो फिट रहती है
0: जी। बहुत सुंदर बात कही सेजल कि गेम्स के बहुत सारे फायदे हैं, एनर्जी रहती है, शरीर स्वस्थ रहता है, जो मोटे लोग हैं ना वो भी गेम्स अगर खेलते हैं तो उनका भी मोटापा कंट्रोल में आ जाता है, फिट एंड फाइन हो जाते हैं और एनर्जी और एक्टिवनेस बढ़ती है, तो बहुत ही अच्छा है। और आप पढ़ाई के बारे में थोड़ा बताएंगे कि आप पढ़ाई में कैसे हैं?
2: पढ़ाई में मीडियम है।
0: अच्छा, तो आगे कोई लक्ष्य बनाया आपने?
2: हाँ, ब्यूटिशियन का है।
0: अच्छा, क्यों गेम्स में आपको रुचि और ब्यूटिशियन बनना, दोनों ही अलग अलग हो गए फील्ड?
2: गेम्स में है पर गेम्स में जाते हैं ना आगे, कभी कभार खेलते हैं, मतलब गेम्स के अंदर स्कूल से लेके जाते हैं।
0: जी जी जी,
2: आगे बड़े होके।
0: और ब्यूटिशियन तो अपना सेल्फ रहता है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि स्कूल से आगे नहीं ले जा सकेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन ब्यूटिशियन पर अपना सेल्फ है, सेल्फ डिसीजन है, जब चाहे तब खोल सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा?
2: सीखना पड़ेगा, मतलब एक साल का कोर्स होता है इसका।
0: अच्छा,
2: अहमदाबाद से, कोई भी बड़ी सिटी होती है उनसे।
0: अच्छा, फिर कहीं पर भी आप खोल सकते हो।
2: हाँ, आप कंपनी से भी जुड़ सकते हो, किसी कंपनी से जुड़ के भी आपको हो सकता है।
0: अच्छा, अपना अपना शौक है, अच्छी बात है, कोई ना कोई लक्ष्य बनाना बहुत अच्छी बात है। तो सेजल, आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने बहुत ही सुंदर बातें बताई है कि स्पोर्ट्स में आपको किस तरह रुचि है और आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, सभी के सामने रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहीं पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेकर के पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ अब तो बस करो।
0: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो
3: शोक को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।
4: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, काफी अच्छे रहे हैं, सुंदर सा विचार भी दिया, तो नुस्खे भी अपच पर दिए, जरूर ध्यान दीजिएगा। रेसिपी में आपको जो सलाद बनाना सिखाया है जरूर बना करके खाइएगा। और आज की पहली बहुत ही सुंदर थी जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। और जवाब भी आप जो आपने सुनाया है वो मैं अभी बताऊंगी। चार

मिट जाए। तो ये आज की पहेली थी जिसका जवाब दिया है कमलेश बहन माउंट आबू ढूंढई से। उन्होंने कहा है कि समुद्र पहले आत्मा कहा फिर बाद में समुद्र कहा है, लेकिन ये गलत है। फिरोज भाई पालनपुर से, उन्होंने पर्यावरण कहा है, ये गलत है। कुपराम जी कोजरा से, सबसे पहले इनका जवाब सही है, परंतु क्या है वो मैं बाद में सुनाऊंगी। सुरेश भाई थानेराव से, आपने कहा आईना, ये गलत है। मंजू जी बाड़मेर से, आपका भी जवाब सही है जो मैं बहुत ही शीघ्र सुनाने वाली हूँ। सुरेश भाई झोटाना से, आपका भी जवाब गलत है, उन्होंने भी आईना ही कहा है। कंचन भाई मंडाली से, आपने जवाब नहीं दिया है, तो जवाब दिया है कुपाराम जी और मंजू जी बाड़मेर से, पानी। तो ये जवाब सही है, ढेर सारी ताली आप दोनों के लिए। और देखिए आपने भी बहुत अच्छी कोशिश की है सभी ने, इसके लिए आप सभी के लिए भी ढेर सारी ताली। देखिए आपने कांच वगैरह कहा, आईना कहा, वो ठीक है, लेकिन पहली बहुत ही सुंदर थी कि चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए। अब किससे हिलोरा खा रही है? पानी से खा रही है ना। और शांत रहे तो खुद को निहारू, हलचल में मिट जाए। शांत पानी में आप देखिएगा आपका चेहरा साफ दिखाई देगा, आपका प्रतिबिंब साफ दिखाई देगा, लेकिन एक कंकड़ भी अगर पानी में गिर गया तो फिर आप अपने आप को निहार नहीं सकते, देख नहीं सकते, है ना, हलचल हो जाती है ना, उसमें आपका फोटो फिर चारों तरफ फैल जाएगा, दिखाई नहीं देगा। इसलिए पानी जवाब सही है। आज का मीठा मोती है, सरलता में महान सौंदर्य होता है, जो सरल है वह सत्य के समीप है। अब मैं आपको एक प्यारी सी कविता सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है हंस हंस मारे छक्का। गेम्स के ऊपर ही है। आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणिक खम्मा सा, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन। खेल खेल में चुन्नू मुन्नी करते हैं तकरार, खेल खेल में चुन्नू मुन्नी करते हैं तकरार, चुन्नू भैया रूठ गए तो दिल में पड़ी दरार, बने मूर्ति ऐसे वह तो फूल के हो गए कुप्पा, बने मूर्ति ऐसे वह तो फूल के हो गए कुप्पा, करी गुदगुदी मुन्नी ने तब हंस हंस मारे छक्का। इधर उधर का दोनों दौड़े, इधर उधर को दोनों दौड़े, हंस हंस देके कक्का, कोई किसी के हाथ न आए, हो रही धक्कम धक्का, हो रही धक्कम धक्का, खेल खेल में चुन्नू मुन्नी करते हैं तकरार, चुन्नू भैया रूठ गए

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। जीना इसी का नाम है। कितना खूबसूरत है ना दोस्तों, अगर हमें ये फॉर्मूला पता चल जाए हमारे जीवन को कैसे जीना है, और ये भी पता चल जाए कि हम जो जीवन जी रहे हैं इसी को जीना कहते हैं, फिर जिंदगी में क्या मुड़ के देखना है दोस्तों। ऐसे कुछ फॉर्मूलाज के साथ आज हमारे साथ है आदरणीय राजयोगिनी उर्मिला दीदी जी। उर्मिला दीदी जी ब्रह्म कुमारी मुख्यालय में एक वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका है। जैसे हम राजयोग की बातचीत कर रहे हैं, एक साधना तपस्या के द्वारा अपनी जीवन को निखारने का जो साधन है वो राजयोग मेडिटेशन है। पिछले 4 दशकों से आप इस राजयोग की अभ्यास कर रहे हैं और उससे उन्होंने अपने जीवन में जो परिवर्तन को देखा है या अपनी जीवन को जीने की कला को उन्होंने सीखा है आज हमारे साथ शेयर करेंगे। कार्यक्रम जीना इसी का नाम है। दोस्तों हम स्वागत करते हैं आदरणीय उर्मिला दीदी जी को आज के इस कार्यक्रम में रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। नमस्ते दीदी जी।
3: नमस्ते जी।
2: दीदी हम सबसे पहले संक्षिप्त में ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो लौकिक जीवन है, आपने कहाँ पे जन्म लिया, आपका लौकिक परिवार और कहाँ पर थे, आपने क्या पढ़ाई किया, ये सारी चीजें।
3: ओम शांति। मेरा लौकिक जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ। उस समय उस गांव की आबादी जहां तक मेरा ख्याल है 2000 भी बड़ी मुश्किल से रही होगी। एक प्राइमरी स्कूल था, बस गाड़ी किसी के यहाँ होती नहीं थी। अगर गांव में भूले भटके गाड़ी आ भी जाती थी तो बच्चे झूम जाते थे। ये गांव मेरे दादाजी का गांव था और इसमें केवल मेरा जन्म हुआ था। इससे पहले मेरे माता पिता असम में तिनसुकिया में रहते थे और हम 4 भाई बहनों में से मैं सबसे छोटी हूँ। तो बड़े 3 भाई बहनों का जन्म वहीं बाहर हुआ। मुझे लेने ही वो इस गांव में आए थे। तिनसुकिया में पानी में थोड़ा सा पेट्रोलियम का अंश है, उसके कारण पिताजी को शारीरिक तकलीफ हुई तो वो एक गाँव के स्वच्छ वातावरण के हिसाब से यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। मेरा जब जन्म हुआ तो मुझे हमारे आंगन में एक चांदी का सिक्का मिला था खेलते हुए। कहते हैं बच्चे को चांदी का सिक्का मिले तो बहुत भाग्यशाली होता है। तो माता पिता ने मुझे उसी भाव से देखना शुरू किया कि ये घर में लक्ष्मी आई है। मेरे जन्म से पहले मेरी माँ ने 9 महीने अटूट भक्ति की थी कि मेरे घर में कोई अवतार जन्मे, कोई देवी जन्मे, कोई देवता जन्मे। और जब मैं जन्मी तो घर का माहौल बदला, पिताजी की आमदनी बढ़ी और भी बहुत सारे शुभ संकेत घर के लोगों को मिलने लगे। तो मुझे उसी प्रकार की ट्रीटमेंट मिली कि ये सबसे अधिक भाग्यशाली बच्चा है। सबसे छोटी थी, बहुत अधिक प्यार मिला, अनलिमिटेड प्यार मिला, अनएक्सपेक्टेड प्रेम मिला और वो प्रेम सबसे अधिक हमारे पिताजी की तरफ से मिला। आप यूँ समझिए कि वो मेरे बिना एक पल भी नहीं रहते थे। खाना पीना सोना, बाहर जाते थे तो भी मुझ छोटी सी को साथ ले जाते थे और अगर मेरे बिना जाते थे तो उन्हें मेरी याद बहुत आती। तो इतने अधिक प्रेम के कारण आप यूँ समझिए कि घर की मैं लीडर बन गई।
2: जी, लाडली।
3: लाडली, मेरे मुँह से जो शब्द निकल जाए वो पूरा होगा ही होगा हर हाल में।
2: अच्छा।
3: और बड़े भाई बहन मुझे कुछ भी नहीं कहते, वो भी मेरी आज्ञा का पालन करते। तो एक कन्या को जब आप इस तरह से पालेंगे तो उसमें कन्या वाले संस्कार तो रहेंगे नहीं। मतलब किसी की बात मानना, किसी के अंडर चलना, वो जो लीडरशिप का संस्कार था। माँ को भी मैं बहुत प्रिय थी, काम को कभी छुआ नहीं। काम क्या चीज होती है, अगर कभी मुझे एक छोटा सा काम करते हमारे पिताजी ने देख लिया तो वो दौड़े आते थे, मेरी बेटी से काम क्यों करवा रहे हो।
2: अच्छा।
3: हाँ, तो कभी जिंदगी में घर का काम नहीं किया। मुझे थाली हाथ में मिलती थी, झूठी थाली मेरी उठा ली जाती थी, कपड़े धुल के मिलते थे।
2: तो ऐसे में कभी आपकी भाई बहनों के बीच नोकझोंक या कुछ होता था दीदी?
3: भाई बहनों के बीच अगर नोकझोंक हो भी गई तो पिताजी को रिपोर्ट जाती थी, मैं ही बताती थी कि आज इसने मेरी गेंद ले ली।
2: अच्छा।
3: और फिर पिताजी आते थे पूरा धर्मराज का रूप धारण करके कि मेरी बेटी के हाथ से गेंद किसने ली।
2: जी।
3: इसके पीछे बहन जी मुझे थोड़ी सी बैकग्राउंड ये समझ में आती है कि हमारे पिताजी का अपनी बहनों से बहुत प्रेम, और उनकी एक बहन की अनटाइमली डेथ हुई
2: जी।
3: उसका उनको शौक लगा तो उनके मन में ये था कि मैं अपनी बेटियों को बहुत अच्छे से पालू। मेरी जो बड़ी बहन है वो भी ज्ञान में है
2: जी।
3: लेकिन उसके साथ उनका इतना छोटे बच्चे के साथ थोड़ा अधिक होता है ना
2: जी,
3: तो वो थोड़ी चुप और शर्मीली टाइप थी और मैं उसके बिल्कुल ओपोजिट थी कि अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो उसकी पिटाई कर दो
2: जी,
3: और उसकी शिकायत कर दो और हल्ला मचा दो, इस प्रकार की नेचर की थी
2: जी।
3: तो इस तरह से मेरा बचपन बीता। लेकिन मैं पढ़ाई में इतनी अधिक ब्रिलियंट थी कि मेरा टीचर बोर्ड पे कुछ लिखे उससे पहले मैं उस सेंटेंस को पूरा कर देती थी।
2: अच्छा।
3: तो टीचर घर में आके जब मेरे पिताजी को ये बात बताते थे बहुत पहली क्लास में, तो मेरे पिताजी का ना जिसको कहते हैं छाती फूल जाती थी और वो मुझे कभी बेटी नहीं मानते थे, बेटा मानते थे। एक बार हमारे स्कूल में एक इंस्पेक्शन वाला आया प्राइमरी स्कूल में
2: जी,
3: तो उसने कहा कोई हिंदी की बुक पढ़ के सुनाए। तो मैंने पहली क्लास में हिंदी की बुक ऐसी पढ़ी थी जैसे सुपर फास्ट ट्रेन चल रही
2: जी।
3: तो उसने हैरान होकर के देखा छोटा सा गांव और छोटा सा प्राइमरी स्कूल और उसमें एक ऐसा इंटेलिजेंट बच्चा। फिर मेरे टीचर क्या करते थे कि पांचवी क्लास में अगर किसी बच्चे को हिंदी नहीं पढ़ने आती तो मुझे पहली क्लास से उठा के पांचवी में ले जाते थे, अब यहाँ तुम पढ़ तो इनको शर्म आएगी
2: जी।
3: तो मुझे वहाँ भी मॉनिटर की तरह से पांचवी क्लास में डील किया जाता था। तो जो मेरे भाई के फ्रेंड्स थे या बाकी जो बच्चे थे उनकी भी मैं लीडर बन गई क्योंकि टीचर इतना मुझे आगे रखते थे। हाँ। तो डर क्या होता है, झुकना किसी के आगे क्या होता है, वो मैंने जीवन में उस समय कभी सीखा ही नहीं। हर बात में गीत गाना है कि डांस करना है कि कोई और भी दौड़ लगानी है कि पहाड़ पे चढ़ना है या किसी सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है तो मैं सबसे आगे मिलती थी। घर में मुझे कोई काम नहीं था,
2: रोक टोक भी नहीं,
3: कोई काम रोक टोक भी नहीं, सबको रोक टोक थी, भाइयों को बहनों को, मुझे रोक के कोई तो मैं मानती नहीं थी। हमारे पिताजी ऐसे रोकते थे मैं हाथों के नीचे से निकल के भाग जाती
2: So, दीदी इतनी लाड़ प्यार और पढ़ाई में अव्वल रहना ये सभी चीजों के बीच में आप धार्मिक भी थे?
3: हाँ,
2: या परिवार भी धार्मिक था?
3: अब मैं आपको ये भी बात बताती हूँ, मेरी माँ जो थी ना वो अव्वल दर्जे की भक्त थी। मतलब मंगलवार को व्रत करना है, घर की धुलाई करनी है, भगवान को भोग लगाना है, कोई झूठे हाथ ना लगा दे उसका बहुत ध्यान रखना है और सिवाय भगवान के घर में कोई बात नहीं करनी है। पढ़ाई की बात तो करनी है, इसके अलावा संसार की बात, पड़ोसी की बात, इधर की बात, उधर की बात, सहेलियों की बात, वो नहीं करनी है। मंगलवार को मेरी फ्रेंड्स को वो बुलाती थी और भक्ति के हम भजन गाते थे हमारे आंगन में बैठ के, फिर माँ उनको प्रसाद देती थी। और रोज शाम को नियम था जब तक माँ भक्ति की कहानी ना सुनाए तब तक मैं तो खास सोती नहीं।
2: अच्छा, आपको भी रुचि थी?
3: बहुत ज्यादा रुचि थी मुझे, वो वाली कहानी सुना दो, वो वाली कहानी सुना दो, वो वाली कहानी सुना दो, फिर वो रिपीट होती रहती थी। ध्रुव की आज सुनाई, प्रहलाद की सुनाई, रुक्मणी ने कैसे भगवान का वरण किया वो सुनाई, सीता स्वयंवर कैसे हुआ वो सुनाई, और फिर वो रिपीट हो जाती थी, लेकिन सुननी जरूर है। और मैं किताबें पढ़ने की इतनी शौकीन थी क्योंकि हमारी शॉप थी, मेरे पिताजी शॉप की।
2: तो इतनी सारी जब भक्ति की कहानियां सुनना और भक्ति में इतना विश्वास रखने वाले, अध्यात्म की ओर कैसे मुड़े हैं, संस्था की परिचय में कैसे?
3: हाँ, वो भी मेरी जो गुरु है वो मेरी माँ ही है। 76 में हमारे घर में हमारी माँ की एक बहन आई, मैं 6th क्लास में थी उस समय। तो जो मेरी माँ की बहन थी उसकी भी थोड़ी सी स्टोरी सुना दूं। वो केवल 5 क्लास पढ़ी थी, मेरी माँ तो एक भी क्लास नहीं पढ़ी थी, लेकिन वो घर में रह करके हिंदी पढ़ना सीखी थी। जो मेरी नानी का परिवार था वो टू मच धार्मिक था, सारे तीर्थ करना, तीर्थों पे बड़े बड़े सोने चांदी के छत्र चढ़ाना, ब्राह्मणों को दान देना वगैरह वगैरह, मंदिर बनवाना उनकी थी। तो हमारी मौसी जो थी उसकी शादी हुई एक MBBS डॉक्टर के साथ असम में, फैमिली तो वहीं पे था ना। अब मौसी भी धार्मिक संस्कारों के, घूंघट निकाले, ज्यादा बोले नहीं, और MBBS डॉक्टर जो था उसको चाहिए थी मॉडर्न पत्नी, तो इनके संस्कार आपस में बिल्कुल नहीं मिले। एक बेटा हुआ और उसके बाद वो लंदन चला गया, कुछ नहीं बताया। इधर ये लोग इंतजार करते रहे, और वो जमाना ऐसा था कि लोग तलाक वलाक नहीं लेते थे, केस वेस नहीं करते थे। 37 में मेरी माँ का जन्म है, तो ये 50 के अराउंड की बात होगी, 55 की, अभी भारत आजाद हुआ था, ये सब कुछ भी नहीं होता था। तो बस मौसी पियर चली गई और मामा के साथ रहने लगी, और जो हमारा भाई था मतलब मौसी का बेटा था, उसको पिलानी में स्कूल में उसी ने डाल दिया हॉस्टल में, और लंदन से सीधा उसका खर्चा वहां।
2: अच्छा।
3: मौसी से उसकी नहीं बनती थी, पर उस बच्चे की पूरी पालना वो करता।
2: अच्छा।
3: हाँ, तो मौसी ठीक है, आराम से रह रही थी, नो प्रॉब्लम। पर इसी बीच क्या हुआ कि साकार बाबा 69 में गए ना, तो आप यूं समझिए उससे 2-3 साल पहले कलकत्ता की बहन थी जो बाद में तिनसुकिया की टीचर बनी, क्या नाम था उनका, सत्या बहन बाबा से मिलने आई थी,
2: ब्रह्मा बाबा से,
3: और वो गोलगप्पे बहुत अच्छे बनाती थी, तो बाबा उसको गोलगप्पे वाली बच्ची बोलते, तो वो बाबा के पास गोलगप्पे बना करके लेके गई। तो बाबा ने कहा, बच्ची मुझे आप जैसी एक दर्जन माताएं चाहिए। वो मैरिड थी, दो बेटियां थी, फिर भी इतनी समर्पित बुद्धि थी दोनों पति पत्नी, बेटियों ने तो शायद बाद में शादी की होगी, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो बाबा की बात को गांठ बांध ली, वो गई कलकत्ता, और वहां टिबरेवाल धर्मशाला में उन्होंने प्रदर्शनी लगाई, और उसमें मेरी नानी आई।
2: अच्छा।
3: नानी मतलब माँ की बुआ, सगी नानी तो तिनसुकिया में थी
2: जी,
3: ये माँ की बुआ, और माँ की बुआ का बेटा छोटा सा 5th या 6th क्लास में, रमेश उसका नाम था, स्कूल से आते हुए उसने टिबरेवाल धर्मशाला में वो प्रदर्शनी के चित्र देखे, घर गया और माँ का पल्ला खींचा कि तेरे को इतनी अच्छी चीज दिखा के लाता हूँ, चल चल। तो नानी गई, नानी भी बहुत भक्ति करती थी, टू मच भक्ति थी इनके घरों में। तो नानी जैसे ही प्रदर्शनी देखी, नानी ज्ञान में आ गए। अब ये माँ बेटा दोनों ज्ञान में, और बाकी पूरा परिवार एंटी, मतलब नाना और इसका बड़ा बेटा और इसकी बेटी, पूरे एंटी। अब ये स्टूडेंट बने दादी निर्मल शांता, और मेरी जो नानी थी जबरदस्त भाषण करती थी और ज्ञान के ऐसे पॉइंट सुनाती थी, तो दादी निर्मल शांता ने उसका नाम रखा था वकील। रुक्मणी बहन हमारे पूरे फैमिली को जान
2: जी।
3: तो उसके मन में एक विचार आया, बाबा कहते थे ना ज्ञान सुनाओ, ज्ञान सुनाए बिना नाश्ता नहीं करो, तो नौकर को ज्ञान सुना दिया, छिप छिप के बहुत दान करती थी, बर्तन उठा के दे दिए, कपड़े उठा के दे दिए, सोना उठा के दे, ऐसे बहुत दान करती थी छिप छिप के। तो उसने सोचा कि मेरे भाई की बेटी घर में खाली बैठी, पति विदेश में है, बेटा हॉस्टल में, उसको कोई काम थोड़े, उसको बुला ले। तो मौसी को कलकत्ता बुलाया, उसको ज्ञान सिखाया, और निर्मल शांता दादी के पास उसको समर्पित कराया।
2: अच्छा।
3: 70 के आसपास बाबा के जाने के बाद वो वहां सेंटर पे रहने लगे, गुवाहाटी की शीला बहन ये सब लोग उनको जानते थे, उनके साथ ही रही है। तो बाद में उसका नाम था निर्मला बहन, बाद में क्या हुआ कि उसको थोड़ी सी हाथों में खुजली हुई वहां रहते रहे, तो डॉक्टरों ने कहा कि कलकत्ता की हवा अच्छी नहीं है, पोल्यूशन है, तुम ऐसी जगह जाओ जहाँ पोल्यूशन ना। तो उसको मेरी माँ याद आई, क्योंकि हम लोग भी तिनसुकिया छोड़ के गाँव में रह रहे थे, तो वो मेरी माँ के पास आ और अपने साथ दो मुरली लेके आए, और यहाँ मेरी माँ तो भक्ति में पागल थी, तो उसने मेरी माँ को कहा, बहन तू तो भक्ति करती रह जाएगी, भगवान तो धरती पे आ गया। मेरी माँ ने कहा, कहाँ आ गया? बोला माउंट आबू में। तो कैसे आता है? बोली देखो दिल्ली में उसका रथ रहता है, और वो रथ माउंट आबू जाता है, और उसमें भगवान उतर के आता है, और उसके मुख से ना ये मुरली बोलता है, ये देखिए मुरली। तो वो मुरली मेरी माँ को दिखाई, मेरी माँ ने मुरली पढ़ी, मेरी माँ को एकदम फिट बैठ गया कि यही है। और वो एक हफ्ता रही, पूरी ट्रीटमेंट कराई, और ट्रीटमेंट तो क्या कराई, बस सुबह घूमने जाती थी मेरी उंगली पकड़ के, और मुझे पूरे रास्ते सुनाती थी, देख भगवान ना ऊपर रहता है, वो ज्योति बिंदु है, और वो सफेद सफेद, तो तुम अपनी बुद्धि को ऊपर ले जा करके उसको देखो। 76 में उसने मुझे ये बात सुनाई थी सड़क पे चल, वो सड़क भी मुझे याद है और ये बात भी मुझे याद है,
2: कोलकाता में
3: ना ना हमारे पास आ गई थी ना वो
2: जी,
3: हरियाणा में। तो 6-7 दिन रह के वो तो चली गई, और हमारी माता जी को तो कारून का खजाना मिल गया, दो मुरली मिल गई, तो उस जमाने की जो मुरली थी ना वो बड़े साइज की होती थी और कागज आज जैसा बढ़िया नहीं होता, थोड़ा पीला पीला होता। बार बार खोलो बार बार बंद करो तो वो बीच में से क्रैक हो जाती थी,
2: तो प्रिंट निकल जाता।
3: हाँ, दो पन्ने हो जाते थे ऐसे। तो दो मुरलियां एक दिन एक पढ़ती है, दूसरे दिन दूसरी पढ़ती है। सुबह उठती है 4 बजे, बाल खोल लेती है, नहाती है और जब मुरली पढ़ती है तो चेहरे पे ऐसी रौनक आ जाती है जैसे इसे तनी कारून का खजाना या सतयुग की बादशाही मिल गई है। और हम बच्चे उसी कमरे में होते थे, माँ के दाएं बाएं, हम रजाई में से मुंह निकाल के देखते, माँ का मुंह देख कितना मुस्कुरा, एक कागज के टुकड़े में ऐसा क्या है। फिर वो जब रख देती थी मुरली को तो हम दिन में ऐसे देखते थे, ये माँ की मुरली है, हाथ मत लगाना, गंदे हाथ मत लगाना। वो दूर से फिर ऐसे बोलती थी तो फिर हम लोग चौकन्ने हो जाते थे
2: जी।
3: तो माँ ने 1 साल 2 मुरली पढ़ी और 1 साल बाद वो फिर आई तो साप्ताहिक पाठ्यक्रम ले आई। और मेरी माँ को अब तो आप समझो कि दुनिया की दौलत मिल गई, उसने साप्ताहिक पाठ्यक्रम को फटाफट याद कर लिया और याद करके वो कोर्स कराने लगी लोग, मतलब हमारे घर में कोई भी आए, शॉप होने के कारण पूरा विलेज एक ही शॉप थी वो।
2: फिर आपको कब निश्चय बैठ गया कि ये परमात्मा का ज्ञान,
3: ये उसको देख देख के ही, तो उसी के तो चरित्र सुना रही हूँ
2: जी।
3: मेरी गुरु वो, मेरी मार्गदर्शक वो, मुझे जीवन में त्याग सिखाने वाली और मेरे जीवन में मुझे वैराग्य सिखाने वाली, ये ज्ञान उसने मुझे दिया नहीं, मैंने उसको देखा। जो चीज देखी जाती है वो फिट बैठती है। वो ज्ञान कभी कभार सुनाती थी तो हम सुनते थोड़े थे, वो तो हम भाग जाते थे, हमको पढ़ना है, हमको खेलना है, हमारे फ्रेंड्स आए हैं। लेकिन उसको देखा कि इसका जीवन बदल गया, मतलब खुशी इतनी, नहीं तो पहले तनाव तो होता है ना, 4 बच्चों को स्कूल भेजो, हम चारों स्कूल जाने वाले सुबह सुबह। अच्छा, गांव में फैसिलिटीज भी कम होती हैं, आप समझ सकते हो
2: जी।
3: तो एक तो खुशी, दूसरा उसको एक बीमारी थी जिसके कारण वो इस गांव से एक शहर में जाती थी और पुड़िया लेके आती थी वैद्य जी। तो जब इस ज्ञान में आ गई, बीच बीच में कपड़े धोएगी, बीच में उठ के जाके मेडिटेशन करी, बाबा कहता है बीच में बाबा को याद करो फिर काम करो, फिर आके कपड़े धोएगी बर्तन मांजेगी, बीच में बाबा को याद करेगी फिर बर्तन मांजेगी। तो हम उसको देखते थे तो उसकी पुड़िया बंद हो गई।
2: अच्छा,
3: बिल्कुल सीढ़ी नहीं चढ़ सकती थी तो सीढ़ी चढ़ने लगी, दौड़ नहीं सकती थी वो दौड़ने लगी, वजन नहीं उठा सकती थी वो वजन उठाने लगी, किसी के आगे बोल नहीं सकती थी तो वो भाषण करने लगी, मुरली पढ़ के अंग्रेजी बोलने लगी। और लोग हमारे घर आते थे तो कहते थे सिठानी तो तू दोबारा जवान हो गई, मतलब हेल्थ अच्छी हो गई, चेहरे पे रौनक आ गई। तो हम कहते थे माता जी आपकी बीमारी कहाँ गई, कहते थे शिबाबा ले गया। अब शिबाबा तो दिखता नहीं, कौन ले गया, कुछ भी तो नहीं दिखता इस ज्ञान में। फिर ज्ञान अमृत की मेंबर बनी तो हम लोग ज्ञान अमृत पढ़ते थे, जगदीश भाई का आर्टिकल पढ़ते थे तो हमको एक एक दिखाती थी, ब्रह्मा कुमारी ऐसी होती है, ये ऐसी होती है, रावण का चित्र दिखाती थी वगैरह वगैरह सब। तो आप समझ लीजिए 76 से लेकर के और 78 तक थोड़ा गुप्त मामला रहा। फिर वो माउंट आबू आई, वही लेके आई उसे, माउंट आबू बाबा से मिली, माउंट आबू आई, फिर तो नशा आसमान में चढ़ गया, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। और किसी को अब काम नहीं कहती थी, पहले हम बच्चों को कहती थी पर अब खुद करती थी सारे काम, तो ये भी एक परिवर्तन। फिर मैंने 5th क्लास में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसको टॉप किया था, मुझे 108 रुपया छात्रवृत्ति मिली। और अब आप समझ लो अब तो मेरा दर्जा बहुत ऊंचा हो गया, तो पूरे गांव में पूरे डिस्ट्रिक्ट में आसपास के लोग भी जानने लगे थे। तो मेरी माँ के मन में एक विचार आया, और मुरली में बाबा कन्याओं की बहुत महिमा करता है, अगर मेरी ये बेटी ज्ञान में चल पड़ी तो ये बाबा की बहुत सेवा कर। तो पर ये चले कैसे, क्योंकि वो ज्ञान सुनाती थी हम सुनते नहीं, और कोई कोई उससे सवाल पूछते थे तो वो बेचारी हमारे, मान लो हमने डार्विन की थ्योरी पूछ ली उससे, आप सोचो स्कूल हमारी माँ क्या जवाब देगी। तो उसने एक तरकीब निकाली, मैं स्कूल जाती थी तो बेटा मेरी दृष्टि लेके जा पेपर अच्छा होगा, मैं उसकी दृष्टि लेती थी, उसकी आंखें बदली बदली दिखती थी मुझे, सारे रास्ते उसकी आंखें ही दिखती। हमारे लिए तो हमारी माँ ही रोल मॉडल थी, क्योंकि आसपास सेंटर ही नहीं था, 60 किलोमीटर पे एक सेंटर था जहाँ हमारी माँ मुरली लेने जाती थी, 4 बसें बदल तो वही और कोई ब्रह्मा कुमारी हमारे गाँव में आ जाए वो तो होना ही नहीं था, और हम तो अभी वहीं पढ़ रहे थे आसपास ही, शहर में हम भी नहीं गए, तो हमारी माँ ही हमारे लिए रोल मॉडल थी। तो उसने तरीका अपनाया, 2-3 तरीके अपनाए मुझे, मेरे ऊपर जो उसने मेहनत की है शायद मैं कई जन्मों तक भी उसका ऋण ना उतार पाऊं, इतनी मेहनत की है उसने मेरे ऊपर। पर। उसने रात दिन एक कर दी कि मेरी, क्योंकि जो मेरी बड़ी बहन थी वो बोलती नहीं थी बाप के आगे तो बिल्कुल नहीं। उसने कहा इसको ब्रह्मा कुमारी बनाऊंगी, ये बाप के आगे बोलेगी नहीं, वो शादी के लिए बोलेगा, उसने बोली, और अगर इसको बना दिया तो ये बाप के कान खींच लेगी। मैं उसकी गोद में बैठ के उसके कान खींच लेती थी, बाल खींच लेती थी, सब काम कर लेती थी जो मार पिटाई बाप की, और वो चुपचाप सहन कर लेता था। बच्चा होता है ना, घोड़ा बन जाता था, मैं उसके ऊपर बैठ जाती थी, ये चीज ला के दो, मुझे दुकान में ला के खड़ा कर देता था, जिस कपड़े को हाथ लगाएगी ना वही से। तो वो दुकान वाले भी उनके दोस्त होते थे। अब छोटे बच्चे को क्या पता घूमते घूमते साड़ी को हाथ लगा दी, नहीं बेटा दोबारा राउंड लगा, फिर कहीं जाके शर्ट को हाथ लगाया तो वही शर्ट सिलवा दी। पिताजी ऐसे काम करते। तो माँ ने देखा कि अगर ये ज्ञान में चल पड़ी तो इसको कोई रोकने वाला नहीं। हमारे पिताजी ज्ञान के बिल्कुल ओपोजिट, मतलब माँ अगर रात है तो बाप दिन है, और माँ दिन है तो बाप रात। माँ भक्ति करती है, ज्ञान में आ गई, भोली भाली है, और बाप तेज तर्रार है, पॉलिटिक्स वाला आदमी है, लोगों के बीच बैठता है, उसको अपने बच्चे अच्छे बनाने हैं, पढ़ाने हैं, दुनिया में नाम चाहिए उसको, ओपोजिट संस्कार। तो बाप माँ को कहता है कि देखो तुम ज्ञान में चली सो चली, मेरे बच्चों को ज्ञान मत सिखा, और माँ को मेरे ऊपर अटेंशन है। दोनों बड़े भाई हैं, वो तो माँ का इतना नहीं, बाप के साथ बिजनेस में धंधे में है, मैं ही हूं ना फ्री पल्ला पकड़ के घूमने वाली। तो माँ ने एक तरीका तो ये अपनाया कि वो जब यहाँ बाबा से मिलने आई 78 में, मैं 14 साल, तो उसने बाबा को बोला, बाबा मेरी एक बेटी पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है, भाषण बहुत अच्छा करती है, किसी से डरती नहीं है, मैं उसे आपको अर्पित करके जा रही। तो बाबा हाथ में हाथ लेके मिलते, और मेरी जो मौसी थी ना उससे ज्यादा मेरी माँ से बात करते थे, क्योंकि माँ की लगन बड़ी जबरदस्त। उसने अपनी बीमारी ठीक कर ली, स्वभाव बदल लिया, बहुत उसमें परिवर्तन आया, योग योग रात दिन योग, रात को बैठे देखो योगी कर रहे। तो बाबा के हाथ में हाथ लेके बाबा को बोल दी, बाबा तो मुस्कुराते हैं, और वहां जाके मुझे कहती है कि मैं आपका दान। मैंने कहा कहाँ दान करके आई? बोला भगवान। हमने कहा भगवान धरती पे है क्या जो माँ भगवान को दान करके आई? हमारी माँ भोली भाली है, तो पता नहीं कोई होगा उसको माँ ने कह दिया होगा। हमने कहा माता जी आजकल बच्चे माँ बाप की बात मानते नहीं है, मैंने आपकी बात नहीं मानी तो आपका वचन झूठा हो जाएगा। बोली मैं जिसको कह के आई हूँ ना वो बड़ा पावरफुल है, कुछ छोड़ेगा नहीं, लेके ही जाएगा, कौन है कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं। फिर 8th क्लास में बहन जी मैंने हरियाणा टॉप किया, और हरियाणा की मुख्यमंत्री ने मुझे इनाम दिया, और फिर मदर टेरेसा को उसी समय नोबेल पुरस्कार मिला। अखबार में हमने पढ़ा, तो मैंने घर में चर्चा की कि मैं मदर टेरेसा की संस्था में जाऊं, मुझे बच्चों की, बीमारों की, गरीबों की सेवा करनी है। और हमारे पिताजी को ये बात तो जब मैं होश संभाला तब से कहती थी कि जो शादी करते हैं वो महामूर्ख होते वो कहता था बेटा मैंने मूर्खता की, तू मत तू मेरा सपोर्ट।
2: बहुत खूब दीदी, लेकिन अभी वक्त कहता है कि हमें यहाँ पे रुकना होगा। दोस्तों कहानी बहुत रोचक होता जा रहा है, 3 अलग दिशाओं में जाते हुए ये कहानी कहाँ मोड़ लेती है, और आखिर कौन जीतता है, क्या वो परमात्मा को दिया हुआ वचन साबित होता है? तो चलिए अगली कड़ी में हम सुनेंगे आगे की कहानी को। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। जीना इसी का नाम है कार्यक्रम।

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: लेकिन उसे कायम कैसे रखा जाए। तो मान लीजिए हमारे साथ आज कौन है, गेस करिए। जी हाँ बिल्कुल, हितेश जी हैं। बहुत दिनों के बाद हम सभी के साथ रूबरू होने जा रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप एक ऑथर है, एक इंजीनियर है, लाइफ कोच भी है और रेडियो पर भी बात करते हैं, रेडियो जॉकी भी बोल सकते हैं हम, है ना। जी तो हमारे गेस्ट आज हितेश जी हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे हम डिग्निटी के बारे में, सेल्फ रिस्पेक्ट, इसे अलग सिनोनिम्स हम कह सकते हैं। तो आज का विषय लेकिन डिग्निटी है, तो डिग्निटी को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे कि क्या है गरिमा, डिग्निटी?
1: ये हिंदी में कितना सुंदर वर्ड है कि बहुत बार सुनते हैं ना हम कि अरे इस बात की गरिमा तो रखो, है ना, डिग्निटी तो रखो। सच में बहुत ही महान शब्द है असली में, और मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी लाइफ का गोल होना चाहिए। ऐसी लाइफ होनी चाहिए कि कोई भी कहे कि यार ये इंसान में ना गरिमा बहुत है, डिग्निटी बहुत है। लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि कुछ लोग बहुत जल्दी बोल देते हैं कि अरे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आई थी, मेरी डिग्निटी पर बात आई थी, तो मुझे तो ये करना ही था, मुझे तो ये बोलना ही था। वो बोलते हैं ना कि एक थिन लाइन का डिफरेंस होता है बिटवीन ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो कभी कभी वो ईगो होती है, कभी कभी वो रिस्पेक्ट होती है। बट लाइफ में हमारी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनकॉम्प्रोमाइज होनी चाहिए, मतलब कि ये तो मैं नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, उसे ही डिग्निटी कहा जाता है। फिर वो सर्कमस्टांसेस कैसे भी हो, अब ध्यान से देखोगे तो बहुत गहरा है ये, लेकिन हम अपनी लाइफ में ज़्यादातर चीज़ें लोगों को खुश करने के लिए करते हैं, पीपल प्लीजिंग में बहुत है, और वो अनकॉन्शियस है, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई घर में रहते हैं, उनको डर लगता है कि मैं अपनी बात रखूं या नहीं रखूं। और जब हम अपनी बात नहीं रखते ना, तो वो जो हमारी डिग्निटी है, वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, गरिमा है, वो कम होती जाती है, सेल्फ इस्टीम कम होती है। मतलब अपने बारे में हम अच्छा फील करना बंद कर देते हैं, चाहे लोगों की गुड बुक्स में आ गए कि अरे ये तो कुछ नहीं बोलते, ये तो बहुत शरीफ हैं जी, ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो कुछ नहीं कहते, सबसे मिलकर चलते हैं, ये सब तो करना ही है। बट जिस मोमेंट पे मैंने देखा कि ये सही चीज़ नहीं है, तो फिर ये नहीं देखना मुझे कि वो मुझसे सीनियर कितने हैं, पोस्ट क्या है, मुझे कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा, मैं कुछ बात रखूंगा तो लड़ाई तो नहीं हो जाएगी, आर्ग्यूमेंट्स तो नहीं हो जाएंगे। वो फिर अपनी गरिमा के खिलाफ जाना है, डिग्निटी के खिलाफ जाना है। इसका कुछ हार्डकोर रूल नहीं है, बट जिस मोमेंट पे आपको लगे कि यार ये तो ठीक नहीं है, एग्जाम्पल आप घर में कुछ गलत होता हुआ देखें, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, चाहे आपके साथ नहीं, चाहे किसी और के साथ, चाहे आप ये देखें कि किसी ना किसी तरीके का गलत बातें आ रही हैं, चाहे वो महिला को लेकर हो, चाहे वो पुरानी जो कहते हैं कुरीतियों को लेकर हो, बहुत सी चीज़ें हैं, तो फिर मुझे स्टैंड लेना है, मुझे बोलना प्यार से है, लेकिन उसके लिए खड़ा होना बहुत जरूरी है।
0: ओके,
1: इसे ही डिग्निटी कहेंगे।
0: आपने कहा कि पीपल प्लीजिंग हम करते हैं, कई बार कंपनीज में हो या फिर अपने कार्यक्षेत्र में हो, हम कहते हैं कि अगर इनके साथ बना के नहीं रखा तो हमें ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगे। तो कई बार हम अपने ही एथिक्स के खिलाफ जा करके उनके साथ तालमेल बना के रखते हैं। तो क्या थिन लाइन डिफरेंस है एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज आप अपने एथिक्स के साथ कर रहे हैं डिग्निटी के साथ, कैसे पता चलेगा?
1: ये मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, इस बात का अटेंशन रखता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा, मैं जब जॉब करता था फिर मैं इस लाइन में आया, पर मैं अभी भी एक चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि वो लाइफ छोड़कर आया हूँ, ऐसा तो नहीं कि यहाँ भी मैं पीपल प्लीजिंग में चला जाऊँ, या जैसे आपने कहा कि इनके साथ बना कर रखोगे तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, गुड बुक्स में रहोगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन देने वाला वो इंसान नहीं होता है, जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, देने वाला भाग्य है हमारा, भगवान कह सकते हैं,

0: तो वो बोलते हैं ना, जो मेरे भाग्य में है वो कोई छीन नहीं सकता है.
1: एब्सोल्युटली, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जिनके साथ बना के रख रहे हो वही आपको आकर के अपॉर्चुनिटीज दें. अगर आपकी नीयत अच्छा है तो
0: और ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. पर हाँ, वही कि एक हमें डर रहता है कि अरे यार ऐसे तो नहीं हो जाएगा, वैसे तो नहीं हो जाएगा.
1: पर तो, जी बिल्कुल,
0: मन खाता है. जो बोलते हैं कि एक बहुत फेमस बुक है, टॉप 5 रेग्रेट्स ऑफ द डाइंग. तो वो एक नर्स थी, तो उनका काम था कि वो उन लोगों को की सेवा करती थी जो जिनके पास लास्ट जीवन के 6 महीने 1 साल हैं, किसी को कैंसर है, ऐसी बीमारियां हैं. तो वो उनसे पूछती थी आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रेग्रेट क्या है. वो वैसे ही पूछती थी, बाद में उन्होंने बुक बनाई. नंबर 1 रेग्रेट लोगों का यही होता है कि वो पीपल प्लीजिंग में रहे. उन्होंने वो नहीं किया जो वो करना चाहते थे. और आप भी देखिएगा ध्यान से कि ज़्यादातर फ्रस्ट्रेशन इसी बात की होती है कि मैं वो नहीं कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए. अब उसमें बंधन खुद के होते हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, या जैसे मैंने कहा कि जब हम स्टैंड लेते हैं तो क्रिटिसिज्म भी सुनने को मिल सकता है. आपको रूट भी समझ सकते हैं, आपको ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे आजकल ये नई जनरेशन सुनती है ना, आजकल के बच्चे तो बहुत बदतमीज हैं. बदतमीज कौन कह रहा है? वो ये कह रहे हैं कि आप मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहे हो. आप किसी के हिसाब से नहीं चलोगे, वो आपको सीधा डिक्लेयर ही करेंगे, सर्टिफिकेट दे देंगे कि ये तो रूट है, तो बदतमीज है, ये तो सुनते नहीं है. बट मैं वो क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्लियर होना चाहिए कि मुझे स्टैंड लेना है सही चीज को लेकर. तो बस वही गरिमा, वही डिग्निटी की बात आ जाती है. लोगों को खुश नहीं करना है. अब जैसे ये लेटेस्ट प्रोटेस्ट हुए, तो सोचिए कि बहुत से बच्चे नहीं गए, है ना, बहुत से बच्चे गए. अब सही गलत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट जिनको लगा कि इनफ इज इनफ, आई हैव टू टेक अ स्टैंड, तो फिर किसी को लाठी भी पड़ी है, किसी ने अनकंफर्टेबल हुए हैं कुछ दिन. बट वो गरिमा की बात है ना कि इट्स ओके, थोड़ा अनकंफर्ट सहन कर लेंगे, थोड़ा पिट लेंगे, कोई बात नहीं. बट आई हैव टू टेक अ स्टैंड, क्योंकि ये उसके खिलाफ है जो मैं नहीं अलाइन नहीं कर रहा हूँ जिन चीज़ों को लेकर. तो कुछ तो करना पड़ेगा ना.
1: ओके जी, बिल्कुल. तो अपने आप से सवाल पूछना है कि जो आप कर रहे हैं उसमें आपकी इंटेंशंस क्या है, क्या आप उसमें कंफर्टेबल हैं, नहीं है, कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं. और कुछ अगर सहन करना पड़ता भी है तो अच्छे के लिए कर रहे हैं.
0: हाँ.
1: गरिमा के साथ तो भी आप अपने आप से ही सवाल कर सकते हैं.
0: जी
1: ओके.
0: अब ये वही मतलब, ये मतलब नहीं है कि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में ही चलूंगा जो दुनिया कह रही है, इसका ये मतलब नहीं है. इससे फर्क नहीं पड़ता है. जरूरी नहीं है कि लोग लेफ्ट में जा रहे हैं और आप राइट में जाओ तो आप सोचो कि मैं तो रेबल हूं, मैं तो सही कर रहा हूं. नहीं, हो सकता है जो लोग जा रहे हो वो डायरेक्शन भी सही हो, बट आप किस इंटेंट से वो कर रहे हो. सभी लोग कॉलेज जाते हैं, आप कहो कि नहीं मैं तो खुद पढ़ाई करूंगा, कुछ लोग होते हैं ना. इसका ये मतलब नहीं कि वो सही है. हो सकता है मैं कॉलेज गया हूं पर किस इंटेंशन से गया हूं, मैं क्या सीखने आया हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, वो मैटर करता है कि आपकी इंटेंशन क्या है कुछ भी करने के लिए.
1: जी. और हितेश जी, आज फ्रेंडशिप डे है तो कुछ क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास. कहते हैं कि दोस्त अच्छे हों लेकिन गलत आदतें हो, जैसे स्मोकिंग ड्रिंकिंग है. आज भी हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुन रहे थे नशा मुक्ति के अभियान के तहत, तो वो छोड़ने को तैयार नहीं हो वो आदतें, तो हमारे साथ बहुत अच्छे हो लेकिन हमें भी प्रेशर करते हो, फिर भी कहते हैं कि संग का रंग लगता ही है. तो ऐसे दोस्तों के संग में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, अपने डिग्निटी को मेंटेन करते हुए कैसे हम मना कर सकते हैं उनको.
0: पता है, दोस्ती कहें, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी फ्रेंडशिप डे.
1: बिल्कुल, आपको भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे और हमारे सभी लिसनर्स को भी.
0: जी, असली में दोस्ती का मतलब क्या होता है, देखिए बहुत इजी होता है जब सब कुछ अच्छा अच्छा हो ना. तो सब खुश रहते हैं, सब अच्छे दोस्त हैं. पता तब चलता है जब कोई सिचुएशन आती है, है ना.
1: राइट.
0: एंड ये एक सिचुएशन हो सकती है कि आप थोड़े अलग डायरेक्शन में हैं दुनिया से. मान लीजिए आजकल तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक नॉर्मल थिंग कह सकते हैं जो है ना लोगों में. तो आप कहो कि मैं आई डोंट स्मोक, मैं कुछ नहीं करता हूँ, तो आपको प्रेशराइज किया जाएगा, है ना. बट रियल फ्रेंडशिप ये होती है कि वो आपको एक्सेप्ट करे. मतलब मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में था, जब मैं ऑफिस में था, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है बचपन का ही, है ना. तो मुझे याद है कि जब मैंने लाइफ में कोई भी डिसीजन लिया है, मुझे ये करना है ये करना है, तो वो एक्सेप्टेंस मिलता है. असली फ्रेंड्स वो हैं. कंडीशनल फ्रेंडशिप होगी तो फिर जब तक आप अगेन उनकी गुड बुक्स में हो तो वेल एंड गुड. जब से आपने कहा कि नहीं, आपने अपनी गरिमा के लिए सवाल उठाया, स्टैंड लिया, तो वो आपको जज करेंगे, आपको कमेंट करेंगे, आपको पुश भी करेंगे. तो फिर वो आपको समझना है कि ज़्यादा ज़रूरी क्या है. दोस्ती हमें लगता है, लेकिन वही बात है कि कुछ भी आप देखें, आपके जीवन का अनुभव होगा, हमेशा चलनी बहुत मुश्किल है अगर मैं खुद से संतुष्ट नहीं हूँ तो, है ना. खुद मैं स्टैंड नहीं लेता हूँ, मेरी डिग्निटी नहीं है, तो फिर दोस्ती भी लाइफ टाइम चलनी मुश्किल है, है ना. तो इसलिए अगर ऐसा है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं आपको या पुश करते हैं, तो इट्स बेटर कि धीरे धीरे मैं अपना एक हल्का एक सेफ डिस्टेंस बना के रखूं. ये भी फिर सेल्फ रिस्पेक्ट में आता है, गरिमा में आता है कि मुझे मेरा रूटीन, मेरी क्या नीड्स है, मेरी उन्नति के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है.
1: ओके.
0: उससे अलाइन होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ को. कोई भी चीज़ अलाइन नहीं होती, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हों चाहे रिलेटिव्स हों, इंटेलेक्चुअली एनर्जी वाइज फिर सेफ डिस्टेंस बना कर रखना बहुत ज़रूरी है. इसका ये मतलब नहीं आप हेट करते हो उनको, आप उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, नहीं. बट मैं अपने लिए एक हेल्दी डिस्टेंस बना कर रखूँगा, वो मैं करूँगा.
1: ओके. क्योंकि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, गरिमा के लिए, और जो मेरे सेहत के लिए अच्छा है, सेल्फ लव के लिए अच्छा है.
0: yes.
1: तो यहाँ पर एक बात मैं सेल्फ लव से रिलेटेड पूछना चाहूँगी आपको, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट, गरिमा को बना के रखने के लिए आजकल सेल्फ लव इतना हम कर लेते हैं कई बार कि हम सेल्फिश बन जाते हैं. तो इसमें कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं?
0: ओके. ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने शुरुआत की थी कि अब एक असमंजस होता है, स्पेशली जब एक क्लोज रिलेशन्स होते हैं जिनसे हमें प्यार होता है. तो आपने सुना भी होगा, बहुत बार कहते हैं कि जहाँ प्यार होता है वहाँ फिर सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, है ना. मतलब वो इंसान, वो रिश्ता आपके लिए कितना ज़रूरी है, तो फिर आपको कई बार आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है. ईगो तो बिल्कुल ख़त्म करनी होती है ना. पता है आपको उनको मेरी ज़रूरत है, तो फिर आप, हो सकता है कुछ आपने रूल्स बनाए हैं. एग्जांपल, मान लीजिए आप जल्दी सो जाते हैं पर आपके किसी क्लोज वन को नीड है आपकी, तो ऐसा नहीं कि नहीं नहीं मैं तो टाइम से सो जाता हूँ, उस समय उस इंसान को ज़रूरत है मेरी, है ना. तो उस समय उस रिश्ते की वैल्यू हमें करनी है ना. तो उसमें फिर डिग्निटी की बात सिर्फ ये आती है कि अगेन कुछ चीज़ें हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, उसके अलावा यू नो फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है. मतलब एक पिकासो जो बहुत फेमस पेंटर रहे, उन्होंने एक लाइन बोली थी कि लर्न रूल्स लाइक अ प्रो, सब रूल सीख लीजिए एंड ब्रेक लाइक एन आर्टिस्ट. उन्होंने सब रूल सीखे, लेकिन आर्टिस्ट क्या होता है, जो रूल पता है उसे क्या है, पर वो ब्रेक करता है, कुछ चेंज करता है. तो हमें रूल सब पता होने चाहिए, बट कुछ रूल्स ब्रेकेबल हैं, है ना
1: जी.
0: तो वो किस लिए कर रहे हैं हम, ताकि उस रिश्ते को मैं बना कर रखूं.
1: क्योंकि ऐसा लाइफ का कोई रूल नहीं है, कुछ कह सकते हैं कि ये रूल सही है ये गलत है.
0: बिल्कुल सही बोला आपने. ये कुछ नोटबुक नहीं है कि हमें दे दी रूल बुक की ये सही है ये गलत है.
1: संविधान के अनुसार,
0: संविधान के
1: वो देश में है, लेकिन अपने लाइफ में तो कुछ गलत कुछ सही नहीं होता, लेकिन आपकी इंटेंशन सही होना चाहिए, किसी और को आप हार्म ना पहुंचे.
0: अब उस केस में आप ये कह सकते हो कि इस रिश्ते की गरिमा क्या कहती है, है ना. तो रिश्ते की गरिमा के लिए हो सकता है मुझे अपनी गरिमा पर कुछ लेवल तक सेक्रीफाइस करना पड़े. अगेन वही बात कि कुछ लेवल तक ये
1: फ्लेक्सिबिलिटी हो,
0: फ्लेक्सिबिलिटी हो, लेकिन कुछ रूल्स कभी नहीं टूटने चाहिए, है ना
1: जी।
0: तो वो बात का बस ध्यान रखना है
1: जी। और यहाँ पर दोस्ती पर एक और सवाल, अगर दोस्तों को लगता है कि मिलते रहना ही फ्रेंडशिप है और आप जिम्मेदारी के कारण नहीं मिल पाते हो, क्या फोन पे अच्छी दोस्ती रह सकती है जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस रिलेशनशिप कई बार तो क्या कहेंगे आप?
0: मैं तो बहुत बार बोलता हूँ, मैं इस बात का बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि फिजिकल कनेक्टेडनेस रहना बहुत बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इमोशनल कनेक्टेड रहना। इसका मतलब ये है कि मैं सामने वाले इंसान के इमोशंस को समझ पाऊँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा बेस्ट फ्रेंड, बचपन का बेस्ट फ्रेंड, वो कभी कभी मुझे रात को 2 बजे कॉल करता है और मैं 9:30 सोने वाला, बट जब भी वो मुझे रात को कॉल करता है ना तो मैं उठाता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कुछ तो इमरजेंसी है, तभी उठाता हूँ, है ना। अगर मैं शांत नहीं हूँ, अगर मैं हील्ड नहीं हूँ, तो मैं यही सोचूंगा देखो मतलब के टाइम पे कॉल करता है और इसको पता नहीं कितने बजे कॉल करना चाहिए, बट इमोशनली मुझे पता है कि मैं कनेक्टेड हूँ उस इंसान से, है ना। तो मैं बहुत बार ये बात बोलता हूँ कि चार दीवानी में रहना, या जैसे कहा कि मिलते रहना, फोन पे बात करते रहना, ज़्यादा बात करना, ये फ्रेंडशिप की चेकिंग नहीं होती है। चेकिंग वही बात कि एक इंसान की चेकिंग होती है कि मुसीबत के समय में, क्राइसिस में वो क्या कर रहा है ना, वो मैटर करता है, बाकी तो इंडिपेंडेंट होकर रहना चाहिए
1: जी। बिल्कुल।
0: मतलब मुझे अभी लेटेस्ट कुछ ऐसा आया मेरे सामने कि किसी भाई ने अपने बहन को बोला प्रॉपर्टी इश्यूज एंड ऑल, तो ही सेड कि यू नो अब प्रॉपर्टी पे सबका इक्वल हक होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, बट इलॉजिकल माइंड क्या करता है, ग्रीड क्या करवा देती है, तो वो कहते कि आपको भाई चाहिए या प्रॉपर्टी चाहिए। जैसी मैंने ये लाइन सुनी ना, मैंने सोचा भाई की डेफिनेशन क्या हुई फिर। बहन को जरूरत है, वो कह रहे भाई चाहिए, मतलब भाई मतलब ये कि रिश्तों त्योहारों में आओ, राखी बांधो, खुश रहो, मस्ती करो। अच्छा जब ये क्राइसिस है तब तो क्या डेफिनेशन हुई? ये सब कुछ नहीं होता है। तो ये फ्रेंडशिप क्या होती है? अगर मैं उस इंसान के भावनाओं को समझकर, मैं कंपैशनेट होकर, ये नहीं कि जैसे रिश्तों में होता है, हस्बैंड वाइफ में होता है, फ्रेंडशिप मतलब कोई भी रिश्ता है ना, एक ने कुछ कहा, सास ने बहू को कहा, बहू ने सास को कहा, एक वो दुखी है, हम 3 बातें और ऐड कर देते हैं, तो क्या फायदा हुआ चार दीवारी में एक छत के नीचे रहने का? इससे अच्छा दूर रहो लेकिन इमोशनली स्टेबल रहो, वो बेटर है।
1: राइट।
0: तो फिर वो बस ध्यान रखना है कि फिजिकल कनेक्टेड से कुछ फर्क नहीं पड़ता,
1: क्योंकि सबके जीवन अलग अलग दिशाओं में है, सबके लाइफ अलग है, इंटरफेरेंस नहीं कर सकता अच्छा है कि आप मिलो नहीं मिलो लेकिन दोस्ती कायम रहे।
0: यस
1: जी। एक और सवाल दोस्ती से ही रिलेटेड है, आज फ्रेंडशिप डे भी है, तो अगर किसी फ्रेंड ने पास्ट में कुछ गलत बोला हो आपके लिए और अलग मतलब दूसरे लोगों के सामने, और वो इस बात के लिए सॉरी भी है, उन्हें ये रियलाइज भी है, लेकिन आपको डर है कि कहीं वो फिर से ये रिपीट ना कर दे दोबारा, तो उन्हें क्षमा कर देना चाहिए या नहीं?
0: देखिए जैसे बोलते हैं कि सॉरी कहना विदाउट चेंजिंग बिहेवियर इज कॉल्ड एज मैनिपुलेशन। मतलब कि अब आप श्योर तो नहीं हो कि उन्होंने अपने व्यवहार को बदला है या नहीं बदला है, है ना। हम क्या कर सकते हैं, हम उन्हें माफ कर सकते हैं, लेकिन माफ करने के साथ साथ ये ध्यान रखना है कि मैं उस पोजीशन में अभी नहीं आऊं कि वो चीज फिर से हो जाए। इट कैन बी व्हाटएवर, है ना, जो
1: हमें ध्यान रखना
0: है, हमें ध्यान रखना है,
1: अपने मिस्टेक से भी सीख लेना चाहिए।
0: एग्जैक्टली। तो अपनी मिस्टेक से सीखना, मैं इसको डिग्निटी से कनेक्ट करूंगा और यही अपनी बाउंड्री से कनेक्ट करूंगा, विच मीन्स कि अपने आप को फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करके रखना है
1: और डिटैच भी होकर रहना है.
0: इमोशनली मतलब अपने आप को बचा कर रखना है कि मतलब कि हम क्या करते हैं ना, हम सिर्फ एक इंसान की बात नहीं होती है, किसी ने गलत किया, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि ये इंसान ने ऐसा किया, फिर आगे किसी इंसान से कनेक्शन में आते हैं और सेम पैटर्न रिपीट करते रहते हैं. ये नहीं सीखते आज के समय में, दुनिया में सबसे बड़ा जो सुनने को आता है, मैं बहुत अटैच हो गई और वो मेरे लिए आसान नहीं है. हम लोग बदलते हैं लेकिन लेसन नहीं सीखते हैं.
1: तब तक वो एग्जाम अपने सामने
0: आता रहता है
1: जब तक सीखते नहीं हो.
0: तो मतलब कहने की बात यह कि माफ तो सबको करना है. इसका मतलब क्या है, मैं एक छोटी सी स्टोरी से आपको बताता हूँ. एक बार एक बुद्धिस्ट मॉन्क्स कहीं जा रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है कहानी. तो एक महिला, एक लेडी थी, तो उनसे नदी पार नहीं हो रही थी. तो उन सब मॉन्क्स में से एक मॉन्क ने क्या किया, उनको अपने कंधे पर बिठाया और नदी पार करवा दी. तो जो बाकी मॉन्क्स थे ना, बहुत गुस्से में थे कि तुम एक फीमेल को कैसे हाथ लगा सकते हो. तो वो मोनेस्ट्री में गए और अपने सबको, मतलब वो गुस्सा करते रहे, बोलते रहे, अपने सीनियर को भी बताया कि तुमने उसको कैसे उठाया. तो उस मॉन्क ने बड़ी अच्छी बात बोली. उन्होंने बोला कि मैं तो उस लेडी को उठाकर वहां छोड़ भी आया, लेकिन तुमने अभी तक अपने मन में उसको बिठा रखा है.
1: सही बात है. जी.
0: तो गलती हुई, लेट गो किया, लेसन सीखा, उसको इम्प्लीमेंट किया, उस नेगेटिविटी को कैरी करके नहीं रखा है. है ना, ये बहुत ज़रूरी है कि ये नहीं हो कि वो इंसान देखते ही आपको सिर्फ उनकी वो गलती दिखाई दे रही हो. ठीक है, आई एम जस्ट नॉट माई मिस्टेक, द अदर पर्सन इज जस्ट नॉट देयर मिस्टेक. ठीक है, चाहे गलती छोटी हो बड़ी हो, पर वो इंसान उस गलती से बियॉन्ड भी कुछ है. सीखा होगा उसने, नहीं सीखा हो तो भी कोई बात नहीं, मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करके तो रखना ही है, ये मेरा लेसन है.
1: बिल्कुल, क्योंकि हम सब भी गलतियां करते हैं और मौका देना चाहिए, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करना है.
0: Exactly. इसलिए मैं एक लाइन बहुत बोलता हूँ और लोग हंसते हैं इस बात पर, मैं बोलता हूँ कि आप ये प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं भी करता हूँ, कि मैं तो चाहता ही नहीं कोई मुझसे प्यार से बात करे. तो लोग हंसते हैं कि तो ये क्या अटपटी सी बात है. तो मैं बोलता हूँ, हम तो बहुत बार बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, पर जब हम ये बोलते हैं ना, तो 20-30% एक्सपेक्टेशन रहती है. तो मैं बोलता हूँ नेगेटिव में चलो, कि मैं चाहता ही नहीं कोई मुझसे प्यार से बात करे. क्यों नहीं चाहता, क्योंकि मैं खुद को प्यार देता हूँ ना. और यही गरिमा की बात आ गई, कि आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, कोई मेरी इंसल्ट नहीं कर सकता. मैं चाह ही नहीं रहा हूं कि वो मुझे प्यार करे. और जब ये चाहना खत्म हो गई, एंड एक्चुअली बात ये है कि जब हम खुद को इतना प्यार देते हैं, खुद से प्यार से बात करते, खुद को एक कंपैशनेट करुणामयी लेंस से देखते हैं, तो फिर हमें चाहना नहीं होती है कि दूसरे मुझे रिस्पेक्ट करें.
1: राइट.
0: तो ना तो मेरी कोई डिसरिस्पेक्ट कर सकता है, और ना ही मेरी कोई प्रेज, ना ही कोई मुझे रिस्पेक्ट दे सकता है. ऐसी कोई चीज होती नहीं है कि बोलते हैं ना, अरे रिस्पेक्ट तो दो. रिस्पेक्ट देने की चीज थोड़ी होती है, या तो आती है या नहीं आती है. तो रिस्पेक्ट ना मुझे किसी से मांगनी है, क्योंकि कोई दे नहीं सकता है. वो शैलो है, वो खोखलापन है. मुझे मिल भी जाएगी तो उससे क्या फर्क पड़ता है. सिमिलरली अगर कोई 50 लोगों के बीच में भी मुझे गलत बोल रहा है, तो मैं तो एक ही चीज प्रैक्टिस करता हूँ कि टेक डिसरिस्पेक्ट एज इन्फॉर्मेशन, कि वो एक इन्फॉर्मेशन है, जो भी उन्होंने कहा है वो जरूरी नहीं है सच है.
1: ओके.
0: है ना, तो बस ये बातें हैं.
1: बिल्कुल. तो इस बात जरूरी है जो बात आपने कही, कि मैं चाहता ही नहीं हूँ कोई मुझे
0: प्यार से बात करे
1: मेरे से,
0: क्योंकि मैं खुद को प्यार से बात करता.
1: हाँ, तो ये सेल्फ लव को याद करेंगे.
0: I give myself the love I am seeking.
1: ओके, ठीक है. तो अपने आप से प्यार करें आप. अगर अपने आप से प्यार करते हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं 94-14-15-14-15 इस नंबर पर. आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर. जब जैसे आपने कहा कि कोई आपकी आलोचना करता है या आपका डिसरिस्पेक्ट करता है, तो आप उसे एज ए इन्फॉर्मेशन लेते हैं. है ना, तो क्या हम अनजाने में भी किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं कभी कभी? ऐसा कब कब होता है और हमें कैसे पता चलेगा कि हम उनकी गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं या उनके डिस

0: पे कर रहे हैं?
1: बहुत बार होता है, एग्जांपल मैं आपको अपने पिछले कुछ दिनों से दूं, तो मैं टूर पर गया था, तो कई जगह ऐसा था कि हम लोग कार लेकर गए थे यहाँ से, और महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ गए थे इतनी दूर, तो कुछ जगह पर मुझे खुद ड्राइव करके जाना था, है ना। तो कई जगह क्या होता है कि गाड़ी के पीछे देखते हैं, कहते अच्छा तू प्रोग्राम कौन करवाएगा, सेशन कौन करवाएंगे। तो मैं बोलता था कि मैं ही करूँगा। तो लोगों के अंदर एक चीज बैठी हुई है, फॉर एग्जांपल हम बोल देते हैं अरे ये तो ड्राइवर है, लेबल्स, ये तो ड्राइवर है, ये तो
0: अगर स्पीकर है तो वो बैठ के आएंगे और ड्राइव करेंगे।
1: हाँ, ये कहाँ की बात हुई, है ना। तो अब देखिए, मैं अगर मेरी रिस्पेक्ट अगर दूसरों पर निर्भर है तो मैं कहूंगा कि मैं क्यों ड्राइव करूं, मुझे एक ड्राइवर चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, अननेसेसरी। पर मुझे पता है ना मैं कौन हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, तो फिर वो लाइफ इजी हो जाती है बहुत। सिमिलरली हम कितने लेबल्स लगाते हैं अनकॉन्शियसली, अरे ये तो फीमेल है, ये तो सामान नहीं उठा सकते, है ना, अरे ये तो
0: मेडल्स ले सकते हैं इंडिया के लिए।
1: आज ही आया ना मेडल,
0: आज ही आया है और आ भी रहा है। बॉक्सिंग में तो 5 फीमेल्स में 4 फीमेल्स को गोल्ड मिला है।
1: ओ, वाओ।
0: और 1 सिल्वर मिला है, मतलब मेडल्स ही मेडल्स मिले हैं।
1: हाँ, देखिए कई बार ठीक होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि चलो फीमेल्स को सीट देनी चाहिए, है ना, बस में ट्रेन में, लेकिन कई बार अननेसेसरी एक लेबल लगा लेते हैं कि फीमेल मतलब कमजोर।
0: हाँ,
1: तो ये भी तो उसकी गरिमा के खिलाफ हुआ ना, हम उसको एक कॉन्शियसनेस नहीं देख रहे, ये नहीं देख रहे कि उनकी मेरी चेतना सेम है, हम उनको एज अ जेंडर देख रहे हैं।
0: कई बार उनकी शारीरिक क्षमताएं कम होती है कुछ कारणों के वजह से, लेकिन आत्मा, जैसे आपने कहा, चेतना तो
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल एक ही है, शक्ति भी चेतना में एक ही है, एक जैसे ही है, 8 शक्ति उनमें भी है, 8 शक्ति
1: बिल्कुल
0: आत्मा में भी है।
1: तो जैसे हम फिर बोल देते हैं कि अरे ये तो मेड है, है ना, हाउस हेल्प है, ये तो सिक्योरिटी गार्ड है, ये तो ऐसा, मतलब बहुत
0: इंसान को हम इंसान नहीं समझते,
1: इंसान नहीं समझते, सीनियर जूनियर लेबल्स, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं, तो ये भी तो डिसरिस्पेक्ट करना हुआ,
0: जज करते हैं, हम
1: जज करते हैं, और हमारा माइंड बड़ा तेज है, वो तुरंत कैलकुलेट करता रहता है। अच्छा ये सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ये रिसेप्शनिस्ट हैं, इनको तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, ये नर्स है,
0: हैं, उनको भी बोल देते हैं,
1: वेट्रेस हैं, ये नर्सेज हैं, वहाँ ये डिसरिस्पेक्ट है, उनको अपने बराबर समझना।
0: वो भी किसी फैमिली से आते हैं, किसके भाई बहन है ना, किसके इंसान पति, पत्नी, इंसान है, किसी के माँ बाप है,
1: हाँ, इंसान है, तो इंसान तो बराबर है ना। तो मतलब अपने व्यवहार में ऐसा लाना, जैसे स्पेशली आप एक्स्ट्रा एफर्ट कीजिए चाहे शुरू में, पर आप किसी भी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो वर्ग में आपसे नीचे लेवल पे हैं, आपके सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जैसे हमने ये सब बातें की, हाउस हेल्प्स, आप उनसे प्यार से बात कीजिए,
0: क्योंकि उनके बिना तो आपका लाइफ है ही नहीं, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब नहीं होती या वो नहीं होते तो आप सेफ नहीं रहते।
1: yes.
0: तो आप उनको थैंक यू बोल सकते हैं, जैसे आपने कहा, yes. कि प्यार से बात करें, yes.
1: आप उनको आज हैप्पी फ्रेंडशिप डे
0: भी विश कर सकते हैं, आप अपनी गरिमा के लिए बढ़ाने के लिए उनसे बात कर सकते हैं प्यार से,
1: बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा, और ये दिल से ना, हो सकता है शुरू में एफर्ट लगे बाहर से, पर धीरे धीरे वो दिल से हो जाएगा,
0: बिल्कुल। तो कार्यस्थल और स्कूल में भी हम ऐसा ही कर सकते हैं अपने बिहेवियर्स में,
1: yes.
0: ताकि टीचर लोग सम्मानित महसूस,
1: yes. करें। टीचर हैं तो बच्चों के साथ, बच्चे हैं टीचर के साथ, अपने ऑफिस में हैं वहाँ, तो मतलब ये तो एक ऐसी चीज है कि हम लाइफ में हर जगह यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट ये भी सोचना कि मतलब और डीप में जाए तो इवन ये भी थॉट आया ना कि यार ये ऐसे क्यों है,
0: जी
1: ये भी डिसरिस्पेक्ट है,
0: तो आप -1 में चले गए,
1: -1 में चले गए, कार्मिक बन गया, आपने नेगेटिव थॉट क्रिएट किया है उनका,
0: मतलब दुनिया में बहुत सारे नेगेटिविटी है, लेकिन पॉजिटिव ढूंढने में भी बहुत सारी चीजें हमारे पास है जो yes. कर सकते हैं अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए, अपने गरिमा को सही
1: yes.
0: दिशा में रखने
1: मतलब के लिए. असली में गरिमा का मतलब ये हुआ कि सामने वाला व्यक्ति जैसा भी हो, आपको बिल्कुल उनकी बात समझ नहीं आ रही, अच्छी नहीं लग रही, आपके आइडियोलॉजी के बिल्कुल विपरीत है, फिर भी उनको रिस्पेक्ट करना. क्योंकि एक्चुअली में उस एनवायरनमेंट में अगर हम भी होते ना, तो हो सकता है कि हमारी भी सोशल कंडीशनिंग वैसी ही होती. तो मतलब उनको चांस देना ठीक होने के लिए, और ठीक होने के लिए पहले मुझे उनको एक गरिमा से देखना पड़ेगा, तभी आप कुछ बोलेंगे, कुछ समझाएंगे तो वो समझेंगे, नहीं तो वो एग्रेशन में, गुस्से में, रिजेक्शन में वो इंसान बदलेंगे नहीं, ये पक्का है.
0: राइट ओके. तो हमें प्यार से बात करनी है. और लेकिन मान लीजिए हम ऊपर ऊपर से प्यार से बात कर रहे हैं, बट हम अंदर में कुछ और सोच रहे हैं, तो ऐसा क्या अलाइनमेंट होनी चाहिए ताकि हम इंसानी टोटली मतलब रिस्पेक्टफुल रहें, सोच भी अच्छे रहें अच्छे तरीके से, और बिहेवियर में भी वो झलकना ज़रूरी है. तो क्या चीज, कौन कौन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें?
1: एक ही चीज़ की चेकिंग करनी है. जब आप आराम से जब बैठें तो जस्ट चेक करें कि मेरे मन में, मेरे दिल में प्यार का फ्लो, एनर्जी का फ्लो कहीं ब्लॉक्ड तो नहीं है. मतलब जब मैं ये सोच रहा हूँ कि
0: कंडीशनल तो नहीं है, ब्लॉक
1: कंडीशनल तो नहीं है. ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, वो कहते हैं कि मैं सबको एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन ना ये एक इंसान मेरी लाइफ में है, नहीं होता.
0: और खुद को भी नहीं करते हम एक्सेप्टेंस.
1: खुद पर, सही बोला आपने, खुद पर तो ध्यान ही नहीं जाता है. मतलब जैसे एक वो एक्सपेरिमेंट करवाते हैं कि जैसे अभी भी हम अपने श्रोताओं से करवा सकते हैं कि आप एक लिस्ट बनाइए जो आपको सबसे ज्यादा प्यारी है. वो इंसान हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं,
0: खुद की लिस्ट.
1: हाँ मतलब अब आप जो सुन रहे हैं तो पहले बच्चे आए होंगे, कुछ आया होगा, लेकिन खुद का नाम नहीं आया होगा. तो खुद सेल्फ लव तो है ही नहीं.
0: अगर खुद की गरिमा खुद नहीं रखेंगे तो दूसरे भी नहीं,
1: दूसरे रख ही नहीं सकते हैं, है ना?
0: राइट.
1: तो आप क्या पूछ रहे थे?
0: जी बिल्कुल, मतलब कैसे अलाइनमेंट की क्या सूत्र है, कौन सी ऐसे 3-4 बातों का ध्यान रखना चाहिए या चेकिंग पॉइंट्स होना चाहिए, तभी हम जब हम बोल रहे हैं, मान लीजिए मैंने आपको अप्रिसिएट किया कि आप इतने अच्छे स्पीकर हैं और आप इतने अच्छे तरीके से लोगों को मोटिवेट करते हैं ताकि लोगों को नई दिशा मिले, लेकिन अंदर होगा बड़े स्पीकर हैं, बहुत और भी स्पीकर अच्छे हैं, ये बड़े आए अभी अभी के आए हैं, है ना? तो ये अपने अंदर चल रहा है, लेकिन बाहर मैं आपको प्रेज कर रही हूँ, इसका मतलब भी, इसका इम्पैक्ट भी नहीं पड़ा.
1: राइट.
0: और मैं अपनी गरिमा के खिलाफ भी गई. तो ऐसे कौन से 3-4 चीजों का अलाइनमेंट अपने अंदर होने चाहिए दूसरे को अप्रिसिएट करने के लिए या अपने गरिमा को रखने के लिए?
1: सबसे बड़ी चीज तो होनी चाहिए एक्सेप्टेंस. खुद की भी एक्सेप्टेंस, दूसरों की भी एक्सेप्टेंस,
0: दूसरों के रोल का
1: एक्सेप्टेंस, दूसरों के रोल का एक्सेप्टेंस कि जिस कंडीशन से वो आए हैं, उन्होंने लाइफ में क्या देखा है, कैसे वातावरण में वो रहे हैं, किन लोगों के बीच में रहे होंगे जिसने उनको शेप किया है, है ना? तो एक्सेप्ट करना कि इट्स ओके. हमें क्या होता है कि वो बोलते हैं ना, इट्स माय वे और हाई वे. हमें लगता है कि जैसे आपने शुरू में कहा कि एक रूल बुक बना ली हमने, पर मजे की बात पता है क्या है
0: जी,
1: कि हम दूसरों को उन गलतियों के लिए जज करते हैं जो हम नहीं करते, और जो हम गलतियां करते हैं उस पर जज नहीं करते लोगों को.
0: नहीं क्योंकि हम करते हैं.
1: हाँ, इसे वो बड़ा अच्छा वर्ड है, बोलते हैं हिपोक्रेसी, है ना? कि मतलब मेरे साथ भी होता है, कभी कभी जजमेंट्स आती हैं, मैं कहता हूँ यार ऐसे कैसे कर सकते हैं, फिर मैं ना तुरंत, अब वो काफी वर्षों की अभ्यास है, तो तुरंत क्या आता है मेरे मन में क्वेश्चन, हितेश तू हो गया परफेक्ट क्या?
0: सही बात.
1: फिर मैं अपने आप को 3-4 आ जाते, दिखती हैं अपनी 3-4 गलतियां, बोलता हूँ पहले ये ठीक करना, फिर बोलना कि उनको ये नहीं करना चाहिए.
0: सही
1: है ना? तो फोकस खुद पे आता है. तो पहला मैं कहूंगा कि एक्सेप्टेंस, कि जो जैसे हैं, अगेन एक्सेप्टेंस मतलब कि मैं उनके पास्ट को जज नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके प्रेजेंट जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी वो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, मैं उसमें कुछ भी जजमेंट्स क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मतलब कमेंट्री नहीं कर रहा हूँ कि दे शुड नॉट डू लाइक दिस, उनको ऐसे नहीं वैसे नहीं, ये सब ब्लेमिंग कंप्लेनिंग क्रिबिंग क्राइंग ये नेचर होता है, तो मुझे ये नहीं करना है.
0: Okay.
1: दूसरा खुद पे ध्यान देना है, जैसे मैंने कहा थोड़े दिन प्रैक्टिस लगेगी, जैसे ही आपको किसी की कमी दिखाई दे तुरंत खुद पर लेकर आइए कि मैं ठीक हो गया हूँ क्या, मैं भी तो गलती करता हूँ ना, तो पहले इसको ठीक करता हूँ फिर दूसरों का जज बनूंगा, है ना, तो वो मुझे करना है. और तीसरा वही बात कि बार बार चेक कीजिए कि मेरे मन में किसी के लिए ब्लॉकेज तो नहीं है. आपको दिखाई देगा लोगों की बातें कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो दो मिनट बैठिए एंड फील कि मुझसे बहुत अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, प्यार उन सोल तक जा रहा है, उन्होंने जो भी किया मैं स्वीकार करता हूँ
0: जी,
1: उनके लिए नहीं खुद के लिए.
0: और कहीं ना कहीं हम कार्मिक सर्कल में बंधे हुए हैं, इसलिए वो ही लोग हमारे सामने आए हैं, बाकी इतने करोड़ जनता है पूरे पृथ्वी में वो हमारे सामने नहीं है. तो अगर हम अभी से उन्हें अप्रिसिएट नहीं करते हैं, थैंक यू नहीं बोलते, भले सामने ना बोलो लिख कर बोलो,
1: माफ नहीं करते, माफी नहीं मांगते, तो लोग चेंज हो जाएंगे, हो सकता है लोग चेंज हो,
0: हम चेंज नहीं हो पाते.
1: हाँ, सिचुएशन वही आएंगी, वही कहते रहते हैं अरे आजकल तो लोगों पर भरोसा नहीं करना, अरे तो 10 साल के बच्चों से भी पूछोगे ना उसको भी पता है क्योंकि वो भी सुन चुका है बहुत बार, लेकिन फिर भी हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं,
0: जी,
1: सीख नहीं रहे ना,
0: इसलिए सीखना है. और इसके साथ साथ जैसे आप कह रहे थे कि जो कसौटी है या अप्रिसिएशन करने के तरीका, ये भी हो सकता है कि अगर हम किसी को अप्रिसिएट कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं या माफ़ी मांग रहे हैं, तो एक तो हमारे वृत्ति में भी होना चाहिए, हमारे बोल में तो होना ही चाहिए, और हमें दिल से भी करना चाहिए. और किसी को अप्रिसिएट कर रहे हैं तो बी स्पेसिफिक होके भी आप कर सकते हैं कि आपकी ये बातों के लिए आपको थैंक यू, ऐसा नहीं कि बस आप जाते जाते बोल दिए सिक्योरिटी गार्ड को थैंक यू भैया करके निकल,
1: और वो भी आंखें नहीं मिलाते.
0: यस यस
1: ये मेरे साथ भी होता था, ऐसे लगता था कि मैं बोलूंगा पता नहीं वो क्या बोलेंगे या नहीं, मेरी डिसरिस्पेक्ट ना हो जाए, तो हम डरते हैं. लेकिन जैसे आपने कहा बी स्पेसिफिक, किसी बात को लेकर कि कोई बात अच्छी लगी आप उन्हें बताइए कि आपने वो किया ना बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच.
0: बोल इतने अच्छे से, मतलब खड़े होके ग्रीट भी कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड्स, खड़े होके ग्रीट भी करते हैं.
1: Yes.
0: और खड़े होके ड्यूटी भी करते हैं उन्हें आप
1: पूरा दिन खड़े रहते हैं, तो उनको आप बिल्कुल बोलिए थैंक यू सो मच, आंखों में आंखें डालकर बोलिए, उन्हें सुनाई दे.
0: छोटी हाउस हेल्प को भी आप बोल सकते हो,
1: ये छोटी छोटी चीजें ना उनको बहुत इंस्पायर करती हैं और अच्छा बनने के लिए.
0: भले वो सैलरी लेते हैं, उनकी ड्यूटी है, लेकिन वो अच्छे से कर रहे हैं तभी हमारा काम भी आसान होता है.
1: बिल्कुल. आप उनको, आज ही मेरे माइंड में एक थॉट आ रहा था, सही बताऊं तो मैं कहीं जा रहा था तो सिक्योरिटी गार्ड थे, मैं सोचता था पूरा दिन ये क्या करते हैं, तो मुझे था कि इनको बुक दूंगा मैं.
0: जी
1: तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो, कुछ पुरानी बुक्स हो अगर वो पढ़ सकते हैं, कुछ भी ऐसा सोचिए कि आप उनको बोलिए कि आप पूरा दिन ड्यूटी करते हो, बीच में टाइम मिलेगा आप थोड़ा पढ़ लीजिए ना, थोड़ा अच्छा रहेगा. किसी भी तरह से हेल्प कर सकते हो आप लोग.
0: बिल्कुल. और गरिमा के बारे में एक और सवाल, आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे हम आपसे कि अपने दिनचर्या में ऐसे कौन सा एक छोटा बदलाव करें जिससे हर व्यक्ति सम्मानित महसूस करें, हम खुद भी सम्मानित महसूस करें.
1: मतलब खुद के लिए कि मैं अपनी
0: सेल्फ रिस्पेक्ट भी, और आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण दूसरे भी सम्मानित महसूस करें, उन्हें भी इंसल्ट फील ना हो.
1: ओके. मुझे लगता है कि दूसरों को सम्मानित करने के लिए भी सबसे बड़ी चीज़ हम क्या कर सकते हैं वो ये है कि मैं खुद को कैसे देखता हूँ, क्योंकि लोग सीखते हैं. लोग
0: आप अपने आप को कैरी कैसे करते हो,
1: आप अपने आप को कैरी कैसे करते हो, बोलते परफेक्टली इम्परफेक्ट. यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट. आप अपनी इम्परफेक्शंस को भी कैसे कैरी करके रखते हो, है ना, मुझे पता है अगर मैं ये बात बोलूंगा तो लोग मानते नहीं है, बट जैसे मैं बोलता हूँ प्यार से आराम से बोलता हूँ, इसी रीजन की वजह से मैं दो बार एक इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ था
0: जी
1: और वो मेरी बहुत ड्रीम कंपनी थी, डिकैथलॉन एक स्पोर्ट्स का वो है,
0: यस।
1: तो दो बार मैंने इंटरव्यू दिया, उसके बहुत से राउंड्स होते हैं, फिजिकल सब कुछ। तो मैंने उनसे पूछा कि दो बार रिजेक्टेड, बोलते कि आप बहुत स्लो बोलते हो,
0: सॉफ्ट बोलते,
1: बहुत सॉफ्ट बोलते हो, वो नहीं चलेगा। तो मैं, मुझे वो इम्परफेक्शन लगी, बट उसे कैरी करके कि मैं इस मैंने बहुत कोशिश की, हर तरीके से कोशिश की कि नहीं कि ये सॉफ्टनेस चली जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, पर वो नहीं हुआ, है ना। तो मुझे समझ आ गया कि दिस इज समथिंग, वो एक होता ना नेचुरल, तो फिर इसको कैरी करके मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। तो अगर आप लाइफ इम्परफेक्ट होते हुए भी खुश हो, आप इम्परफेक्ट होते हुए भी आप चीज़ें कर रहे हो, तो आप लोगों को इनडायरेक्टली सिखा रहे हो कि सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे रखी जाती है, अपनी विशेषताओं को भी यूज़ करो और अपनी कमियों को साथ लेकर चलो ताकि वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, है ना। और दूसरों के लिए हम जैसे बोलते हैं कि होल्डिंग द स्पेस फॉर देम, कि आप एक ऐसे इंसान बने कि आपके सामने कोई इंसान कुछ भी बोल पाए, ये बहुत बड़ी चीज है। हमें कभी कभी ऐसा लगता है ना कि घरों में रहते हैं, हम लगता है ये मुझे ऐसे कैसे बोल सकते, आप थैंकफुल रहिए कि वो आपको बोल रहे हैं जो उनके अंदर चल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज आज के समय में है कि लोग वो नहीं बोलते जो उनके अंदर चल रहा है, क्योंकि वो डरते हैं,
0: क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा,
1: रिएक्शन मिलेगा, तो वो छुपाना शुरू कर देते। सो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं एक ऐसा इंसान बनूं कि अगेन डिग्निटी के साथ, ऐसे नहीं कि कोई कुछ भी बोले, लेकिन मैं एक ऐसा इंसान बनूं कि जिसके सामने इंसान फ्रीली होकर कुछ भी बोल पाए, दे शुड नॉट फील जज्ड, उनको एक एक्सेप्टेंस फील होना चाहिए।
0: ओके, लास्ट सवाल करने वाली थी लेकिन दो और सवाल आ गए हैं, दोस्ती के ऊपर है ये। दोस्त अगर ज़्यादा अच्छे नए दोस्त बनाने लगे हैं और उनके नए दोस्त बन जाए और वो हमारे साथ प्लान कैंसिल करते रहें, पहले जैसा ना रहें, तो हम चुपचाप डिस्टेंस को एक्सेप्ट कर लें या फिर दोस्ती बचानी चाहिए?
1: मतलब अगेन ये रूल
0: कोई रूल नहीं है,
1: आपके ऊपर डिपेंड करता है किस कंडीशन में क्या करना चाहिए। दोनों ही बातें ठीक है, मतलब एक तो ये कि अगर आपको दिख ही रहा है ना, तो इट्स अ साइन कि वो बोल नहीं पा रहे पर वो कर तो रहे हैं। बट मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं हमेशा ये करूँगा कि मैं उनसे पूछूँगा, प्यार से पूछूँगा कि क्या हुआ, एवरीथिंग ओके, कुछ इश्यू है। बट अगर मुझे दिख गया कि एंड इट्स ओके, मतलब
0: एक्सेप्ट कर लेना चाहिए,
1: हाँ
0: थोड़ा स्पेस देना चाहिए।
1: अब एक बच्चा है, बच्चा जब छोटा होता है तो मम्मी से चिपक के रहता है, दो तीन साल बाद क्या होता है,
0: फिर दोस्तों से चिपकता है।
1: बिल्कुल सही बोला, तो मम्मी क्या करती है फिर? मम्मी ये थोड़ी बोलती है कि यार तू 3 साल तो तू मेरे साथ था, आज तेरे दोस्त बन गए बड़े। वो क्या कहती है, बच्चा है, बड़ा होगा, इट्स ओके, दोस्त बनाने दो। मैं अपने आप को ऐसा बनाऊं कि मेरी दोस्ती कोई रिप्लेस ना कर पाए, चाहे वो दुनिया भर घूमे,
0: राइट,
1: बट जो मेरे साथ कनेक्शन है, वो एक बहुत सुंदर लाइन है ना दलाई लामा की, कि गिव द वंस यू लव विंग्स टू फ्लाई, रूट्स टू स्टे एंड रीजन टू कम बैक। सबको उड़ने दो, बांधना नहीं है, लेकिन अपने आप को ऐसा बनाओ कि दे शुड हैव अ रीजन टू कम बैक, अगर वो दूर भी हो गए तो, और रूट्स ऐसी हो कि वो रहें आपके साथ। आप अपने आप को इतना पीसफुल, हैप्पी, एक्सेप्टिंग बनाइए कि वो कहीं नहीं जाएंगे, और जाएंगे भी तो उनको रियलाइज हो जाएगा कि यार वो इंसान बेस्ट है। और अगर नहीं भी तो फिर ठीक है ना, क्या फोर्स तो हम वैसे भी कभी किसी को ना कर सकते,
0: कहते हैं ना जो आपके हैं वो वापस आएंगे, हाँ। जो आपके नहीं है वो
1: वो किसी ना किसी कारण की वजह से चले जाएंगे।
0: कहते हैं अगर दोस्त मुझे रोस्ट करते हैं, मजाक करते हैं, पर मुझे बुरा लगता है, पर वो कहते हैं कि दोस्ती में मजाक मस्ती तो होती है, तो क्या करना चाहिए?
1: मुझे एक चीज याद आती है कि जब मैं ऑफिस में था तो मेरे एक सीनियर थे, 5-6 साल सीनियर थे, बट हम बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे। तो बहुत मस्ती करते थे, वो मेरा मजाक उड़ाते थे, मैं भी, है ना, ज्यादा नहीं लेकिन मैं भी।
0: आता है मजाक उड़ाना आपको?
1: आता है। तो फिर मैंने जॉब छोड़ा, तो मैं कुछ महीने बाद मिला उनसे, बट मैं इस दौरान, मैंने जॉब छोड़ा था क्योंकि मैं अपने मेडिटेशन प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से कर रहा था, और मैं 6 महीने में ही इतना ज्यादा ग्रो किया, जो आज का टॉपिक है कि मेरी गरिमा इतनी बढ़ गई, सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी बढ़ गई, अंदर इतनी पावर बढ़ गई। वो इंसान अभी भी वैसे ही थे, वो मुझे मार भी रहे हैं, दोस्ती वाला मार रहे हैं, पर ऐसे मार रहे हैं जो पहले मुझे एक्सेप्टेड था। पता नहीं इतना पावर मेरे अंदर कहां से आया। मैंने उनको बोला कि आगे से मुझे टच करने की जरूरत नहीं है, और वो इंसान बिल्कुल सहम कर साइड हो गया, और उसके बाद उसने मुझसे कुछ कहा नहीं। मैंने ही सोचा कि ये कैसे हुआ, तो मुझे समझ आया कि असली में वो सब चीजें मैं एक्सेप्ट कर रहा था। मे बी मैं डर में था कि ये मेरे सीनियर हैं, दोस्ती खराब ना हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट अब मुझे डर नहीं था, तो मैंने उनको बोला। तो अगेन गरिमा कहती है, डिग्निटी कहती है कि अगर आपको बुरा लग रहा है तो आपको बोलना सीखना है, बाउंड्री क्रिएट करना सीखना है, इन सिंपल लैंग्वेज, क्या सॉरी बट दिस इज नॉट अलाउड, ये लैंग्वेज मेरे साथ नहीं चलेगी, ये बातें मेरे साथ नहीं चलेंगी, है ना। कभी कभी ऐसा होता है, कभी मैंने भी बहुत बार किसी को कहा है, कोई गलत लैंग्वेज यूज करता है, मैं बोल देता हूँ मेरे सामने ये बात नहीं चलेगी, यू कांट टॉक टू मी लाइक दैट, समझ जाते। तो बिल्कुल आप कह सकते और कहना चाहिए। अगेन बाउंड्री जैसे बोलते पोरस होती है, फिक्स नहीं होती है, आप खींच भी सकते हो, आप बढ़ा भी सकते हो, थोड़ी बढ़ानी है तो बढ़ाइए। दोज हु मैटर वॉन्ट माइंड एंड दोज हु माइंड वॉन्ट मैटर। तो अगर वो सच में आपको रखना चाहते हैं लाइफ में, आप तो रखना चाहते हो, क्योंकि अगर नहीं रखना चाहते तो आप किसी भी कारण से उनको घोस्ट कर देते, वो रोस्ट कर रहे आप घोस्ट कर देते
0: जी।
1: लेकिन आप अगर रखना चाहते हो तो आप क्या कह रहे हो, आप उनको समझा रहे हो, तो उनको समझना जरूरी है
0: जी। अंत में एक बात पूछ लेती हूँ मैं
1: जी,
0: कि आपने कहा कि आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और गरिमा को बढ़ाया, यानी कि हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ा सकते हैं। आपने कहा कि मेडिटेशन प्रैक्टिस से आपने इसे बढ़ाया, तो अपने आप से आपने क्या बातचीत की मेडिटेशन प्रैक्टिस के दौरान, आप अभी भी कर रहे हैं, ताकि जो श्रोता सुन रहे हैं वो भी बढ़ा सके अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, गरिमा को?
1: हाँ, ये मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, जो मैंने शेयर भी किया शुरू में, कि आई एम लव, मैं प्रेम हूँ, और आई डोंट सीक लव, मैं प्यार को ढूंढ नहीं रहा हूँ,
0: मांग नहीं रहा हूँ किसी से,
1: मांग नहीं रहा हूँ कोई मुझे प्यार दे। आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि मैं किसी से अटैच हो गई, और शी लॉस्ट हर मदर, और उस वजह से वो इमोशनली डिपेंडेंसी आ गई। तो होता क्या है कि वो एक वैक्यूम हम सबकी लाइफ में क्रिएट होता है, और अगर वो मैंने खुद से नहीं भरा ना, तो हम हमेशा लोगों में ढूंढते रहेंगे। तो बार बार प्रैक्टिस करना कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है टू फील लव्ड, अच्छा फील करने के लिए मुझे किसी इंसान की, बाहर की किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ।
0: जो लोग बोल देते कि आई एम इनफ,
1: आई एम इनफ, आई एम जस्ट सो इनफ, बहुत प्रैक्टिस किया मैंने ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे याद है शुरू शुरू में जब आप टीनेजर होते हो, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आई शुड फील इनफ, आई शुड फील कंप्लीट, कि मैं भरपूर हूँ। तो ये बहुत, जैसे बोलते हैं ना, ऐसे घोट कर अंदर डाल लेना।
0: जब भी कोई भी सिचुएशन आए, उसमें आप अपने आप को ये याद दिला देते हैं,
1: पहले ही याद दिलाइए। इट्स लाइक अ नेट प्रैक्टिस, जो मेरा अनुभव है कि आप अपने आप को फीड करते जाइए करते जाइए. जब सिचुएशन आएगी ना, ये जो फीडिंग है इतना वंडरफुली काम करती है कि आपकी जो बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, वो आपको याद दिला देती है. हितेश आप तो कंप्लीट हो ना, आप तो भरपूर हो ना, आप तो यू आर लव. एक बहुत सुंदर रूमी की लाइन है कि आई एम अ लवर विद और विदाउट एनी पर्सन. लवर का मतलब ये नहीं कि हम क्या कहते हैं कि डू यू हैव अ लवर. अरे
0: मैं खुद ही हूँ,
1: मैं आई एम लव. मेरे अंदर सबके लिए प्यार है, एनिमल्स के लिए प्यार है. आई फील लव, आई लव अनकंडीशनली, मैं बिना शर्त के प्यार करता हूँ. तो फिर अपने आप आपको बुद्धि आपको याद दिलाती जाएगी कि हितेश वो नहीं कर रहे कोई बात नहीं, कैपेबल नहीं होंगे, आप तो करो ना. ये सबसे बड़ी चीज आ जाती है कि हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देते,
0: प्यार की परिभाषा को ही नहीं समझ पाए हम, इसीलिए शायद हम एक्सेप्टेंस भी नहीं होता हमसे और बाकी सारी चीजें फिर
1: इसीलिए फिर वो डिग्निटी नहीं है. इसीलिए सबसे बड़ी चीज ये है पता है कि इंसान 5 मिनट 10 मिनट क्यों नहीं बैठ पाता, क्यों उसको कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ यूट्यूब पे देखना है, रील्स देखनी है, क्योंकि गरिमा नहीं है. अगर सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना तो
0: अपने आपके साथ टाइम बिता
1: सकते हैं, अपने आपके साथ ऐसे बैठकर आप 10 मिनट आराम से बैठ सकते हो, मतलब बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के, बस हवा में. अब सोचिए जो सुन रहे हैं, कब था ऐसा लास्ट टाइम जब आराम से, जी बारिश आ रही है, आराम से बैठे 5 मिनट 10 मिनट बिना किसी चीज के. ये होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, कि आप इतना खुद में भरपूर हो जाते हो कि आप अनकंफर्टेबल नहीं होते हैं, चाहे इंटरनेट ना चले, चाहे आपके पास फोन नहीं हो, कुछ भी नहीं हो तो भी.
0: सही बात. तो अपनी गरिमा को बरकरार रखने के लिए अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है. तो इस नोट के साथ यहीं पर रुकना चाहेंगे. आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में.
1: थैंक यू सो मच.
0: हैप्पी फ्रेंडशिप डे वंस अगेन.
1: यस, हैप्पी फ्रेंडशिप डे सभी को. और फ्रेंडशिप का रियल मीनिंग समझते हुए इमोशनली अवेलेबल ज्यादा रहना है. उसके लिए चाहे फिजिकली दूर होकर आपको बुक्स पढ़नी पड़े, मेडिटेशन करना पड़े, पर आप उनकी मदद कर रहे हो अपने आप को अवेयर करके, अपने आप को कॉन्शियस बनाकर,
0: जागृत अवस्था में रखते हुए
1: करके. यस, ये सबसे बड़ी चीज है कि आप लोगों को एक गाइडिंग लाइट बन रहे हो. मेरे जो पुराने फ्रेंड्स थे वो सब देखते हैं, पूछ क्राइसिस में कॉल करते हैं, ऐसे नहीं करते. उनको पता है कि बिजी हैं. मैं ये नहीं सोचता हूँ अरे मतलब में नहीं, मुझे अच्छा लगता है चलो क्राइसिस में याद तो किया, लेट मी बी देयर गाइडिंग लाइट.
0: राइट,
1: तो वो बनना है मुझे.
0: बिल्कुल, गाइडिंग लाइट बनना है फ्रेंडशिप में.
1: यस,
0: और इसके लिए खुद को एक्सेप्ट करें और दूसरों को भी.
1: यस,
0: एज इट इज.
1: यस,
0: ओके, यहीं पर रुकते हैं. फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में. तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए. रेडियो मधुबन 107.8 FM. नमस्ते.

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष डॉक्टर किरण चड्डा उपस्थित हैं। आप पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी थे और उसके साथ में वहां से आप रिटायर होकर बहुत सारे काम सोशल एक्टिविटीज के साथ साथ आप पोएटिस्ट हैं, अच्छी तरह से कविताएं करती हैं और साथ में आप ऑथर भी हैं, अच्छी किताबें भी आप लिखते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग डॉक्टर किरण चड्डा जी से बातें करेंगे। उनके जीवन के कुछ खास अनुभवों को हम लोग सुनने वाले हैं और वो अपने अनमोल अनुभवों को हमारे साथ साझा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर किरण चड्डा, नमस्ते।
1: नमस्कार जी, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं आज आपके साथ जुड़ी हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं चाहूंगा, हमारे साथ विद्यार्थी माही यूपी से जुड़ी हुई है, तो मैं चाहूंगा माही एक बहुत ही प्यारा सा गीत के साथ डॉक्टर किरण चड्डा का स्वागत कीजिए।
2: जी जी बिल्कुल, मैं आपके लिए, क्योंकि अभी सभी हम लोग अपने अपने घर पे हैं, तो मैं यहीं से आपका स्वागत करती हूँ।
1: थैंक यू।

0: थैंक यू,
1: धन्यवाद मान ली,
0: थैंक यू
1: बहुत ही
0: मैम,
1: सुंदर
0: बहुत बहुत
1: आवाज है आप।
0: थैंक यू मैम।
2: बिल्कुल
0: एक्चुअली ये
2: बिल्कुल,
0: गीत मेरे श्रीमान के नाम से था, तो मैंने इसलिए उसे चेंजिंग नहीं की।
2: तो
0: जी
2: आइए माही, थैंक यू सो मच स्वागत गीत के लिए। और डॉक्टर किरण चड्डा जी से मैं इसी में जोड़ना चाहूंगा आप सभी को। डॉक्टर किरण चड्डा, बहुत बहुत स्वागत है। और वर्तमान आप कहाँ पर है, थोड़ा सा करंट सिनारो के बारे में बताइए। जी
1: इस वक्त मैं गुड़गांव में अपने घर में हूँ और यहीं पे 6 महीने के लगभग रहती हूँ और 5 महीने मैं डलहौजी में रहती हूँ और 1 महीना अपने बेटा जो मेरा दुबई में रहता है वहां उसके पास जाती हूँ। सो इस वक्त ये जैसे ही समर खत्म होगी तो फिर मैं, विंटर खत्म होगी तो मैं डलहौजी।
2: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए डॉक्टर किरण जी, मैं चाहूंगा कि आप अपने कुछ बचपन की यादें जरूर ताजा कराइए हमारे, क्योंकि बचपन हर व्यक्ति को जो है बड़ा प्यारा होता है। बचपन की स्कूलिंग की यात्रा या बचपन की कुछ विशेष यादें हमारे साथ जुड़ी रहती हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपका बचपन कहाँ बीता और उस समय का परिवेश कैसे था।

0: थे और वहीं सेक्रेड हार्ट डलहौजी एक बहुत ही मशहूर नॉर्थ इंडिया का स्कूल है। पहले नंस ही पढ़ाती थी, ज्यादा नंस बाहर की थी, तो मेरी सारी पढ़ाई वहीं पे हुई है। और उन दिनों वहाँ कॉलेज भी था, तो कॉलेज में भी मैं वहीं पढ़ती थी। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमने उनसे सीखी है, जो कि नंस थी और जो अपना पूरा टाइम हमारे साथ बिताती थी, कि डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट, और इन्हीं को
1: बिल्कुल
0: लेकर
1: बिल्कुल
0: हम आगे बढ़े हैं। और मेरे घर में भी मेरे फादर को टाइम की बहुत वैल्यू थी, और आज तक मुझे खुशी है ये बताते हुए कि मैं कोई भी अपॉइंटमेंट मिस करी हूं, क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट और टाइम इज मनी, टाइम इज पावर। एंड मेरे जो बॉस हुआ करते थे वो कहते थे कि टाइम इज ऑल्सो नॉलेज एंड नॉलेज इज
1: बिल्कुल
0: पावर,
1: बिल्कुल
0: सो लाइक दैट। तो डलहौजी में की बहुत ही माहौल, वहां पे सीरीन था, क्वाइट था, माउंटेन थी। मैंने शुरू ही जो कविताएं और कुछ निबंध लिखे थे वो सारे हिंदी में थे, कुछ इंग्लिश में थे, वही लिखे जो खिड़की में से चांद दिखता था या बारिश होती थी। तो मेरी काफी कविताएं जो कि मैंने आपको बताया, मेरा संग्रह अभी अभी हाल ही में छपा है और दूसरी तैयारी हो रही है, वहीं
1: क्या
0: पे
1: बात
0: मेरा ख्याल है नेचर गिव्स यू दैट फीलिंग ऑफ यू नो
1: है
0: वननेस विद इट।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो किरण जी, मैं चाहूंगा
0: और
1: कि एक आज
0: बचपन बात
1: कविता जो है।
0: उससे
1: हाँ
0: पहले
1: जी
0: मैं एक बात बताना चाहूंगी। बचपन में
1: बिल्कुल
0: ही
1: बिल्कुल
0: इनकरेज्ड बाय माय पेरेंट्स टू यू नो स्टैंड ऑन आवर ओन फीट, और शुरू से ही कॉन्फिडेंस था। इनफैक्ट मेरे ब्रदर्स बताते हैं कि एक जगह एक लड़की ने आके नृत्य करना था, मैं छोटी सी थी, लेकिन वो अटक गई एंड में के भी मैं नहीं कर रही, तो आई जस्ट वॉक्ड अप टू दी बैंड एंड दैट सेड के मैं डांस करूं। तो वहीं से मुझे डांस का भी बहुत शौक है, म्यूजिक का शौक
1: क्या
0: है।
1: बात
0: तो कविताएं पढ़ने में मैं ये बता रही हूँ कि लॉकडाउन में मैं इस घर में अकेली थी, क्योंकि मेरी बेटी और बेटा जहां जहां थे लॉकडाउन में थे। तो मैंने उन दिनों अपनी पुरानी कविताएं निकाली और फिर मैंने एक गिलहरी देखी जो घूम रही थी, एक चिड़िया देखी, एक मोर देखा बाहर, जो कि बहुत कम आती है, और वहीं से मेरी कविताएं दोबारा शुरू हुई। तो मैं आपको पहले एक हिंदी की सुनाना चाहूंगी
1: बिल्कुल
0: कि मैंने एक तो कुछ उदासी की भी थी, क्योंकि अकेले रहने में कुछ ना कुछ तो इंसान को फीलिंग होती है। तो मैंने एक रंज छुपा रखा है, मैंने एक राज छुपा रखा है, इस चेहरे पे नकाब चढ़ा रखा है। सब कहते हैं कि खुश मिजाज है वो, सब कहते
1: क्या
0: हैं
1: बात
0: कि
1: है।
0: खुश मिजाज है वो, क्या पता कितना रंज छुपा रखा है।
1: हाँ
0: क्योंकि अंदर से इंसान अपनी जो चाहते होती हैं वो, और जो जैसे वो महसूस करता है, जो अकेला रह रहा हो वो कैसे करता है। एक और मुझे बहुत अच्छी लगती है, तन्हाई का आलम तुम क्या जान। ये सभी को उस वक्त लागू था जिस वक्त हम लोग लॉकडाउन में थे।
1: लॉकडाउन
0: तन्हाई
1: में थे।
0: का आलम तुम क्या जानो, खामोश लम्हे तुम क्या जानो, चुप्पी सन्नाटे की आवाजों में, चुप्पी सन्नाटे की आवाजों में एक छोटी सी आहट तुम क्या जानो।
1: क्या बात
0: एक मैं और छोटी सी सुनाना चाहूंगी।
1: जी बिल्कुल
0: वो पल पल का सफर तय कर तो लिया मगर, वो पल पल का सफर तय तो कर लिया मगर, तन्हाई न कर सकी पार, तन्हाई न कर सकी पार, बेचैनी है पर सुकून का इंतजार। सो दीज वर सम ऑफ माई क्वाइट पोएम्स। लेकिन एक इंग्लिश की पोएम है जिसमें केयर एंड शेयर है कि और आपको पता है कि हर मजहब और हर बुक जो कि इंसानियत पर है वो हमें यही सिखाती है कि केयर और शेयर करो। सो वन
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: सीक्स एंड सीक, लेकिन फिर भी इंसान कभी उसकी ख्वाहिशें खत्म नहीं होती। वन सीक सीक्स एंड सीक साइलेंटली और एज वन स्पीक, देर आर अ थाउजेंड विशेस, द हार्ट कंटिन्यूअसली हिसेस, येट देर इज वन डिजायर दैट सरपासेस ऑल अदर, द नीड टू केयर एंड बी केयर्ड, द क्रेविंग टू लव एंड बी लव, टू हैव समवन बाय योर साइड, इन ईयर्स यू कैनॉट हाइड, एज वन मूव्स ऑन इन ईयर्स, मे ईच फाइंड वन अमंग हिज पीयर्स। ये 200 पोएम्स हैं इसमें, छोटी भी लंबी भी। और मेरी पहली कविता मैं बताना चाहूंगी कि पहली तो मैंने डलहौजी में लिखी, लेकिन लेटर ऑन इन इयर्स जब 1971 की वॉर चल रही थी, तो हमको कमरों में अंधेरों में रहना पड़ता था बिकॉज ऑफ ब्लैकआउट इन जलंधर। तो मैंने कैंडल पे लिखा था, और कैंडल वाली पोएम मेरी यूट्यूब चैनल पे भी चल। सो दिस वाज अबाउट माय पोएट्री एंड आई'd लाइक टू टेल यू अबाउट दिस जो सॉन्ग्स हैं, पेन ड्राइव अगर आप नजदीक होते तो मैं आपको ये गिफ्ट देती। इसमें वो गाने गाए हैं जो कि गाती थी कि मेरे बच्चे और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, जिनको ग्रैंड चिल्ड्रन को मैं ढोलकी सिखा रही हूँ, कि वो ये
1: अच्छा

0: जबकि फ्यूचर में वो बड़े हो। तो ये मेरी मदर से मुझे ये मिला, ये ढोल का जो विरासत, और ये मैं अब आगे अपने चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन को देना चाहती हूँ। मेरी बेटी भी बजाती है, मेरी ग्रैंड चिल्ड्रन भी बजाते और गाते
1: क्या
0: भी
1: बात,
0: है मेरे
1: बहुत
0: साथ।
1: बहुत। तो किरण जी, मैं चाहूंगा कि चलिए आगे बढ़ते हैं, और जैसे किताब की बात कहें तो आपका लिखना कैसे शुरू हुआ, कैसे आप एज ए राइटर ऑथर आप बनना शुरू हुआ? क्या पहले से आप सोच कर रखी थी कि मुझे लिखना है या किताब लिखनी है, या अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से आप राइटर बने?
0: देखिए, इसमें एक कहते हैं कि राइटर को कोई वजह मिलनी चाहिए, कोई पर्पस होना चाहिए। तो
1: बिल्कुल
0: अचानक ही हम डलहौजी में सेटल्ड हो गए थे रिटायरमेंट के बाद। मेरे हस्बैंड आईपीएस थे और वो भी रिटायर्ड थे। हम बहुत अच्छा समय बिता रहे थे, फिर अचानक वो चले गए। और उनके रहते भी वो मुझे अक्सर कहा करते थे कि तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी है, तुम टीचर भी रह चुकी हो, तो तुम लिखती क्यों नहीं। तो उन दिनों वो कहते थे कि डलहौजी इज योर होम टाउन, उसी पे लिखो। तो उनके जाने के
1: बिल्कुल
0: बाद मैंने सोचा कि ऐसे अगर मैंने अपना पर्पस खो दिया या जिंदगी में मैं मायूस हो गई तो ये सही नहीं होगा। और मुझे वक्त अपना पॉजिटिवली बिताना था, और मैंने स्याही और कलम से अपना नाता जोड़ा और मैंने सोचा कि मैं लिखना शुरू कर। तो डलहौजी में एक छोटा सा शहर है, बहुत सुंदर है, 10,000 के करीब उसकी आबादी है और लोग छोटे छोटे अपने काम चलाते हैं। लेकिन चंबा बड़ा शहर है जो कि बगल में ही है, 30 किलोमीटर पर। चंबा पे बहुत किताबें हैं, चंबा पे अंग्रेजों ने भी लिखी है, लेकिन डलहौजी पे कोई किताब नहीं। और जो थी, अगर आर्मी वालों ने लिखी तो अपने बारे में, स्कूल वालों में तो स्कूल के बारे में। तो मैंने ये सोचा कि डलहौजी पे क्यों ना लिखा जाए। और मेरी रिसर्च शुरू हुई और मैंने चंबा से ही आर्काइव से, उनका एक म्यूजियम है, वहां से किताबें शुरू की। लोगों से जो वहां के चौकीदार होते हैं, जो कई सालों से ब्रिटिश टाइम से रह रहे हैं, उनसे बहुत मुलाकात, क्योंकि वो मुझे बता सकते थे कि क्या होता था। और वहां वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जो इसमें मौजूद है। क्योंकि एक स्टोरी है कि जब दंगे शुरू हुए तो एक मुस्लिम धोबी था, वो एक हिंदू के घर में घुस गया, लेकिन मौत पीछे आ गई। तो एक 5 फुट की औरत थी, वो बाहर आई, उसने कहा कि ओवर माय डेड बॉडी, मैं इसको नहीं तुम लोगों को मारने दूं। तो उन्होंने कहा हम आपका घर जला देंगे। उसने कहा कि मुझे मंजूर है, और उतनी देर में पुलिस आ गई और वो उसको बचाया गया। तो डलहौजी में ऐसी छोटी छोटी बड़ी बहुत कहानी है। मेरे फादर वहां के फर्स्ट डॉक्टर थे और जिन्होंने वहां प्रैक्टिस शुरू की थी, और उनका फ्रेंड्स मेडिकल हॉल था जो कि उनके फ्रेंड ने शुरू की। और उन्होंने तभी छोटा से शहर को भी दो हिस्सों में बांट लिया कि मैं कैंटोनमेंट में काम करूंगा और तुम ऊपर डलहौजी में करना। सो डलहौजी की बहुत कथाएं हैं, क्योंकि चंबा के राजा के अंडर ये था, ये शहर कुछ नहीं बना था। 5 हिल्स उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने इनसे खरीदी, क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ ब्रिटिश सोल्जर्स जो कि गर्मियों में रह नहीं पाते, उनको यहाँ ठहराया जाए। तो इट बिकेम अ ब्रिटिश कंटोनमेंट। सो 5 हिल्स उन्होंने तब 12,000 के लिए खरीद, इमेजिन कीजिए। और ये था 1859। और फिर उनको चाहिए थे कुछ लोग जो आके वहां बसाएं। तो मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर टिम्बर मर्चेंट थे, उनके ब्रिक्स का काम था। हमारे जो छोटे से विलेज है उसका नाम सुर्खी गला है, वहां की मिट्टी से ब्रिक्स बनना शुरू हुई। आज भी वो पुराने घरों में ब्रिक्स हैं। तो हमारे मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर वहां पे ने माने हुए टिम्बर मर्चेंट थे कि उनके होते हुए को भी कोई ऑक्शन नहीं खत्म हो सकती थी, ना शुरू हो सकती थी। एंड ही वाज द ओनली पर्सन अलाउड टू राइड अ हॉर्स अमंग द ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि कोई भी लोकल घोड़े पे सवार। सो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो फिर ये मैंने डलहौजी थ्रू माय आईज 2017 में, 1.5 साल की रिसर्च के बाद सेल्फ पब्लिश की। और सेल्फ पब्लिश इसलिए की क्योंकि पिछले 15 पन्नों में इसमें मेरी फैमिली की हिस्ट्री है, क्योंकि डलहौजी और हमारी फैमिली के आने में केवल 20 साल का, 30 का अंतर था। मैं चाहती थी मेरी फैमिली की हिस्ट्री हो, और पब्लिशर्स नहीं चाहते थे कि ये इसमें बहुत पर्सनल है तो हम नहीं छापेंगे क्योंकि आपने मिक्स कर दिया। बट यू विल बी हैप्पी टू नो कि मैंने 500 कॉपीज छपवाई थी, अब ये रीप्रिंट के लिए तैयार। सो ये तो है डलहौजी की स्टोरी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया डलहौजी कैसे बना आपके हाथों से और आपने उसके ऊपर काफी काम किया और लोगों से पूछकर फिर अपने अनुभवों को जोड़कर इसे बनाया है। और निश्चित तौर पे जब हम लोग किसी विषय को लिखना चाहते हैं तो उसके बारे में जानना, पहचानना, समझना भी जरूरी है और वहाँ के लोगों को पूछना और उनके साथ जुड़ के काम करना बहुत जरूरी। तो आइए आगे बढ़ते हैं यात्रा में। वैसे देखा जाए तो जीवन बड़ा खुशनुमा है हम सभी का, लेकिन फिर भी बचपन या फिर युवा अवस्था में या अलग अलग प्रसंग हमारे पास संघर्ष किया। तो मैं चाहूंगा कि आपके जीवन में कब ज्यादा मुश्किल का समय दौर रहा और फिर कैसे आपने उसको टेक ओवर?
0: देखिए, संघर्ष का तो है कि ये लाइफ ही संघर्ष है और आपको उसमें से पॉजिटिवली कैसे निकलना, यही आपका, दैट्स योर विक्ट्री। सो मेरी सबसे पहली संघर्ष की जो यात्रा थी वो थी कि हम, माय हस्बैंड एंड आई, वी हैड अ लव मैरिज बट वी वर पोस्टेड डिफरेंटली। तो अक्सर हमारी पोस्टिंग अलग रहती है और रहती थी, और कभी वो पंजाब में होते थे और तो मैं दिल्ली में, या मैं दिल्ली में, अगर मैं उनको फॉलो करके जम्मू में गई तो वो और आगे पंजाब में चले गए। तो हम सारे तो जो है बात रही और बच्चे भी थे। और फिर जब मेरा करियर एक स्टेज पे पहुंचा जब मुझे भी बहुत मसरूफियत रहती थी, दैट्स द टाइम वी डिसाइडेड के बच्चों को हम हॉस्टल में डालें। इस दौरान में मैंने दो PhD की जबकि मेरे हस्बैंड से मैं अलग रहती थी, और वो एक पॉजिटिव मेरा एंगल था कि मैंने जम्मू में, जम्मू यूनिवर्सिटी इवनिंग क्लासेस ज्वाइन की और तब मेरे बच्चे, मेरा बेटा था, साथ था। और फिर हमारी दो फॉरेन पोस्टिंग्स हुई, मेरे हस्बैंड पोस्टिंग एक श्रीलंका और कुवैत हुई, तो तब मैंने छुट्टी ली क्योंकि आई वांटेड टू बी विद हिम इन दीज प्राइम पोस्टिंग्स। और वहां पे भी मैंने पढ़ाई की, नई नई चीजें शुरू की, मैंने तब बैडमिंटन खेलना शुरू किया, और लिखने का तो मुझे शुरू से ही शौक था और हम लोकल लोगों से भी मुलाकात करते थे। तो ये तो पहला संघर्ष था। दूसरा संघर्ष जो कि आया वो था कि सडनली जब इनको एक हार्ट का प्रॉब्लम हुआ और मुझे लगा कि मेरी जिंदगी जैसे ठहर सी गई है, बहुत प्रेयर्स की और मेरे बच्चे दोनों छोटे थे तब, और लेकिन भगवान की दया से और सबकी गुड विशेस से ही वॉज ऑल राइट, दैट वॉज इन 1998। लेकिन उसके बाद उनको तो ये बहुत एक्सरसाइज करते थे और बहुत फिट रहते थे, तो ये चेकअप के बावजूद जो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है वो यही है कि ये सडनली एक शादी अटेंड करने गए तो लौट के नहीं आए। तो वो दो साल का समय था, उसमें या तो मैं बिल्कुल नेगेटिवली होके बिखर जाती और या मैं अपने आप को संभालती, और मुझे संभालना जरूरी था क्योंकि दोनों मेरे बच्चे यंग थे। मैं नहीं चाहती थी कि वो, उन्होंने अपने डैड को खोया और अब वो मुझे भी किसी वजह से खो दें। तो मैंने अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू किया, आई री इन्वेंटेड माई सेल्फ, और मैंने अपनी 36 साल की गवर्नमेंट सर्विस को भूल के एक ऑथर और पोएट की जिंदगी अब शुरू की है। और मैं योगा करती हूँ, आई एंजॉय गोइंग आउट विद माई चिल्ड्रन, दोनों बच्चे मेरे, दे आर द पिलर्स ऑफ माई स्ट्रेंथ। और दुबई में बैठ के भी मेरा बेटा हर दम मुझे कीप्स अ वॉच ऑन मी। मेरी बेटी लोकल है, वो तो रहती ही है आस पास, इकट्ठे हॉलीडेज पे भी जाते हैं और बच्चे भी दुबई से आते रहते हैं। बट जब एक लॉस हो तो उसका, लॉस का एक बहुत समय लगता है उसको वापस आने में, और इट टुक मी 2 years। एंड देन आई थिंक कि एक लॉस का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट मुझे लगता है कि फिर आपको कोई भी लॉस से डर नहीं लगता। जैसे अब मुझे पर्सनली मैं कहना चाहूंगी कि मुझे अगर कभी भी भगवान बुलाए मुझे डर नहीं है। आई एम लिविंग अ फुल लाइफ एंड आई एम लिविंग इनफ फॉर माई चिल्ड्रन टू रिमेम्बर मी एंड फॉर माई ग्रैंड चिल्ड्रन टू हैव द इंस्पिरेशन। सो दीज वर माई 2 areas ऑफ ग्रेट कंसर्न। के एक में अलग रहती और फिर भी हर बार हम कोशिश करते थे टू बी टुगेदर। और उन दिनों जो सबसे अच्छी चीज थी वो थी चिट्ठियां, और अभी भी मैं उनकी चिट्ठियां पढ़ती हूँ कि कितना हमने अपने आप को ये इकट्ठा रखा थ्रू लेटर्स। अब तो ये सब मॉडर्न आइटम्स आ गए जो कि फटाफट डिलीट हो जाते हैं। सो दैट वाज अ वेरी गुड टाइम। शिकार के लिए उनके साथ जाती थी, घूमने फिरने जाते थे, एंड वी बोथ हैड इक्वल टेस्ट इन म्यूजिक। और इनको भी गजलें बहुत पसंद थी, सूफी म्यूजिक बहुत पसंद था, पुराने गाने अच्छे लगते थे, अच्छी पिक्चर अच्छी लगती थी, हम दोनों शेयर करते थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर किरण जी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया कि जीवन में हमारे पास भी उतार चढ़ाव आता है, लेकिन उसके बाद फिर कोई, शुरुआत में हमें थोड़ा सा डर लगता है लेकिन बाद में फिर वो डर भी डर नहीं लगता उसका, क्योंकि हमारे पास एक एक्सपीरियंस आ जाता है, एक अनुभव आ जाता है और फिर हम जीने को एक नए तरीके से जीना शुरू कर देते। तो निश्चित तौर पर आपने अपने आप को संबल बनाया और बच्चों के लिए आपने जीना शुरू कर दिया और एक नए तरीके से अपने आप को ढाला और नौकरी वगैरह छोड़कर आप एक ऑथर बनकर किताबों के साथ आप जुड़ गई जो आपने बताया। तो आइए, मैं चाहूंगा, जैसे गानों का शौक है, गजलों का, म्यूजिक का लवर आप हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक हाथ गजल या कोई ऐसी गीत जो आपको अभी इस वक्त याद आ रहा है तो दो लाइनें जरूर गुनगुनाइए आप।
0: जरूर, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैंने नौकरी छोड़ी नहीं, मैंने 36 इयर्स गवर्नमेंट में जॉब की एंड मैंने बहुत सारी डेलीगेशन अब्रॉड लेके गई और आई हैव विजिटेड मोर देन 45 कंट्रीज। सो बहुत रिच एक्सपीरियंस रहा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद हम दोनों ने तय किया था कि हम दोबारा नौकरी नहीं करेंगे, कंसल्टेंट जॉब नहीं करेंगे। आज भी मुझे कंसल्टेंट जॉब मिलती है पर मैं करना नहीं चाहती क्योंकि अब मैं अपनी जिंदगी अपने तौर तरीके से जीना चाहती हूँ। और मैं अपनी तीसरी किताब के बारे में भी बात करना चाहूंगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो पहले वो उसकी बात कर ले और फिर थोड़ा सा गुनगुना देंगे।
1: बिल्कुल, हाँ, तीसरी किताब के बारे में आप बताइए फिर उसके बाद गीत सुना।
0: सो क्योंकि मैंने बताया आपको कि पहली दो किताब सेल्फ पब्लिश थी तो फिर कोई पब्लिशर उसको बेच के राजी नहीं है, तो इस किताब के लिए ये मैंने मुझे शुरू से ही वेडिंग्स में बहुत इंटरेस्ट था कि हर वेडिंग में क्या सेरेमनी और उसका क्या महत्व है। और अक्सर जो पंडित थे या किसी के पास भी रिसोर्सफुल बंदे के पास जाती तो वो बता नहीं पाते थे कि इसका क्या मतलब है, ये क्यों करते हैं, या करते भी है तो हर एक में अलग अलग तरीका था समझाने का कि बेल पत्ते का या तोरण में क्यों का पत्ता यूज होता है। तो आपको यही बताते हैं क्योंकि तोरण में क्योंकि मैंगो लीव लगाते हैं क्योंकि मैंगो एंटीबैक्टीरियल होता है और उसमें जो मच्छर आदि नहीं आते अंदर, ये कोई नहीं समझता। वो यही कहता है कि मैंगो क्योंकि मैंगो ट्री इज अ रिलीजियस ट्री, इसलिए। तो हर एक में साइंटिफिक रीजन भी था। तो मैंने ये शुरुआत की 2017 में, तो मेरी दूसरी किताब थी, तो 18 में मैंने इसी से शुरू किया कि क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती है और क्या इनका महत्व है। बिच्छुए क्यों पहनते हैं या गाना क्यों पहनते हैं, गुजरातियों में क्यों शादी ऐसी है, चार फेरे क्यों हैं और सात फेरे क्यों हैं और क्या महत्व है और कौन कौन सी। सबसे पहले शादी हुई तो मैंने ऋग वेदा पढ़ा सबसे पहले क्योंकि हम लोग वैदिक वेडिंग है जो हम वेडिंग्स करते हैं हिंदूज, दीज आर वैदिक वेडिंग। तो वहां से शुरू किया कि पहली जो शादी हुई है वो एक ऋषि करदम और विभूति नाम की, विभूति कहते हैं कोई देवभूति नाम की प्रिंसेस के साथ, तो ये बड़ा इंटरेस्ट मुझे लगा और उससे मैंने अपनी शुरुआत की संस्कार के बारे में, उसमें हिंदू धर्म के बारे में। तो जैसे मैं लिख रही थी तो किसी से मुलाकात, उसने कहा कि सिर्फ हिंदू नहीं, यू राइट और अदर वेडिंग। तो फिर मैंने रिलीजन वाइज मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिंधी, जैन, बुद्धिस्ट और ट्राइबल वेडिंग पे भी रिसर्च की और मेरा मतलब ये कार्य शुरू हुआ। और मैं कहना चाहूंगी कि मुझे ये रिसर्च करते हुए बहुत अच्छा लगा। मैंने कई लोगों से मुलाकात की, गुजरात में वेडिंग्स अटेंड की, कलकत्ता वेडिंग्स के बारे में मुझे नहीं पता था बाशी ब्याह क्या होता है, मेघालय गई, गोवा गई। तो यू नो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर। एक हमारे गुजरात के पास ही एक आइलैंड्स है, वहां कुछ ट्राइबल्स से भी मुलाकात की। तो दिस बुक ऑन नाम है इसका मैजिक ऑफ इंडियन वेडिंग। मैजिक इसलिए कि ये जो संस्था है ये हमारे 5000 सालों से अधिक से ये अगर चालू है और यहाँ डिवोर्स रेट सिर्फ 1% है तो कुछ तो होगा हमारी पूरी सेरेमनीज में जिससे कि लोग इससे बंधे हुए हैं। और एक मजेदार बात है कि जब शादी हो रही थी किसी की तो पंडित ने कहा हो गए सात, तो वो लड़का कहने लगा कि नहीं किरण आंटी से पूछो सात हुए हैं कि छह हुए हैं क्योंकि आंटी हमारे पास बैठी है। तो इमेजिन करो वो यंग लड़के को भी ये था कि पूरे सात फेरे होने चाहिए। तो और एक और मेरा नेफ्यू है, वो चाहता था कि मेरी शादी ना सिंपल हो जाए, लेकिन जब वो हिंदुस्तान आया और उसने देखा कि यहाँ तो हर मौके पे एक रिसेप्शन होती है या प्रोग्राम होता है, तो उसने कहा मेरी भी शादी उसी तरह से हो। ही वॉज गेटिंग मैरिड टू अ ब्रिटिशर पर फिर उसकी शादी हमने पूरी तरीके से की। और मैं ये भी बताना चाहूंगी अपने बच्चों की शादी करके भी बहुत मजा आया। I enjoyed there thoroughly and had all the ceremonies from puja to Ganesh thapna to wo jo dal ke saath pura om banate hain aur fir kaise halwai ko bithate hain aur kaise har brick ke upar om likha jata hai swastik ka nishan banate hain to ye sabhi meri is kitab jo ki maine aap magic of indian wings rupa publications ne ki hai aur rupa ne bhi apne jee jaan se ye banayi hai kitab aaj iska kafi charcha hai iski international रिलीज भी किया हमने दुबई में और कुछ स्कूलों ने खरीदी है और एकेडमिक पर्पस के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज में भी गई है प्रेसिडेंट हाउस में भी मैंने भेजी है तो अब इसको मैं इसको पुश कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको पढ़ें और उसके लिए और एक अच्छा ये है कि मैंने जो विजुअली हैंडीकैप्ड है एक सक्षम नाम की संस्था है उसके साथ जुड़कर इसको ब्रेल में भी कर दिस इज माय चैरिटेबल साइड व्हिच आई वांट टू डू फॉर देम और जो पुस्तक ये कविताओं की पुस्तक ऑलरेडी ब्रेल में हो चुकी है और ये हिंदुस्तान की 600 लाइब्रेरी जो कि विजुअली हैंडीकैप्ड के लिए है उनको ये उपलब्ध है और उनसे मुझे अक्सर मैसेज आते हैं कि बहुत अच्छी किताब सो ये मेरा मतलब सोसाइटी को वापस दे रही हूँ जो कि मुझे इतना कुछ मिला है भगवान से हमेशा मेरा मैं थैंक्स ही करती हूँ और मुझे बुद्धिस्ट चांटिंग में विश्वास है हनुमान जी में बहुत विश्वास है पूरी मैंने काफी सारी पिलग्रिम्स किए हैं कैलाश मानसरोवर भी गई हूँ वो मेरा सबसे टफेस्ट ट्रैक था 220 किलोमीटर इन 22 डेज तो इन दैट एक्सट्रीम तो ये किताब मुझे बहुत प्रिय है और मैं चाहती हूँ कि कोई भी चैनल हो या कोई भी वो खरीदे और ये उपलब्ध कराए और इसके बारे में अलग बात भी करे
1: बिल्कुल बिल्कुल जी डॉक्टर किरण जी बहुत अच्छी बात आपने बताया अपना मैजिक ऑफ वेडिंग इंडियन कल्चर और अलग अलग कल्चर्स का वेडिंग कैसे होता है उसमें आपने पूरी तरह से बताया गया है और मैं चाहूंगा कि जैसे गीत और गजलों की बात आपने कही तो पसंदीदा गजल या गीत जो भी आपको अभी याद हो तो जरूर हमें कुछ लाइनें जरूर सुनाइए
0: तो वैसे तो पंजाबी के गीत मैं ज्यादा गाती हूँ ढोलकी पे लेकिन अच्छा। दो एक पैराग्राफ है एक पुरानी गीता दत्त का गाना है और वो उसमें लहजा पंजाबी भी है और फन लविंग है एंड आई एम बेसिकली अ फन लविंग पर्सन उसका मैं सुना
1: अच्छा।
0: देती हूँ गीता दत्त का 1954 का गाना शायद मतलब मुझे ईयर शायद गलत हो पर गीता दत्त इज वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर्स एंड उसकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये गाना अक्सर मेरी भाभी गाया करती थी और फिर हमने सीखा उनसे तो पेश है चल टोल करे ओ रहे परे परे नए जमाने का परवाना जलने से डरे ओ टालम टोल करे ओ रहे परे परे पास शमा के एक परवाने ने ये भेजी अर्जी ये दिल है दीवाना तेरा बोल तेरी क्या मर्जी अरे मिला ये जवाब सुनो जी जनाब

0: करे और रहे परे परे। थैंक यू।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गीता दत्त का सुनाया, पुराना और मस्ती भरा गीत था। थैंक यू सो मच। किरण जी, एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे डलाउजी लिखने में कितना टाइम लगा और फिर ये जो नया वाला लिखा मैजिक वेडिंग, इसमें कितना समय लगा, थोड़ा सा उसके बारे में डिफाइन कीजिए।
0: डलहौजी की किताब मैंने जैसे आपको बताया कि जनवरी में मेरे हस्बैंड चले गए थे, तो मैं अगस्त में ये शुरू किया था, 2015 में। लेकिन तब मैं क्योंकि इतनी बेचैन थी तो मैं पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पाई, और मेरी रिसर्च का काफी काम क्योंकि डलहौजी से जुड़ा था। सर्दियों में वहां हम रहते नहीं, तो तीन तीन चार चार महीने के बाद गैप भी रहता था। तो 2015 की अगस्त से लेके और 2017 की अगस्त में मैंने ये लॉन्च की, तो 2 साल से कम में मैंने रिसर्च भी की और लिखा भी। और इसमें वो सब महानुभावों के बारे में लिखा है जो कि डलहौजी इंडिपेंडेंस वॉर के टाइम, इंडिपेंडेंस लड़ाई के टाइम वहां रहे थे। सुभाष चंद्र बोस जी और नानक सिंह वहां थे, जिन्होंने आपको पता है जलियांवाला बाग पे ऊपर लिखी थी किताब खूनी खूनी ऐसा ही कुछ नाम है। और भी उन जो टैगोर आते थे, और टैगोर ने वहां कहा था कि हम क्यों, मुझे कलकत्ता वापस जाना पड़ता है, हम क्यों नहीं डलहौजी में रह सकते क्योंकि इतनी सुंदर जगह है, और व्हाई वी हैव टू गो बैक। ही वाज वो टेल हिज फादर, ही वाज अ यंग बॉय एंड ही स्टार्टेड राइटिंग ओवर देयर ओनली इन दिस। और जो भी संस्थाएं वहां एनजीओ चलती हैं उनके बारे में भी इसमें मैंने डलहौजी में, तो ये 2 साल में मैंने रेडी की। ये जो मैजिक ऑफ इंडियन वेडिंग्स है इसमें रिसर्च ज्यादा थी, और क्योंकि मुझे बहुत सारे जैसे सिख धर्म के बारे में लिखा है, तो जो सिख कर्ता होते हैं इन द गुरुद्वारा, उनसे मुलाकात की, फिर शास्त्रीय लोगों से बात की क्योंकि आर्य समाज वेडिंग का मेंशन है, फिर पंडितों से मिली। और आपको पता है कि ये लोग जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं वो सहमत नहीं होते, तो फिर मुझे रिसर्च किताबों में जाना पड़ा, क्या ये पहले आता है कि वो पहले होता है। तो गूगल को जो मैंने मतलब रेफर किया, ओनली के जो सीक्वेंस ऑफ वेडिंग सेरेमनीज है वो सही हो। और फिर आपको पता है हरियाणा में गोत्र के ऊपर बहुत चर्चा रहती है, तो गोत्र की भी मैंने रिसर्च की, फिर ऑस्पिशियस डेज की, फिर कितने गुण मिलने चाहिए उस पे की। तो इस किताब में मतलब मैंने जी

0: कान लगाकर 2 साल से अधिक लगे इसमें, और फिर से लॉकडाउन हो गया तो आई कुड नॉट कॉन्टेक्ट द लाइब्रेरीज। और इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि एक बुक स्टोर में मैं गई जो कि यहाँ का बहुत मशहूर और मैक्सिमम बुक से जहाँ भारी सन्स है, और मैंने वहां जाके कहा कि मुझे एक वेडिंग्स पे बुक चाहिए। तो उन्होंने कहा बहुत है, तो मेरी ये शर्त है कि जितनी किताबें हैं मैं वो खरीदूंगी, आप निकालिए। तो उन्होंने एक लड़के को बोला कि दीजिए इनको एक किताब, तो हिंदुइज्म पे निकाल दी या मुस्लिम रिलीजन पे निकाल दी, क्रिश्चियनिटी पे निकाल दी, लेकिन शादियों पे कोई नहीं। और एक किताब मिली निकली बिग फैट वेडिंग, जिसके बारे में वो खर्चे के बारे में बता, और एक निकली जिसमें वो बाद में जिसमें सिर्फ मंत्र दिए गए और मंत्र की सीखने। तो अल्टीमेटली वो कोई भी किताब नहीं निकाल सके। फिर मैं लाइब्रेरीज में गई तो आई आस्क्ड फॉर आई वांट अ बुक ऑन वेडिंग्स, दे सेड मैम देयर इज नो सच बुक। सो 5-6 लाइब्रेरीज में जाने के बाद मैंने तय किया कि ये किताब तो मुझे लिख। और फिर मैंने इसमें शादियों के गाने भी मेंशन किए हैं, सुपरस्टिशंस मेंशन किए हैं, और मैं सोच रही थी हिंदूज में ही सुपरस्टिशंस हैं, लेकिन क्रिश्चियन वेडिंग्स में आप हैरान हो जाएंगे कि उसमें उसकी लिस्ट मुझे अलग दायरे में देना पड़ा उसको, क्योंकि इतनी सुपरस्टिशंस हैं उनके। तो यू नो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। और मैं आपको किताबों के बारे में इसलिए बताती हूँ कि अब मैं अपना 36 साल का गवर्नमेंट सर्विस ऑलमोस्ट मैं भूल चुकी हूँ कि आई लाइक कॉल्ड एन ऑथर। इट इज सच अ वाइड वर्ल्ड, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। अभी हाल ही में मैं जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में गई थी और रोज लर्निंग एक्सपीरियंस है और खूब किताबें पढ़ती हूँ। टीवी नहीं देख, आपको पिक्चर बट टीवी नहीं देख, तो इसमें मेरे को समय पढ़ने के लिए मिल जाता है। सो
1: बिल्कुल एक राइटर को टीवी और फिल्में कम देखनी चाहिए, क्योंकि उनके अपनी क्रिएशन है, दूसरों की अगर चीजें देखेंगे तो क्रिएट करने में उनको थोड़ी मुश्किल है, लेकिन आप दूसरों की किताब पढ़ सकते हैं।
0: जी। और म्यूजिक तो मुझे राजस्थानी म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। यू विल बी सरप्राइज्ड कि माउंट आबू भी हम गए थे, मेरे हस्बैंड वहाँ पुलिस का एकेडमी है, वहाँ गए थे, आई फॉलोड हिम। राजस्थानी म्यूजिक में कोई ऐसा नहीं है जो जिसके साथ कोई डांस ना करे। तो अभी भी जयपुर लिटरेरी फिल्म में सब अंग्रेज वहाँ डांस कर रहे थे, जब वो कुतले खान है आप जानते ही होंगे, उनका म्यूजिक था उससे, तो ही कीप द ऑडियंस सो मेसमराइज्ड। तो हमने मैं कहती हूँ कि हमारे अपनी कंट्री में इतना कुछ, और राजस्थान वेडिंग के बारे में भी जो लिखा है, रॉयल वेडिंग का अलग है और राजस्थानी वेडिंग का अलग है। तो आप जरूर ये अमेज़न में भी अवेलेबल है, आप खरीदिए और पढ़िए। और मैं सोच इसका रूपांतर कराऊं हिंदी में, लेकिन लोग कहते हैं कि हिंदी में वो ये महंगी किताब है तो शायद लोग उसे पढ़ेंगे नहीं या खरीदेंगे नहीं। सो अभी मैं दो मझधार में उसके बारे में सोच, और अगली किताब का भी अभी मेरा चल रहा है जद्दोजहद मेरे दिल में दिमाग में कि किस पे लिखूं। बहुत सारे आइडियाज हैं लेकिन अभी सिरे नहीं चढ़ा कोई, और वो इन समर्स में मेरी नेक्स्ट किताब शुरू। और मेरा ख्याल है कुछ कैमरे में गड़बड़ है, तो मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू रखती हूँ कि जब मेरी जॉब थी तो आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट वुमन ऑफिसर्स टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द टाउन ऑफ डलहौजी एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट, एंड आई फील वेरी नाइस अबाउट दिस। और आई हैड वेरी गुड पोस्टिंग्स इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज like Ministry of Defense, Commerce, Petroleum. मेरी एक PhD भी Petroleum में ही है, एक Iron Ore पे है, क्योंकि Commerce में मैं I was dealing with these subject, and बहुत सारी मुझे learning experiences job से ही मिली, और कैसे events hold करनी है, कैसे international meets करनी है, कैसे delegations लेके बाहर जाना है, और काफी कुछ सीखा 36 सालों में, और I enjoyed every post, and बहुत नई नई जगह पे भी जाना पड़ता है। और जब मैं बॉर्डर रोड्स की इंचार्ज थी तो आई वेंट ऑल द वे टू अरुणाचल प्रदेश राइट अप टिल वेयर द चाइनीज बॉर्डर इज, दैट वाज एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। सो इट वाज अ लॉन्ग जर्नी, एंड इन इस बीच में मैंने अपनी हॉबीज भी कंटिन्यू, आई डिड अ लॉट ऑफ निटिंग, आई डिड लॉट ऑफ रीडिंग एंड लर्निंग योगा, समटाइम्स पियानो, लेकिन पियानो शुरू में ही सीखनी चाहिए, इट्स डिफिकल्ट टू लर्न एट दिस स्टेज। एंड व्हाट एल्स कैन आई से दैट दिस life, I think I've had a very full life. I'm still living a full life. I do a lot of active walk-related works. I interact with a lot of people. I am a motivational speaker. I like to discuss things with young children, especially those who are in the formative years. काफी teenagers हैं जिनसे मैं मुलाकात करती हूँ और उनको समझाती हूँ कि life has to have a very positive trend so that you go far in life. So यही मैं कहना कहना चाहती हूँ कि सभी जो हैं वो अपनी लाइफ पॉजिटिवली चलाएं, अपनी एक्सरसाइज करें, अपने आप को हेल्दी रखें और जो भी बांटे अच्छा बांटे, वेदर इट्स चैरिटी और खुशियां, क्योंकि सॉफ्ट स्टोरीज के लिए दुनिया के पास टाइम और वो फिर नेगेटिविटी है। और एक बात में जो अपने इस एज ग्रुप वालों को बताना चाहूंगी, प्लीज स्लीपिंग पिल पे डिपेंडेंट ना हो। अगर रात को नींद नहीं आती, जो कि अक्सर हमारी एज पे हो जाता है, उस वक्त किताब पढ़ लीजिए। आप दिन को सो लेना, कोई काम नहीं है, कोई जॉब नहीं है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन स्लीपिंग पिल पे मत। मेरी एक फ्रेंड है जो रोज लेके सोती है, तो उसका सारा दिन खराब होता है क्योंकि शी इज देन एग्जॉस्टेड। सो दिस इज व्हाट आई हैव माय एडवाइस फॉर द एल्डरली, एंड यू मस्ट वॉक एंड ईट वेल बट healthy, and last of all for the youngsters, I think they need to be less involved with fun and more in educating themselves, in learning new things, in getting a lot of inputs. So I think padhai ke ilawa har ek ka एक ना एक हॉबी होनी चाहिए, बेशक वो किताबें हो, म्यूजिक हो, गोल्फ हो, टेनिस हो, और अपने आप को उत्तीर्ण बनाएं। दिस इज माय, कुछ भी है ना, वो हाफ नहीं छोड़, यू मस्ट रीच वेरेवर यू कैन एंड डू योर बेस्ट इन लाइफ एंड मेक लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, शेयर हैप्पीनेस, शेयर जॉयज एंड बी गुड टू पीपल, बी गुड टू दोज हु आर नॉट सो वेल ऑफ, डू चैरिटीज, हेल्प दोज इन नीड। दीज आर माय थिंग्स व्हिच आई प्रैक्टिस ऑन।
1: बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छी बातें आपने बताया कि आप किस तरह से अपने लाइफ को जी रहे हैं और लोगों की सेवा करने की बात भी आपने बताई है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपको सुनकर। और जैसे कि अभी गुड़गांव में है, तो गुड़गांव की कुछ बातें जरूर शेयर कीजिए वहाँ पर क्या अभी।
0: गुड़गांव इज द न्यू दिल्ली और द न्यू हॉटस्पॉट। जब हम दिल्ली से शिफ्ट किए थे तो हमें लगता था हम कैसे गुड़गांव में रहेंगे, लेकिन यहाँ पे बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट स्कूल्स, बेस्ट एनवायरमेंट, और लॉकडाउन तो बहुत ब्लू स्काई दिखता था, और लेकिन मॉल्स हैं, छोटी शॉप्स हैं, बड़ी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ कोई किसी टाइप की कमी नहीं है। एक अगर कमी मैं महसूस करती हूँ वो है एक गुड थिएटर कॉम्प्लेक्स, थिएटर मतलब जहाँ लाइव थिएटर होता है, क्योंकि एक शुरू हुआ था लेकिन वो ज्यादा चल नहीं पाया। बाकी गुड़गांव में हर टाइप के लोग हैं, कुछ दखियानूसी टाइप है, कुछ बहुत मॉडर्न है, और कुछ अभी भी पुराने जमाने के साथ चल रहे हैं, लेकिन देन दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ पैराडॉक्सेस। यहाँ हर किसी को रहने की अपनी तरह से इंडिपेंडेंस है, और अगर अच्छी तरह से रहें, भाई बहन बन के रहें, तो व्हाई नॉट, अपनी अपनी बेशक पुरानी ख्याल आता है या नए, उसमें रहें और खुश रहें और खुशियां बांटें। और मैं तो कहती हूँ कि जैसे मैंने कहा था, नॉलेज की कोई कमी नहीं, मतलब सीखने में कोई कमी नहीं, और अगर आप नॉलेजेबल हो तो आप कहीं पे भी खरा उतर सकते हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और सीखने की जिज्ञासा हो तो कहीं भी आप सीख सकते हैं, और किसी भी एरिया में आप अच्छा अपने आप को सर्वाइव भी कर सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा बेहतर बना के लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं।
0: इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगी।
1: बिल्कुल,
0: अभी एक अखबार में खबर आई थी कि पोस्ट ऑफिस को दोबारा रिवाइव करने की सोच रहे हैं, तो क्योंकि लोगों को ने लेटर लिखना बंद कर दिया, तो दे डोंट नो व्हाट द चार्म ऑफ दिस थिंग इज। तो डलहौजी वाली किताब में मैंने लिखा है कि पुराने जमाने में वो जब चिट्ठियां लेके आता था तो उसको जंगल के बीच में से भी जाना पड़ता था, तो उसकी जो पोस्ट बैग था उसको एक सोटी के ऊपर था, एक लंबी सी सोटी लोहे की थी जिसके त्रिकोण था और उसमें घुंघरू लगे थे, तो या बेल्स लगी थी, तो जैसे ही वो गुजरता था और अगर कोई जानवर होता था वो दौड़ जाता था क्योंकि वो ठक ठक करता जाता था, और उन दिनों बेल्स नहीं होती थी, टेलीफोन्स नहीं होते थे सबके पास, तो वो उसी को बजाता था, तो जो जिनके चिट्ठी होती थी वो विलेजेस से बाहर आके एक सेंट्रल पॉइंट पे चिट्ठियां लेते थे। तो ये घुंघरू वाली बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि देखो वो, और घुंघरू की आवाज सुन के, बेल्स की आवाज सुन के जो जानवर भी थे वो दूर चले जाते थे कि इसके पास कोई सॉलिड, कोई लकड़ी या लोहा है। सो किताब लिखते लिखते आप कई कुछ करते हो, इसी तरह से मैजिक ऑफ इंडियन वेडिंग्स में मुझे सबसे जो अच्छी बात लगी वो ये कि गुजराती वेडिंग्स में शादी से पहले एक विमेन सारी इकट्ठी होके एक जगह एक गड्ढा खोदती हैं और उसमें एक संपूत डालती हैं, एक वेसल, और उसमें चीजें डाल के कहती हैं कि अब जितनी भी किसी के आपस में लड़ाई झगड़ा है रिश्तेदारों में वो सब हम यही दफन करते हैं और शादी में कोई अपशगुन ना हो और सब अच्छी तरह से इंजॉय करे. मेरा ख्याल है ये बहुत ही अच्छी बात है. और सेकेंड थिंग व्हाट आई टेल यू अबाउट द वेडिंग्स इज कि मणिपुर में जब लड़की खुद ही जयमाला गूंथती है और उस वक्त एक पंडित वहां पे या तो गीत गाते हैं या मंत्र पढ़ते हैं कि तुम अपनी अच्छी वेडिंग के लिए, सक्सेसफुल वेडिंग के लिए और अपने हस्बैंड की दीर्घ आयु के लिए प्रेयर करो जैसे जैसे तुम फूल गूंथ रही हो. तो कुछ कुछ जो शादियों में अलग अलग जगहों पे होता है ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक इंडियन वेडिंग इज मैजिकल एंड
1: बिल्कुल बिल्कुल. डॉक्टर किरण जी काफी अच्छी बातें आपने बताया है और सुभाष जी ने याद भेजा है, सुभाष जी जलगांव से याद कर रहे हैं और साथ में लिखा है दीदी एक बहुत अच्छी बात आपकी लगी, नींद नहीं आती है तो अच्छे बुक्स को पढ़िए, लाइफ एंजॉय करे दाता बने एक्सेट्रा. सो ब्यूटीफुल नाइस एक्सपीरियंस, दिल से शुक्रिया आपका.
0: थैंक यू सो मच जिन्होंने ये मुझसे जुड़ रही हैं. मैं तो बेसिकली अ पॉजिटिव पर्सन हूँ लेकिन रंग मेरी जिंदगी में बहुत है और रंगों की ही मैं बहुत तारीफ करती हूँ कि अगर आप रंग पहने तो आप खुश रहते हैं. वैसे तो सफेद भी एक रंग है जिसमें खुशी जाहिर होती है, पवित्रता है, लेकिन आई फील कि डिसिप्लिन के मुताबिक अगर आप सुबह सही टाइम पे तैयार होके जाए तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है लाइफ में. और मेरा तो ख्याल है जिंदगी को सेलिब्रेट करना चाहिए और मैं वैसी जिंदगी लीड कर रही हूँ. मैंने आपको बताया नहीं, आई एम 75 ईयर्स ओल्ड एंड आई कीप myself fit और मैं रोज अपनी जिंदगी सेलिब्रेट करती हूँ और खुश रहती हूँ.
1: चलिए डॉक्टर किरण जी बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि ये
0: बताना चाहूंगी जी. देखो लोग सोचते होंगे कि कभी ये सैड नहीं होती, बहुत होती हूँ और वो सैडनेस है मेरी कविताओं में निकलती है और वो सिर्फ मेरा अंदर जानता है कि मैं कितना अपने हस्बैंड को मिस करती हूँ. बच्चों से भी अलग इस स्टेज पे होता है इंसान, लेकिन मैं अपनी जिंदगी अपने तौर तरीके से जी रही हूँ किताबों के साथ, फेस्टिवल्स के साथ. लेकिन वो जो कुछ समय दिन में आता है या शाम को आता है जब दिन और रात मिलते हैं उस वक्त एक बेचैनी होती है क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड उस वक्त चाय इकट्ठे पिया करते थे एंड वी हैड लॉट ऑफ कंपनी, वी टू शेयर बुक्स, नॉलेज, म्यूजिक एंड रोज की दिनचर्या के बारे में हम बातचीत करते थे. सो वो जब मैं कविताओं में लिख देती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मेरे अंदर का वो सारा जो नेगेटिविटी है बाहर निकल गई. एंड देन और एक बात जो मैं जब आप नहीं जुड़े हुए थे मेरे साथ, मैं ये कह रही थी कि एल्डरली को कभी भी स्लीपिंग पिल नहीं खानी चाहिए. अगर रात को उठते हैं तो उठ के कुछ किताब पढ़ लें, टीवी देख लें, आजकल तो 24 घंटे आता है, लेकिन स्लीपिंग पिल पे निर्भर ना हो. मैंने एक दिन भी स्लीपिंग पिल नहीं पी कभी और आपको पता है कि लॉस ऑफ डेथ इज अ ग्रेट लॉस. सो मैं यही बताना चाहूंगी, अपने आप को फिट रखें, खूब तैयार हो, अब नहीं तो कब. सो एट 71 इफ आई डोंट वेयर द बेस्ट, लिव द बेस्ट, फिर कब. सो दिस इज माई एडवाइस टू द एल्डर्स कि वो खुश रहें और एक्सरसाइज करें.
1: बिल्कुल बिल्कुल, एक्सरसाइज करें, फिट रहें और अपने किताबों के साथ जुड़े ताकि आप तनाव से दूर रहेंगे और एक अलग अपनी दुनिया क्रिएट कर सकते हो. इसलिए आप किताबों के साथ जितना ज्यादा किताब पढ़ेंगे उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी और नए नए आइडियाज आपके अंदर क्रिएट होगा. और कुछ आता है तो लिख के रखिए, तो इससे भी आपका समय बीतता जाएगा और नींद के प्रॉब्लम से आप अपने आप ही दूर हो जाएंगे जैसे किरण जी कर रहे हैं. तो निश्चित तौर पर क्रिएटिविटी के ऊपर आपका अगर फोकस होता है तो बाकी सब चीजें आपको टाइम कम पड़ने लगता है, फिर टाइम खाली नहीं रहता आपके पास. अगर टाइम है और खाली है तो फिर आपको फिर नींद नहीं आ रहे ऐसे टाइम पे, तो फिर आपको गोलियां वगैरह की याद आएगी. लेकिन आप उसमें अगर कुछ करते हैं, क्रिएटिविटी, किताबें पढ़ते हैं, किताबें के कुछ संदर्भ में लिखना शुरू करेंगे तो नेचुरली आपका टाइम भी अच्छा हो. तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें. एंड बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया किरण जी अपने जीवन से, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. और जाते जाते मैं कहूंगा कि हमारे सभी जो मित्र हैं वो आपको सुन रहे हैं तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे.
0: मैं तो यही कहूंगी कि वर्क टुवर्ड्स एक्सीलेंस ऑलवेज एंड सेलिब्रेट ईच डे ऑफ योर लाइफ, रिमेन पॉजिटिव एंड थिंक गुड. और जो जो भी फेथ के लोग हैं अपने अपने फेथ को अपने साथ रखें, उसको एक मुद्दा ना बनाएं.
1: बिल्कुल,
0: थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी. धन्यवाद
1: जी डॉक्टर किरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शुभकामनाएं आपको. और आपने जो नई किताब लिखी है मैजिक ऑफ वेडिंग, तो ये किताब अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचे और इसका आप प्रेम लिपि भी किताब बना रहे हैं तो वो भी जल्दी से बन जाए और सारे लोग आपके इस किताब को पढ़े, अच्छी तरह से समझे. और शादी का जो अलग अलग कल्चर है अलग अलग धर्मों में, वो आपने इसको कलेक्टिवली उसको रिसर्च करके आपने विचार मंथन करके पूछ पूछ के लिखा है, तो नेचुरली ये किताब यूनिक है क्योंकि ऐसी किताब फिर मिलेंगे नहीं। और आपने उसके बारे में बताया कि इस टाइप की किताबें अभी नहीं छप, तो निश्चित तौर पे किसी एक विषय को लेकर हम लोग काम करते हैं तो वो लोगों को अच्छा भी लगता है। तो थैंक यू सो मच और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो
0: Amazon
1: मित्रों
0: पे
1: आज की
0: अवेलेबल है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: Amazon पे
1: अमेजोन पे
0: अवेलेबल है
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जी।
1: किताब का नाम अमेजोन पे आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो आप इसे जरूर पढ़िए। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हमने डॉक्टर किरण जी से बातें की और आशा करता हूँ उनके जीवन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। उनके लाइफ में बहुत सारे मोटिवेशन फैक्टर्स हैं जिसे आप अपने लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए जब भी आप मायूस ना हो अपने जीवन को एक अलग ढंग से जीने का एक नया तरीका अपनाइए और लोगों को हेल्प करते हुए नेचर के साथ अपने जीवन को बिताएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये सारी खुशियाँ, सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय
0: आदियो।
1: भारत ओम शांति।

नमस्ते, मैं हूँ आरजे केवल। दादी प्रकाश मणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाए। याद रखे, 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्ते, मैं हूँ आरजे केवल। दादी प्रकाशमणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाए। याद रखें, 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? क्यों बैठे हैं चुपचाप? अरे भाई, मैं आ गया हूँ रंग जमाने और आप सबको मीना से मिलवाने। लेकिन ये मीना, हाँ वो रही स्कूल के स्टाफ रूम में टीचर जी के साथ। क्या कहा? कौन टीचर जी? अरे भाई, टीचर जी हैं मीना के स्कूल की नई अध्यापिका। आज ही आई हैं टीचर जी। अभी मीना टीचर जी को सब बच्चों की कॉपियां दिखा रही है।
1: हर पन्ने पे इतनी गलतियां। मीना, ये कॉपी किस बच्चे की है?
2: टीचर जी, ये कॉपी चिंटू की है, जो आखिरी बेंच पे बैठा था चश्मा लगा के।
1: ओह अच्छा अच्छा। मीना एक बात बताओ, ये चिंटू हमेशा ऐसे ही चुपचाप रहता है?
2: टीचर जी, पता नहीं चिंटू को क्या हो गया है, वो पहले ऐसा नहीं था। पहले वो सबसे खूब हंसता बोलता था, साथ में खेलता था, लेकिन अब तो वो बिल्कुल चुप रहता है। ना किसी से बात करता है और ना ही किसी के साथ खेलता है, बल्कि पिछले कुछ महीनों से वो स्कूल भी कभी कभी ही आता है।
3: कभी कभी ही आता है, ना हंसता ना हंसाता है।
2: मिट्टू चुप।
1: अरे ये क्या,
2: क्या हुआ टीचर जी?
1: ये देखो मीना, चिंटू की कॉपी। लगभग 3 महीने पहले उसके किए काम में एक भी गलती नहीं है, बल्कि हर पन्ने पे तुम्हारी बहन जी ने उसके लिए बहुत अच्छे और शाबाश जैसे शब्द लिखे हैं। मीना, क्या पिछले 3 महीनों में चिंटू को कोई बीमारी या उसके घर में कोई समस्या वगैरह तो नहीं?
2: नहीं टीचर जी।
1: तो क्या तुम्हारे स्कूल में कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जिसकी वजह से चिंटू?
2: टीचर जी, हो सकता है राघव सर की वजह से।
1: राघव सर?
2: हाँ टीचर जी, 3 महीने पहले राघव सर हमारे स्कूल में पढ़ाने आए थे, सिर्फ 2 हफ्तों के लिए। राघव सर बहुत गुस्से वाले थे, वो बात बात में बच्चों को डांटते थे।
1: क्या राघव सर ने चिंटू को भी कभी डांटा था?
2: हाँ टीचर जी, बहुत बार, बल्कि

0: बच्चों, क्या तुम्हें कहानी सुनना अच्छा लगता है?
1: जी।
0: चिंटू, तुम कुछ नहीं बोले, क्या तुम्हें कहानी सुनना अच्छा नहीं लगता?
2: अच्छा लगता है टीचर जी।
0: शाबाश। बच्चों, जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है स्कूल हो तो ऐसा। बहुत साल पहले एक छोटा सा राजकुमार था। उस राजकुमार का नाम था सूरज। सूरज को स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था। वो रोज स्कूल जाता था। वहां जाके पढ़ता था, लिखता था, अपने दोस्तों के साथ खेलता था, सबसे खूब बातें करता था, खूब हंसता था। लेकिन एक दिन सूरज के स्कूल में एक नया टीचर आया। उस टीचर का नाम था कड़कलाल। कड़कलाल बहुत गुस्से वाला आदमी था। सबको डांटता रहता था। कभी किसी को हाथ ऊपर करके खड़ा करवा देता तो कभी किसी को मुर्गा बनने को कहता। एक दिन कड़कलाल ने एक छोटी सी बात के लिए सूरज को भी सजा दे दी।
3: फिर क्या हुआ टीचर जी?
0: सोचो सोचो।
4: टीचर जी, मुझे तो लगता है कि उस स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा ने कड़कलाल को स्कूल से निकाल दिया होगा।
0: बिल्कुल ठीक सोचा मीना ने। सूरज और उसके दोस्तों ने कड़कलाल की शिकायत की और कड़कलाल वहाँ से चला गया। बच्चों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई।
5: कहानी में आगे क्या हुआ टीचर जी?
0: तुम सब सोचो क्या हुआ होगा आगे।
2: मैं बताऊं टीचर जी?
0: हाँ हाँ चिंटू बताओ।
2: राजकुमार सूरज ने पढ़ना लिखना, स्कूल जाना सब छोड़ दिया होगा।
0: हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कड़कलाल के बुरे व्यवहार के कारण सूरज को इतना बुरा लगा कि उसे स्कूल के नाम से ही नफरत हो गई। सूरज उस दिन के बाद कभी स्कूल नहीं गया। यही नहीं, अब तो सूरज ना अपने किसी दोस्त से बात करता, ना ही उनके साथ खेलता।
4: फिर क्या हुआ टीचर जी?
0: समय बीतता गया। अब सूरज राजा बन चुका था। वो अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ महल में रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, महाराज बच्चे बड़े हो गए हैं, हमें स्कूल में इनका दाखिला करा देना चाहिए। सूरज बोला, नहीं महारानी, अगर हमारे बच्चे स्कूल में गए तो ये भी मेरी तरह उदास और दुखी हो जाएंगे।
4: फिर क्या हुआ टीचर जी?
0: मीना, महारानी बहुत समझदार थी। उसने सूरज से कहा, महाराज आप तो इस राज्य के राजा हैं, आप एक ऐसा स्कूल खुलवाइए जिसमें ऐसे नियम हो जिससे सभी बच्चे उस स्कूल में आराम से खुशी खुशी पढ़ सके, हमारे बच्चे भी। बच्चों, क्या तुम बता सकते हो कि महाराज सूरज ने अपने उस स्कूल में क्या क्या नियम लागू किए होंगे ताकि सभी बच्चे उस स्कूल में मजे से पढ़ लिख और खेल सके? सोचो सोचो।
2: टीचर जी, ये भला हम लोग कैसे सोच सकते हैं?
0: बड़ी सरल सी बात है चिंटू। बच्चों, राजा सूरज ने अपने स्कूल में वही नियम लागू किए जो तुम लोग अपने स्कूल में चाहते हो। अब सोच के बताओ कि तुम लोग अपने स्कूल को कैसा देखना चाहते हो।
6: टीचर जी, मैं तो चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में हर टीचर बच्चों से प्यार से बात करे और हमें नए नए मजेदार तरीकों से पाठ पढ़ाए।
0: शाबाश दीपू। चिंटू, अब तुम्हारी बारी।
2: टीचर जी, मैं चाहता हूँ कि किसी भी स्कूल में कोई भी टीचर ना तो बच्चों को डांटे ना ही उन्हें सजा दे।
0: बिल्कुल ठीक सोचा तुमने चिंटू। और कोई?
4: मैं चाहती हूँ टीचर जी कि सभी टीचर अपने विद्यार्थियों से एक सा व्यवहार करें, जाति और धर्म का भेद किए बिना।
0: वाह मीना, क्या बढ़िया बात कही है तुमने। कृष्णा, तुम भी कुछ कहना चाहते हो?
7: टीचर जी, मैं चाहता हूँ कि कोई भी टीचर और विद्यार्थी कभी किसी विकलांग बच्चे का मजाक ना उड़ाए।
0: तुमने सही कहा कृष्णा। रानो, तुम कहो।
8: टीचर जी, मैं चाहती हूँ कि हर एक स्कूल में सभी टीचर रोज स्कूल आया करे। जिस दिन टीचर स्कूल नहीं आते उस दिन पढ़ाई का बहुत नुकसान होता है।
9: नुकसान होता है, मिट्टू परेशान होता है।

0: शाबाश बच्चों, तुम सबने बिल्कुल ठीक बातें बोली। पता है, महाराज सूरज ने भी अपने स्कूल में और अपने राज्य के सभी स्कूलों में यही नियम लागू किए और फिर उनके राज्य के सभी स्कूलों में हर एक टीचर ने हर एक विद्यार्थी से एक समान व्यवहार किया, जाति और धर्म का भेद किए बिना। किसी भी टीचर ने कभी किसी विद्यार्थी को ना ही डांटा, ना ही कोई सजा दी। हर बात प्यार से समझाई। किसी भी टीचर या बच्चे को ये अधिकार नहीं था कि वो किसी दूसरे बच्चे का मजाक उड़ाए। हर एक टीचर को स्कूल में रोजाना उपस्थित रहने का निर्देश था।
1: टीचर जी, ये सब नियम तो हमारे स्कूल में भी है।
0: हाँ मीना, तभी तो हमारा स्कूल है बच्चों के लिए अनुकूल।
1: टीचर जी, कहानी में आगे क्या हुआ?
0: महाराज सूरज के राज्य में हर स्कूल ने इन नियमों का पालन किया। अब हर एक स्कूल में सभी बच्चे बहुत खुश थे। ये देख के महाराज सूरज भी बहुत खुश हुए और अपनी पत्नी से बोले, महारानी, आज मैं सभी बीती बातें गया हूँ भूल, इसलिए मैं भी बच्चों के साथ कल से जाऊंगा स्कूल। चिंटू, कैसी लगी कहानी?
2: टीचर जी, आपकी कहानी सुन के मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली। मैं एक व्यक्ति के बुरे व्यवहार के कारण स्कूल से नफरत करने लगा था, लेकिन आपकी कहानी सुन के मैंने एक फैसला किया है।
0: कैसा फैसला चिंटू?
2: यही टीचर जी, कि मैं फिर से मन लगा के पढ़ाई करूँगा ताकि मैं बड़ा होके एक टीचर बनूँ और हर विद्यार्थी से ऐसा व्यवहार करूँ कि वो सब स्कूल से बहुत प्यार करे।
3: भाई वाह, टीचर जी की कहानी सुन के तो मुझे भी बहुत मजा आया। ये सच है दोस्तों, अगर टीचर बच्चों से प्यार भरा व्यवहार करें, उनमें कोई भेदभाव ना करें, नियमित रूप से पढ़ाएं, तो स्कूल से मजेदार जगह हो ही नहीं सकते। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्टू की नई कविता।
1: हर टीचर विद्यार्थियों से करे मधुर व्यवहार
4: ताकि हर एक बच्चे को अपने स्कूल से प्यार।
3: ओहो हो हो, क्या बढ़िया कविता लिखते हैं अपने मीना और मिट्टू भाई। अब कविता के बाद एक गाना तो बनता है ना। तो ये रहा आज का गाना।

0: शिक्षा मेरा अधिकार है।
1: क्या बढ़िया गाना था। और अब अब समय है खेलने का, तो जल्दी से चलते हैं मीना की क्लास में।
2: बच्चों आज हम खेलेंगे नाम अनेक
3: अक्षर।
2: मैं एक अक्षर बोलूंगी और उस अक्षर से तुम मुझे किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु और जगह का नाम बताओगे, ठीक है?
3: जी।
2: तो आज का अक्षर है भ। सबसे पहले बताओ भ से किसी मशहूर व्यक्ति का नाम?
4: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी।
2: शाबाश कृष्णा। पता है बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या लिखा था?
5: जी बहन जी, डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था भारत का संविधान।
2: शाबाश मीना। चलो बच्चों अब भ से किसी जानवर का नाम बताओ।
3: भालू।
2: अब भ से शुरू होने वाली किसी चीज का नाम बताओ।
5: भूसा, यानी पशुओं को खिलाने वाला चारा।
2: बिल्कुल ठीक रानो। चलो बच्चों अब भ से किसी जगह का नाम बताओ।
5: भीलवाड़ा।
2: हाँ सुमी, और भीलवाड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है?
3: राजस्थान में।
2: शाबाश। तो मजा आया बच्चों?
3: बहुत मजा आया जी।
1: मजा तो आपको भी खूब आया होगा, है ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
5: दोस्तों मुझे चिट्ठी जरूर लिखना, मैं इंतजार करूंगी। मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 1100003।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान न करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नटखट बंडी। दिवाली का त्योहार आने वाला था। बंटी अपने पापा के साथ पटाखे और नए कपड़े खरीदने जाने ही वाला था कि बंटू आ टपका।
3: यार बंटी बड़ा स्मार्ट लग रहा है, कहाँ जा रहा है?
4: ये बंटू बंदर जाने कहाँ से आ टपका, मुझे बाजार जाने के लिए देर हो रही है।
5: यार बंटू बस थोड़ा मार्केटिंग के लिए जा रहा हूँ, और बताओ कैसे आना हुआ?
3: बंटी क्या पटाखे खरीदने जा रहे हो?
4: अगर इसे पता चल गया तो ये साथ ही लग जाएगा।
5: नहीं बंटू, मैं घर की पुताई के लिए कुछ ही खरीदने के लिए जा रहा था।
3: यार बंटी ऐसी क्या बात है कि अंकल तुझे साथ लेकर पुताई की कुछ ही खरीदने जा रहे हैं?
5: अब मैं बड़ा हो गया हूँ और फिर घर के काम में पापा का हाथ भी बटाने लगा हूँ।
3: सच यार, तू बड़ा समझदार हो गया है, लेकिन पुताई की कुछ ही खरीदने जाने की बात जमी नहीं।
4: क्या करूं, ये बंटू आज मेरी मार्केटिंग कैंसिल करवा कर ही रहेगा।
5: भाई मैं कुछ खरीदने जाऊं या पुताई की बाल्टी, तुम्हें इससे क्या लेना देना? खैर छोड़ बात, तुझे मुझसे क्या काम है?
3: यार बंटी मेरे मन में एक सवाल है, मैं तुझसे उसका जवाब जानना चाहता हूं।
5: जल्दी पूछ, मैं अभी तुझे चूना लगाता हूं।
3: क्या तू मुझे चूना लगाएगा?
5: नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा। वो क्या है कि मुझे चूना पोतने की कुची लेने जाना है, इसीलिए बार बार चूना शब्द मुंह से बाहर आ रहा है।
3: तो सुन मेरा सवाल। मेरा सवाल बड़ा टेढ़ा है। कल यह सवाल मुझसे राजू ने पूछा था और मुझे आज शाम तक राजू को इसका जवाब देना है।
5: जल्दी पूछ, मुझे देर हो रही है।
3: बस तुम इस सवाल का जवाब दे दो, मैं भी राजू को चूना लगाना चाहता हूँ ताकि मैं उससे ज्यादा जीनियस कहलाऊं। बंटी यह बताओ कि बंदर के पैर में कितनी उंगलियां होती है?
5: इतनी सी बात है, तुम अपने जूते खोल कर देख लो, जवाब मिल जाएगा।
2: बंटी दौड़कर मम्मी के पास गया और बोला,
5: मम्मी मम्मी आज मैंने फिर उस बंटू को बेवकूफ बनाकर चूना लगा दिया। मम्मी पापा कहाँ हैं? हम लोग पटाखे लेने बाजार जाने वाले थे ना।
6: तुमने ही देर कर दी, पापा तुम्हारे इंतजार करते करते शर्मा अंकल के यहाँ चले गए।
7: यानी मार्केट जाना कैंसिल?
6: बिल्कुल कैंसिल।
7: ओ नो, आज फिर टल गए पटाखे।
2: और बंटी बातें बनाकर जवाब देने में इतना व्यस्त हो जाता है कि पटाखे खरीदने नहीं जा पाता है।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज़ हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जानिब से पेश है सातवीं जमात की उर्दू की मुआविन दर्सी किताब उर्दू गुलदस्ता में शामिल नज़्मों पर मुश्तमिल प्रोग्राम।

एकेडमिक गाइडेंस डॉक्टर मोहम्मद नुमान खान, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चमन आरा, असिस्टेंट्स अब्दुल हक और अशरफ हुसैन, प्रोडक्शन हेड प्रभुदयाल खट्टर, टेक्निकल कंट्रोल सतीश लाड़े, रिकॉर्डिस्ट दीपक पांडे।

0: नमस्ते, मैं हूँ आरजे केवल। दादी प्रकाश मणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाए। याद रखे, 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और मेरे साथ हैं
2: संयुक्ता बैनर्जी।
1: बहुत बहुत स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे इस कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार, जिसमें आज हम बात करेंगे आदि विद्रोही धर्मवीर भारती की। कोई ऐसी कथा कहो साधो, जो युग युग का इतिहास रचे, जो धर्म और वीर की गाथा हो और भरत भारती गुणगान करे।
2: अभी आपने जो कविता की पंक्तियां सुनी, उनमें उपयोग किए गए कुछ विशेष शब्दों से आपको आभास हो गया होगा कि आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी कथाकार, नाटककार, कवि, समीक्षक, निबंधकार, पत्रकार और पद्मश्री और अनेक सम्माननीय पुरस्कारों से नवाजे गए लेखक धर्मवीर भारती जी के विषय में और उनके व्यक्तित्व की पूरक पत्रिका धर्मयुग के बारे में।
1: श्रोताओं, धर्मवीर भारती स्वयं में एक संस्थान का पर्याय है, जिनके हस्ताक्षर एक सदी के कपोल पर सुरक्षित हैं और आने वाली सदियों तक रहेंगे। भारती जी के लेखन का दायरा इतना विस्तृत है, उनकी लेखन प्रतिभा का स्वरूप इतना व्यापक है कि किसी एक पहलू पर चर्चा करने के लिए भी शब्दों को समेटना सरल नहीं है। इससे पहले कि हम उनकी योगदान, उनके कार्यक्षेत्र और साहित्य में सुरक्षित उनके अनमोल योगदान के विषय में बात करें, थोड़ी बात उस दौर की, उन परिस्थितियों की, उन तेजी से बदलते हालात की, जब थकी मांदी एक सदी अपनी उम्र की आखिरी सीढ़ियां चढ़ते हुए लड़खड़ा रही थी
2: और एक नई सदी का सूरज अपनी चमक दमक, अपने पूरे आबोताब के साथ क्षितिज पर छा जाने के लिए बेचैन होकर तेज कदमों से प्रगति की, आजादी की, नवीनता की सीढ़ियां चढ़ने को बेताब था। जरा सोचिए पीछे मुड़कर उस दौर के बारे में, जब आज की तरह न तो पत्र पत्रिकाओं का इतना रंगीन बाजार था, न टेलीविजन, न कोई वेब सीरीज, न मोबाइल, न प्रिंटिंग मशीनें, न जीने के लिए सुख साधन, अर्थात मध्य वर्ग के लिए गरीबी का दौर था। आम लोगों के लिए अच्छे शिक्षण संस्थानों की पहुंच दुर्लभ थी। संक्षेप में, पूरा देश ही सीमित संसाधनों के साथ अपनी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था से संघर्षरत था।
1: हम आपको बता दें, धर्मवीर भारती के पूर्वज शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के खुदागंज कस्बे के जमींदार थे। धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद में 1926 25 दिसंबर को हुआ। वो बचपन से ही बहुत संवेदनशील थे। घर की दयनीय स्थिति और पिता की बीमारी ने उनकी संवेदनशीलता को इस सीमा तक बढ़ा दिया कि वो बचपन में ही काम तलाशने लगे थे, कुछ कमाना चाहते थे। उन दिनों वो अपना नाम धर्मवीर वर्मा लिखते थे। स्कूल में शिक्षा के दौरान उन्होंने भारती लगाना शुरू किया। जब वो 8 वर्ष के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया और माता का देहांत भी होने के कारण वो बहुत टूट गए।
2: ऐसे धर्मवीर भारती बचपन से लेखक थे, कुशाग्र बुद्धि के थे, तो रामायण महाभारत उनके प्रिय ग्रंथ थे। किसी प्रकार स्कूली शिक्षा के बाद जब बीए में आए तो ट्यूशन पढ़ाकर गुजर बसर करते और साथ में लेखन भी शुरू कर दिया। शुरुआत पत्रकारिता से की। बीए करने के बाद अपने पहले गुरु राम कुमार वर्मा की छत्रछाया में पत्रकारिता की बारीकियां सीखी। इलाहाबाद में ही अभ्युदय दैनिक पत्र का संपादन का कार्य भी किया। भारती जी रामायण, महाभारत और गीता जैसी कालजयी रचनाओं से बहुत प्रभावित थे, तो मार्क्स से भी, लेकिन मार्क्स की अधीरता उन्हें पसंद नहीं थी। वे अंग्रेजी में शेले, कीट्स और ऑस्कर वाइल्ड से बहुत प्रभावित

0: प्रभावित थे।
1: धर्मवीर भारतीय सृजन को महत्व देते थे। उनका मानना था कि मनुष्य तभी मनुष्य है जब उसमें सृजन की ललक हो। कहते हैं, भूख खुनेजी गरीबी हो मगर आदमी की सृजन शक्ति सबसे ऊपर उसकी ताकत है। इसलिए अति संघर्षशील जीवन और जीवन में उतार चढ़ाव उन्हें कभी डिगा नहीं पाए। कहते हैं, क्या हुआ दुनिया अगर मरघट बनी, अभी मेरी आखिरी आवाज बाकी है। हो चुकी हैवानियत की इंतहा, आदमियत का अभी आगाज बाकी है। लो, तुम्हें फिर से नया विश्वास देता हूँ, नया इतिहास देता हूँ।
0: धर्मवीर भारती को यात्राएं करने का शौक, टहलने और लोगों से बातें करना पसंद था, और पसंद था किसी की व्यथा सुनकर उसकी मदद करना। इसी आदत के कारण उन्होंने वास्तव में एक इतिहास रचा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने उन्हें संबल दिया। उनकी सादी सरल भाषा, सहजता, आत्मीयता उनके व्यक्तित्व के सुनहरे गुण थे, जिसको तराशने सवारने में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साहित्यिक माहौल और वहां के ज्ञानी एवं समर्पित शिक्षकों और पठन पाठन के शौकीन सहपाठियों और दोस्तों ने सहयोग किया। उन्होंने लेखन शुरू किया और साथ ही डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अधीन सिद्ध साहित्य में PhD भी प्रारंभ की।
1: जिंदगी ने करवट ली। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लेक्चरर के रूप में धर्मवीर भारती ने नौकरी शुरू की। इसी दौरान अपनी लेखन प्रतिभा के परिणाम स्वरूप कहानियां, नाटक और निबंध लिखने लगे। ये सब पसंद किए जाने लगे और वो प्रख्यात होने लगे। उन्हें प्रेम की सौगात भी मिली। उन्हें लगा कि प्रेम ने उन्हें वो खुशी का खजाना दिया जिसकी उन्हें तलाश थी, और ललक भी। लेकिन इस पहले असफल प्रेम ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। इस त्रासदी का जिक्र उन्होंने कहीं नहीं किया और ना ही किसी झूठी तसल्ली के सहारे तलाश किए। दिल टूटने नहीं दिया और साहित्यिक गतिविधियों में और अधिक रुचि लेने लगे। लेखन को कर्मस्थली बनाया और कविताओं से ख्याति प्राप्त करने के साथ महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर केंद्रित उनका काव्य नाटक अंधा युग उनकी कालजयी रचना बनी। अब धर्मवीर भारती ख्याति के शिखर पर पहुंच चुके थे। वो आदि विद्रोही के नाम से प्रसिद्ध होने लगे।
0: श्रोताओं, जैसा कि हमने पहले इस संदर्भ में बात की कि देश सामाजिक और आर्थिक मंच पर जबरदस्त बदलाव की तरफ बढ़ रहा था। मध्यम वर्गीय समाज में पठन पाठन की प्रवृत्ति बढ़ रही थी, मगर साधन सीमित थे। ऐसे वातावरण में खुशवंत सिंह जी ने बम्बई में कुर्तुल एन हैदर जैसी महान लेखिका के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के सौजन्य से एक अंग्रेजी पत्रिका इलस्ट्रेटेड वीकली का प्रकाशन शुरू किया। लेखक अपना योगदान दे रहे थे, लेकिन पाठक वर्ग सीमित था। वीकली संभ्रांत पाठकों में तो लोकप्रिय थी, मगर मध्यम वर्ग को उनकी भाषा शैली में उनकी रुचि की पत्रिका की आवश्यकता थी। भारती जी की ख्याति चरम पर थी, इसीलिए इलस्ट्रेटेड वीकली के साथ साथ टाइम्स ग्रुप ने हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्म युग का प्रकाशन शुरू किया और धर्मवीर भारती को पत्रिका के संपादक के रूप में चयनित किया। भारती जी के लिए धर्म युग एक मील का पत्थर बनी और मध्यवर्गीय और हिंदी भाषी पाठकों के लिए एक मशाल।
1: श्रोताओं, धर्मयुग के रंग रूप को संवारने, पठन सामग्री का चयन करने, गंभीर विषयों पर सामाजिक स्तर पर हर वर्ग द्वारा पढ़ने योग्य बनाने के लिए धर्मवीर भारती ने अथक मेहनत की। एक स्तरीय साप्ताहिक पत्रिका ने हर उम्र, हर वर्ग, हर परिवार के लिए सामग्री जुटाकर छापना बहुत कठिन काम था। धर्मयुग में शुरू से ही मृणाल पांडे एवं राजेश जोशी जैसे लोगों की रचनाएं प्रकाशित हुईं। अब आप पत्रिका के स्तर का अंदाजा लगा सकते हैं। धर्मयुग के स्वरूप को भारती जी ने इस प्रकार निखारा कि उसमें साहित्य के अतिरिक्त विज्ञान कथा, कॉमिक्स और वो भी रंगीन चित्रों से सुसज्जित, यात्रा वृतांत, डब्बू जी का कार्टून कॉलम, फैशन की दुनिया से लेकर नितांत घरेलू कलेवर के साथ साथ ही पत्रिका हर घर की आवश्यक सामग्री का हिस्सा बन गई।
0: सप्ताहांत धर्मयुग का इंतजार परिवार के हर सदस्य को रहता था। उसके कवर पेज का तो कहना ही क्या था, वो बोलता कवर पेज होता था। ये मानिए, अगर आपको उस दौर का कोई पाठक मिल जाए तो वो जरूर बताएगा कि कैसे एक बार दिवाली के आसपास प्रकाशित इस पत्रिका के कवर पेज पर लक्ष्मी जी की इतनी सुंदर और जीवंत फोटो थी, जो लोगों ने फ्रेम करवा के अपने घरों में अब तक संजो कर रखी है। और इसी प्रकार कई घरों में धर्मयुग की सालाना प्रतियां, वो भी जिल्दों में, सुरक्षित अब भी देखने को मिल जाएंगी। सोचिए, उन दिनों भी धर्मयुग की लगभग 4-5 लाख प्रतियों का प्रकाशन आम बात थी, मगर महंगी होती प्रिंटिंग ने इसके प्रकाशन के सामने आर्थिक संकट पैदा कर दिया।
1: भारती जी पत्रिका का स्तर गिराना नहीं चाहते थे, मुनाफा था नहीं, अतः उन्होंने दुखी मन से पत्रिका के प्रकाशन से स्वयं को अलग कर लिया। इस प्रकार धर्मयुग के साथ भारती जी का 1960 से शुरू किया गया सफर समाप्त हो गया और इस पत्रिका से जुड़े और लगातार अपने साहित्यिक योगदान के लिए प्रसिद्ध मोहन राकेश, शिवानी, कमलेश्वर, रविंद्र कालिया और अनेक प्रसिद्ध लेखक बहुत प्रयासों के बाद भी उसे आर्थिक संकट से नहीं उबार पाए। धर्मवीर भारती का सृजन कार्य अपने चरम पर था। अपने समय के सबसे प्रतिष्ठित प्रकाशन की जिम्मेदारी से अलग होना, उसे बंद होते देखना एक दुखद अनुभव था, परंतु इसी काल में लिखी गई अपनी कालजयी रचनाओं के कारण वो एक महान कहानीकार, कवि और नाटककार के रूप में स्वयं को स्थापित कर सके।
0: गुनाहों का देवता, अंधा युग, सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती के महान लेखक होने का एक दस्तावेजी प्रमाण बन गए। इन्हीं दिनों एक फील्ड रिपोर्टर के रूप में भारत पाक के उस युद्ध की रिपोर्टिंग की जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बना। भारती जी का व्यक्तिगत जीवन बिना किसी उथल पुथल सीधा सपाट गुजर रहा था कि 1954 में उनके जीवन में साथी के रूप में कांता भारती का पदार्पण हुआ। एक पुत्री परमिता के पिता भी बने, लेकिन ये शादी लंबे समय तक नहीं चल सकी और बाद में उन्होंने पुष्पा भारती से विवाह किया और एक बेटे किंशुक और बेटी प्रज्ञा के पिता होने का गौरव प्राप्त किया।
1: बहुमुखी प्रतिभा के धनी धर्मवीर भारती कविता में साहित्यिक रंग ज्यादा खोजते थे। फिराक गोरखपुरी, जो स्वयं एक महान शायर थे, लेखक थे, उन्होंने धर्मवीर भारती की लोकप्रियता का आकलन करके रोमांटिक कविताएं लिखने के लिए प्रोत्साहित किया, मगर वो कहां समझौता करना चाहते थे। एक तो उन्हें साहित्यकारों द्वारा बनाया गया कोई संगठन पसंद नहीं था, दूसरा कविता में रोमांस उनको अपने नजरिए से पसंद था। कविता अर्थात जो दिल को तसल्ली दे और रूह को तड़पा दे, जो दूसरे के दर्द को आत्मसात करने की शक्ति दे, वो एक जीवट व्यक्ति ही नहीं, एक जीवट कवि, लेखक और नाटककार भी थे। जो भी लिखते दिल की गहराइयों से लिखते और रूह के सारे रंगों से सजाते, डूब कर लिखते, दुखांत लिखते, तो उसे अपने आंसुओं और दिल की धड़कनों से इतना जीवंत बना देते कि पाठक को अपनी व्यक्तिगत व्यथा के चित्रण का आभास होता। सहजता, सरलता, आत्मीयता और सजीवता उनके लेखन को अलग कलेवर के रूप में प्रस्तुत करते।
0: धर्मवीर भारती को 1972 में पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी द्वारा सर्वश्रेष्ठ नाटककार होने का भारत भारती पुरस्कार प्राप्त हुआ। व्यास सम्मान और महाराष्ट्र गौरव सम्मान से भी आप नवाजे गए। देश विदेश और स्थानीय संस्थाओं से अनेक पुरस्कारों से उनका इतना सम्मान हुआ कि उसकी गाथा यहाँ आपको सुनाना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में PhD पूरी करने के बाद जब प्राध्यापक नियुक्त हुए तो बहुत कम समय में उनकी मशहूर दो कृतियां नदी प्यासी थी, एकांकी नाटक संग्रह, और प्रख्यात कृति चांद और टूटे हुए लोग प्रकाशित हुई। मुर्दा गांव तो इसी दौरान कनुप्रिया और देशांतर के प्रकाशन से थोड़ा पहले बाजार में आ चुके थे। इसी तारतम्य में कविता संग्रह में ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, आघन और अनेक कविता संग्रह छप चुके थे। इन सब कृतियों में कनुप्रिया, जो एक प्रबंध काव्य है, बहुत प्रसिद्ध हुआ, बहुत सराहा गया।
1: श्रोताओं, धर्मवीर भारती की दो कृतियां गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा हर वर्ग, हर उम्र के लोगों की पहली पसंद थी और अब भी हैं। युवा वर्ग में गुनाहों का देवता की लोकप्रियता सुधा और चंदर के प्रेम की एक दुखांत प्रेम कथा होने के कारण बहुत सराही गई। इसके अतिरिक्त उनकी ना भूलने वाली कृतियों में 1969 में गली का आखिरी मकान कला प्रियता का अद्भुत नमूना है। इसी प्रकार उनकी बेहद प्रसिद्ध कृति अंधा युग का

0: अनुवाद बहुत सराहे गए। उनकी कृतियों पर, कविताओं पर एज़रा पाउंड, एलिजाबेथ जेनिंग और ऑडन का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। ऑस्कर वाइल्ड की कहानियों का उनके द्वारा किया गया अनुवाद भी हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखता है। धर्मवीर भारती जी की असंख्य कृतियों में संगमरमर की एक रात, सृष्टि का आखिरी आदमी, ठेले पर हिमालय और पश्यंती मध्यम वर्गीय पाठकों के लिए सहजता से उपलब्ध साहित्यिक खजाने थे। एक ऐसा पाठक वर्ग दीवानगी की सीमा तक उनके द्वारा लिखित नाटक, कविताओं, निबंध, वृत्तांत आदि को पसंद करने वाला बन गया कि सामाजिक और आर्थिक जीवन में उसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देने लगा। आम जनमानस की सोच, दृष्टिकोण और मानसिकता पर सकारात्मक प्रभाव ऐसा कोई साहित्यकार नहीं डाल पाया था जैसा सरल भाषा में उपलब्ध उनकी साहित्यिक धरोहर ने किया। उनकी कहानियों में, कविताओं में पाठक कहीं अपने मन की भावनाओं की प्रतिछाया देख पाते हैं।
1: बेहद जीवट और घुमक्कड़ स्वभाव के धर्मवीर भारती का व्यक्तित्व, उनकी सादगी और चेहरे पर ज्ञान के तेज के कारण सहसा ही आम आदमी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता। वो राह चलते साधारण से साधारण व्यक्ति से बहुत आत्मीयता से बात करते। महान साहित्यकार होने का कोई आडंबर उन्हें छू तक नहीं पाया था। यात्राएं उन्हें बहुत पसंद थी। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं की। सन 1961 में कॉमनवेल्थ रिलेशन कमेटी के निमंत्रण पर वो इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों की यात्रा पर गए। 1962 में जर्मनी और भारतीय दूतावास के अतिथि के रूप में इंडोनेशिया और थाईलैंड की यात्रा की। मॉरिशस में वहां की जनता के बीच दोस्ताना अंदाज में उनसे बातचीत की। संवाद के द्वारा उनकी समस्याओं को लगभग भारत की समस्याओं के ही समान जानकर उनके निराकरण पर बात की।
0: अनेक विदेश यात्राओं के बाद अपनी जीवटता के बल पर बीमार होते हुए भी बीमारी का कोई लक्षण चेहरे पर दिखाई नहीं देता था। जब वो बहुत बीमार थे तो 3 हार्ट अटैक आने के बाद भी स्वयं को सामान्य रखने की कोशिश कर रहे थे, मगर जिंदगी हथेलियों से फिसल रही थी। और इस प्रकार 1990 में धर्म युग की ये मशाल बुझ गई। मगर धर्मवीर भारती को, जो स्वयं को आदि विद्रोही कहते थे, उन्हें हिंदी साहित्य के लेखक के सीमित दायरे से निकालकर एक महान साहित्यकार के रूप में संसार के साहित्यिक पटल पर स्थापित कर गई।
1: उन्हें न कोई भूल सकता है न भूलेगा। वो जिंदा हैं। हर घर में, जहां धर्म युग की प्रतियां एक बेशकीमती खजाने की तरह सुरक्षित हैं, बिल्कुल उसी प्रकार उनकी यादें सुरक्षित हैं। वो जिंदा हैं अपनी कृतियों में। वो आदि विद्रोही थे जो कभी नहीं मर सकते। श्रोताओं, अजीब इत्तेफाक है कि वो जिस पत्रिका से जुड़े उसका नाम धर्मयुग था। उनके लिखी जो सबसे अधिक कृति प्रसिद्ध हुई उसका नाम अंधायुग था। वाकई वो एक युग प्रवर्तक थे। वो एक ऐसे लेखक थे जिनका यशोगान युगों युगों तक किया जाता रहेगा। हम आज उनके जाने के इतने साल बाद भी उन्हें इस तरह याद कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे शब्दों के शिल्पकार कभी कहीं नहीं जाते। अपनी कृतियों के जरिए हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। तो शब्दों के शिल्पकार में आज समय यहीं समाप्त होता है। इजाजत दीजिए मुझे, यानी अपनी रेडियो मित्र संदीप शर्मा
0: और मुझे संयुक्ता बैनर्जी को।
1: तो श्रोताओं, अगली बार मिलेंगे फिर किसी और शब्द शिल्पी के साथ, बहुत सारी जानकारियों के साथ। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है सुश्री अदिति गौड़ को। आलेख था डॉक्टर शमा न्याजी का। इस कार्यक्रम का ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने। तो मुझे और संयुक्ता को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद,
0: देश का चैनल देश के लिए।

आवश्यक सूचना 9 अगस्त 2026 रविवार को आयोजित होने वाली 8वीं दादी प्रकाशमणि हाफ मैराथन के कारण सुबह 5:30 बजे से सुबह 9 बजे तक तलहटी आबू रोड से आबू राज

मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। यदि किसी को इस दौरान आबूराज से बाहर जाना हो तो कृपया सुबह 5 बजे से पहले ही जाएं। सुबह 9 बजे के बाद सभी मार्ग पुनः यातायात के लिए खोल दिए जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अपने यात्रा कार्यक्रम की योजना इसी अनुसार बनाएं और इस सूचना को अपने परिचितों तक अवश्य पहुंचाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: रोशन, पता है आज ना मुझे एक बहुत अच्छा सपना आया।
3: अच्छा, क्या आया?
2: मेरे सपने में आया कि मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है।
3: अरे वाह, ये सपना सपना ही तो नहीं रह जाएगा।
2: ये सपना सपना नहीं रहेगा, देखना, मैं सच करके दिखाऊंगा। क्लास क्या, मैं स्कूल टॉप करूंगा।
3: अच्छा।
2: स्कूल तो क्या, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल टॉप करूंगा। डिस्ट्रिक्ट छोड़, अच्छा इंटरनेशनल।
3: अरे बस बस,
2: यूनिवर्स टॉप करूंगा मैं।
4: अरे कौन यूनिवर्स टॉप कर रहा है भाई?
2: दीदी ये कह रहा है मैं क्लास टॉप नहीं कर सकता। मैंने ऐसे कहा कि मैं यूनिवर्स टॉप कर सकता हूँ।
4: ओह माय गॉड, यूनिवर्सल कंपटीशन। कौन आ रहा है आयुष को यूनिवर्स से कंपटीशन देने के लिए? वैसे
2: एलियंस।
4: ओह,
2: आया था सपने में, कह रहा था तुझसे कंपटीशन करना है, मैंने कहा आ जाना।
4: अच्छा अच्छा भाई, अब ये आपका सपना तो मुझे लग रहा है काफी दूर तक चला गया है। तो हम इसको थोड़ा पास लेकर आते हैं और बात करते हैं आज आप लोगों के सपनों के बारे में।
2: तो क्लास टॉप पे ही आ जाते हैं।
4: हाँ, तो पहले सब लोग अपना नाम तो बता दो जल्दी से।
2: मेरा नाम है आयुष और मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ, जिसे मैं टॉप करने वाला हूँ। हकीकत में, ना कि सपनों में।
4: ना कि सपनों में।
3: और मेरा नाम है रोशन, मैं भी 10th क्लास में पढ़ता हूँ।
5: मेरा नाम है शिवानी और मैं क्लास 6th में पढ़ती हूँ।
6: मेरा नाम है अमन और मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ।
4: और मेरा नाम है आरुषि और मैं अब नहीं पढ़ती हूँ। मतलब पढ़ती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ, लेकिन क्लास में नहीं पढ़ती हूँ। पता है बच्चों, जब मैं छोटी थी ना, तो मैं सोचती थी क्लास 12 के बाद क्लास 13 होती है, 14 होती है और हमें पूरी लाइफ पढ़ना पड़ता है।
2: मैं भी दीदी, मैं पता है आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं छोटा था तो मैंने एक अपनी बड़ी बुआ से पूछा था कि आप कौन सी क्लास में हो, तो उन्हें पता था कि इसको तो सिर्फ क्लास पता है, ऐसे एम ए बी ए कुछ नहीं पता। तो उन्होंने मेरे को कहा सोच के थोड़ा कि मैं ना 14 क्लास में हूँ। फिर पता चला वो सेकंड ईयर कर रही थी किसी चीज का।
4: पहले में पता नहीं होता है ना।
6: मुझे लगता है 16 तक क्लासेस होती हैं अभी।
4: हाँ, लेकिन क्लास 12 तक ही होती है। अच्छा चलो भाई, आज आपके सपनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। आप लोग ढेर सारे सपने देखते हो कि नहीं?
3: बहुत सारे।
6: मुझे तो सपने देखना बहुत बहुत बहुत ज्यादा।
4: अच्छा, बंद आंखों से कि खुली आंखों से? अच्छा, आप लोगों को सब लोग एक एक करके बताना कौन से वाले सपने अच्छे लगते हैं, बंद आंखों वाले या खुली आंखों वाले?
2: मुझे खुले आंखों वाले।
4: ओके, आयुष को खुली आंखों वाले सपने अच्छे लगते हैं और रोशन को?
3: मेरे को तो बंद आंखें वाले।
4: ओके,
5: मुझे भी बंद आंखों वाले।
4: और अमन?
6: मुझे दोनों टाइप के सपने अच्छे लगते हैं,
4: बंद आंखों वाले भी और खुली आंखों वाले भी।
5: अच्छा, तो खुली आंखों वाले कौन से होते हैं?
4: ओह, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। यानी खुली आंखों वाले सपने वो होते हैं जो हम सोचते हैं ना, हम ये कर रहे होंगे, हम वो कर रहे होंगे।
5: हाँ, वो तो मैं भी करती हूँ।
4: हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, खुली आंखों वाला आप लोगों का फेवरेट सपना कौन सा है?
2: कि मुझे नेवी ऑफिसर बनना है।
4: आयुष को नेवी ऑफिसर बनना है,
2: और जब मैं खुद के पैसे कमाऊंगा तो फिर दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना है।
4: क्या बात है, अरे वाह।
2: लद्दाख वद्दाख जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, पार्टी करेंगे।
4: अच्छा, क्या
2: पूरी ऐश है, जिम में रखा कैश है। ये वाला डायलॉग बोलने के लायक बनना है।
4: ये डायलॉग बोलने के लायक बनना है। ओहो, कैसे जाओगे लद्दाख?
2: गाड़ी से।
4: अच्छा,
2: बोड़ी होगी मेरे पास दीदी।
4: यूनिवर्सल कंपटीशन के बाद।
2: और यूनिवर्सल कंपटीशन के बाद तो मैं जेट प्लेन ले लूंगा।
4: और उससे कहां जाओगे?
2: वो मतलब वो सपनों की बात आता हूँ, मैं जेट में ले लूंगा, फिर मैं मार्स पे जाऊंगा, सब जगह जाऊंगा, मर्क्यूरी वर्क्यूरी सब जगह।
3: कभी अपने को भी ले जाना।
2: जरूर जरूर दीदी, आप भी चलोगे?
4: बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो डेफिनेटली चलूंगी। अब आयुष लेके जाएगा तो जाना पड़ेगा ना दोस्तों। भले फिर वो प्लैनेट कितना भी ठंडा क्यों ना हो, हम अकड़ के फिर वही पे ना रहना पड़ जाए।
2: कोई बात नहीं, मर्क्यूरी चलेंगे, बहुत गर्म है।
4: ओ
2: दीदी, वो ले लेना, एसी वेसी लेके चलेंगे।
4: अच्छा, हाँ इसी लेके चलेंगे यहाँ से, ठीक है। अच्छा, और रोशन का खुली आंखों वाला फेवरेट सपना क्या है?
3: मैंने एक बार बैठा था, स्कूल में ही था, फ्री पीरियड था और मेरे काम भी खत्म हो गए थे, तो मैं एक बार सोच रहा था कि अगर मैं आउट ऑफ स्पेस, मतलब आउट ऑफ अर्थ जा सकता तो कैसे लगेगा।
4: ओके, तो आपका भी मतलब
3: उड़ना है।
4: आपको उड़ना है
3: तो उधर तो ग्रेविटी नहीं देता तो उड़ लो।
4: हाँ जैसे मून पे जाते हैं।
3: हाँ हाँ
4: है ना, देखा है आपने एस्ट्रोनॉट के वीडियोस देखे कभी?
2: हाँ दीदी मैंने बहुत देखे दीदी, मैंने देखा है वो चांद पे पता है कभी कभी गिर भी जाते हैं पर उन्हें प्रैक्टिस होती है वो वापिस उड़ जाते हैं
3: वो उल्टा हो।
2: और स्पेस स्टेशन है ना जो अपना नासा, वहाँ पे तो हम ये एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं पर बहुत पैसे लगते हैं। हाँ। मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम बनाया है, ग्रेविटी नहीं है बिल्कुल भी, अब आप जाओगे उड़ने लग जाओगे।
4: अच्छा इसरो में नहीं है ऐसा सिस्टम?
2: शायद होगा पता नहीं, मैंने बस वीडियो
3: देखी। वो मतलब अर्थ में भी है जहाँ एक क्यूब क्यूब जैसा होगा एक रूम जिसके अंदर तुम जाओगे फिर वो क्यूब घूमते रहेगा तो आप गिरते रहोगे, आपको लगेगा आप उड़ रहे हो पर आप गिर रहे हो नीचे।
2: तो वो नेचुरल है?
3: नहीं मतलब आर्टिफिशियल है जो ह्यूमन ने बनाया।
4: ओके तो आपको स्पेस में उड़ना है। अच्छा तो खुली आंखों के दोनों के सपने तो भाई आसमान छू रहे हैं। तो, अमन और शिवानी का खुली आंखों वाला फेवरेट सपना क्या है?
6: मुझे ना एक बार रियल शेर को अपने पास बैठाना है और उसको बहुत प्यार करना है। मुझे शेर बहुत पसंद है।
4: ओके आपको कोई और एनिमल नहीं पसंद है?
6: नहीं।
4: मतलब
2: मतलब जो आपको खाना पाए वो ऐसे एनिमल एनिमल पसंद
6: है? मुझे मैं ना जैसे डिस्कवरी में दिखाते हैं ना जैसे बड़े बड़े लोग शेर पालते हैं वो भी दूसरे देश के, वो बहुत प्यार करते हैं शेर को और शेर उनको कुछ बोलता भी नहीं है, कुछ भी नहीं करता, बहुत प्यार, वो भी उनको बहुत प्यार करता है।
4: अच्छा तो आपको शेर को प्यार से बिठाना है?
6: शेर को, टाइगर को, जैसे भी जो भी है ना बिल्ली की प्रजाति के सबको,
4: सिवाय बिल्ली के?
6: नहीं बिल्ली के भी, बिल्ली मुझे पसंद है।
4: ओके ठीक है। और शिवानी का खुली आंखों से फेवरेट सपना क्या है?
5: मैंने एक बार देखा था बहुत पहले
4: जब शिवानी बहुत छोटी थी
5: तब मैंने देखा था कि मैंने बहुत पैसे कमा लिए, मैंने इतना बड़ा आलीशान बंगला ले लिया है, मेरे पास कार है, सब कुछ है और उसमें बस मैं और मेरी बहन रहते हैं।
4: अच्छा
6: वैसे मुझे भी मेरी बहन के साथ रहना ज्यादा पसंद है।
4: ओह मतलब आप दोनों को तो साथ साथ रहना है जब आप बड़े हो जाओगे उसके बाद भी ना?
6: हाँ।
4: क्या बात है, तो बहुत इंटरेस्टिंग सपना है शिवानी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
5: मेहनत करनी पड़ेगी।
4: हाँ पढ़ाई भी करनी पड़ेगी।
6: हाँ।
4: ओके अच्छा अच्छा बंद आंखों वाला फेवरेट सपना क्या है? बंद आंखों वाला बताना है जो आप लोगों ने सोच के नहीं देखा लेकिन बस आ गया।
6: आ गया हाँ।
5: मेरा तो डरावना
4: डरावना सपना क्या है शिवानी बताओ तो?
5: मैं एक बिल्डिंग से नीचे गिर गई।
4: ओह
2: तो ये फेवरेट
5: है
4: मतलब हमेशा याद रह जाता है। कोई कोई सपना ऐसा आता है ना जो हमको बहुत याद रह जाता
5: है। मुझे बहुत बार आता है यही वाला।
4: क्या बिल्डिंग से नीचे गिर गए? फिर क्या होता है?
5: फिर मेरी आंखें खुल जाती है
4: और फिर आपको डर लगता रहता है या डर चला जाता
5: मतलब
4: है?
5: मतलब कि मैं लेटती हूँ ना तो तब भी ऐसा लगता है कि मैं नीचे गिर रही हूँ।
3: ओ मैंने भी ऐसा एक फैक्ट पढ़ा था, अगर तुम सोते समय गिर रहे हैं जैसे फीलिंग करते हो ना तो तुम डीप स्लीप में हो।
4: पैर भी चलाने लगते हैं ना कभी कभी
2: दीदी घुटने? हाँ। अगर ऐसे फोल्ड करके सोते हैं ना और हम गिरने का सपना आता है तो उस वक्त हमारा जो घुटना होता है ना वो नीचे गिर जाता है। घुटना मतलब ऐसे ऐसे होता है मुड़ा हुआ तो वो ऐसे
4: सीधा हो जाता है।
2: हाँ
4: शिवानी फिर डर लगता रहता है या डर ठीक हो जाता है?
5: डर लगता है फिर मैं मम्मी को पकड़ के सो जाती हूँ या तो पापा को पकड़ के,
4: फिर नहीं लगता।
5: हाँ फिर नहीं लगता।
4: ओके और अमन आपका क्या है?
6: मेरा
4: जो सबसे याद रहता है आपको सपना?
6: मुझे एक बार मुझे एक सपना आया था मतलब बहुत अजीब सा सपना था, वहाँ कोई भी नहीं था सिर्फ मैं थी, वो भी क्लाउड्स के ऊपर एक महल था और मैंने मतलब एक राजकुमारी जैसी ड्रेस पहनी हुई थी, मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा था उस टाइम सपने में, मैं उड़ रही थी उस टाइम, वो भी पता नहीं कैसे उड़ रही थी, बस उड़ रही थी कहीं भी जाके घूम रही थी और क्लाउड्स से खेल रही थी, हर तरफ कोई भी नहीं था और फिर मुझे छोटी सी लड़की दिखी, छोटी सी बहुत छोटी सी, तो मैं उसके पास गई और वो छोटी सी लड़की से मैं खेलने लगी। बहुत अच्छा सपना था दी।
4: क्या बात
6: मतलब है? उड़ते हुए मतलब किसी क्लाउड के ऊपर उड़ो ना तो इतना अच्छा लगता है, इसीलिए मेरा मन करता है कि मैं एरोप्लेन में एक बार बैठूं मैं देखूं क्लाउड के ऊपर कैसा लगता है।
4: वाओ मतलब राजकुमारी अमन।
6: हाँ दी।
4: और राशिद
3: एक बार मैंने एक सपना देखा जिसमें मैं एक स्लाइड में बैठा हूँ, मतलब वो आसमान तक है, उसमें कूद रहा हूँ ना, मैं तो बहुत छोटा हूँ, जो भी मेरे आसपास है सब बड़े बड़े।
4: अच्छा
3: इतने बड़े, मैं उनका अंगूठा जैसा हूँ, उतना छोटा।
4: इतने छोटे हो गए थे?
3: हाँ।
4: बापरे और फिर क्या हुआ?
3: मैं तो गिरते जा रहा हूँ, वो एक एक करके जा रहे हैं मेरे आगे से।
4: तो डर लग रहा होगा फिर तो आपको?
3: नहीं डर तो नहीं लग रहा था,
4: मजा आ रहा था।
3: इतने बड़े थे सब।
4: अच्छा तो जो बड़े बड़े लोग थे उनको आप पहचानते थे या किसी को जानते नहीं थे?
3: वो मेरे को याद नहीं है कौन थे।
4: अच्छा ऐसी तो कोई फिल्म भी आई थी ना?
6: कौन सी
3: पता नहीं
2: मैंने देखी है।
4: जावेद जाफरी की शायद
6: जयजंत्र
4: ममंत्र
6: ऐसा कुछ है,
4: ऐसा कुछ तो नाम है, मुझे भी ठीक से याद नहीं है।
2: उसमें तो सब व्यक्ति छोटे छोटे होते हैं और वो अकेला बड़ा होता है, वो वाली
4: शायद ऐसे कुछ होता है।
2: वो पानी है नहीं, वो फाइट करता है। फिर
4: रोशन के सपने को डायरेक्टर ने देख लिया होगा और पूरी मूवी बनाते
6: हैं। थोड़ा अपोजिट था, वो एक आदमी बड़ा था, सब छोटे थे।
4: अब कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना, कॉपीराइट है। अच्छा ओके, और आयुष आपका क्या सपना है? ऐसा
2: मेरा दीदी बहुत ही अद्भुत सपना है, पता नहीं वर्ल्ड में किसी को ऐसा आया भी होगा कि नहीं।
4: ओके
2: ऐसे सपने मेरे को 2 से 3 बार आए हैं। उस सपनों में क्या होता है कि मैं होता हूँ, कहीं पे भी होता हूँ, कोई भी लोकेशन मान लो, लेकिन उसकी खास बात यह है सपने की कि मुझे पता रहता है कि यह सपना है।
4: ओके
2: और दीदी जब मुझे पता रहता है, आप मान लो आपको पता है सपना है, तो इसका मतलब आप अपनी फेवरेट चीजें करोगे आपको, है ना। तो मैं भी वही करता हूँ, मैं किसी के भी घर में जाता हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं कहता क्योंकि मुझे पता है सपना है। और मैं गाड़ी, फिर मैं बाइक चलाने लग जाता हूँ, फिर सामने कार होती है, फिर मैं कार में यूं करके ठोक देता हूँ और मैं गिर भी जाता हूँ, पर मुझे पता है सपना है इसलिए मुझे लगेगी। फिर मैं एक दुकान पर जाता हूँ, सबसे महंगे वाली डेयरी मिल्क उठाता हूँ, खाने लग जाता हूँ उसके सामने ही, और आ जाता हूँ, वो पैसे भी नहीं मांगता क्योंकि वो एक सपना है। इतने मजे करता हूँ, इतने मजे करता हूँ।
5: और मैंने भी देखा था।
4: अच्छा ओके, एक बार कंप्लीट कर ले आयुष का सपना, फिर शिवानी का सुनेंगे।
2: फिर पता है मुझे ना नोविता मिला मजा आ गया। मैंने कहा वो वाला गैजेट दे दे, वो सिर पे लगा के उड़ना है। दीदी वो हमारे यहाँ पे जो पहाड़ है ना, मैं उसकी तरफ उड़ने लगा, घूम रहा हूँ। फिर मैं साइकिल चलाने का साइकिल चलाते मैं एक ऐसी जगह पहुँच गया जो मेरे को रास्ता पता ही नहीं है। मुझे फिर नोबिता भी घूम गया मेरा सॉरी डोरेमोन भी घूम गया,
6: वही डोरेमोन।
2: हाँ तो फिर मैं साइकिल का रास्ता पूछते आया, मतलब सपना बहुत बड़ा हो गया था। वैसे 2-3 सपनों का मिक्सर बताया क्योंकि तीनों सपनों में यही था कि मेरे को पता था।
4: तो आपको पता था कि आप सपना देख रहे हो?
2: हाँ दीदी।
4: और आंखें बंद थी आपकी?
2: हाँ।
4: और आप नींद में भी थे?
2: जी दीदी। ऐसा हुआ किसी के साथ?
3: मल्टी टैलेंट
2: देख लो दीदी कितना कमाल। मैं कहता हूँ पता नहीं किसी को आता भी होगा नहीं, अपनी फेवरेट चीजें कर सकते हैं। पर वो अब देखो मैं मुझे पता नहीं था एयरपोर्ट का, वरना मैं एरोप्लेन में उड़ता
4: मतलब उसमें जो जो आपको पता होगा वो आप सब कर सकते हो।
2: कुछ भी कर सकता हूँ दीदी दुनिया में।
4: अब मुझे लगता है हम सबको मिलके आयुष के सपने में जाना पड़ेगा।
2: और दीदी पर बुरी बात यह है कि वो सपना मिनिमम बहुत कम और मैक्सिमम सिर्फ 20 मिनट्स का होता
6: है।
4: आपको टाइम भी याद रहता है उसका?
2: नहीं दीदी वो मैंने फैक्ट पढ़ा था।
4: अच्छा
2: 20 मिनट से बड़ा नहीं होता, मजा आ जाता है 20 मिनट में।
6: देखिए हम जब सपने में होते तो हमें टाइम का नहीं पता चलता ना, सपना बहुत बड़ा होता है
2: ऐसा लगता है।
6: जब हम सपने में होते तो हमें लगता नहीं कि ना बहुत देर तक कि सपने में, मतलब टाइम बहुत, मतलब सपना बहुत बड़ा होता है, टाइम बहुत छोटा सा थोड़ा सा लगता है।
4: तब हमें पता नहीं होता ना, हम तो नींद में होते हैं
6: सपने में टाइम।
4: और वैसे भी जब हम नींद में होते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं, हमारा सबकॉन्शियस
6: माइंड चल रहा होता है।
4: और सबकॉन्शियस माइंड में तो बहुत चीजें होती है। मान लो मैं आयुष से बात कर रही हूँ, अब मैंने आसपास नोटिस नहीं किया क्या रखा हुआ है, लेकिन मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने नोटिस किया।
6: हाँ
4: तो अब सपना तो कुछ भी आ सकता है, वो 3-4 सिचुएशन को मिला देता है।
6: जी हाँ ऐसा मेरे साथ होता है, स्कूल का सपना भी मेरे साथ ऐसे ही आता है
4: ना।
6: स्कूल वाले सपने आते हैं कभी
4: कभी, कभी कोई हमारे साथ डर होता है।
6: हाँ।
4: या हम कुछ किसी बारे में बहुत सोच रहे होते हैं,
6: मेरे सपने में आता है।
4: वो भी
3: जो सोने के पहले सोचते हैं वो ही सपना आता है।
4: ऐसा हुआ है कभी
3: ज्यादातर?
4: कब हुआ है जब आप किसी बारे में सोच रहे हो और रात को वही सपना आ गया? फिर ऐसा हुआ है
5: मेरे साथ?
4: क्या हुआ बताओ?
5: वो मैं स्कूल के बारे में सोच रही थी, मेरा काम कंप्लीट नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी, फिर मुझे वही आ गया सपने में कि मेरा पूरा काम कंप्लीट है और मेरे सर मुझे शाबाशी दे रहे हैं।
6: दीदी मेरे सर ऐसा बहुत है।
5: और जब मैं उठी तो मुझे लगा है मेरा काम भी नहीं कम्प्लीट।
4: सपना ही अच्छा था।
6: मेरे साथ बहुत बार हो चुका ऐसा, जो भी मैं रात को सोच के सोती हूँ या फिर जिसके बारे में ज्यादा सोचती हूँ वही मेरे सपने में भी आता है।
4: जैसे
6: स्कूल का भी ऐसे आ चुका है। और एक बार हम घूमने जाने वाले थे कहीं पे भी, मतलब जाने वाले, तो मेरे सपने में यही आ गया कि मैं उठ के तैयार होके जा रही हूँ, लेकिन जब मैं उठी ना तो मैं सो रही थी।
4: okay.
6: मतलब मैं जा भी चुकी हूँ लेकिन मैं सो रही थी उस टाइम।
2: एकदम मेरे साथ ऐसा हुआ, इतना गुस्सा आया था उस दिन, मतलब मैं उठा, ठीक है दीदी उस दिन का सपना था, मैं उठा तो स्कूल जाना था, तो मेरे को पता है अभी थोड़ा टाइम है तो 5 मिनट सो जाता हूँ, पता है ना हम सो जाते हैं। तो जो 5 मिनट सोया ना उसमें सपना आ गया। और उसमें सपना क्या आया कि मैं रेडी हो गया, स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल पहुँच गया, मस्त पहुँच गया, अच्छे से पहुँच गया। और फिर वो सपना टूट गया, फिर मैंने देखा, मैं लेटा हूँ, मैंने कहा अभी नहाना भी है, इतना सब कुछ करना है।
4: कभी रात को ऐसा हुआ है कि कुछ सोच रहे हो और कुछ किसी बात के लिए आप ज्यादा सोच रहे हो और फिर रात को सोच गए, सोचते सोचते सो गए और वही सपने में आया?
6: पेपर के टाइम होता है।
4: क्या हुआ रोशन दादा?
3: मैं एक बार रात को तो नहीं, दोपहर को मैं पुराना एल्बम्स देख रहा था, मेरे छोटे बचपन के फोटोज, मैं अच्छा था तब।
4: अभी भी क्यूट लग रहा था। अभी भी आप लोग क्यूट लगते हो।
3: थैंक यू। हाँ तो फिर देखते देखते मैं सो गया। तो फिर मैं क्या था, मैं मतलब अभी जैसे सो रहा हूँ उसी समय पे था और मेरे को एक गाड़ी मिली जिसमें मैं बैठा और टाइम ट्रेवल कर लिया।
6: वाह।
3: मैं मतलब मेरे को ही देख

0: रहा हूँ जो चोट है।
1: अच्छा तो आप क्योंकि एल्बम देख रहे थे पहले से।
2: तो हाँ होता है दी, हम जो देख के सोते हैं फिर कभी कभी हॉरर फिल्में देखते हैं ना, तो वैसा सीन हमारे साथ भी होता है।
1: अच्छा
2: तो उसमें हम आ जाते हैं।
1: ये बताओ डरावने सपने किस किस को आए हैं?
3: पहले मेरा क्वेश्चन है।
1: हाँ बताओ
3: दीदी। आप कह रहे हो सबकॉन्शियस माइंड जगा होता है, जब अगर मुझे पता रहता है ये सपना है तो मेरा कौन सा माइंड जगा रहता है दोनों?
1: कॉन्शियस माइंड जब हमारी बॉडी रेस्ट कर रही होती है तो वो भी रेस्ट कर रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गायब हो गया कहीं पे, है ना, वो तो वहीं पे है। थोड़ा इनपुट उसका ऐसा नहीं है कि, अब देखो कई बार ऐसा भी होता है हम सपनों में थोड़े जग जाते हैं और कुछ चीज़ हमें याद देते हो, कुछ सपने ऐसे होते हैं हमें याद ही नहीं रहते। अब डरावने सपने किस किसने देखे जल्दी से बताओ।
3: मैंने भूत का डरावना नहीं देखा था, दूसरा डरावना
1: क्या
3: बताऊँ? क्या पहले हाँ तो हुआ यूं कि मैं था कमरे में और पता नहीं कि शेर आ गया, इसका फेवरेट वाला, और वो मेरी तरफ आ रहा है लेकिन उसने मुझे देखा नहीं। मैं तो बहुत डरा हुआ था। दीदी आप यकीन नहीं करोगे, ऐसे शेर आ जाए ना तो कितना डर, इतनी तेज धड़कन हो गई रियल में भी, क्योंकि वो मुझे जब पता चला मैं उठा तो मैं सपने में गया और कुर्सी के पीछे छुप गया, कुछ जगह ही नहीं थी छुपने के लिए तो मैं कुर्सी के पीछे छुप गया। फिर वो आया, मतलब झपट्टा मारने वाला था, इतना डर गया कि वो झपट्टा मारा और मेरी आँख खुल गई और फिर मैंने ऐसे हाथ लगाया, उतना डर गया था मैं।
1: बाप रे, आप शेर के बारे में कुछ देख तो नहीं रहे थे उससे पहले?
3: नहीं इतना तो कुछ याद नहीं, बस शेर का
1: शेर आ गया था। ओके और किसको कोई डरावना सपना आया?
2: मुझे डरावना नहीं, मतलब डरावने आए हैं वो भूत टाइप के, ऐसा कुछ
1: वो क्या है भूत वाले बताओ।
2: हाँ तो ना मैं ना एक अकेले जैसे जगह में थी, बहुत सुनसान था, कोई भी नहीं था वहाँ पे, मतलब मम्मी पापा कोई, मेरी बहन भी नहीं, तो मैं अकेली और वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यहाँ से कहाँ निकले, खंडर की बहुत ज़्यादा जगह थी, खंडर पूरा टाइप का था सब। मैं आगे जा रही थी, आगे जाके ना मुझे थोड़ी सी वॉइस आई किसी चीज़ की, बहुत डरावनी वॉइस थी वो, मुझे कोई दिख नहीं रहा था, बस थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आ रही थी, इतना डर रही थी डर डर के आगे बढ़ रही थी। फिर ना मैंने आगे जाके ना किसी को देखा, फिर मैं उसके पीछे पीछे गई, पीछे पीछे जाके क्या हुआ, मुझे पहले भी तो किसी के पीछे पीछे नहीं जाना चाहिए था, और जा गई ना वो गायब हो गई। गायब हो गई, फिर ना मुझे किसी ने अचानक से आके पकड़ लिया और इतना तेज डरी मैं उठ के बैठ गई, बहुत तेज डर गई, तो ज्यादा डरी। और मतलब हॉरर फिल्म में तो हम देखते ही रहते हैं, मतलब ऐसा कुछ, तो मैं डर के बहुत डर के उठ गई, उठ के बैठ गई, फिर मेरे माइंड में वही सपना बार बार बार।
1: उसके बाद नींद आई?
2: मैं रात को तो सोई थी, उसके बाद
1: सोई थी
2: अगली।
1: ओके और रोशन को क्या सपना आया ऐसा?
4: हाँ मेरे को तो भूत का रिलेटेड आया एक बार, जहाँ मैं मतलब रिपोर्टर हूँ जिसके हाथ में कैमरा है।
1: अच्छा
4: रिपोर्टर तो नहीं बोल सकते, मेरे हाथ में कैमरा था। ओके तो मेरे को बोला गया था कि तुम कुछ इंटरेस्टिंग बनाओ, कुछ भी इंटरेस्टिंग कैमरा में रिकॉर्ड करो। तो मैं गया एक असाइलम में।
1: ओके
2: हाँ क्या होता है
1: असाइलम? मतलब आप मेंटल असाइलम की बात कर रहे हो, जहाँ पे जो पेशेंट्स जिनको कोई भी मानसिक बीमारी होती है उनको रखा जाता है ना, जो बिल्कुल ट्रीट नहीं हो पाते हैं, रखना पड़ता है जिनको,
2: वहाँ पे रखते हैं,
1: एक ऐसी जगह होती है।
2: ओके
4: हाँ तो मैं जा रहा हूँ अंदर, मैं अंदर जा रहा हूँ और असाइलम बंद है, अब मैं अंदर कैसे जाऊंगा? तो मैं पीछे से घूम के गया ऊपर, ऊपर मैं जाते जा रहा हूँ, मेरे पास कैमरा है, पूरा अंधेरा है और बस कैमरा में थोड़ा दिखाई दे रहा है जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। तो मैं आगे जाते जा रहा हूँ, मेरे मतलब मेरे तो पूरा, मैं तो पूरा डर गया था,
1: नींद खुली या फिर नींद नहीं खुली इससे?
4: हाँ उसके बाद क्या हुआ, मैं आगे जा रहा था, हाँ तो मेरे हाथ में तो कैमरा था, मैं उसी से देख रहा था, बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो मेरे को अचानक से पीछे से आवाज सुनाई दी, मैं कैमरा को नहीं घुमाया, मैं खुद घूम के देखा क्या हो रहा है, फिर मैंने कैमरा घुमाया, फिर था वहाँ एक बिल्ली था ऐसे
1: चलो
4: जैसे ही मैंने घुमाया उसी में डर के मैं उठ गया इतना डरावना था वो बिल्ली ने मेरे को डरा दिया
1: उस बिल्ली मतलब ऐसे में अंधेरे में और अचानक से एक आवाज आए तो वो बिल्ली भी काफी होती है
2: बहुत ज्यादा और बिल्ली की आईज भी कितनी ग्लो करती है ना कैमरे का
1: अंधेरे में ना
2: वो पड़ता है टॉर्च ऐसे कुछ भी भूतनी तो वही लगने लगती है
1: और आयुष आपको भी कुछ ऐसा सपना आया था
3: बताया ना दीदी
1: अच्छा हो गया सबका हो गया ना चारों
3: शिवानी
1: रह गई
0: मेरा तो डरावना नहीं था मतलब मैंने खोली आंखों से देखा था जो डरावना था तो मैंने बता दिया था
1: ओके
0: एक मुझे मैंने खोली आंखों से देखा तो मैं सोच रही थी मतलब कि एक आइसक्रीम थी वो मैं सोच रही थी कि अगर मैं छोटी होती तो आइसक्रीम मेरे लिए कितनी बड़ी होती खाने के लिए
1: तो आइसक्रीम आपसे ज्यादा बड़ी हो गई थी
2: पूरी आइसक्रीम खाती आराम से
1: हमसे बड़ी आइसक्रीम मिले तो कितना मजा आएगा वो तो
2: वही तो
4: पर बाद में नहीं आएगा
1: बाद में नहीं आएगा
0: या तो
1: लेकिन हाँ अगर वो आइसक्रीम बात करने लगे तो मजा नहीं आएगा
0: या तो दीदी या तो मेरे पास कोई ऐसी चॉकलेट हो जो जिसमें खाऊं फिर जो बड़ी हो जाए फिर मैं खाऊं फिर बड़ी हो जाए
2: मतलब वो खाए और फिर आ जाए फिर खाए फिर आ जाए
1: ये है खुली आंखों से देखा हुआ सब और फिर दांत का क्या होगा वो भी आएंगे और जाएंगे
3: नहीं नहीं दो एक बार ही होगा ऐसा दीदी हम पता है इतना डर जाते हैं सपने में कभी कभी बोलने भी लगते हैं ना
2: हाँ दीदी मेरे नाना जी के साथ भी ऐसे होता था
3: मेरे साथ होता है
4: मेरे साथ बार एक बार हुआ मेरे साथ
1: होता है
0: मैं बोलती तो नहीं थी लेकिन जब मेरा सपना आता है ना तो मेरा पैर अपने मन से हिलने लगता है
1: होता है
0: तो फिर मैं डर जाती हूँ
1: हमारा माइंड ही तो हमारे शरीर को कमांड देता है ना तो माइंड में सपना चल रहा है तो बॉडी को कुछ ना कुछ कमांड मिक्स मिलती रहती है
2: दीदी ऐसा क्यों होता है हम सपने में हम जब होते हैं तो हमें लगता है बिल्कुल रियल है बिल्कुल रियल हो रहा है हमारे साथ इसलिए हम बहुत डर जाते हैं या फिर हम बहुत खुश हो जाते हैं
1: पसीना आ जाता है कभी कभी है ना
2: और बहुत डर के मारे उठ के बैठ जाते हैं
0: मैंने एक अच्छा वाला सपना देखा था कि मैं एक दुकानदार के पास गई उसने मुझे मतलब कि जो भी उसकी दुकान में लगा हुआ था चिप्स टॉफी और चॉकलेट उसने सब कुछ मुझे दे दिया मैं फ्री में खा रही हूँ
1: अच्छा बच्चों आप लोग इन सपनों के बारे में कभी किसी से शेयर करते हो कभी किसी को बताते हो
2: दीदी बताए जब मेरे मुझे
1: किसको बताते हो
2: बहुत बुरे वाले सपने आते हैं ना
1: मम्मी को पापा को
2: नहीं मम्मी को बताती हूँ
3: मैं तो बताती नहीं बताता ऐसी चीजें
2: नहीं मुझे बहुत ज्यादा डरावना
4: डरावना आता तो वो नहीं बताता
1: नहीं बताती क्यों
2: डरावना आता तभी मैं बताती हूँ
4: तो ऐसे ही कुछ अच्छा आया जो बजा सकते हैं तो
1: लेकिन अगर रात को डर लग रहा है तो नहीं बताओगे फिर मम्मी को
3: तो परेशान नहीं करता मैं तो सो जाता हूँ या कभी कभी तो मैं बोलता हूँ ना दीदी डरावने सपने से तो मुझे पता नहीं मैं बोल क्यों रहा था पर सपना था कुछ तो डराना जैसे कि तो फिर मम्मी पापा या को भी मेरे पास आके लेट जाता है
1: अच्छा बच्चों वैसे जो हम लोगों ने बात की अभी उससे एक बात तो समझ में आती है कि जो चीजें हम पढ़ते हैं देखते हैं उसका असर होता है सपनों पे कहीं ना कहीं
2: दीदी है ना और वो कुछ कुछ सपने जो हम देखते हैं वो सच भी होते हैं ना
3: मुझे नहीं लगता
1: कोइंसिडेंस हो सकता है
0: मतलब कि वो बड़े लोग कहते हैं कि हम लोग सुबह के सपने देखते हैं तो सच होता है
1: वो
3: सिर्फ कहने की बात
1: कहावत तो है लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमने कुछ भी देख लिया और वो जाएगा
2: वो नहीं वो कुछ होता है
4: कभी कभी होता है कि तुम मतलब रियल लाइफ में कुछ भी कर रहे हो तो फिर तुमको पता चला है कि इसके बाद मतलब इसको मैंने कभी पहले भी किया है कभी इसको मैंने पहले भी देखा है तो ये हमने अपने मतलब हम अपने सपने में देखे होता है जो हम भूल जाते हैं
1: बिल्कुल और ऐसा होता है बच्चों क्योंकि हम बहुत चीज जैसे एग्जाम के बारे में अब आप बहुत उस बारे में सोच रहे हो और सपने में भी आया पास हो गए और आप पास हो भी गए देखा जाए तो सपना सच हुआ लेकिन आप बहुत सोच रहे होते हो ना उस बारे में
2: इस बार,
1: तो सच भी होता है और सपने में भी आ जाता है ऐसा हो जाता है
3: बस कोइंसिडेंस मैं तो दीदी नहीं मानता कि
1: लेकिन एक चीज तो माननी पड़ेगी बच्चों कि आप रात को जब सोते हो तो उससे पहले आप अपने पास कोई ऐसी एक प्यारी सी बुक रख लो जो आपको पसंद है जिसमें कोई स्टोरी है अच्छी या जिसमें कोई अच्छी बात लिखी है भले आपको 2-3 मिनट उसको पढ़ के देख के सो क्योंकि हम जो लास्ट थॉट लेते हैं ना रात को
2: वो हमारे सपनों में आती है
1: तो अगर डरना नहीं है सपनों में तो क्या करना पड़ेगा
3: अच्छी बात है सोचनी पड़ेगी
2: हाँ जी जब मैं अच्छा कुछ सोच के सोती हूँ ना तब सपने में बहुत अच्छा होता है जब कुछ फिल्म देख के सोऊंगी डरावनी ऐसा कुछ तो फिर सपने में वही आता है ऐसा होता है
3: दीदी कभी कभी ऐसा भी होता है ना हमारा पूरा दिन अच्छा गया ना हमने कोई डरावनी मूवी या कैसी भी मूवी नहीं देखी कुछ भी सब कुछ अच्छा
2: फिर
3: भी डरावना सपना
1: क्योंकि केवल आज के ऊपर डिपेंड नहीं करता सपना
3: पूरे पास्ट के ऊपर
1: लेकिन फिर भी रात को अगर आप बहुत पॉजिटिव और पावरफुल ऐसा होके सोते हो तो फिर ऐसे डरावने वाले सपने
3: नहीं आते
1: ओके बच्चों, तो आज हम लोगों ने अपने बहुत सारे सपनों के बारे में बात किया और कभी कभी और भी बात करेंगे. मुझे लगता है आप लोगों के बहुत सारे सपने रह गए हैं अभी.
2: हाँ, बहुत सारे.
1: ठीक है, कोई बात नहीं.
2: मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है सपने. ठीक है, सपना
1: कोई बात नहीं. हम आप लोगों के सपनों के बारे में फिर से बात करेंगे जब हमारे पास थोड़ा सा और टाइम होगा, है ना. तब तक अपने दोस्तों को भी और सपने देखने देते हैं, है ना. ठीक है, बाय बाय बच्चों.
2: बाय.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 15वां पाठ, उसी से ठंडा उसी से गर्म, पृष्ठ संख्या 139। एक था लकड़हारा, जंगल में जाकर रोज लकड़ियां काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। एक दिन वह दूर जंगल के अंदर चला गया। कटकटी का जाड़ा पड़ रहा था, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो जाती थीं। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथों को मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से उनमें फूंक मारता कि गर्म हो जाएं। कोने में खड़े एक मियां बालिश दिए उसे देख रहे थे। घूर घूर कर उन्होंने जब देखा कि वह बार बार हाथ में कुछ फूंकता है तो सोचने लगे कि यह क्या बात है, मगर कुछ समझ में ना आया तो वे अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए कि ना मालूम कहीं पूछने से यह आदमी बुरा ना माने, मगर फिर रहा ना गया। आखिर वे ठुम्मक ठुम्मक लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। लकड़हारे को यह जरा सा आदमी देखकर ताज्जुब भी हुआ, हंसी भी आई, मगर उसने हंसी को रोककर कहा, हाँ हाँ भाई, जरूर पूछो। बालिश्तिये ने पूछा, बस यह पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथ पर फूंक सी क्यों मारते हो। पृष्ठ 140। लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुरे जाते हैं, मैं मुंह से फूंक कर उन्हें जरा गर्मा लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक लेता हूँ। मियाँ बालिश्तिये ने कहा, अच्छा अच्छा यह बात है। यह कहकर बालिश्तिये मियाँ वहां से तो खिसक गए, मगर रहे आसपास ही। दोपहर का वक्त आया, लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। इधर उधर से दो पत्थर उठाकर चूल्हा बनाया, आग सुलगाकर चूल्हे पर आलू रख दिए। लकड़ी गीली थी इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती तो लकड़हारा मुंह से फूंक कर तेज कर देता। अरे, बालिश्तिये ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, अब यह फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है। लकड़हारे को भूख ज्यादा लगी थी इसलिए एक सिका हुआ आलू उठाया, उसे खाना चाहा तो वह ऐसा गर्म था जैसे आग, तो वह फू फू करके फूंकने लगा। अरे, बालिश्तिये ने फिर जी में कहा, यह फिर फूंकता है, अब क्या इस आलू को फूंक कर जलाएगा। थोड़ी देर फू फू करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गप गप खाने लगा। अब तो इस बालिश्तिये की हैरानी का हाल न पूछो। पृष्ठ 141। बालिश्तिये से फिर ना रहा गया और ठुम्मक ठुम्मक फिर लकड़हारे के पास आया और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बालिश्तिये ने कहा, तुमने सुबह मुझसे कहा था कि मुंह से फूंक कर अपने हाथों को गर्माता हूँ, अब इस आलू को क्यों फूंकते थे, यह तो खुद बहुत गर्म था, इसे और गर्माने से क्या फायदा। नहीं मियाँ टिटलू, यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूंक फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। बात तो कुछ ऐसी ना थी, मगर यह सुनकर मियाँ बालिश्तिये का मुंह पीला पड़ गया, डर के मारे कप कप कांपने लगा, उसके पैर पीछे हटते जाते थे। लकड़हारा भला मानस था, उसने आखिर पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ, क्या जाड़ा बहुत लग रहा है। मगर मियाँ बालिश्तिये थे कि बराबर पीछे ही हटते चले गए। और जब काफी दूर हो गए तो बोले, अरे यह ना जाने क्या बला है, कोई भूत है या जिन्न, उसी से ठंडा उसी से गर्म, हमारी अक्ल में यह बात नहीं आती। सच है, यह बात बालिश्तिये की नन्नी सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। यह कहानी लिखी थी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। सोचो, क्या असल में बालिश्तिये होते हैं? इस कहानी के लेखक ने बालिश्तिये की बात क्यों की होगी? करके देखो, बालिश्तिये ने जब यह देखा कि लकड़हारा आग सुलगाने के लिए भी और आलू ठंडा करने के लिए भी फूंक रहा था, तो उसे बड़ी हैरानी हुई। क्या तुमने भी कभी सर्दी में अपने हाथों पर फूंक मारी है? कैसा लगता है? अपने हाथों को मुंह के पास लाकर जोर से 2-3 बार फूंक मारो। मुंह से छोड़ी हुई फूंक की हवा आसपास की हवा के मुकाबले कैसी लगी? अगर हाथों को मुंह से थोड़ी दूर पर रखो, तब भी क्या मुंह से निकली हुई हवा गर्म लगेगी? क्यों? पृष्ठ 142। सोचो और बताओ, क्या तुम कोई और ऐसी स्थिति सोच सकते हो जब फूंक मारने से गर्मी मिलती है? अपने रूमाल या किसी भी मुलायम कपड़े को 2-3 बार मोड़ो, उसे मुंह के पास लाकर 2-3 बार जोर से फूंक मारो। क्या रुमाल या कपड़ा कुछ गर्म हो गया? करके देखो। बालिश्तिये ने देखा कि लकड़हारा गर्म गर्म आलू को फूंक मारकर ठंडा कर रहा था। अगर वह बिना फूंक मारे ही गर्म गर्म आलू को खा लेता तो क्या होता? क्या कभी कुछ गर्म खाने या पीने से तुम्हारी जीभ जली है? तुम अपने गर्म खाने को कैसे कैसे ठंडा करते हो? अगर रोटी, चावल और दाल बहुत गर्म हैं, तो तुम तीनों को किस किस तरीके से ठंडा करोगे? यहाँ 2 चित्र दिए गए हैं। चित्र 1 में मिनी ने चाय को फूंक मार मार कर जल्दी से ठंडा किया। तुम्हें क्या लगता है कि मिनी की चाय ज्यादा गर्म होगी या उसकी फूंक की हवा? चित्र 2 में सोनू की ठंड से जान निकल रही थी, इसलिए वह बार बार अपने हाथों पर फूंक मार रहा था। अब सोचो और लिखो कि सोनू के हाथ ज्यादा ठंडे होंगे या उसकी फूंक की हवा। पृष्ठ 143। तुम और क्या क्या करने के लिए फूंक मारते हो? कागज से अपनी सीटी बनाओ। एक कागज का टुकड़ा लो, 12 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा। यहां दिए गए चित्र के अनुसार उसे आधा मोड़ दो। अब दिखाए गए चित्र 2 के अनुसार कागज को बीच में से काट कर छेद कर लो। दोनों तरफ से कागज को बाहर की तरफ मोड़ दो। कागज को अपनी उंगलियों में फंसाकर होंठों से लगा लो। अब फूंक मारो। तुम्हें सीटी जैसी आवाज सुनाई देगी। तुम्हारे साथी की सीटी जोर से बजी या तुम्हारी? सीटी में धीरे और जोर से फूंक मारकर अलग अलग तरह की आवाजें निकालो। अलग अलग चीजों से सीटी बजाओ। यहां कुछ चीजें बताई हैं, उन चीजों से आवाजें निकाल कर देखो और लिखो उनमें से किससे सबसे तेज सीटी बजी और किससे सबसे धीरे। आवाज की तेजी को क्रम में लिखो। चीजें हैं, टॉफी की पन्नी से, पत्ते से, गुब्बारे से, पेन के ढक्कन से, किसी और चीज से। पृष्ठ 144। क्या तुमने कभी देखा या सुना है कि लोग अलग अलग चीजों के इस्तेमाल से अलग अलग तरह का संगीत बजाते हैं, जैसे बांसुरी, ढोलक, बीन, मृदंग, गिटार आदि? क्या तुम आंखें बंद करके इनकी आवाजें पहचान सकते हो? इन सभी चीजों के बारे में और बातें पता करो, चित्र भी इकट्ठे करो, लिखो। क्या तुम ऐसी चीजों के नाम बता सकते हो जिनमें फूंक मारने से सुहावनी आवाज निकलती है? उनके नाम लिखो, करके देखो और चर्चा करो। क्या तुमने कभी देखा है कि कोई चश्मा साफ करने के लिए अपने मुंह से हवा निकाल रहा हो? मुंह से निकली हवा से चश्मा साफ करने में कैसे मदद मिलती होगी? एक स्टील का गिलास लो, उसे मुंह के पास लाकर मुंह खोलकर जोर से सांस छोड़ो। इस तरह 2-3 बार सांस छोड़कर देखो, क्या गिलास कुछ धुंधला सा हो गया? क्या तुम इसी तरह शीशे को भी धुंधला बना सकते हो? शीशे को छूकर पता लगा सकते हो कि यह धुंधलापन किस वजह से है? छोड़ी हुई हवा सूखी है या गीली? अपने हाथों को अपनी छाती पर रखो, अब सांस भरो। क्या हुआ, छाती अंदर गई या बाहर? अपनी छाती का नाप लो, एक लंबी गहरी सांस भरो। पृष्ठ 145। अपने साथी से कहो कि वह एक धागे से तुम्हारी छाती का नाप ले। नाप, रिक्त स्थान। अब सांस छोड़ो और फिर अपने साथी से तुम्हारी छाती नापने को कहो। नाप, रिक्त स्थान। क्या छाती के नाप में कुछ फर्क आया? हर मिनट में कितनी सांस? अपनी नाक के आगे उंगली रखो। क्या तुम नाक से सांस छोड़ते समय हवा को महसूस कर सकते हो? अब गिनो कि 1 मिनट में तुमने कितनी बार सांस ली और छोड़ी। अब अपने स्थान पर 30 बार ऊंचा ऊंचा कूदो। क्या सांस फूलने

लगी। अब फिर अपनी नाक के आगे उंगली रखकर गिनो कि तुमने एक मिनट में कितनी बार सांस छोड़ी। बैठे बैठे और कूदने के बाद सांस गिनी तो कितना फर्क आया। तुम्हारे अंदर धड़कती घड़ी, घड़ी की सुई से होती टिक टिक की आवाज तो तुमने सुनी होगी। क्या तुमने कभी सुना या देखा है कि डॉक्टर हमारी छाती पर स्टेथोस्कोप लगाकर हमारी धड़कन सुन सकते हैं? यह आवाज कहाँ से आती है? क्या हमारे अंदर भी कोई घड़ी है जो हमेशा धड़कती रहती है? आओ सुने अपनी धड़कन। अपने कंधे से कोहनी तक की लंबाई की एक रबड़ पाइप लो। इस पाइप के एक सिरे पर एक कीप लगा दो। अब कीप को अपनी छाती की बाईं ओर रखकर पाइप के दूसरे सिरे को कान में लगाओ। ध्यान से सुनो, क्या धक धक की आवाज सुन पाए? पृष्ठ 146। सांप बताए हवा का बहाव। इसके लिए लगभग 10-12 सेंटीमीटर चौड़ा एक गोल कागज लो। इस गोल कागज को अंदर की तरफ सांप के घुमाव में काटो। इस सांप को पकड़ने के लिए दोनों तरफ धागा बांध लो। नीचे लटकने वाले धागे पर गांठ बांध लो या छोटा बटन बांध लो। अब सांप तैयार है घूमने के लिए। किसी भी गर्म चीज से थोड़ी दूर इस सांप को लटका कर देखो। इसके लिए गर्म चाय, पानी या जलती हुई मोमबत्ती ले सकते हो। अब यह सांप कैसे घूमता है इसके ऊपर से देखो। जब भी हवा नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो यह सांप घड़ी की दिशा में घूमेगा। अगर हवा ऊपर से नीचे की ओर बह रही हो तो यह सांप घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा। पंखे के नीचे इस सांप को लेकर खड़े रहो। देखो सांप किस दिशा में घूमा। अपने इस सांप को लेकर जगह जगह जाओ और देखो। क्या सांप के घूमने से समझ पा रहे हो हवा नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे बह रही है? हम क्या समझे? अमित खेलते खेलते दीवार से टकरा गया और उसका माथा झट से सूज गया। दीदी ने तुरंत ही दुपट्टे को 3-4 बार मोड़कर उस पर फूंक मारी और अमित के माथे पर रख दिया। सोचो दीदी ने ऐसा क्यों किया होगा? फूंक का इस्तेमाल चीजों को ठंडा करने के लिए भी करते हैं और गर्म करने के लिए भी। दोनों का एक एक उदाहरण दो। उसी से ठंडा, उसी से गर्म। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 15वां पाठ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।

0: नमस्ते, मैं हूँ आरजे केवल। दादी प्रकाश मणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड्स से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाए। याद रखे, 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए, आज विशेष दिन है जिसके बारे में बातें करेंगे। तो आइए, आज विशेष 7 अगस्त है। 7 अगस्त की कुछ खास बातें आपसे शेयर करूंगा और सबसे खास बात यह है कि सुरेश वाडकर जी का जन्मदिन है। उनके गाने, उनके डायलॉग डिलीवरी को या उनकी कहानी आपको सुनाएंगे। अवींद्रनाथ ठाकुर, वासुदेव शरण अग्रवाल, M.S. स्वामीनाथन, मोहम्मद रोशन अख्तर, सनिंद्र लाल सिंह, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही रविंद्रनाथ ठाकुर, M. करुणानिधि, गुलशन बावरा, नैसी वेक, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस दिन को यादगार बनाते हैं आप सभी के साथ मिलकर। कहते हैं कि एक सुंदर विचार आपके जीवन को बेहतर बनाता है। अगर मेहनत अदा बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत के साथ। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी, जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन, नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और अब बात करते हैं अविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में। अविंद्रनाथ ठाकुर भारत के बहुत ही पॉपुलर चित्रकार और साहित्यकार थे। उन्हें राष्ट्र से बड़ा प्रेम था और सांस्कृतिक गुलामी से मुक्ति के लिए उन्होंने अपना अग्रज गगनेंद्रनाथ ठाकुर के सहयोग से 1907 में कोलकाता, भूतपूर्व कोलकाता में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स नामक संस्था की स्थापना की। कला और चित्रकला की भारतीय पद्धति को अविंद्रनाथ ठाकुर ने पुनः जीवित करके संसार में उसे उचित सम्मान दिलाया था। अविंद्रनाथ ठाकुर की चित्रकला के मुख्य उदाहरण है प्रवासी यक्ष, जहां शाहजहां की मृत्यु, बुद्ध और सुजाता, कच्छ और देवयानी, उमर खय्याम, इन सभी की जो बातें हैं उदाहरण के रूप में उन्होंने देते हुए 1905 से लेकर 1916 तक अविंद्रनाथ ठाकुर कलकत्ता में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट के उप प्राचार्य और कुछ समय के लिए प्राचार्य भी रहे। भारतीय चित्रकला के एक नए स्कूल का जन्म इन्होंने किया। अविंद्रनाथ ठाकुर ने सर्वाधिक प्रख्यात शिष्य नंदलाल बोस थे। तो ये थी कुछ खास बातें अविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में और 5 दिसंबर 1951 को इन्होंने इस संसार से अलविदा कह दिया। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और कहते हैं कि कुछ लोगों का जीवन कम होता है लेकिन बेहतर होता है, कुछ लोगों का जीवन में मकसद बहुत जल्दी मिल जाता है, कुछ लोगों को मिलता ही नहीं और कुछ लोगों को बहुत देरी से मिल जाता है। तो हमें अपने जीवन में अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए ताकि हम अपने और समाज के कुछ कार्य आ सकें। जिस तरह से कला को इन्होंने प्रमोट किया, कला को फिर से एक नई जीवंतता प्रदान की अविंद्रनाथ ठाकुर, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कहीं ना कहीं से एक आस्था मिल जाती है, प्रेरणा मिल जाती है ईश्वर की तरफ से, वो उन कामों को करते हैं और लोगों के बीच में एक नई जीवन शैली का जो है उदाहरण पेश करते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को। आइए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके लिए, सुनते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे, वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। चलिए एक और शख्सियत के बारे में बात करते हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में अभी। जी हाँ, ये गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं और भारत के बहुत ही पॉपुलर विद्वानों में से एक, भारत के इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य और विद्या आदि विषयों में विशेषज्ञ है। वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी विश्वकोश संपादक मंडल के मुख्य सदस्य थे। मथुरा संग्रहालय उत्तर प्रदेश के संग्रह अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की थी। उनकी प्रसिद्धि पुस्तक पानीकालीन भारतवर्ष में भारत की संस्कृति, कला और साहित्य आदि पर प्रकाश डाला गया है। उन्हें साहित्य अकादमी द्वारा विशेष रूप से सम्मान किया गया उनके कार्य के लिए। आइए उनके बारे में बात करते हैं। इनका जन्म जो है आज ही के दिन 7 अगस्त 1904 को गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के खेड़ा नामक गांव में हुआ और विद्या के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का ये जन्म स्थान। उनकी छोटी उम्र में ही उनका माँ का देहांत हो गया और जिस कारण दादी ने उन्हें पाला और पोसा। अब 1920 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध अपना असहयोग आंदोलन आरंभ किया। उस समय वासुदेव शरण लखनऊ में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इसके साथ में वो एक ऐसे जो है विधान और संस्कृति का विशेष अध्ययन भी कर रहे थे, एक रिसर्च कर रहे थे, और इसके साथ में आंदोलन के प्रभाव में उन्होंने सरकारी विश्वविद्यालय छोड़ दिया और खादी के वस्त्र धारण करने के लिए तैयार हो गए। जब गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो उन्हें फिर औपचारिक शिक्षा आरंभ करने का, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में डिग्री प्राप्त करने के लिए एमए और एलएलबी की शिक्षा के लिए लखनऊ आ गए। इस तरह से आगे चलकर इसी विश्वविद्यालय से उन्हें पीएचडी और डीलिट की उपाधि भी मिली और उसके बाद साहित्य के साथ जुड़ते जुड़ते वो विशेष आंदोलन के कार्यों में भी कार्य करते रहे। तो वही आगे उन्होंने क्या किया उसके बारे में जानते हैं थोड़ी देर में, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन 107.8 एफएम पर, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: आवश्यक सूचना, 9 अगस्त 2026 रविवार को आयोजित होने वाली 8वीं दादी प्रकाश मणि हाफ मैराथन के कारण सुबह 5:30 बजे से सुबह 9 बजे तक तलहटी आबू रोड से आबूराज मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। यदि किसी को इस दौरान आबूराज से बाहर जाना हो तो कृपया सुबह 5 बजे से पहले ही जाएं। सुबह 9 बजे के बाद सभी मार्ग पुनः यातायात के लिए खोल दिए जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अपने यात्रा कार्यक्रम की योजना इसी अनुसार बनाएं और इस सूचना को अपने परिचितों तक अवश्य पहुँचाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्ते, मैं हूँ आरजे केवल। दादी प्रकाश मणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाए। याद रखें, 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आइए बात कर रहे थे हम लोग वासुदेव शरण अग्रवाल जी के बारे में। भारत के इतिहास, संस्कृति, कला और साहित्य के विद्वान थे और साहित्य में इन्होंने काफ़ी काम किया। मालिक मोहम्मद जयासी, ये इनको विशेष सम्मान मिला था। और हरिचरित्र एक सांस्कृतिक अध्ययन, ये भी किताब उन्होंने लिखा था। वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी विश्वकोश के संपादक और मंडल में मुख्य सदस्य थे। और इस तरह से उनकी जब साहित्यिक जो चीज़ें बनी और उसमें उनको प्राप्तियां होने लगी, तो वो आगे के अलग अलग पदों पर, जैसे कि संग्रहालय में विशेष रूप से इनको पदोन्नति मिल गई और लखनऊ में प्रांतीय संग्रहालय में क्यूरेट रहे और आज़ादी के बाद दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना करने में भी उनका योगदान रहा। इस तरह से अलग अलग पदों पर दिल्ली में रहने के कारण वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय विद्या संस्थान के मुख्य बनकर वाराणसी चले गए। हिंदी के अलग अलग विभागों में इन्होंने काम किया और फिर 23 ग्रंथों की रचना भी की। उनका योगदान के लिए विद्वानों में इनकी जो है गिनती आ जाती है और लोग बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं। तो ऐसे विशेष इतिहासकार वासुदेव शरण जी 26 जुलाई 1966 को उनका निधन हुआ। तो आइए उनके बारे में हमने सुना कि किस तरह से उन्होंने अपना काम किया और साहित्य के साथ रुचि रखते हुए साहित्य को एक नया आयाम पहुंचाने में, एक नया जो है साहित्य जगत क्रिएट करने में, बनाने में उनका विशेष योगदान रहा। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को। आइए आगे बढ़ते हैं और साहित्यकारों का विशेष योगदान की अगर मैं बात करूँ, तो जितने साहित्य हैं उन साहित्यों को जब भी आप उठाते हो, पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंतरात्मा से भी जो है एक नए विचारों निकलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही साहित्य को हमेशा अपने साथ रखिए। साहित्य जो है नया सृजन पैदा करता है, क्रिएटिविटी देता है। आप देखेंगे जितने भी फिल्म, टीवी, सीरियल, नाटक वगैरह देखते हैं, तो इनका जन्म जो है, इनका जो ये बनती है स्क्रिप्ट के माध्यम से और स्क्रिप्ट आती है साहित्य से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो भी कलाकृति आप देखते हो, तो कहीं ना कहीं साहित्य के ही देन हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके लिए, आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। चलिए, जाते जाते मैं आपको दो और ख़ास व्यक्तियों के बारे में बात करना चाहूँगा। जी हाँ, भारत के एक राजनेता जिनका नाम है सचिंद्र लाल सिंह, ये त्रिपुरा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। सचिंद्र लाल सिंह भारत के उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा के 1 जुलाई 1963 से 1 नवम्बर 1971 तक मुख्यमंत्री रहे। वो नवनिर्मित पार्टी और डेमोक्रेसी के नेता रहे। छठी लोकसभा के लिए सचिंद्र लाल सिंह त्रिपुरा पश्चिम लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और इनका जन्म आज ही के दिन 1907 को हुआ था और 9 दिसंबर 2000 को इनका मृत्यु हुआ था। इसके साथ में मैं आपको जोड़ना चाहूँगा एक विशेष कलाकार गायक सुरेश वाडकर। जी हाँ, आज ही के दिन 7 अगस्त 1955 को कोल्हापुर महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ और ये एक बहुत ही अच्छे गायक हैं, पार्श्व गायक हैं। ओमकारा, प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली, हीना, रंगीला आदि फिल्मों के लिए विशेष रूप से इनका गायन प्रसिद्ध है, उनमें इनके गीत हैं। और इन्हें 2020 में पद्मश्री, राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2011 में इनको मिला। मजहब 10 साल की आयु से ही सुरेश वाडकर ने संगीत की शिक्षा लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने न सिर्फ हिंदी बल्कि मराठी के साथ कई अन्य भाषाओं में भी गीत गाए हैं। तो आइए ऐसे विशेष व्यक्ति के बारे में बातें करेंगे और आप सभी को बड़ा अच्छा लगेगा उनकी गाने और कहानी सुनकर। लीजिए आगे बढ़ते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: सबसे मुख्तलिफ आवाज के मालिक सुरेश वाडकर। सुरेश वाडकर का जन्म 7 अगस्त सन 1954 में हुआ महाराष्ट्र के कोल्हापुर इलाके में। मात्र 8 साल की उम्र में ही पता चल गया था कि ये आगे जाकर गायक ही बनेंगे। संगीत के प्रति इनका जुनून सर चढ़ के बोल रहा था।
3: घटा छा गई है, बहार आ गई है।
2: सुरेश वाडकर साहब ने आगे जाकर संगीत में ही अपनी ग्रेजुएशन भी की। प्रयाग संगीत समिति से ये संभव हो पाया और उसके बाद ये आर्य विद्या मंदिर से जुड़ गए और फिर मुंबई में बतौर म्यूजिक टीचर काम करने लगे। ये भी एक चमत्कार से कम नहीं कि कैसे सुरेश वाडकर फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन गए। बात है 70 के दशक की, जहां पर एक बहुत ही अनोखी संगीत प्रतियोगिता हो रही थी। नाम था फिल्म संगीत सम्मेलन।
3: जीना है उसका जीना, जो मौत से ना घबराए, सर से कफन जो बांधे वो साथ हमारे आए।
2: यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से नए नए गायक पहुँचे थे और इस प्रतियोगिता को जज करने के लिए पहुँचे थे रविंद्र जैन, जयदेव, हृदयनाथ मंगेशकर, सुधीर फड़के, पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया।

सुरेश वाडकर साहब ने इतना अच्छा गाया कि इन्हें मदन मोहन अवार्ड से नवाजा गया उस प्रतियोगिता में। जब विजेता के नाम की घोषणा हो रही थी तब महान संगीतकार रविंद्र जैन ने कहा था कि वो पहला मौका देंगे सुरेश वाडकर को बतौर प्लेबैक सिंगर, और रविंद्र जैन साहब ने ठीक वैसा ही किया। एक गाना था वृष्टि पड़े तापुर तिपुर, राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की फिल्म पहेली का। ये फिल्म सन 1977 में आई थी और यहाँ से सुरेश वाडकर की शुरुआत हुई। शुरुआती दौर में ये संगीतकार जयदेव के साथ काम करते रहे, जो कि सुरेश वाडकर के गुरु पंडित जियालाल वसंत के बड़े ही गहरे मित्र थे। बतौर सहायक भी काम कर रहे थे और साथ साथ गाना कैसे कंपोज होता है और रिकॉर्ड होता है ये भी सीख रहे थे। थोड़े बहुत गाने भी इनके सामने आ रहे थे, पर एक दिन लता मंगेशकर ने इनकी आवाज सुनी। सुरेश वाडकर की आवाज सुनते ही लता मंगेशकर ने उस दौर के जबरदस्त संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से सुरेश वाडकर की तारीफ की, और तब गाना मिला फिल्म क्रोधी में, चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा। और फिर सुरेश वाडकर ने कभी पलट के नहीं देखा, चाहे वो फिल्म हम पांच रही हो, प्यासा सावन या फिर प्रेम रोग। सुरेश वाडकर ने बड़े ही मुख्तलिफ गाने गाए, इनकी आवाज आम प्लेबैक सिंगर से बिल्कुल अलग। जो भी गाना ये गाते इनका एक अपना अलग स्टाइल होता। बड़े से बड़े संगीतकार के साथ इन्होंने काम किया, चाहे वो जयदेव साहब रहे हों, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रहे हों या फिर इलैया राजा और एआर रहमान। सुरेश वाडकर साहब ने शास्त्रीय गायिका पद्मा से विवाह किया।

इस शादी से इन्हें दो बेटियां हैं, अनन्या और गीता। हर दौर में सुरेश वाडकर की आवाज कमाल करती रही, पर बहुत ही चुनिंदा गाने इन्होंने गाए और बतौर संगीत गुरु इन्होंने बहुत से शिष्यों को प्रशिक्षण दिया। भारतीय सिनेमा के इतिहास में यकीनन सुरेश वाडकर का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा।

तो ये थी कहानी सुरेश वाडकर जी की। आशा करूँगा उनके सारे गीत आपको पसंद आए होंगे। जो भी गीत उन्होंने गाया लोगों के दिल में आज भी उनके लिए जगह बनी रहती है और उनके गाने आज भी लोग बड़े प्यार से सुनते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त और जाते जाते आपके लिए एक और खूबसूरत गीत छोड़े जा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले एक सुंदर विचार आपके नाम। जी हाँ, कहते हैं अन्न का कण और आनंद के क्षण कभी व्यर्थ ना जाने दे, क्योंकि दोनों ही अमूल्य हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, मैं हाकम खान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, माने आवे पिया जीरी हिचकी, मारो वादी लो चितारे माने आवे हिचकी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए संपर्क करावे हमारे टेलीफोन नंबर है 9001313752, 9001313752, ये हमारे टेलीफोन नंबर है। मधुबन रेडियो की तरफ से प्रसारण किया जा रहा है राजस्थानी लोकगीत आवे माने हिचकी। हमारा संगीत कला केंद्र है जहां हमारे संगीत बच्चे सिखलाई लेते हैं। बच्चों को संगीत सिखलाई के लिए हमारे को कमायचा, खड़ताल, ढोलक, हारमोनियम सिखाया जाता है। तो संगीत सिखलाई के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में जरूर हमारे संपर्क करें। संगीत निर्देशक हाकम खान।

0: ये है नशे की कहानी।
1: पहला नशा, पहला खुमार,
0: कभी किसी वजह से और कभी यूं ही बेवजह।
1: किसी की याद सताए, शराब पी लेना।
0: कड़वे घूंट पीकर भी आने लगा अगर जिंदगी का मजा, तो लगता है

0: ऐसा हूँ।
1: जब घर वाले हुए परेशान और समाज ने ठुकराया तो लगा
0: घोड़ी की जो पीली है चोरी तो नहीं की है।
1: और जब इस आदत को पहचान न पाने के कारण दुखी हुए, परेशान हुए, रोए चिल्लाए, दिल टूट गया, जग छूट गया, तो आ

गम में पिए या दुख में धुआं उड़ाएं। तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों के कैंसर, लिवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर होने का भी जोखिम होता है। इसलिए आप कहिए नो टू टोबैको, धूम्रपान को कहिए अलविदा और

0: नमस्ते, मैं हूँ आरजे केवल। दादी प्रकाश मणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाए। याद रखे, 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: रेडियो मधुबन 90.4 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम का नाम है युवा मंच और मैं हूं आरुषि आपके साथ। दोस्तों, युवाओं को मन में अगर कोई सवाल भी होते हैं तो साथ में उमंग भी होता है, कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का। अपने लिए कुछ सपने होते हैं, कुछ अपने परिवार के लिए सपने होते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो हम सोशल मीडिया पे जिनके बारे में सुनते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो नाम तो सुना होगा लेकिन कितनी जानकारी हमारे पास है, ये एक बिल्कुल ही अलग मुद्दा हो जाता है। और कई बार सभी चाहते हैं कि हम जीवन में पैसे कमाएं, आगे बढ़े, चाहते तो हैं लेकिन रास्ता कौन सा सही है वो चुनना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ा हथियार जो जरूरी है वो है शिक्षा, वो है जानकारी। तो आज हम स्टॉक मार्केट के बारे में ही बात करने वाले हैं आपसे, और सही तरीका क्या है उसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक एक्सपर्ट जुड़े हैं जिनका नाम है रविंद्र चंदेल जी, जो कि इंदौर से पधारे हैं, स्टॉक ब्रोकर हैं, NISM क्वालिफाइड हैं। तो आज उनसे हम जानेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में और सही तरीके से कैसे आप उससे अर्न कर सकते हैं और कैसे सही और गलत में भेद भी कर सकते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे और साथ साथ आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे जो मुझे लगता है आपके मन में जरूर चल रहे होंगे। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले तो जैसा कि आपके इंट्रोडक्शन में मैंने बोला हमारे दोस्तों से कि NISM क्वालिफाइड, तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि क्या क्वालिफिकेशन होती है।
2: वैसे स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर कभी हम अवेयर होना चाहते हैं, हम टेक्निकली काम करना चाहते हैं, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बहुत सारे सर्टिफाइड कोर्सेज लॉन्च करती है। तो NISM का मीनिंग ही होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट। इसमें सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, इक्विटी, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड, ऑप्शंस ट्रेडिंग, दे आर सो मेनी, मोर देन 26 कोर्सेज दे लॉन्च्ड। वो क्वालिफाइड करने के बाद जब हम काम करने मार्केट में आते हैं तो हमें उसमें बेसिक नॉलेज के साथ में सही गलत का भेद करना आ जाता है।
1: ओके, तो जैसा आपने कहा कि वैसे तो कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये जो क्वालिफिकेशन है ये कौन कर सकते हैं और कब कर सकते हैं?
2: इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, ये सारा ऑनलाइन होता है। आप जो www.nacindia.com जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप कोर्सेज के बारे में डिटेल देख सकते हैं और आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप किसी भी कोर्स को कर सकते हैं। उसमें जो भी मिनिमम फीसेस होती है गवर्नमेंट की वो सबमिट करना होता है, फिर आपके एरिया का, ऑल ओवर इंडिया में आप जिस भी एरिया में रहते हैं वहाँ का आपको एक सेंटर प्रोवाइड करते हैं।
1: okay.
2: और ऑनलाइन एग्जाम होती है, सभी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है जो भी आप एग्जाम चूज करते हैं, और एंड टू एंड उसका रिजल्ट भी आता है। मिनिमम 60% उसका मतलब पास का क्राइटेरिया होता है।
1: तो इसमें पढ़ना क्या पड़ता है?
2: उसका सिलेबस भी आपको उसी वक्त मिल जाता है, मतलब इसमें बहुत कोर्सेज के साथ में सिलेबस भी डिजाइन होता है। मतलब एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है स्टॉक मार्केट। इन्वेस्टिंग एक अलग पार्ट होता है, ट्रेडिंग अलग पार्ट होता है, ट्रेडिंग के अंदर भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। कैश में काम करना होता है, फ्यूचर में काम करना होता है, ऑप्शंस में काम करना होता है, कोई इन्वेस्टिंग करता है, कोई म्यूचुअल फंड में काम करता है, कोई कमोडिटी में काम करता है। कमोडिटी में जनरली हम मेटल्स में डील करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकिल, मेंथल, नेचुरल गैसेस, वो एक अलग पार्ट हो जाता है। इक्विटी में हम जब काम करने की बात करते हैं तो हमें किसी कंपनी के शेयर्स की खरीदी या बिक्री वाला काम करना होता है, तो वो एक अलग पार्ट हो जाता है।
1: तो मतलब NISM को ये समझने के लिए पहले हमें ये समझना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है।
2: बिल्कुल।
1: तो अगर आप अपने शब्दों में बताना चाहें, जो भी युवा दोस्त हमें सुन रहे हैं खासतौर से, स्टॉक मार्केट शब्द बहुत बार सुना है, ऊपर चला गया, नीचे चला गया, ये हो गया, लेकिन वो असल में क्या होता है?
2: बिल्कुल, आपको मैं सरल शब्दों में कभी स्टॉक मार्केट की डेफिनेशन बताऊं तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर लिस्टेड कंपनियों, है ना, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो लिस्टेड कंपनियां होती है, आज की तारीख में जो एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियां 2000 है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, उनके शेयर्स की खरीद या बिक्री कर सकते हैं।
1: okay.
2: वो एक्सचेंज हमें प्रोवाइड करता है। अब क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, खरीदी बिक्री कैसे करें, है ना, तो वो प्लेटफॉर्म हमें डीमैट अकाउंट के थ्रू प्रोवाइड होता है।
1: okay.
2: तो जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं वो एक डीमैट अकाउंट ओपन करके देते हैं जो किसी भी पर्सन के सेविंग अकाउंट से लिंक्ड होता है, है ना, तो उसके थ्रू, डीमैट अकाउंट के थ्रू हम किसी भी कंपनी के शेयर्स की खरीद या बिक्री कर सकते हैं। वही स्टॉक मार्केट होता है। जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होती है डब्ल्यू india.com, वहाँ पर आपको उस कंपनी के शेयर्स के प्राइस देखने को मिलते हैं। और जब आप डीमैट अकाउंट करते हैं, ओपन करते हैं, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए बहुत सारी जो बैंक है वो सब हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। एक्सेप्ट दिस, बहुत सारे ऐसे ब्रोकर है जो ऑथराइज्ड है, जैसे ज़रोदा हुआ, एंजल हुआ, गुडविल हुआ, ये भी हमें अपस्टॉक हुआ, जैसे टाटा ने अभी एक अपस्टॉक भी लॉन्च करा है, वहाँ पर जाकर अपन डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये इसका सही तरीका है।
3: ओके, तो पहले हम पता करें ऑथराइज्ड कौन कौन से।
2: बिल्कुल
3: जी, तो डीमैट अकाउंट एग्जैक्टली क्या होता है?
2: बिल्कुल, डीमैट अकाउंट मतलब कि डीमेटलाइजेशन फंड। आप किसी भी शेयर्स को डिजिटली फॉर्म में खरीद या बिक्री, क्योंकि पहले कभी हम बात करें, कभी इसकी हिस्ट्री के अगर हम बात करें तो जो BSE इंडेक्स जो है ना, वो 1875 से लॉन्च है।
3: ओके,
2: मतलब मोर देन अप्रोक्सीमेटली 150 साल से स्टॉक मार्केट चल रहा है।
3: जी, जी।
2: तो पहले ऑफलाइन काम होता है।

0: फुल्ली ऑटोमेटेड ऑनलाइन हो गया है,
1: ऑनलाइन हो गया है
0: बिल्कुल। अब आप जैसे कंपनी के शेयर खरीदने के लिए आपको किसी के पास नहीं जाना है
1: जी,
0: हमें सब कुछ ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। आपको एक ऑथराइज्ड ब्रोकर को के कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर डील करनी होती है, वहाँ पर आपके जो बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार पैन कार्ड हुआ और बैंक का जो आपका जो स्टेटमेंट हुआ, वो उन्हें सेंड करना होता है। उसके बदले में आपको क्लाइंट आईडी पासवर्ड देते हैं जिसको उनके ही एप्लीकेशन के थ्रू ओपन करना होता है। उसमें आपका जो डीमेट अकाउंट के साथ में जो सेविंग अकाउंट लिंक्ड है उसमें आपको फंड ट्रांसफर करना होता है और उसके बाद आपको खरीदी बिक्री करनी होती है।
1: ओके, एक और सवाल ये आता है मन में कि ऐसे रन होता है लेकिन आखिर ये रन करता कौन है स्टॉक मार्केट?
0: बिल्कुल, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, इसकी रेगुलेटरी बॉडी है, इसके ही निगरानी में सारे काम होते हैं। मतलब ब्रोकर कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है या कोई भी मतलब व्यक्ति इसमें आकर कुछ अनएथिकल वे में काम तो नहीं कर रहा है, तो सारी जो सिक्योरिटी जो एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वही इसके ऊपर डील करती है और वही इसको पूरी तरीके से रन करता है।
1: ओके, तो जैसा आपने कहा कि सेबी इसको रन करता है और मतलब ये टोटली लीगलाइज्ड चीजें हैं, क्योंकि कई बार हम स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं तो डर जाते हैं, बहुत सारी चीजें मन में सवाल आते हैं। मैं वो भी आपसे थोड़ा बाद में पूछूंगी, लेकिन क्योंकि हम अभी स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा और गहराई से अगर बात करें, जो ट्रेडिंग होती है या इन्वेस्टिंग हम कहते हैं, क्या होता है, क्या अंतर होता है इनमें?
0: बिल्कुल, कभी हम इन्वेस्टिंग की बात करें तो इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए किसी शेयर को खरीद के रखना चाहते हैं तो आप उसको खरीद कर छोड़ सकते हैं, मतलब उसमें बाइंग होती है ओनली।
1: okay.
0: जैसे मुझे एग्जांपल के तौर पर मैंने टाटा स्टील का शेयर खरीदा कैश में है ना, और उसको मैंने छोड़ दिया तो ये इन्वेस्टिंग पार्ट हो गया है ना। लेकिन मैं उसे एज अ इंट्राडे जब हम काम करना शुरू करते हैं है ना, कि मुझे सोर्स ऑफ इनकम बनानी है, मैं आज ही खरीदूंगा आज ही बेचूंगा, थोड़ी लिमिट भी चाहिए होती है इसके, और कैश फ्यूचर ऑप्शंस पार्ट होते हैं, तो आपने आज खरीदा आज बेचा फिर कभी बेच दिया और फिर खरीद लिया, इसमें सेलिंग और बाइंग भी होती है। इसे एग्जांपल के तौर पे आपने कुछ खरीदा नहीं है और पहले ही बेच दिया,
1: अच्छा,
0: तो वो ट्रेडिंग के पार्ट में पॉसिबल है, इन्वेस्टिंग में पॉसिबल नहीं है। इन्वेस्टिंग में केवल आपको खरीद के छोड़ना होता है, मतलब पहली एंट्री बाइंग होती है और फिर सेलिंग होती है। बट ट्रेडिंग में क्या होता है, आप पहली एंट्री सेलिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सरल शब्दों में बताऊं कि आपको कपड़े खरीदना है
1: जी,
0: तो आप खरीद सकते हो
1: जी,
0: बिना खरीदे बेच सकते हैं क्या
1: जी?
0: नहीं बेच सकते। आप किसी भी शॉप पे जाके बोल नहीं सकते हो कि मुझे ये ट्राउजर सेल करना है,
1: राइट?
0: नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। लेकिन स्टॉक मार्केट में पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? एक्स वाई जेड कोई कंपनी है ना, अब मुझे अपडेशन है कि ये कंपनी का शेयर गिरने वाला है, तो मैं वो एक्स वाई जेड कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले बेच दूंगा। मतलब उसका प्राइस चल रहा है अभी एग्जांपल के तौर पे 200 रुपीज, तो मैंने 200 की बीट से वो स्टॉक को सेल कर दिया, ठीक है। अब वो 200 से जब नीचे आया 190-180 आया तो मैंने उसको परचेस कर लिया, तो 200 और 190 के बीच में 10 रुपीज का डिफरेंस आया, तो 10 रुपया मेरा प्रॉफिट है।
1: ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जैसा आपने बताया, लेकिन अगर किसी को शुरुआत करनी है तो क्या करना बेहतर रहता है शुरुआत में?
0: शुरुआत के लिए सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा एजुकेटेड हो, पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट करें, इसके लीगलाइज चीजें जो होती है उन्हें जाने, और रेंडमली जो स्टॉक मार्केट के जो कॉल्स आते हैं जनरली उन्हें इग्नोर करें, और जैसे डीमेट अकाउंट क्या होता है, हम उसमें कैसे हम फंड ट्रांसफर करते हैं, पेपर ट्रेडिंग के साथ में जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ पर शेयर्स के प्राइस ऊपर नीचे कैसे हो रहे हैं, कैसे खरीदी हो रही है बिक्री हो रही है, इसमें मोमेंटम कितना ज्यादा हो रहा है, ये बेसिक चीजें की अवेयरनेस होनी चाहिए।
1: पहले स्टडी करना जरूरी है,
0: स्टडी करना बिल्कुल बहुत जरूरी
1: है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम इन्वेस्ट करने लगे
0: हाँ, नहीं नहीं ऐसा, वो फिर क्या होगा उसमें क्या होगा कि अगर कभी कम नॉलेज के साथ में स्टॉक मार्केट में कोई उतरता है तो फिर आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो किसी भी चीज को गेन करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होता है, क्योंकि वो लत के हिसाब से चालू कर देता है। जैसे कभी मैं बात करूँ तो कमोडिटी में बहुत ज्यादा लोगों को स्कैल्पिंग की आदत हो चुकी है आज की तारीख में, तो वो
1: मतलब जैसा आपने बताया कम एजुकेशन के साथ अगर हम उतरते हैं,
0: हाँ मतलब प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है तो फिर वो सीखना भी चाहता नहीं है कोई व्यक्ति, फिर वो लॉस होता है, फिर होते जाता है, फिर लॉस रिकवर करने के चक्कर में और लॉस हो जाता है, इस तरह से चीजें होना शुरू हो जाती है,
1: तो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो लत लग जाती है एंड आप उसको समझ के नहीं कर रहे तो लॉसेस ही होते जा रहे हैं और आप फिर भी उसे बाहर नहीं निकल पा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो जैसा कि आपने अभी भी सुना दोस्तों कि अगर स्टॉक मार्केट में आप एंट्री की सोच रहे हैं तो पहले समझिए, पहले एजुकेट कीजिए खुद को, लेकिन अगर एजुकेट करना है हमें खुद को तो कैसे करें, मतलब कहाँ से सीखें?
0: बिल्कुल, मैंने आपको जैसे बताया कि जो NISM सर्टिफिकेशन जो कोर्सेज होते हैं वो साथ में आपको एक PDF फाइल भी प्रोवाइड करते हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। बिल्कुल, जैसे आपने बेसिक नॉलेज लिया
1: जी,
0: जनरली पता चल गया स्टॉक मार्केट डीमेट अकाउंट के थ्रू हम ट्रेडिंग करते हैं, अब हर व्यक्ति का अपना एक कैपिटल होता है, उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है और उस कैपिटल के हिसाब से उसे अपना रिटर्न चाहिए होता है, क्योंकि इसमें कोई फंड का भी कोई

0: क्राइटेरिया नहीं है। आप 500 रुपीज से लेके 5 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। छोटे बड़े हर व्यक्ति के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। इसी फंड के अकॉर्डिंग इसमें सेगमेंट डिजाइन होते हैं। जैसे एक ऑप्शंस ट्रेडिंग है ना, जैसे इक्विटी हुआ, इक्विटी में कैश में काम करना हुआ, फ्यूचर में काम करना, ऑप्शन में काम करना, तो ऑप्शंस ट्रेडिंग जो होती है वो बहुत ही मिनिमम फंड से स्टार्ट होती है, वो मिनिमम फंड से मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ जाती है। और आज जो सबसे ज्यादा जो लॉसेस का जो रीजन है वो ऑप्शन ट्रेडिंग ही है। जो मैं इसको उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाहूंगा, जैसे मैंने टाटा स्टील की बात करी थी, टाटा स्टील एग्जाम्पल के तौर पर है ना, अभी 400 रुपीज चल रहा है, 500 रुपीज चल रहा है, जो भी प्राइस चल रहा है, तो कोई भी स्टॉक है एबीसी वो 400 रुपीज चल रहा है, आप एक शेयर खरीदेंगे तो कितने रुपए लगेंगे, 400 रुपीज लेंगे। 10 शेयर खरीदेंगे तो क्या रुपए लगेगा, 4000 रुपीज लेंगे। 1000 शेयर खरीदेंगे तो 400000 रुपीज कैपिटल लगेगा, है ना। लेकिन अगर कभी हम इसमें ऑप्शंस में काम करते हैं तो हम उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर काम न करते, हम प्रीमियम के ऊपर काम करते हैं।
1: ओके।
0: जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिमिटेड होता है, इसकी एक एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी होती है, यह हर गुरुवार को एक्सपायर्ड होता है।
1: अच्छा।
0: मतलब मंथ के आखिरी वाले में, कभी स्टॉक की बात करें तो, और इंडेक्स की बात करें तो ये वीकली एक्सपायर होता है, और स्टॉक की बात करें तो ये मंथली एक्सपायर होता है। और जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी का हम एग्जांपल लेके चलते हैं, अभी निफ्टी चल रहा है 18,500 एग्जांपल, और फाइनेंस निफ्टी चल रहा है 19,000, और बैंक निफ्टी चल रहा है 43,000। बैंक निफ्टी ने 43,000 का लेवल क्रॉस किया बहुत दिनों बाद, तो 43,000 रुपीज जो उसका जो स्ट्राइक चल रहा है 43,000, तो मैं कभी कैश में काम करूंगा तो मुझे एक शेयर के लिए 43,000 रुपीज देना पड़ेंगे, है ना, जो बड़ा अमाउंट है। लेकिन मैं ऑप्शंस में काम करूंगा तो मैंने 43,000 का कॉल बाय किया।
1: तो आपको कैश में नहीं देना होगा?
0: नहीं, वो उसका प्रीमियम मिलेगा जो वो काफी कम होता है। जैसे 43,000 का मैंने प्रीमियम कैश में इसको बाय किया, तो उसका प्रीमियम अकॉर्डिंग टू उसकी एक्सपायरी, जैसे ये चलता है शुक्रवार से गुरुवार तक, है ना, तो
1: मंडे टू फ्राइडे, जी
0: फ्राइडे टू थर्सडे, तो आज फ्राइडे का दिन है, कॉन्ट्रैक्ट नया है, तो 43,000 का कॉल आपको मिलेगा, हो सकता है 100 रुपीज का, 200 का, 300 का, 400 का, तो जो 43,000 की चीज है वो आपको 200 रुपए में मिल गई।
1: ये ऑप्शंस
0: में, ऑप्शंस में। अब यहाँ पर लॉट होते हैं, नंबर ऑफ लॉट में काम करना होता है ना, तो इसका बैंक निफ्टी का लॉट साइज चल रहा है 25 रुपीज का, है ना। अब आपने 100 रुपीज का प्रीमियम लिया, 43,000 रुपीज आपको 100 में प्रीमियम मिल गया, एक लॉट में आपको 2,500 रुपीज ही लगे
1: जी,
0: और 25 शेयर आ गए उसमें,
1: और जो इतने हजारों में है,
0: हाँ
1: जी,
0: आप 25 शेयर अगर कभी हम 40,000 करते तो कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। बट यहाँ पर इसका ड्रॉबैक क्या है, या कहे कुछ भी आप इसको मान सकते हैं, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह भी ले सकते हैं और ड्रॉबैक भी कह सकते हैं कि एक्सपायर्ड होता है।
1: हाँ, एक हफ्ते का जो आपने
0: अब इसमें क्या थोड़ा टेक्निकल पार्ट आ जाता है, ये इसमें टेक्निकल से हम बात करें तो इसमें क्या टाइम डीके जैसे जैसे लगता है, तो जैसे आउट ऑफ मनी और एट द मनी के सारे प्रीमियम गल जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। जैसे वीकली हम एग्जांपल के तौर पे लेकर चलता हूँ, हम बैंक निफ्टी को ही लेकर चलते हैं, आज नया कॉन्ट्रैक्ट खुला 43,000 रुपीस का स्ट्राइक प्राइस है बैंक निफ्टी का, अगले गुरुवार आने तक अगर कभी बैंक निफ्टी 43,000 रुपीस पर ही बंद होती है
1: जी,
0: तो उसके कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम जीरो हो जाएंगे।
1: तो मतलब अगर ये ऑप्शन ट्रेडिंग की जो आप बात कर रहे हैं यहाँ तक पहुँचना, तो पहले जो नॉर्मल स्टॉक मार्केट है उसको समझना, क्या उतार चढ़ाव हो रहा है,
0: बिल्कुल
1: मार्केट को स्टडी करते रहना लंबे समय तक, वो
0: बहुत जरूरी
1: है, तो आप वहीं जीरो
0: जाएंगे। जनरली क्या है कि लोग ऑप्शन में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, आपने डीमेट अकाउंट करवाया, आपका नंबर सर्कुलेट हुआ, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है,
1: सीधे
0: ब्रोकर, हाँ ब्रोकर से आपको रेंडम कॉल आया और आपने काम करना शुरू कर दिया, तो वहाँ पे लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं।
1: ओके, तो जैसे कि आपने लॉसेस की बात किया, ये तब भी होते हैं जब हमें जानकारी नहीं होती और उतार चढ़ाव तो मार्केट में होता ही है। तो क्या जब हम इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं तो हम जितना हमारी सेविंग है, कई बार लोग सब कुछ इन्वेस्ट करते हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो क्या करना चाहिए, कितना आपको परसेंटेज इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या सब कुछ इन्वेस्ट कर देना?
0: नहीं नहीं, ये बहुत गलत है। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पर आप जो आपकी एक्स्ट्रा पैसा है जिसको आप सेविंग क्या एफडी करके रखते हैं, जो आप सालों साल तक विदड्रॉ नहीं करना चाहते, उसका भी आप 50% ही इन्वेस्ट करें। और एक पोर्टफोलियो डिजाइन करना होता है, केवल इन्वेस्ट करें तो उसमें पैसा थोड़ा सेफ होता है, क्योंकि आप इसकी होल्डिंग रखते हैं, यहाँ पे कोई एक्सपायरी या कोई गलने वाली चीज नहीं होती है। लेकिन हम जब ट्रेडिंग की बात करते हैं तो फिर ट्रेडिंग में आपको उससे भी उसका भी 50% ही ऐसा यूज करना चाहिए। और एक चीज और बता दूं मैं कि यहाँ पर टारगेट एसएल भी होते हैं, अगर कभी आपको लग रहा है कि लॉसेस जा रहा है तो पोजिशन से एग्जिट कर देना चाहिए। इसमें फंसने की जो बात होती है वो ये होती है, जैसे कि जब चांदी 70,000 रुपए से गिरना शुरू हुई थी तो लोगों को बहुत लॉस हुए, क्योंकि 70,000 से थोड़ा 500 रुपए नीचे आया और खरीद लिया, लिया, फिर नीचे आया तो फिर खरीद लिया, फिर नीचे आया तो फिर खरीद लिया, फिर वो एक्सपायर होके जीरो, मतलब इसमें स्टॉक की बात करूँ तो खत्म हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट चलता है उसमें भी।
1: ओके, तो जैसा कि आपने कहा कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपकी जो एक्स्ट्रा सेविंग है उसका भी 50% करें। ऐसा नहीं करें कि आप तुरंत अपना बहुत बड़ा कोई अमाउंट लगा देते हैं, या आपकी जो लाइफ सेविंग है आप किसी से लोन लेके या उधार लेके तो बिल्कुल भी नहीं करें। तो पहले, सबसे पहली बात जो हमने आज जानी है कि आप पहले समझिए स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, स्टॉक मार्केट होता क्या है, उसके बाद ही इसमें कदम रखिए। आपने ये तो बता दिया हमें कि कितने जो पैसों की जरूरत होती है, वो 500 से आपने बोला कि शुरू कर सकते हैं, किसी भी अमाउंट से शुरू,
0: किसी भी अमाउंट से शुरू कर सकते हैं
1: जी। ओके, तो क्या हमें ये अपना मेन सोर्स ऑफ इनकम रखना चाहिए, या फिर क्योंकि अगर हम शुरुआत कर रहे हैं, हम एक यूथ हैं, मान लीजिए पढ़ाई भी कर रहे हैं, कुछ लोग जॉब भी कर रहे हैं, तो क्या जॉब छोड़ के इसको करना चाहिए, या सेकेंडरी एक इनकम भी हो सकता
0: है? बिल्कुल, ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है ये, कि ये पूरा ऑनलाइन होता है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर काम कर सकते हैं। ये मार्केट 9:00 से 3:30 तक ऑपरेट होता है, इस ड्यूरेशन में आप कहीं से भी ऑनलाइन इसमें काम कर सकते हैं। सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि जैसे आपने डीमैट में कोई भी फंड ट्रांसफर किया और ट्रेडिंग स्टार्ट करी, ठीक है, और थोड़ा सा एजुकेशन के बाद में आपने काम शुरू करा, तो दिन का केवल एक ही ट्रेड लेना चाहिए। सस्ता स्केल्पिंग क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम में भी क्या होता है कि स्केल्पिंग करना शुरू करते हैं, मतलब मल्टीपल ट्रेड्स करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने खरीदा, थोड़ा ऊपर नीचे पे बेच दिया, मतलब 9 से लेकर 3:30 बजे तक मल्टीपल ट्रेड में लोग 200 ट्रेड डाल देते हैं, 200 काटा प्लस माइनस प्लस माइनस, हाँ, तो वही स्टार्ट है इस चीज की। अगर कभी आप इसको सेकेंडरी सोर्स बनाते हैं तो आपने एनालिसिस करके एक बार किसी चीज को खरीदा और उसका एक रिस्क रिवार्ड रेशो टारगेट और एसएल मेंटेन करा कि मैंने भाई 40,000 या 50,000 का इन्वेस्टमेंट करा है, तो उसका 2-3% का मुझे लॉस आता है तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा और आज काम नहीं करूंगा।
1: अच्छा।
0: या 2-3% का मुझे प्रॉफिट आता है तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखूंगा। तो एक कैलकुलेटेड रिस्क रहती है ना
1: जी, तो अपने लिए डिसाइड
0: करना हो जरूरी, मतलब रिस्क और रिवार्ड, कि मैंने 50,000 के रिस्क लिए, मतलब मार्केट में 50,000 का ट्रेड लगाया है, तो उस रिस्क पे मुझे कितना रिवार्ड चाहिए और जितना रिवार्ड चाहिए उसका कम मुझे रिस्क लेना है। मतलब मैं 10,000 का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मैं लॉस कितना लूंगा, 4,000-5,000। इसका उल्टा भी हो जाता है, लोग प्रॉफिट 2,000-3,000 का लेते हैं और एक ट्रेड में लॉस 40,000-50,000 का ले लेते हैं, तो फिर वो क्या होता है कि सर्वाइव नहीं कर पाते मार्केट में।
1: तो यानी खुद को आपको लिमिट में रखना
0: बहुत जरूरी है,
1: और वो भी वो लंबे समय
0: तक, लंबे समय तक
1: जी। कई बार हमें लगता है कि जल्दी प्रॉफिट हो जाए,
0: सारा प्रॉफिट हो जाए। अब जैसे क्या होता है कि कभी कभी 1 रुपए का प्रीमियम एक्सपायरी में 100 रुपए भी चला जाता है, जब इन द मनी होता है, मोमेंटम होता है स्टॉक मार्केट, हैवी फ्लक्चुएशंस होते हैं, जैसे आरबीआई की पॉलिसी आई है या कोई इवेंट है, तो कोई बड़ी चीज जैसे बजट है, इंडियन बजट में आपने बजट लॉन्च किया, इधर हमारे वित्त मंत्री जब बजट पेश करते तो मार्केट में बहुत उथल पुथल होती है, तो 1 रुपए का प्रीमियम 100 रुपए भी चला जाता है तो बहुत बड़ी बात है। अब 1 रुपए का प्रीमियम 100 रुपए चला गया तो आप मानेंगे कभी आपने 1,000 शेयर खरीदे, मतलब एक प्रीमियम 1,000 करे तो इन्वेस्टमेंट कितना हुआ आपका 1,000 का, और वो 100 रुपए चला गया तो प्रॉफिट कितना आ गया, 1,00,000 का,
1: एकदम से एक बड़ा प्रॉफिट हो जाता
0: है विदिन 15 मिनट। तो वही इस चीज की शुरुआत है, लेकिन जब हम कैलकुलेटेड काम करते हैं और जो छोटा ट्रेडर है या छोटा इन्वेस्टर है वो इस तरह के इवेंट को इग्नोर करे, जब हैवी फ्लक्चुएशन होता है उस दिन काम नहीं करना चाहिए,
1: नहीं तो कई बार लगेगा अरे एक बार प्रॉफिट हो गया चलो दोबारा से,
0: बिल्कुल वो है फिर शुरुआत होती है,
1: शुरुआत हो जाती है डाउनफॉल की, शुरुआत हो जाती
0: है, मतलब जो मिथ फैला हुआ है जो स्कैल्पिंग का सट्टे का वो यही तो शुरुआत होती है। क्योंकि क्या होता है कि रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन नहीं करा, आपने एक दिन में 1,00,000 रुपए कमा लिया 1,000 रुपए लगाकर, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब अगले दिन आपको 2,000 का प्रॉफिट डाइजेस्ट नहीं होगा,
1: फिर लगेगा कुछ हुआ
0: ही नहीं। बट कभी हम ऐसे कभी हम कैलकुलेट करें तो एक दिन के आप कोई भी कंपनी में जॉब करते हैं तो बेसिक सैलरी 25,000-30,000 रुपए भी होती है
1: जी,
0: है ना, इससे ज्यादा नहीं होती है स्टार्टिंग में, तो आप एक दिन का कैलकुलेट करेंगे तो आपका 1,000 रुपए भी बन रहा है।
1: तो मतलब आपको बहुत कैलकुलेटेड होकर चलना है, समझदारी है। जैसा आपने कुछ चीजें बताई, बजट की बात की आपने, और आपने बात किया कि किस तरीके से मार्केट में और चीजें जो लॉन्च हो रही है, तो ये चीजें भी पढ़ना जानकारी लेना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से बस कर रहे हैं जी। तो इसलिए दोस्तों जब एजुकेशन की बात होती है तो जरूरी है कि आप जो न्यूज है, जिस तरह की चीजें हैं जो इकोनॉमी पे असर डालती हैं, जो आप अगर स्टॉक मार्केट में कदम रख रहे हैं तो लगातार खुद को एजुकेट करना जरूरी,
0: बिल्कुल, क्योंकि एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। जैसे कि हम हमारी देश की जो इकोनॉमी को, हमारा देश का जो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स ही रिप्रेजेंट करता है
1: जी।
0: हमारा जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है इसको बोलते हैं निफ्टी
1: जी।
0: निफ्टी एक 50 कंपनियों का ग्रुप होती है, वो 50 कंपनियां जो अलग अलग सेक्टर की टॉप कंपनी है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी हुई, आईटी सेक्टर की कंपनी हुई, टेक्सटाइल की कंपनी हुई, तो उन कंपनी की जो टॉप कंपनी होती है वो एक कंपनी उसके अंदर होती है, तो वो 50 कंपनियों का जो ग्रुप है वो ऊपर जाता है, मतलब स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, 50 में से 30 कंपनियां नीचे गई है ना, मतलब गिर रही है, और 20 कंपनी ऊपर गई, तो स्टॉक मार्केट नीचे है, मतलब उसका एवरेज जो होता है वही स्टॉक मार्केट के मोमेंटम को आपको पेपर में जनरली देखने को मिलता होगा कि आज निफ्टी ने 18,000 रुपए का लेवल क्रॉस किया, तो वो 18,000 रुपए का जो लेवल है वो 50 कंपनियों की जो वेजनी है ना, उसमें से कंपनियां जो मैक्सिमम है वो ऊपर की तरफ जा रही है,
1: ओके, तो उसका एवरेज होता
0: है, उसका एवरेज होता है।
1: रविंद्र जी, जैसे आपने बताया स्टॉक मार्केट के बारे में और हमने लॉसेस की भी बात की, कई चीजें ऐसी भी होती हैं जो फेक होती हैं, और आजकल हम जानते हैं कि खबरें भी व्हाट्सएप पे या फिर सोशल मीडिया पे बहुत तरह के,
0: बिल्कुल,
1: कई बार आते हैं लिंक्स, आप इस पे क्लिक कीजिए, अकाउंट नहीं आई ये खरीद लीजिए, ये शेयर, ये कम, इस तरह के बहुत मैसेजेस भी आते हैं, वेबसाइट्स भी हैं, एप्लीकेशंस भी हैं, तो अब इनमें कैसे अंतर किया जाए, सही गलत क्या है और कैसे बच के रहा जाए?
0: बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और मेरा जो यहाँ पर आने का जो मोटो है वो मेन यही है, क्योंकि आप बेसिक इन्फॉर्मेशन तो यूट्यूब से या गूगल से या कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन जो इसमें फ्रॉड चल रहा है और जो इसमें जो जो कॉमन व्यक्ति जो उसमें फंस रहा है वो उससे अपने आप को कैसे प्रिवेंट करे, उसमें मैं आपको कैसे अपने को प्रिकॉशंस यूज करनी है, मैं उसी के ऊपर थोड़ा डिटेल में चर्चा करना चाहूंगा कि क्या हो रहा है आज की तारीख में। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम इंटरनेट की दुनिया में हमारा जो प्रोग्रेस हो रही है, तो चीजें जो डाटा है वो लीक होना बहुत आसान हो गया है, ठीक है। जैसे प्राइवेसी नाम की चीज नहीं बची है, आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, आपने सर्च करा स्टॉक मार्केट क्या है, ठीक है ना, आपने 2-3 लिंक के ऊपर क्लिक करा, यूट्यूब पे वीडियो देखे है ना, किसी भी एप्लीकेशन पे अपना नंबर डाल दिया कि मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाए, या आपने किसी ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया, वहां पे भी आपकी इन्फॉर्मेशन चली गई, या किसी भी इसी लिंक पर क्लिक करा जहां पर आपकी ऑलरेडी डिटेल चली गई है, मतलब आपका नंबर जब ऐसे किसी फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है तो डेफिनेटली 101% वो आपको 101% कॉल करेंगे। जब वो आपको कॉल करते हैं, अब क्या है कि अवेयरनेस का बेसिक नॉलेज थोड़ा सा है, फोन आया, हेलो आप ट्रेडिंग करते हैं, जाहिर सी बात है वो व्यक्ति बोलेगा हाँ करता हूँ, किस सेगमेंट में कार को काम करते हैं, कैश में, फ्यूचर में, ऑप्शंस में, तो वो अपना एक सेगमेंट भी बता देगा। उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे वो आपको एक लालच देंगे कि हम हमारे पास बहुत अच्छे एक्सपर्ट है, वो आपको 10,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको डेली बेसिस पे 10,000 का प्रॉफिट देंगे,
1: लालच देंगे आपको,
0: बिल्कुल डेफिनेटली लालच देंगे, पॉसिबल है क्योंकि स्टॉक मार्केट है, मैंने बताया था कि आप 1,000 रुपए का भी प्रीमियम खरीदते हो 100 रुपए जाएगा तो 1,00,000 का प्रॉफिट हो सकता है, तो उन्होंने तो उस हिसाब से कम बोला क्योंकि मार्केट के दायरे में बोला कि 10,000 पे भी मैं आपको 5-10,000 का डेली रिटर्न दे दूंगा, आप जो मैं बताऊंगा टिप्स एंड रिकमेंडेशन जल्दी जो प्रोवाइड करते हैं वो बंदा बोलेगा चलो ठीक है आप मुझे कॉल दिखाइए मैं वॉच करता हूँ, अच्छा लगा तो मैं काम कर लूंगा, ठीक है। अब उन्होंने ऐसे रेंडम कई लोगों को कॉल किया है,
1: कुछ लोग हाँ बोल देते हैं उसमें से,
0: हाँ, अब उनके पास एक डाटा आ गया कि मुझे आज 100 लोगों ने हाँ बोला है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो 50 लोगों को उन्होंने बाय करवा दिया, अच्छा। और 50 लोगों को सेल करवा दिया
1: उसी में,
0: हाँ। जी। अब मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उन 100 लोगों में से 50 को तो प्रॉफिट होना 100%
1: है, जी।
0: ओके, बिल्कुल, जिनको लॉस हो गया उनका फोन नहीं उठाया, उनको इग्नोर कर दिया, उनको किसी और नए नंबर से कॉल जाएगा लेकिन थोड़े एक ड्यूरेशन के बाद में, जिनको प्रॉफिट हुआ है उनसे वो डील करना स्टार्ट करते हैं कि आपने देखा होगा कि हमारी कॉल के ऊपर प्रॉफिट आया है, अगर आप डेली बेसिस पे इस तरह का रिटर्न चाहते हैं तो हमारी कॉल पे काम करें, वो पैसा कमाए, इसके लिए क्या करना होगा, तो आप ऐसा करिए इसके लिए आप हमें पेमेंट करिए, और वो फिर धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे उनसे पेमेंट ऐंठना शुरू कर देते हैं और उन्हें सट्टा खिलाना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो बहुत बड़ी डिमांड कर लेते हैं, लॉस हो गया तो फिर कोई बात नहीं छोड़ देते हैं, इस तरीके से चीजें बहुत होने लगी,
1: फिर आप उनको ट्रैक नहीं कर पाएंगे,
0: ट्रैक नहीं कर पाएंगे,
1: तो ऐसे फोन कॉल से बचना है, मतलब कोई भी जब ट्रेडिंग आप स्टार्ट करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, तो आप ऐसे कोई भी कॉल आए तो हम क्या करें, उसके इस तरह के जवाब ही नहीं दें इस तरह के,
0: हाँ, जैसे कुछ ऑथराइज्ड कंपनियां भी होती है ना, तो आप उनसे बोल सकते हैं कि आप सेबी रजिस्टर्ड है, क्योंकि टिप्स एंड रिकमेंडेशन देने के लिए भी है ना गवर्नमेंट की एक बॉडी बनी हुई है ना, वो सेबी अपना एक मतलब एक रजिस्टर्ड करती है उनके अंडर में, और फिर उनको ऑथराइज करती है कि आप काम करें, उसमें भी कंडीशंस लगी होती है, वर्बली कॉल आपको कोई देता है तो काम नहीं करना है, मैसेज के थ्रू कॉल आना चाहिए, उस कंपनी का नाम होना चाहिए, उस कंपनी का सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपके पास क्लियर होती है तब काम करना चाहिए, और उसमें
1: कॉल आए तो भरोसा नहीं,
0: कॉल कर, हाँ, मतलब मैं बोलूँगा 90% तो इग्नोर ही करना चाहिए, आप अपनी रिसर्च पे, अपनी मेहनत पे, अपने एफर्ट्स के ऊपर काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा,
1: ज्यादा, और उसमें रिस्क जैसा आपने बोला कि बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि सर से कॉल्स नहीं आते हैं जो सेबी रजिस्टर्ड है, और टेक्स्ट बेस्ड आपने बोला या कॉल भी करेगी,
0: हाँ,
1: रजिस्ट्रेशन
0: नंबर होगा
1: वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं,
0: और उसपे भी हम क्यों ट्रस्ट करें, अगर कभी आपको कॉल आता है तो सबसे पहले सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद में उसका एक इतिहास होता है, उनका एक हिस्ट्री होती है कि भाई आपका ट्रेकिंग रिकॉर्ड क्या है। और मैं तो ये कहूंगा कि मतलब मेरे एक्सपीरियंस ये कहूंगा कि आप जब तक किसी से फिजिकली नहीं मिलते हैं, है ना, कोई एक सेबी का रजिस्टर्ड ऑफिस भी है, तो आप वहाँ विजिट करें, वहाँ के ऑथराइज बॉडी से बात करें और फिर उनसे वो खुद आप जब आप हम फिजिकली किसी से मिलते हैं तो वो आपसे फ्रॉड नहीं कर पाएगा, राइट,
1: क्योंकि आप देख रहे हैं
0: आपको लोकेशन पता है, कंपनी पता है, इच एंड एवरीथिंग पता है ना, वो एरिया पता है, सब कुछ पता है, तो वो चांसेस कम हो जाते हैं, तो वो खुद ही आपको छोड़ देंगे। कभी उनके अंदर कुछ फॉल्ट है तो वो छोड़ देंगे, चलो इसको फोन मत लगाना, छोड़ दो ये अपने पास आके, बिना किसी से फिजिकली मिले इंटरेक्ट किए हुए किसी भी कंपनी, किसी भी पर्सन, किसी भी ऑथराइज बॉडी की कॉल के ऊपर काम करना बहुत हाई रिस्क है
1: जी, और उसमें आपको लॉस हो सकता है और साथ साथ आप एक बड़े जाल में भी फंस सकते हैं। जो आपको लगातार लॉसेस हो सकते हैं, और अगर फायदा एक बार हो भी गया तब भी वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए लॉस होगा, क्योंकि एक फ्रॉड है, तो फ्रॉड से बचना
0: बहुत जरूरी है।
1: जाते जाते मैं रविंद्र जी आपसे ये पूछना चाहूंगी, जो यूथ हमें सुन रहे हैं और जो मान लीजिए थोड़ी बहुत नॉलेज भी अटेन कर लेते हैं, जैसा आपने बताया कि गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसमें भी पीडीएफ उपलब्ध है हिंदी में, इंग्लिश में,
0: बिल्कुल,
1: और यूट्यूब चैनल्स है जो कई चीजें बता रहे हैं।
0: YouTube चैनल्स और जो टेलीग्राम है वो भी एक मतलब आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड्स कर रहे हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: वो कैसे?
0: जैसे टेलीग्राम के ऊपर फ्री में टिप्स एंड रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करने के चैनल्स बने हुए हैं, और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए, कई चैनल को ब्लॉक भी किया है, इवन दो कई कंपनियां भी बैन करी है, तो वहां से भी आपको जो कॉल्स एंड टिप्स एंड रिकमेंडेशन टेलीग्राम से मिलती है उन्हें भी इग्नोर करना चाहिए। आए दिन जो है न्यूज में फ्लैश होता ही रहता है, और उन्हें ट्रैक करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि जब उनका इंटेंशन ही फ्रॉड करने का है तो वो इच एंड एवरीथिंग सब फेक यूज करते हैं, मोबाइल फेक है, सिम फेक है, लोकेशन फेक है, अकाउंट्स फेक है, इच एंड एवरीथिंग दे यूज फेक्ड, है ना। और फिर जब आप कंप्लेन करने भी जाते हैं तो देखिए क्या होता है कि जब हम फंस गए कंप्लेन करने गए, बहुत सारे लोग तो पहली बात कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन भी कहाँ करें। एक भी अच्छा पॉइंट निकल कर आया है कि कोई व्यक्ति जो यहाँ सुन रहा है वो हो सकता है ऑलरेडी इस जाल में पहले से फंसा हुआ
1: जी, बहुत लोगों के साथ ऐसा
0: हो भी चुका होगा, तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमें कंप्लेन कहाँ करनी है और किससे करनी है और किस वे में कंप्लेन करनी है ना। तो उसके लिए भी आपको सेबी में ही कंप्लेन करनी होती है।
1: अच्छा
0: जी, और वहाँ पे प्रूफ लगता है कि आपने कब पैसा दिया, कितना पैसा दिया, किस अकाउंट में पैसा दिया, क्यों पैसा दिया, स्क्रीनशॉट्स व्हाट्सएप के सब कुछ होने चाहिए होता है, किस एवेज में पैसा दिया, वो ऑथराइज बॉडी को दिया या लोकल पर्सन को दिया, वो सब आपको वहाँ पर डिटेल फिल करनी होती है। सेबी की वेबसाइट के ऊपर ही कंप्लेन का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ती है। आप जिस एरिया में लोकल में वहाँ पर जाके FIR भी कर सकते हैं, बट जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम पे FIR इतनी आसानी से दर्ज नहीं हो पाती है।
1: ऑनलाइन लेकिन हो सकता
0: है, ऑनलाइन सेबी की वेबसाइट पे आप कंप्लेंट्स कर सकते हैं।
1: तो उसके लिए ये सब चीजें संभाल के रखना
0: होता
1: है जी। तो अगर हम जैसे अकाउंट बनाते हैं तो क्या चीज है ऐसी, अगर मैं आपको पूछूं कि जो ध्यान रखनी है चीजें हमें, तो क्या आप बताएंगे कि आप अगर शुरू कर रहे हैं, आप शुरू कर चुके हैं, तो चाहे डॉक्यूमेंटेशन हो आपका, डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे पैसे हो, चाहे टाइम हो कितना आपको देना है उसके लिए, क्योंकि कई बार अगर हम पूरा ही टाइम उसी में लगे हुए हैं और अपने और बाकी काम को छोड़ दिया है हमने, तो वो भी ठीक नहीं होता है, तो क्या आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे?
0: बिल्कुल, मैं मतलब जो हमारा यूथ है उनको मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि अगर कभी आप स्टॉक मार्केट के बारे में सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं या सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि फोकस आपको आपके पहले अपने एरिया पे करना है, जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिस चीज में आपकी मास्टरी है उसमें करें। उसके बाद जब हम इसमें धीरे धीरे एजुकेट होते हैं, ऐसा नहीं ये भी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है, लेकिन वो एक लंबे एक्सपीरियंस के बाद बनेगा। कम से कम मिनिमम आपको 6 महीने पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए।
1: पेपर ट्रेडिंग
0: मतलब आपने रियल में पैसा नहीं लगाया है, मार्केट आपके सामने चल रहा है, सब कुछ ऑनलाइन है ना, आपको बेसिक नॉलेज आ गई है, तो आपने टेक्निकली इसका चार्ट ट्रेडिंग कैसे होता है, है ना, बुक्स आपके बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में, उनको रीड करा, चार्ट ट्रेडिंग करा, है ना, सब एनालिसिस धीरे धीरे धीरे आती है, वो उसके बिहाफ में फिर आपको खुद आइडिया हो जाता है 6 महीने ट्रेडिंग करने के बाद में आपका खुद का एक पोर्टफोलियो डिजाइन होता है कि मैंने 6 महीने है ना काम किया ऑफलाइन मतलब पेपर ट्रेड करा तो क्या प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, आ भी रहा है नहीं आ रहा है। और पेपर ट्रेडिंग में भी एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जो रियलिटी में आप फंड लगा सकते हो उतने ही फंड का पेपर ट्रेड करना है,
1: राइट, तो मतलब एज इफ सब कुछ हो रहा है लेकिन पेपर
0: हो रहा है। अब पेपर ट्रेडिंग में भी क्या होता है कि जैसे वहां पे तो पेपर ट्रेडिंग हो रही है तो आपने 1 CR का फंड में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जब रियलिटी में आपको इन्वेस्ट करना है तो आप 1 लाख भी नहीं कर पा रहे तो फिर वो मैच नहीं हो पाएगा.
1: तो आपको प्रैक्टिकल नहीं पता चलेगा कि आपके साथ एक्चुअली क्या
0: होने वाला है. जैसे मैं प्लान कर रहा हूँ, मेरी जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम पे मेरी 40,000 की सैलरी है. मैं हर महीने 5 से 10 हज़ार रुपए सेविंग करता हूँ. मैं साल के 50-60 हज़ार रुपए सेव कर सकता हूँ. तो मैं चाहूंगा कि मैं अपनी एक साल की सेविंग से ट्रेडिंग

0: स्टार्ट करता हूँ, तो मैं पेपर ट्रेड में भी 40-50,000 के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही ट्रेड करके नोट डाउन करूंगा कि आज मुझे 400 का लॉस हुआ, आज मुझे 400 का प्रॉफिट हुआ, आज मुझे 2,000 का लॉस हुआ। तो एक आपका 6 महीने का रिकॉर्ड मेंटेन होगा, है ना, उसके ही रिकॉर्ड के ऊपर फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं।
1: ओके, तो आपको आइडिया हो जाएगा पूरी तरीके से। और जैसा आपने बताया था रविंद्र जी NISM क्वालिफिकेशन के बारे में, तो अगर आपने जो क्वालिफिकेशन ली, ये कितने समय के अनुभव के बाद या क्या स्टडी करने के बाद आपने अप्लाई किया या क्वालिफाई हुए?
0: इसमें भी क्या होता है कि कुछ बेसिक एकेडमिक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वैसे तो मैं MSc बॉटनी हूँ, मेरा फील्ड बिल्कुल मतलब अलग है, मैंने बॉटनी में MSc कर रखा है खोलकर कॉलेज इंदौर से, बट धीरे धीरे मेरा स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आया तो फिर मैंने इसके लिए जो रिसेंटली जो बोलते स्टॉक ब्रोकर के लिए अप्लाई किया, तो वहाँ पर मुझे पता था कि अच्छे से काम करना है तो इक्विटी डेरिवेटिव का आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए, म्यूचुअल फंड में आप किसी को काम करवाते हैं म्यूचुअल फंड का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो फिर मैं जो हमारी गवर्नमेंट की बॉडी है, जो ऑथराइज बॉडी है, वहाँ पर जाके इसका जो फॉर्म फिल होता है, जो चार्जेस लगते हैं, लेकिन डेट वो देते हैं, उस डेट पर आपको जाके ऑनलाइन एग्जाम देनी होती है और उसके फिर भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है।
1: ओके, और डेफिनेटली आप बता दो बहुत सिंपली रहे हैं, लेकिन हाँ इसके लिए नॉलेज
0: बहुत ऐसे तो मुझे ओवरऑल 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का, काम करते करते मुझे 10 साल हो चुके हैं इस मार्केट में, और जैसे मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ और किसी को ट्रेड प्रोवाइड नहीं करता हूँ, नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ, अवेयरनेस काफी लोगों को देता हूँ, लेकिन किसी को टिप्स एंड रिकमेंडेशन मैं अपनी फैमिली में भी नहीं देता हूँ।
1: ये आपने अपने लिए?
0: ये मैं अपना, इवन दो मैं किसी को ज्यादा मतलब जो ज्यादा करीब के लोग होते हैं उन्हें मैं बोलता भी नहीं हूँ कि आप इसमें काम करें, क्योंकि क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि हमारे बोलने का इंटेंशन होता है अलग और समझने का इंटेंशन होता है किसी का अलग, तो मैं पर्सनली किसी को ट्रेड नहीं देता हूँ, हाँ लेकिन एजुकेट जरूर करता हूँ।
1: तो अगर आपका इंटेंशन ये है कि जल्दी से पैसा कमा लें तो ये आपके लिए नहीं है, आप उसको बैलेंस रूप में एक काम की तरह सीखने के लिए, लर्निंग के लिए इनकम का एक सोर्स बनाना चाहें एजुकेटेड होकर, तो ये आपके काम
0: फिर
1: अगर आप ये सोचें कि हाँ मैंने पैसा लगाया मुझे बहुत कुछ मिल जाए एकदम से, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी
0: होना बहुत जरूरी है। अब जैसे इसका एक पार्ट आपको और बता दूं मैं कि जैसे डब्बा ट्रेडिंग भी होती है ना, कई लोग उसमें भी फंस जाते हैं। डब्बा ट्रेडिंग से मतलब क्या है कि वो डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाते हुए फिजिकली रजिस्टर्ड मेंटेन करके भी लोगों को ट्रेड करवाते हैं, वो फिर उनके लॉसेस का सारा पैसा वो रख लेते हैं, तो उससे भी बहुत सतर्क होना जरूरी है। मतलब राजस्थान और गुजरात में जैसे ऑल ओवर कभी हम इंडिया की बात करें तो स्टॉक मार्केट में केवल 2-3% लोग ही ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं 140 करोड़ की पॉपुलेशन में, और यही हम रेशो कभी अमेरिका में देखें तो मोर देन 50-60% लोग काम करते हैं।
1: बहुत अंतर है,
0: बहुत ज्यादा अंतर हो गया। और इवन तो मैं आपको बता दूं केवल ये कोविड का जो पीरियड आया था उसमें ही ट्रेडर और इन्वेस्टर की जो संख्या है वो बढ़ी, अदरवाइज हम 1% भी ट्रेड नहीं करते थे।
1: अच्छा, तो बहुत
0: ज्यादा आया है, बहुत मतलब अब जो है ट्रेडर की संख्या में उछाल आया है, हम 4% लेकिन वो भी अभी हम ज्यादा कोविड के प्रिपरेशन में।
1: ओके, तो हमें फ्रॉड से बचना है, और जैसा आपने कहा कि पहले अपने एजुकेशन में काम करना है, दूसरा स्मॉल इन्वेस्टमेंट करना है, सब कुछ नहीं लगा देना है, और जैसा आपने कहा सेबी और इन संस्थाओं के बारे में आप पढ़ें जानें और वहाँ कंप्लेन भी कर सकते हैं कुछ कुछ गलत हो तो, और सीख भी सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो मुझे लगता है बहुत सारी जानकारी आपने दी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी। हमें आज एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ ये भी पता चला क्या करना है और क्या नहीं करना है। डेफिनेटली ये इंटरव्यू सुन के आपको एक बैकग्राउंड तो जरूर मिल गया होगा दोस्तों, और अगर आपको इंटरेस्ट है तो और समझिए पहले इस चीज को, और बिल्कुल भी गलत छलावे में मत आइए, कोई भी काम शॉर्टकट से नहीं होता है, हो भी जाता है तो अच्छा नहीं होता है या लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देता है जीवन में। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: थैंक यू वेरी मच।
1: थैंक यू दोस्तों, आपका भी अगर कोई सवाल है, कुछ भी आप कहना चाहते हैं, रेडियो मधुबन से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है 9914151415 यानी 9414151415। हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: आवश्यक सूचना, 9 अगस्त 2026 रविवार को आयोजित होने वाली 8वीं दादी प्रकाशमणि हाफ मैराथन के कारण सुबह 5:30 बजे से सुबह 9 बजे तक तलहटी आबू रोड से आबू राज मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। यदि किसी को इस दौरान आबू राज से बाहर जाना हो तो कृपया सुबह 5 बजे से पहले ही जाएं। सुबह 9 बजे के बाद सभी मार्ग पुनः यातायात के लिए खोल दिए जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अपने यात्रा कार्यक्रम की योजना इसी अनुसार बनाएं और इस सूचना को अपने परिचितों तक अवश्य पहुंचाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं, एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ओए रुको, रुक।
1: हाँ कहिए।
0: अजी कहना सुनना, आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
1: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओए छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। और ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: नमस्कार, मैं हाकम खान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, माने आवे पिया जीरी हिचकी, मारो वादी लो चितारे माने आवे हिचकी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए संपर्क करावे हमारे टेलीफोन नंबर है 9001313752, 9001313752, ये हमारे टेलीफोन नंबर है। मधुबन रेडियो की तरफ से प्रसारण किया जा रहा है राजस्थानी लोकगीत आवे माने हिचकी। हमारा संगीत कला केंद्र है जहां हमारे संगीत बच्चे सिखलाई लेते हैं। बच्चों को संगीत सिखलाई के लिए हमारे को कमायचा, खड़ताल, ढोलक, हारमोनियम सिखाया जाता है। तो संगीत सिखलाई के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में जरूर हमारे संपर्क करें। संगीत निर्देशक हाकम खान

चौहान, हमारा देश और प्रदेश और दुनिया प्रगति और विकास की दौड़ में आगे बढ़ते जाए, लेकिन मानवीय गुणों के साथ। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।

गुड इवनिंग नमस्ते, रेडियो मधुबन 107.8 FM में आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। मैं हूँ आपकी दोस्त मोना। आप दोस्तों के बीच प्यार के साथ, मस्ती के साथ गुनगुनाते खूबसूरत शाम बिताने आ गई हूँ और आप सभी को बताना चाहती हूँ आज है 7 तारीख। क्या खास है 7 तारीख का? भाई हमारे शांतिवन की रौनक बढ़ने लगी है क्योंकि देश विदेश से, दुनिया भर से मैराथन रनर्स पहुंच रहे हैं और उनका स्वागत आबू रोड के निवासी ज़रूर कर रहे हैं, साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारीज भी कर रहे हैं। और आप सभी को ये खुशखबरी सुना देते हैं कि 8th दादी प्रकाश मणि जी आबू हाफ मैराथन 2026 का जो थीम है वो है रन फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड और ये रविवार 9 अगस्त को स्टार्ट होने वाला है सुबह 5 बजे और ये ब्रह्मा कुमारीज के मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स के बाहर से ही शुरू होने वाला है। तो वो सभी लोग जो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं वो सही समय पर ज़रूर पहुँचे, लेट नहीं करें और साथ ही साथ इतना ज़रूर जान के रखें कि इस कार्यक्रम को एक्चुअली सफल बनाने के लिए बहुत सारे लोग सहयोगी बने हैं। साथ ही साथ आप सभी को पता है कि ये मैराथन जो है ये अच्छे से ये कंप्लीट मैराथन इवेंट होने वाला है और ये जो रूट है ये एम्स के द्वारा सर्टिफाइड, जी हाँ, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा, AIMS, एक्चुअली ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ने AIMS के द्वारा सर्टिफाइड अपहिल जो रोड है वो है और करीबन ये 4000 फीट की अरावली हिल की ऊंचाई तक पहुंचकर रन समाप्त होने वाला है। तो आप सभी जानते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में आप सभी भाग ले सकते हैं और आप सभी उसे देखने के लिए भी पहुंच सकते हैं। तो लाइव ब्रॉडकास्ट भी रेडियो मधुबन करने वाला है, तो प्लीज़ कार्यक्रम को ज़रूर सुनिए। और इसके साथ साथ आप सभी का स्वागत है आज की शुक्रवार की शाम में भी। आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन पर, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: प्यार से काम करना और प्यार से काम करवाना, क्योंकि आई बिलीव एट लीस्ट कि अगर काम प्यार से नहीं हो सकता तो डांट कर जबरदस्ती करवाने का उसमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। यू नो योर रिलेशनशिप इज़ ब्रेकिंग डाउन एंड मोर इम्पोर्टेंट इज़ रिलेशनशिप नॉट द वर्क। लेकिन फिर भी अगर काम करवाने के लिए आपको वो असर्टिवनेस का आधार लेना है तो इनर बिल्कुल एंगर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप उसको असर्टिवनेस नहीं कह सकते। से आई एम एंग्री, डोंट से आई एम नॉट एंग्री, आई एम जस्ट बींग असर्टिव, ये चीटिंग है अपने आप से दूसरे से भी। तो आप पहले तो अंदर बिल्कुल स्टेबल है और फिर आपको जो कुछ कहना है उसको अथॉरिटी से और बहुत डिसिप्लिन्ड एंड असर्टिव। डजेंट हैव टू बी लाउड, यू नो इट डजेंट हैव टू बी लाउड। हम सोचते हैं जोर से बोल दिया तो दैट इज असर्टिव, दैट इज अ ट्रेस ऑफ एंगर। आपका वॉल्यूम बढ़ ही नहीं सकता है जब तक वो एनर्जी अक्यूमुलेट नहीं हुई है अंदर। तो इवन जब हमारा वॉल्यूम इस तरह से जोर से बढ़ जाता है, दैट एनर्जी हैज बीन क्रिएटेड इन साइड। बहुत आराम से स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबिलिटी एवरीवेयर, यू नो थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस। तो अंदर वो स्टेबिलिटी होगी वो बाहर अपने आप आएगी, वी विल नॉट हैव टू डू इट। एंड फिर डिसिप्लिन करने के लिए आपको जो डायरेक्शन देना है उसको आप देते हैं, तो आई थिंक एनर्जी एक्सचेंज विल बी वेरी कंफर्टेबल बिटवीन द टू पीपल।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM में आज मैराथन के विषय में कुछ जानकारियां देते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सभी को बता देते ब्रह्मा कुमारी जो है 25 अगस्त को एज अ यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे सेलिब्रेट करता है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल मेजरिंग सर्टिफिकेट के माध्यम से एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल मैराथन एंड डिस्टेंस रन्स के लिए आबू हाफ मैराथन को सर्टिफाई किया गया है और एम्स के साथ साथ 450 जो वर्ल्ड लीडिंग डिस्टेंस रेस है जो 120 देशों में होता है उनके साथ ये एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन के साथ मिलकर ये हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है, जिसमें ओपन कैटेगरी में प्राइज़ है 71,000 रुपये की फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज़ है 61,000 रुपये की और थर्ड प्राइज़ है 51,000 की। वहीं पर मास्टर कैटेगरी में 61,000, सेकेंड प्राइज 51,000 एंड थर्ड प्राइज 41,000। वहीं पर वेटरन कैटेगरी अर्थात बड़े बुजुर्ग वेटरन कैटेगरी में 51,000, 41,000 एंड 31,000 शामिल किया गया है। ये कंप्लीट जो क्षेत्र है या दौड़ है करीबन 21.1 किलोमीटर की माउंटेन क्लाइंबिंग है और इसके साथ साथ इसका जो समय शुरू होने वाला है सुबह के 5 बजे और इसका एलिवेशन है, मतलब जो आप एलिवेशन गेन करेंगे वो है 875 और मीटर्स हाइट पॉइंट है 1174। तो प्लीज़ आप सभी

दादी प्रकाश मणि आबू मैराथन हाफ मैराथन, इसका टोटल डिस्टेंस 21.0975 है, जो स्टार्टिंग इसकी जो है मनमोहिनी वन के गेट नंबर 1 से होकर के माउंट आबू के रास्ते से टोल टैक्स ओम शांति भवन के पास जाने के लिए टोल टैक्स, उसके बाद में अम्बेडकर चौराहा, फिर रोटरी चौराहा, फिर नक्की लेक से होते हुए भारत माता मंदिर से दादी प्रकाशमणि चौराहा, वहाँ से ओम शांति भवन तक रहेगी। ओम शांति भवन में इसका फिनिशिंग है, और जितने भी रनर्स हैं, ये ट्रेल मैराथन है इसलिए इसका 4 घंटे का टाइम होता है, कट ऑफ टाइम 4 घंटा है। 4 घंटे तक जितने भी रनर्स आएंगे उन सबको हम मेडल्स देंगे। मेडल्स इस बार प्राइज सेरेमनी के बाद मिलेगा सबको। प्राइज सेरेमनी जो है प्रोग्राम 10 बजे से 11 बजे तक ओम शांति भवन में चलेगा। 11 बजे के बाद सारे रनर्स को मेडल दिया जाएगा, उसके बाद सारे रनर्स को शांतिवन में वापस आनंद सरोवर पहुंचने के लिए हमने बसेस की व्यवस्था भी की गई है। इस सारे आयोजन में हमारे साथ में माउंट आबू के काफ़ी सारे संगठन, जैसे कि टैक्सी यूनियन है, होटल एसोसिएशन है, भारत विकास परिषद है, अर्बुद ब्राह्मण समाज है, राजपूत समाज है, ऐसे काफ़ी जो भी लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, जो अलग अलग समाज सेवी संगठन है वो भी इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ CRPF, आर्मी, एयरफोर्स, इन सब का भी सहयोग है। CRPF से हमें 28 जवान बख्तरबंद हथियार के साथ मिलते हैं, जो रूट पर पेट्रोलिंग और सिक्योरिटी करते हैं। साथ में उनकी तरफ से हमें एम्बुलेंस भी मिलती है, सेम हमको एयरफोर्स से भी एम्बुलेंस मिलती है, और उनके काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट और इस बार उनके CO साहब भी हमारे साथ मैराथन में भाग ले रहे हैं, वो खुद दौड़ रहे हैं। फिर उसके बाद आर्मी से भी हमारे को एम्बुलेंस मिल रही है, और उनके काफ़ी सारे क्रॉस कंट्री जो रनर्स होते हैं वो भी इस मैराथन में भाग ले रहे हैं। इस तरह से विशेष ये मैराथन है जो एम्स सर्टिफाइड है, एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल मैराथन एंड डिस्टेंस रेसेस की ये सर्टिफाइड मैराथन है, और ऐसी मैराथन पूरे वर्ल्ड में ये पहली मैराथन है जो निःशुल्क की जाती है, जिसमें हम 1 रुपया भी किसी से कॉस्ट या नहीं लेते हैं। इन मैराथन के रनर्स को हम 2 दिन से 3 दिन का स्टे हमारे पास देते हैं, बाद में उनको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सारी व्यवस्थाएं होती है। साथ साथ में इनको शारीरिक तौर पे तो फिट ये रहते ही रहते हैं, लेकिन इनको हम मानसिक तौर पे फिट करने के लिए मेडिटेशन का सेशन भी अरेंज किया है, जिसको हम 3M रिट्रीट बोलते हैं, माइंड मेडिटेशन एंड मैराथन। ये रिट्रीट भी आज शाम को 7 बजे से लेकर के शुरू होगी, और 2 दिन की ये रिट्रीट रहेगी, जिसमें अलग अलग

0: सब्सेक्ट है जिसका शेड्यूल हम आपको शेयर कर देंगे। इसके साथ ही इस मैराथन में बीएमसी बृहन मुंबई महानगर पालिका के डिप्टी कमिश्नर आए हुए हैं, वो खुद भाग ले रहे हैं। इसके बाद जयपुर से रेलवे के हमारा जो जीएम है, जीएम साहब, वो भी हमारे पास पहुंचने वाले हैं, उनका भी मैराथन में रजिस्ट्रेशन है, वो दौड़ेंगे। साथ में राजस्थान के एसबीआई के पूरे जोनल हेड डायरेक्टर जो है वो भी, अरूप सर हमारे बीच में आने वाले हैं, वो भी दौड़ेंगे। ये दो जगह के मेयर है, जो मेयर भी है और मैराथन भी रन करते हैं, गोंदिया के मेयर है सचिन शेंटे सर, वो भी हमारे साथ मैराथन में है, वो भी दौड़ेंगे। इस तरह से अलग अलग नामी चंद व्यक्ति जो है वो मैराथन में है। इसमें खास प्रोफेशनल रनर्स भी है और ज्यादातर मेडिकल फील्ड से डॉक्टर लोग है जो मैराथन रन कर रहे हैं, और डॉक्टरों के साथ इंजीनियर और स्टूडेंट्स और काफी कुछ एथलेटिक्स भी इसके साथ में है। और इसकी जो प्राइज कैटेगरी हमने इस बार की है, विनिंग कैटेगरी, उसमें तीन है, एक ओपन कैटेगरी 18 से 40 साल के लिए, एक 41 से 60 साल मास्टर कैटेगरी, और 61 टू अबव वेटरन कैटेगरी। ये तीनों कैटेगरी में मेल फीमेल के हमने 71, 61 और 51,000 ऐसे प्राइज डिसाइड किए हैं। तो प्राइज अमाउंट भी काफी अच्छा है, साथ साथ इनको एक ट्रॉफी दी जाएगी और एम्स का सर्टिफाइड सर्टिफिकेट इन सबको मिलेगा। और ऐसा ये बहुत भव्य दिव्य आयोजन हमारे दादी प्रकाशमणि जी की स्मृति में हर साल हम आयोजित करते हैं। ये हमारी 8वीं मैराथन है। मैराथन का उद्देश्य ये है कि रन फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्व बंधुत्व के लिए दौड़ हम अरेंज करते हैं, जिससे पूरे विश्व में आपसी भाईचारा की भावना सबके अंदर प्रेरित हो। ये मैराथन का मेन उद्देश्य है। ओम शांति।
1: जी दोस्तों, अभी आपने विशेष सूचना भी सुनी कि मैराथन का क्या उद्देश्य है, भाईचारा पूरे विश्व में फैले, विश्व बंधुत्व के लिए ये विशेष रन आयोजित कर रहा है ब्रह्मा कुमारीज 9 तारीख रविवार को सुबह 5 बजे। तो जो साथी इसमें भाग ले रहे वो सही समय पर पहुंच जाए, और कार्यक्रम को यदि आप घर से सुन रहे हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर सुनिए, और कार्यक्रम की पूरी जो डिटेल है आपको बीच बीच में जानकारियां मिलती रहेंगी। आप सुन रहे हैं उड़ान रेडियो मधुबन पर, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

आवश्यक सूचना। 9 अगस्त 2026 रविवार को आयोजित होने वाली 8वीं दादी प्रकाशमणि हाफ मैराथन के कारण सुबह 5:30 बजे से सुबह 9 बजे तक तलहटी आबू रोड से आबू राज मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। यदि किसी को इस दौरान आबू राज से बाहर जाना हो तो कृपया सुबह 5 बजे से पहले ही जाएं। सुबह 9 बजे के बाद सभी मार्ग पुनः यातायात के लिए खोल दिए जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अपने यात्रा कार्यक्रम की योजना इसी अनुसार बनाएं और इस सूचना को अपने परिचितों तक अवश्य पहुंचाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं हूं सुनील खरे, मैं ग्लोबल हॉस्पिटल आबू रोड में काम करता हूं। अब सुनिए आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन को 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ चैलेंज, जीवन एक सुंदर एक चुनौती है, एक्सेप्ट इट एंड फेस इट, है ना। मैं एक बार एक बहुत सुंदर आर्टिकल पढ़ रहा था जिसे मैं काफी मोटिवेट हुआ। उसमें था कि एक रिपोर्टर बच्चों के पेंटिंग कॉम्पिटिशन में गए, छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग कर रहे थे। जब सेकंड प्राइज का अनाउंसमेंट हुआ तो ये रिपोर्टर ने देखा कि एक व्यक्ति एक 10 वर्ष के बच्चे को स्टेज पर लेकर जा रहा है टू रिसीव द सेकंड प्राइज। तो रिपोर्टर को लगा व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस बॉय। जब वो नीचे उतरे तो ये रिपोर्टर उस बच्चे के पास जाकर पूछे, एनी प्रॉब्लम विद योर लेग्स, आपके पैरों में कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर 10 वर्ष का बच्चे ने कहा, मैडम वन ऑफ माई लेग इज एम्प्यूटेड, मेरे एक पैर को काटा गया। तो उन्होंने कहा, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन ऐसे कैसे हुआ? बोला, जेनेटिक डायबिटीज प्रॉब्लम, डॉक्टर्स ने कहा इसको एम्प्यूट करना पड़ेगा। तो रिपोर्टर ने उस 10 वर्ष के बच्चे से एक बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके उम्र के बच्चे इतना खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, उनको देखकर आपको कैसे लगता है? और ये 10 वर्ष बच्चा का ब्यूटीफुल जवाब था, मैडम इस संसार में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और ये सारे प्रॉब्लम को सुधारने के लिए भगवान को बहुत दौड़ धूप करनी पड़ती होगी और शायद भगवान को एक मजबूत पैर की जरूरत पड़ी होगी, इसलिए शायद भगवान ने मेरा एक पैर ले लिया है। कैन वी लर्न समथिंग फ्रॉम दिस 10-year-old बॉय? क्या हम उनसे कुछ सीख सकते क्या? है ना, परिस्थिति आई लेकिन उस परिस्थिति को एक चैलेंज समझकर एक्सेप्ट किया, फेस किया और आगे बढ़े। आज हम देखते हैं समाज में इतने सारे सुसाइड रेट्स क्यों हो रहे हैं। उसका एक कारण हो सकता है कि वो परिस्थिति को चैलेंज के रूप में वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हताश हो रहे हैं, टूट रहे हैं। और विशेष तौर पर मैं वो स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहूंगा कि जब आपके रिजल्ट्स आते हैं तो प्लीज आप जो भी रिजल्ट्स आए उसको आप एक्सेप्ट करो, और अगर आपको कम मार्क्स मिल रहे हैं तो यू फेस इट एंड देन ट्राई अगेन टू स्कोर मच गुड मार्क्स। हम देखते हैं हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जब उनका रिजल्ट डिक्लेयर होने होता है ना, तो उसके एक दिन पहले बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं और हर एक न्यूज़पेपर का हॉरोस्कोप पढ़ेंगे, राशिफल। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम कहते हैं, हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो बीच बीच में अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करो और इंट्रोस्पेक्ट करो और अपनी जो जीवन की जो खुशी, द हैप्पी मोमेंट्स, शेयर इट विद एवरीवन, एंड दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट।

0: अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: बाजू बाबू।

0: डाल दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: hey! जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया। इस कार्यक्रम को लेकर जब गांव और अंचल में जाते सभी वर्ग से मिलते हैं तो हमें खुशी है, क्योंकि इस तरह कार्यक्रम को लेकर बच्चों का पास पहुंचते हैं, बच्चों को एक मंच एक स्टेज मिलता है, बच्चे भी धीरे धीरे सीख जाते हैं और हर स्कूल में जाते तो बच्चों का भागीदारी देखने को मिलता है, बढ़ चढ़ कर लेते एक का बाद एक देते हैं प्रस्तुतिकरण। उनका पास जो हुनर है, जो टैलेंट है, जन जन तक पहुँचाने के लिए रेडियो मधुबन आज पहुँचा है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लुनियापुरा, जो कि आबू रोड का पास ही नज़दीक है, रेलवे स्टेशन का पास है। और आबू रोड को कौन जानते हैं, सभी तो जानते हैं। तो आज बच्चों का आवाज़ को बारी बारी सुनने को मिलेगा, क्योंकि कम्युनिटी रेडियो होने के नाते कम्युनिटी का आवाज़ जन जन तक पहुँचाने के लिए हमें पहुँचते हैं। तो आज प्रार्थना से ही हम शुरू करेंगे, क्योंकि कोई भी कार्य प्रार्थना से शुरू होता है, क्योंकि माँ शारदा को याद करते हैं। प्रार्थना में हमें सरस्वती माँ को वंदना करते हैं, उनका आशीर्वाद उनका भाव और भावना हमारा भाव और भावना उनका तक पहुँचे और माँ सरस्वती का गीत प्रस्तुत करेंगे जिसे प्रार्थना सत्र में। हमारा 7-3 छात्र है तो अपना अपना परिचय देंगे प्लीज, अपना नाम और कौन सा क्लास और कहाँ से।
1: मेरा नाम सुमित्रा सिंदल, मैं कक्षा 8वीं की विद्यार्थी हूँ।
0: वेरी गुड।
1: और मैं सोनियापुरा आबू रोड शिक्षक की कॉलोनी में रहती हूँ।
0: वेरी गुड। नेक्स्ट।
2: मेरा नाम वंदना कुमारी है, मैं लुनियापुरा में रहती हूँ, मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ।
0: वेरी गुड, बहुत अच्छा। पहला बार आए, थोड़ा झिझक किसको होता है, किसको डर लगता है, किनको डरने का बात नहीं, क्योंकि रेडियो आपका रेडियो है, आपके द्वारा ही प्रस्तुत करना होता है। तो चलिए प्रार्थना करेंगे वंदना एंड ग्रुप, ओके शुरू करेंगे। वेरी हमारे श्रोता मित्र ध्यान से सुने, वो भी अपना वॉल्यूम को तेज रखते हुए ध्यान मुद्रा में माँ सरस्वती की याद में बैठेंगे, वो भी अपना अपना जगह में। और सभी बच्चे भी रेडी है, सभी बच्चे प्रार्थना मुद्रा में रहेंगे। जोर से बोले नहीं, जोर से बोलो हाँ जी। क्या बात है, पूरा छत तो उठ जाएगा और हमारा सीनियर साहब का पास भी पहुंच सकता है ये आवाज। चलिए शुरू करते हैं माँ सरस्वती को वंदना और वंदन का ग्रुप।

0: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति। और खासकर जब प्रार्थना सत्र में बच्चे स्कूल में आते हैं तो माँ सरस्वती की याद में शुरू करते पढ़ाई, और जिसका चलते हमें बहुत कुछ शक्तियाँ और ज्ञान मिलता है। ज्ञान शक्ति और ध्यान से हम भरपूर हो जाते हैं और बच्चे आगे होकर अपना स्कूल का, खुद का और गांव का और देश का नाम रोशन करते हैं। वंदना बढ़ोकर क्या बनेगी?
1: IAS।
0: अरे वाह, उसके लिए प्रिपरेशन तो अभी से करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कलेक्टर बनेंगे तो उस तरह सभी प्रश्न का उत्तर भी देना पड़ेगा। आज रेडियो में आपको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में आपको इंटरव्यू मिल रहा है, तो आप बड़ा होकर क्या बनेंगे, उसके लिए क्या प्रिपरेशन, क्या मेहनत कर रहे हैं बताओ, क्योंकि हमारा श्रोता भी सुन रहे हैं आपको।
1: सर, मैं जीके बनने की तैयारी कर रही हूँ।
0: अरे वाह, अभी से 8वीं क्लास से उनका लक्ष्य है, तो अभी स्कूल का नाम रोशन जरूर करेंगे, और हमारे मैम भी सुन रहे उसके लिए बहुत प्रोत्साहन दे रहे। तो मैम, ये बड़े होकर तो बनेगी IAS ऑफिसर, और उसके लिए मेहनत भी करते, आप उनको क्या, जब तक है तो आप कहीं भी पढ़ाई करें तो उनको क्या संदेश देंगे, क्या उनको वार्ता देंगे?
2: हम उनको नियमित रूप से पढ़ाई करने के लिए कि कितने घंटे पढ़ाई करने चाहिए, तो उस हिसाब से उनको पढ़ाई करने के लिए बोलेंगे, और बार बार उनको अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की बार बार उनको मोटिवेट करेंगे, उनको कि जिससे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।
0: तो वंदना मैम का आवाज़ से आप खुश है?
1: हाँ।
0: मैम जैसे बताया है, आपका फोकस रहना चाहिए, एक टारगेट लक्ष्य जो रखे हैं उसके लिए आपको लक्षण दिखाना चाहिए, तो इसलिए आपका मम्मी पापा आपको कितना सहयोग देते हैं?
1: सर बहुत ज़्यादा, सर वो बोलते हैं कि पढ़ते रहना चाहिए,
0: पढ़ते रहना, जब तक अपने मंजिल तक नहीं पहुँचे तब तक पढ़ाई 20 नाखून लगाकर जब पढ़ेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। ये हमारा वंदना का आवाज़ है, और हमें भी ऐसा है जरूर बंदन आगे जाकर कुछ अभी से मेहनत करेंगे तो जरूर, और 5 साल 12 साल तक मेहनत करेंगे, 12वीं तक पढ़ाई करेंगे तब तक मेहनत करेंगे। अभी से जीके शुरू कर दिए और होना चाहिए। और आपका अच्छा दोस्त का नाम बताओ देखिए बंदना।
1: सुमित्रा।
0: अरे वाह सुमित्रा, सुमित्रा नाम सुनते तो कौन सा रामायण महाभारत को याद होता है? सुमित्रा पाठ जो करते हैं, सुमित्रा कौन सा रामायण में है ना महाभारत में, सुमित्रा का जो नाम है?
1: सर रामायण, सर वो एक देवी है, उनका नाम
0: सुमित्रा है। अच्छा, देवी भी सुमित्रा और रामायण में भी सुमित्रा का है ना, तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि तुमको अभी से जीके पूछ रहे का आगे जाकर ऐसा बुजुर्ग कितना पूछ लेगा जीके का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लेते हैं छोटा सा, तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, और हमारा साथ सुमित्रा भी है। सुमित्रा, आप अपना नाम को कौन दिया? सुमित्रा फादर ने रखा नाम। धन्यवाद देंगे, अच्छा नाम है, खुश है नाम से, जैसे नाम उस तरह काम भी करना चाहिए, बहुत अच्छा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हमारा और एक छोटे से बच्चे भी आएंगे, बड़े बच्चे से भी धीरे धीरे छोटे बच्चों की तरफ हम जा रहे हैं, और आप सुन पा रहे हैं खासकर रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, खासकर राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय लुनियापुरा का आवाज़।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन।
2: चलिए बच्चे शुरू करें। परमिशन मिल गया, बच्चे बोले हमें परमिशन दे दी। ओके, चलिए शुरू करते हैं और अगला कड़ी में, अगला भाग में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा साथ चार छात्र है। हेलो, नाम बताए।
3: मेरा नाम प्रीतम है।
2: ओके,
3: मैं लुनियापुरा में रहता हूँ, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ।
2: वेरी गुड।
4: मेरा नाम हितेश है, मैं चोरियाफली में रहता हूँ और 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ।
2: वेरी गुड।
5: मेरा नाम द्रोण चौधरी है और मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ और लुनियापुरा स्कूल।
2: सो 8वीं क्लास।
6: मेरा नाम धीरज राणा है, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लुनियापुर में पढ़ता हूँ, मेरी क्लास कक्षा 8वीं है।
2: वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी इसमें खेल कौन खेलता है? सभी खेल खेलते हैं। कौन सा खेल अच्छा लगता है?
7: क्रिकेट।
2: अरे वाह, क्रिकेट तो बहुत अच्छा गेम है ना। क्रिकेट में कितने आदमी खेलते हैं?
7: 11।
2: एक दूसरा वाला 11, 11, 22। ओके, वेरी गुड, पास हो गया सभी बच्चे, सभी को शाबाश। चलिए एक प्रस्तुति सुनाएंगे और भारत आजादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम काल तक जा रहा है और भारत पूरा आगे बढ़ रहा है और बच्चों का आवाज से देश का प्रति जो जज्बा देखने को मिलेगा, क्योंकि देशभक्ति गीत सुनाएंगे सभी बच्चे। सुनाएंगे बच्चे, रेडी? ओके, शुरू कर दीजिए।

0: बहुत खूब बहुत खूब बहुत सुंदर प्रस्तुति, और हमें खुशी लग रहा है ऐसे बच्चे देश का प्रति अभी से शुरू कर दिए हैं, और जिस देश का नाम इतना सुंदर है और उस भारत भूमि में हम रह रहे हैं, और भारत माँ कहते हैं, भारत को क्या कहते हैं, भारत माता की, भारत माता की, बच्चे तो तुरंत जाए, वेरी गुड, छोटे बच्चे भी पीछे से बोले जाए, ऐसे होना चाहिए शुरू से बच्चों को। हाँ बहुत अच्छा, उसे रोक नहीं पा रहे वो आवाज को, छोटी सी बच्ची है फिर भी, फिर से बोलो वंदे
1: माता,
0: वंदे भारत माता की, वाह कितना सुंदर, सब जय जय गान करना चाहिए, और इस गीत के माध्यम से हमारा रक्त खून में पूरा देश का प्रति भक्ति भावना आता है। तो इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में हमारा साकी दृष्टा रूप में हमारा मैम भी सुंदर, मैम आपका परिचय दीजिए, बच्चों का जो एक गीत में इतना सुंदर से भर पाला देश का प्रतिमा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप, अपना परिचय दीजिए मैम।
2: मेरा नाम अनिंद्रा है, मैं आज की संदेश देना चाहूँगी कि जैसे माता सीता ने अपने जो त्याग किया था और जिस वजह से वो इतने प्रसिद्ध हो गए, वैसे ही आप सब भी अपने माता सीता की तरह ही अपना चरित्र बनाकर रखें और उनकी तरह ही रहें, और आप भी अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

आवश्यक सूचना 9 अगस्त 2026 रविवार को आयोजित होने वाली 8वीं दादी प्रकाशमणि हाफ मैराथन के कारण सुबह 5:30 बजे से सुबह 9 बजे तक तलहटी आबू रोड से आबू राज मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। यदि किसी को इस दौरान आबू राज से बाहर जाना हो तो कृपया सुबह 5 बजे से पहले ही जाएं। सुबह 9 बजे के बाद सभी मार्ग पुनः यातायात के लिए खोल दिए जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अपने यात्रा कार्यक्रम की योजना इसी अनुसार बनाएं और इस सूचना को अपने परिचितों तक अवश्य पहुंचाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान न करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ा, तो ये हमें अच्छा लग रहा है। बच्चों का साथ हम भी बच्चे बन रहे, बीच बीच में मैम और सर का भी इंटरेक्शन हो रहा है और उनका दिल का भावना रख रहे हैं। और बच्चों का प्रति कैसे नस्वार होकर अपना जी जान देकर बच्चों को आप समान बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। पाली जिला से भी आकर यहाँ पर बच्चों को अपना हुनर को उजागर करने के लिए तत्पर रहते। तो चलिए, और एक छोटी सी परी, नन्ही परी आई है, तो वो भी अपना तोतली तोतली आवाज़ में कुछ सुनाएगी, क्योंकि इस कार्यक्रम को सजाने के लिए ग्रुप का साथ एक सिंगल एकल भी होना चाहिए। हेलो, क्या नाम है?
3: राधिका।
2: हाँ राधिका, कितना सुंदर प्यारी नाम है ना राधिका। और कौन सा क्लास राधिका?
3: फिफ्थ
2: क्लास। तुम्हारा अच्छा दोस्त कौन है राधिका?
3: नीतू।
2: सभी दोस्त अच्छे नहीं, सभी बच्चे नीतू ही अच्छा लगता है तुमको? उसके पास क्या विशेषता है, क्या गुण है जो आपको अच्छा लगता है? सहयोग देता है, सहाय करता है, क्या करती
3: है? वो मेरा हर समय साथ देती है और मैं पढ़ाई में मेरा साथ देती है।
2: कौन सा विषय आपको अच्छा लगता है राधिका?
3: हिंदी।
2: और घर में कौन कौन है?
3: मेरे पापा, भाई।
2: कोई भी चीज़ आपको घर में आता है नया चीज़, जैसे आम का सीजन हो, चाहे केला का सीजन हो, कोई ड्रेस हो नया साल में हो, पहले किसको देते? भाई को ना तुमको?
3: भाई को।
2: इतना प्यार करता है ना भाई का प्रति? भाई छोटे ना बड़े?
3: छोटे।
2: छोटे फिर भी उनको बहुत प्यार है ना, तुम्हारा भी प्यार है उससे? प्यार करता है तुम? सब कुछ उनको मिलता है, तुमको बाद में, ऐसे तुमको भी मिलना चाहिए। दोनों को पापा को बोलना मुझे पहले दो, हम लड़की है, हमें आगे जाना है। लड़का तो आगे जाता है, लेकिन लड़की और लड़का दोनों बराबर है, ऐसे सोचना, मम्मी को पापा को बोलना। भाई का नाम क्या है?
3: हिमांशु।
2: चलिए, कौन सा प्रस्तुति करेंगे अभी? कुछ गीत गाएगी, कविता गाएगी, सुना।
3: मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी।
2: अच्छा, ये गीत कविता किसको किस आता है, हाथ उठाओ। देखिए बच्चे, किसको किस कविता आता है हाथ उठाओ। मछली वाला किसको किस आता हाथ उठाओ, लंबा हाथ। अरे बच्चे भूले नहीं, छोटे क्लास नर्सरी स्कूल में और आंगनबाड़ी में होती है, फिर भी बच्चे बड़े 8वीं क्लास का बच्चों को भी याद है। चलो बहुत अच्छा, सभी मिलकर गाएंगे, फिर से इनका साथ देंगे, ठीक है? बोलो। अभी नेक्स्ट प्रस्तुति।
3: ऊपर पंखा चलता है, नीचे बबलू सोता है, सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा ने, मामा गया दिल्ली, दिल्ली से लाया दो बिल्ली, बिल्ली ने मारा पंजा, मामा हो गया गंजा।
2: देखो ये बच्चे, ये गीत सबका अभी भी याद है सभी को, अभी ये बोल रही थी राधिका, सभी बच्चे धीरे धीरे अपना मुंह को हिला रहे थे, लेकिन अभी उनको चांस मिलेगा राधिका का साथ, पुनः मिलकर गाएंगे सभी बच्चे।
4: यस सर।
2: चलिए शुरू करिए।

मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोध बंदे कृष्ण।

0: चलिए एक का बाद एक प्रस्तुतियाँ मिल रहा है, बच्चे भी अपना आवाज़ को रोक नहीं पा रहे हैं और एक को देखकर दूसरे भी सीख जाते हैं, बड़े भी सीख जाते हैं। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए और तीन छात्र उपस्थित है, वो अपना परिचय देंगे। आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, खासकर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लुनियापुरा का आवाज़, वो भी सबका आवाज़ मिलकर का गुलदस्ता बन गया। और हमारा मैम भी इस कार्यक्रम को सजा रहे, सभी स्टाफ को धन्यवाद देते हुए। रेडियो मधुबन इस तरह कार्यक्रम को लेकर जो गांव और अंचल में जाते हैं, सभी को एक मंच देते हैं और जिसका चलते उनका आवाज़ को जन जन तक पहुंचाते हैं। तो हमारा साथ तीन छात्र है, अपना अपना नाम बारी बारी बताएंगे प्लीज। ओके,
1: मेरा नाम हिमांशी है, मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ, मैं गुरु कृपा के आगे रहती हूँ।
0: वेरी गुड, नेक्स्ट।
2: मेरा नाम दीक्षा कुमारी है, मैं कक्षा 6वीं में पढ़ती हूँ, मेरा स्कूल का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लुनियापुर आबू रोड है और मैं गुरु कृपा कॉलेज में।
3: मेरा नाम दिव्यांशी है, मैं कक्षा 6वीं में पढ़ती हूँ, मैं कहल मोहल्ले में रहती हूँ।
0: वेरी गुड। देखो बच्चों के अंदर में कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, और अपने बात को, क्योंकि ये शहरी बच्चे हैं किन लुनियापुरा आबू रोड का ये एक पार्ट है, इसलिए बच्चों के अंदर में कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं। तो पूरा सारे बच्चों को भी अपना टक्कर देंगे और जब भी कंपटीशन होगा तो लोग बच्चे आगे जाएंगे। तो चलिए सभी को स्वागत करते हैं प्रोग्राम के लिए। कौन सा गीत प्रस्तुत करेंगे उनके पास है, मैं बताऊँ तो मुझे मालूम नहीं, फिर भी बच्चे करेंगे। कविता सुनाओ।
1: पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है, मस्त झाड़ियों में।
0: क्या बात, प्रकृति को ये समर्पित है।

0: अमराय घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मल्य पवन तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृ भूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता, श्री गौतम ने जन्म लेकर जिसका सूर्य बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृ भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी।
1: सभी का आवाज में थोड़ा सा आया, तो अभी एकल में वो सुनाएगी।
0: ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले नित सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लह रही है, जगमग छटा निराली पगपग छर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ग भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते हैं, जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है, मस्त झाड़ियों में अमराई घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मल्य पवन तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मे जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सूर्य बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दया सिखाई। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी।
1: जितना सुंदर उसने अपनी प्रस्तुति को दी और भारत को पूरा रिप्रेजेंट करता है, भारत में सब कुछ जो चीज कहीं नहीं वो भारत में है। भारत इसलिए मातृभूमि कहते हैं, जन्मभूमि, कर्मभूमि, तपस्या भूमि, सिद्ध भूमि, देवताओं का भूमि, तपोभूमि कहते हैं। और खासकर हमारा आबू राज में 33 करोड़ देवी देवता का वास कहते हैं। और बच्चे इस गीत का माध्यम से, कविता का माध्यम से सुंदर प्रस्तुति दिए हैं, हमें खुशी है। और क्या नाम बताए?
2: हिमांशी।
1: क्या कहना चाहेंगे अपना जो दोस्त लोग को, क्या कहेंगे? पढ़ाई में कितना मेहनत करना चाहिए, क्या बोलूँ मैं क्या बोलूँ, कितना घंटा तुम मेहनत करते हैं? पढ़ाई स्कूल में 6 घंटा पढ़ाई करते, इसके बाद घर में?
2: घर में मैं शाम को पढ़ती हूँ, और छुट्टियों में सुबह 2 घंटे पढ़ती थी और शाम को।
1: आओ थोड़ा मेहनत करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। चलिए हमारे साथ, हमारे कार्यक्रम को हमारे साथ कैसे छोड़ेंगे सर? आप मुझे स्वागत करते हैं, आप अपने बच्चे के लिए, बच्चों के लिए क्या खजाना लेकर आए?
3: नमस्ते, मेरा नाम रोहित टाइगर मैंने, मैं माधव यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर रहा हूँ और यहाँ पर इंटर्न के रूप में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय यूनियापुरा में। मैं बच्चों को यही बोला जाऊँगा कि अपने आने वाले समय में जिस प्रकार से शिक्षा को अपने जीवन में और विद्यालय को अपने घर जैसा माने, और विद्यालय में जिस तरह शिक्षण होता है उसी तरह घर पर जाके भी उसी चीज़ का अध्ययन करें, जिससे आने वाले समय में आपको अध्ययन करने में दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो विद्यालय में पढ़ाया जाता है वही आप घर पर जाके पढ़ेंगे तो आपके लिए फायदा है,
1: तो रिवाइज हो जाता है,
3: रिवाइज हो जाता है, रिविजन के बाद आपको काफ़ी दिक्कत नहीं आती है।
1: कोई भी चीज़ बार बार हम अभ्यास करते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं, और पढ़ाई जो करते हैं उसका घर में जाकर होमवर्क तो मिलता ही है, तो उसको रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तो पढ़ेंगे ना बाप, है ना सर? बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर रेडियो मधुबन का ब्रह्मा कुमारी के बारे में क्या जानते हैं?
3: ब्रह्मा कुमारी का नाम सर यही होगा, आज पहली बार मैं टिकिंग करके बात करेंगे,
1: क्योंकि रेडियो पर जैसे साइकिल कौन जानता है, आजकल मर्सिडीज कितना हो गया, एरोप्लेन तक लोग पहुँच रहे हैं, साइकिल को कौन जानता है, लेकिन साइकिल का मतलब साइकिल का जगह ना, आज भी रेडियो जो देते हैं जहाँ दुरुस्त जगह में लाइब्रेरी में वो खबर बार सुनते रेडियो पर। अभी तो 50 साल का अंदर, 30 साल का अंदर में सब इंटरनेट पर, इसका बाद पहले तो रेडियो ही सबका घर में, हम भी देखे होंगे, मैं भी देखे होंगे घर में रेडियो से हम सुनते होंगे, इतना वैरी क्या था सब चीज़, है ना? तो रेडियो अभी उसका जगह में, वो अपना जगह में रेडियो रहा, साइकिल कितना बड़ा हम मर्सिडीज गाड़ी गाड़ी ले, कितना बड़ा साइकिल कार में काम, साइकिल का जब यही तो रेडियो में होता है, मन का बात होता है, कोई भी चीज़ जो खबर मिलता है एफएम के माध्यम से, कार में ड्राइविंग कर रहे तभी मिले, आजकल मोबाइल में भी आता है एफएम आता है, आजकल भी इंटरनेट सब सुविधा है, आप भी बहुत हेल्पफुल ऑल इंडिया के और वर्ल्ड का भी आप सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और ब्रह्मा कुमारी और रेडियो मधुबन का बारे में आपको लाभ होता है। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर, खास कर सभी का आवाज, बच्चों का साथ बड़ों का भी आवाज रिकॉर्डिंग की हमको खुशी लगा। तो क्या कहना चाहेंगे जाते जाते, क्या मैसेज की मैसेज रेडियो का माध्यम से आप जैसे जैसे अभी नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं और आगे पोस्टिंग आएगा तो उसके लिए आप क्या मेहनत करते हैं, आपका अनुभव दूसरा स्टूडेंट के लिए, हम जिनके लिए प्रेरणा का स्रोत बने की हम चाहते, क्या एक मैसेज
3: मेहनत करती रहनी चाहिए और शिक्षण को कभी जीवन से दूर नहीं करना चाहिए।
1: ताली बजाओ बच्चे। लेते हैं आप सबसे इजाज़त, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। आप इस बात को लेकर सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा धन्यवाद सभी को नाम का साथ।

अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: run, run, run.
1: दौड़ो दौड़ो दौड़ो।
2: आओ दोस्तों दौड़ लगाते हैं 9 अगस्त को
1: दादी प्रकाशमणि आबू हाफ मैराथन।
2: जी हाँ, इसका थीम है रन फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड। संडे अगस्त 9 को ये मैराथन शुरू होने वाला है
1: सुबह 5 बजे।
2: तो आप सभी का इस मैराथन में भरपूर स्वागत है और आप सभी इस मैराथन में भाग लेकर रन फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड को जरूर बढ़ाइए। जी हाँ, इस भाईचारे को दुनिया भर में जरूर फैलाइए। इस मैराथन में भाग लीजिए और खुशियाँ दुनिया भर में बांटिए।
1: दादी प्रकाशमणि आबू हाफ मैराथन।

मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे। रेडियो मधुबन

नमस्ते, मैं हूँ आरजे केवल। दादी प्रकाश मणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाए। याद रखें, 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: हाय हाय।
1: मेरा नाम इंदु है, मैं ढूंढे गांव से हूँ। आप सब सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

ओम शांति, नमस्कार। मैं हूँ संगीता। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107।

किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर के पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: run, run, run.
1: दौड़ो दौड़ो दौड़ो.
2: आओ दोस्तों दौड़ लगाते हैं 9 अगस्त को
1: दादी प्रकाशमणि आबू हाफ मैराथन.
2: जी हाँ, इसका थीम है रन फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड. संडे अगस्त 9 को ये मैराथन शुरू होने वाला है
1: सुबह 5 बजे.
2: तो आप सभी का इस मैराथन में भरपूर स्वागत है और आप सभी इस मैराथन में भाग लेकर रन फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड को जरूर बढ़ाइए. जी हाँ, इस भाईचारे को दुनिया भर में जरूर फैलाइए. इस मैराथन में भाग लीजिए और खुशियाँ दुनिया भर में बांटिए.
1: दादी प्रकाशमणि आबू हाफ मैराथन.
3: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप. कार्यक्रम है लव यू जिंदगी. और जिंदगी से प्यार करना हो तो क्या करना होता है? जिंदगी क्या है, कितनी बड़ी है, कोई कहता है कितनी बड़ी है ये मायने नहीं रखती, पर उसे जिया कैसे ये मायने रखता है. और सच में जिंदगी से प्यार हो तो हर लम्हा खूबसूरत हो सकता है. पर क्या ये सच है, क्या ये संभव है या सिर्फ किताबी बातें? आइए एक्सप्लोर करते हैं और मिलते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से. हमारे साथ जुड़ गई हैं ग्लोबल अस्पताल माउंट आबू से कल्पना जी, जो कि साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं और रेडियो मधुबन पर भी हमारा गाइड बन के हमेशा साथ देते हैं. दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है.
4: थैंक यू आरुषि जी. बहुत अच्छा लगता है जब भी हम अपने श्रोताओं से मिलते हैं, उनके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं, बहुत खुशी होती है. थैंक यू वेरी मच.
3: और साथ साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे दूसरे एक्सपर्ट श्रीनिधि जी, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है, साथ साथ जाने माने एंकर और आरजे भी है. श्रीनिधि जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है.
5: बहुत बहुत धन्यवाद आरुषि जी. कल्पना जी नमस्कार. हमारे सभी श्रोता मित्रों को नमस्कार. तभी जिंदगी की एक और कड़ी में आप सभी से चर्चा करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है. आशा करते हैं कि आज की इस कड़ी में भी हम सभी इस चर्चा से बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर ढंग से समझ कर जिंदगी से प्यार करना सीखें.
3: बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये करना. और कैसे करना है उसके प्रैक्टिकल और इजी टिप्स आपको इस कार्यक्रम में मिलते हैं. और हम पिछले कुछ एपिसोड से भावनाओं के बारे में बहुत बात करते आए हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, फिर किस परसेंटेज में हम उसे फील कर रहे हैं वो भी जानना, फिर किस तरह से उसे डील करना, बहुत कुछ है. लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगे, कई बार ऐसा होता है लोग कहते हैं मैं भावनाओं में बह गई थी, मेरा ये मतलब नहीं था पर मुझसे ये हो गया, मुझे पता ही नहीं था कि कैसे हो गया. तो डिस्टर्बेंस आ जाता है लाइफ में, कई बार बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं भावनाओं में बहकर, और वो गिल्ट हमेशा साथ रहता है. कई बार तो लोग लास्ट जो ब्रेथ होती है वहां तक भी उसको लेकर जाते हैं और वहां भी वो पेन एक्सप्रेस करते हैं. ऐसे भी कई बार इंसिडेंट्स हुए. तो इतना लंबा वो ना जाए, उसको हम हील कैसे कर सकते हैं, उसकी शुरुआत कहाँ हो सकती है, क्या ये पॉसिबल है, क्या कहना चाहेंगे आप?
4: बहुत सुंदर और साथ साथ बहुत डीप सवाल है ये. भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है. जैसे हम अपनी भावनाओं को समझ पाते हैं, समझना शुरू करते हैं, वैसे ही हम दूसरों की भावनाओं को भी समझने लगते हैं. तो इसको ही हम कहते हैं इमोशनल मैच्योरिटी. जब हम अपनी भावनाओं को समझकर सही जगह पर सही व्यक्ति के साथ सही इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं तो वो मैच्योरिटी की लेवल पर आ जाता है. लेकिन भावनाओं को न समझने की वजह से जो गलतियां हम कर लेते हैं, न खुद की भावना समझते हैं, न दूसरों की भावना समझते हैं, और बिना समझे हम जो आया जैसा व्यवहार कर लेते हैं, जो आया सो बोल देते हैं, और फिर बाद में पछताना पड़ता है और ये शायद उम्र भर का घाव बन जाता है. घाव अगर शरीर पर होता है तो दिखाई देता है, लेकिन भावनाओं में जो घाव लगता है वो गुप्त भी रहता है लेकिन बहुत गहरा भी होता है. तो जैसे शरीर के घाव को ठीक करने के लिए कुछ विधि है, उसी तरह से मन के घाव, भावनाओं के घाव को भरने के लिए सबसे पहले इन्हें प्रेम से, समझ और समय की आवश्यकता होती है. पहली बात, प्रेम से समझना और समय देने की आवश्यकता. भावनात्मक उपचार क्या होता है, हीलिंग का मतलब क्या है, कि मन में दबे हुए दर्द, दुख है, क्रोध है, भय है, अपराध बोध है, अस्वीकृति है और नकारात्मक भाव है, इनको पहले समझकर स्वीकार करना. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर गुस्सा है या मुझे किसी बात का दुख है तो तो मैं एक्नॉलेज करूं कि हाँ मुझे इस बात का दुख है, मेरे किसी आपते स्वकीय ने शरीर छोड़ा है इसलिए मुझे दुख है, मुझे किसी ने धोखा दिया है इसलिए मुझे दुख है, या मुझे गुस्सा है, या मुझे भय है, या मुझे गिल्टी फील हो रहा है। तो इस एक्नॉलेजमेंट के साथ हम उसका उपचार कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट के साथ ही हीलिंग की शुरुआत होती है।
3: इंटरेस्टिंग, मतलब पहले तो ये माने, एक्सेप्ट करें कि ये प्रॉब्लम है, नहीं तो वो होता है ना डॉक्टर के पास जाते ही नहीं अगर पता ही नहीं है कि उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए या समझ नहीं पाए। तो पहला स्टेप है एक्नॉलेजमेंट
4: जी, फिर धीरे धीरे उनसे मुक्त होकर हम पुनः अपनी ओरिजिनल शांति, प्रेम और आत्मबल के अनुभव में पहुंचते। जैसे जैसे हम भावनाओं को स्वीकार करते जाते हैं उसको मैनेज करना हमें अपने आप आने लगता है।
3: दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि स्वीकार करते हैं तो मैनेज करना आने लगता है, मतलब कहीं ना कहीं सही ऑर्डर पता होना चाहिए कि हमको चलना कैसे है। श्रीनिधि जी, आपसे भी यही जानना चाहूंगी कि कैरी फॉरवर्ड करके जो हम भावनाओं को अपने पास रखते हैं, या कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक इंसान को देख के वो भावनाएं वापस आने लगती है, हो सकता है हमने वो पीछे कहीं दबा दी होती है, तो वो दबा देना या हील होना, दोनों में से क्या हुआ है हमारे साथ, ये कैसे पता करें?
5: सबसे पहले तो ये बात समझने वाली है कि हम सभी ना कुछ बैगेज लेके चल, सीधे मुंह इसे बर्डन कहना शायद थोड़ा अप्रिय लगे, पर हम सबके साथ एक इमोशनल बैगेज हमारे साथ होता है, और ये इमोशनल बैगेज हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस के कारण होता है कि हम जिस प्रकार की परवरिश होती, जिस प्रकार के दोस्त हमारे होते, तो उसके आधार पर हमारी जो ये इमोशनल बैगेज है ये बनते। कभी कभार कुछ अप्रिय घटनाएं ऐसी हुई होती, लोगों ने कुछ कहा होता है या हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया होता है, उसकी वजह से एक हर्ट है या एक पेन को तो हम बहुत ही आसानी से पेन कह सकते हैं, तो बहुत सारे इमोशंस हम कैरी करते हैं, बहुत सारे लोग फियर कैरी करते हैं, बहुत सारे लोग एंजाइटी कैरी करते हैं, कई लोग वो जो सैडनेस है वो कैरी करते हैं। हालांकि आज वो चीज नहीं है उनके लाइफ, मगर अतीत में, पास्ट में कभी ऐसा हुआ है किसी ने

0: काफी देर तक उस चीज को महसूस किया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर आप समझ लो, आप में से बहुत सारे मेरे साथी जो युवा साथी शायद वो रिलेट कर पाएंगे, अगर आप एक बैकपैक ट्रिप पे जाते हैं, बहुत सारे हमारे युवा साथी बस कंधे पे पिट्ठू बैग लादे हुए ट्रिप्स पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, ट्रेकिंग पे जाते हैं, कहीं पर भी आप जाते हैं। समझ लो आपने वो 10 kg का बैग पहन के रखा है तो 10 किलो कोई ज्यादा नहीं लगता युवा शरीर के लिए, तो आपको लगता है अरे 10 किलो क्या है उठा। बट अगर आप 10 दिन की यात्रा उस 10 किलो बैग के साथ कर रहे हैं और हर दिन पहाड़ चढ़ते उतरते ट्रेन से हर जगह जब उसको लेके आपको चलना पड़ता है, और जब 10 दिन बाद आपकी यात्रा पूरी होती है और अब आप उस बैग को उतारते हो, अब आपने वो बैग पहना नहीं है, मगर फिर भी कंधे पे वो दर्द महसूस होता है क्योंकि आपने इतने दिनों तक उस बैग को कैरी किया हुआ है कि आपने उसको अपने कंधे को आराम नहीं दिया था। सिमिलरली हमारे मन के साथ, तो इस बात को एक्नॉलेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज अगर मैं वैसा पेन फील कर रहा हूँ तो ये जो पेन है, ये जो इमोशनल बैगेज मेरे पास है, ये इतनी देर तक कैरी करने की वजह से और करने की वजह से हुआ है, इसे एक्सेप्ट कर लेना आवश्यक है। ठीक है, मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से ये चीजें हुई। अब आता है उसका दूसरा हिस्सा, जब आपने उस बोझ को उतार दिया है तभी भी दर्द महसूस हो रहा है आपको, अब उसके हीलिंग के लिए, रिकवरी को रिक्यूपरेट करने के लिए अब आपको कुछ और चीजें करनी पड़ेंगी जिससे आपका वो जो 10 दिन तक बैग ढोने का जो बोझ है, जो दर्द आज महसूस हो रहा है, उसे आप हील कर सकें। उसके लिए समय लगता है, उसके लिए समय देना जरूरी है। एक तो उस बैगेज को ऑफ लोड करना भी आवश्यक है और फिर उसके बाद हीलिंग के लिए समय देना और हीलिंग के लिए थेरेपेटिक चीजें हमारे पास है, चीजों का इस्तेमाल करना भी आवश्यक है।
1: ओके, अगेन हम मुझे लगता है एक्नॉलेजमेंट पे आ गए जो बहुत जरूरी है। फिर दीदी आपने कहा था समझ और समय दोनों ही जरूरी है, तो वो कैसे काम करता है हीलिंग में, थोड़ा उसके बारे में भी अगर आप बताएं।
2: सबसे पहले जो श्री जी ने एग्जाम्पल दिया मुझे वो बहुत अपील किया कि जो हम बैकपैक लेके घूमते हैं एक छोटी सी बात है, कितना इजीली हम वो चीज कर पाते हैं, लेकिन उसको जब हम इमोशंस के साथ जोड़ते हैं तो उस बैकपैक में क्या क्या कैरी करते हैं, किस किस चीज के घाव कैरी करते हैं, उनको इसको समझना बहुत जरूरी है। तो मैं एक एक करके बताते जाती हूँ। बचपन में जब से हमें समझ आती है तब से हमारी कोई अपेक्षा करता है, उपेक्षा करता है या आलोचना करता है, हमें टॉन्ट कसता है। जैसे स्कूल में बुलिंग होती है, टीचर्स नेग्लेक्ट करते हैं जब हमें टीचर्स का अटेंशन चाहिए होता है, या दूसरे बच्चे किसी कारण से हायरार्की की वजह से या फाइनेंशियल बैकग्राउंड की वजह से आपको बुली करते हैं या आपको टॉन्ट करते हैं, तो वो हर्ट हम लेकर चलते हैं। फिर कभी कभी हमारे माता पिता का हमारे प्रति जो व्यवहार होता है, बचपन में मुझे नहीं समझता कि ये मेरे भले के लिए, परंतु मुझे हर्ट होता रहता है कि मेरे पापा ने मुझे मारा, मेरी मम्मी ने मुझे मारा, मुझे ये नहीं दिया, मेरी बड़ी बहन या बड़े भाई को दिया, मुझे नहीं दिया। बचपन से ही ये चीज हम कैरी करते हैं। कुछ असफलताएं होती है हमारे लाइफ की, हम जो चाहते हैं वो हम हासिल नहीं कर पाते, तो वो एक तीस जो होती है अंदर से जो दुख होता है उसे कैरी करते हैं। कभी कभी हमारे रिलेशनशिप में हमें विश्वासघात होता है, कोई हमारा दिल तोड़ता है, वो कैरी करते हैं। रिश्ते हमारे कई बार टूट जाते हैं, अच्छे खासे फ्रेंड्स छोटी सी गलतफहमी की वजह से दूर हो जाते हैं और उम्र भर एक दूसरे को दूर रहकर याद करते हैं। कभी कभी हमारे जो अपने हैं उनमें से किसी बहुत क्लोज का अचानक मृत्यु हो जाता है। ये सारे बैगेजेस है जो बैकपैक कहा श्री जी ने, वो अंदर में है, वो हम कैरी कर रहे हैं। कभी हमारा अपमान होता है, कभी कभी हम बहुत लंबा समय तक टेंशन में रहे हैं, हमें कई बार गिल्टी फील हुआ है, कई बार हमें अपने आप को स्वीकार करना, जो चेहरा लोगों के सामने है मेरा अंदर में एक चेहरा है जो सही नहीं है, मुझे कहीं अच्छा नहीं लगता है, वो कैरी करते समय मुझे उसका दुख होता है, पेन होता है। तो अब बैकपैक में हमने क्या क्या कैरी किया है बचपन से लेकर अब तक, वो तो हमने समझा। अब धीरे धीरे करके हम उसके साइंस को पहचाने, समझो कि मुझे बचपन में मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो अभी मुझे तकलीफ दे रहा है, उसकी निशानियां क्या हो, है ना, इस बात पर हमें सोचना चाहिए कि अब क्या निशानी दिखाई देगी कि पता चले कि मैं बैगेज कैरी कर रहा हूँ।
1: मतलब उस समय तो था, लेकिन उस समय समझ में आया, हर्ट हुआ, भूल गए, लेकिन वो बैगेज है कहीं ना कहीं इसके साइंस क्या होंगे, ये तो जरूर

0: आसानी से देखते हैं।
1: बिल्कुल, उसके साइंस है कि कभी कभी बिना कारण उदासी आना, सैडनेस फील करना। मेरे पास कई बहनें आती हैं, लड़कियां आती हैं, जो कहती है कि बिना कारण के हमें रोना आ रहा, कोई कारण ही नहीं है, फिर भी बोलते बोलते आंखों से अश्रु धारा निकलती। तो छोटी छोटी बातों पर रोना आना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, जैसे लड़कियों में रोना है, लड़कों में बहुत ज्यादा गुस्सा आना और गुस्से को एंजाइटी का रूप मिलना। जब गुस्सा एंजाइटी में बदल जाता है, तब तोड़ फोड़ खुद को नुकसान या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की तरफ जाता है ना। फिर बहुत ज्यादा चिंता होना फ्यूचर को लेकर, हेल्थ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, सारी इनसिक्योरिटीज होना, फिर किसी चीज का डर लगना, डर की एक आदत बन जाना, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अकेलापन महसूस करना, है ना। ये लास्ट नहीं है, ऐसे बहुत सारे साइंस हैं। जैसे अगर आप मेंटल लेवल पर देखेंगे तो बार बार वही चीज सोचते रहेंगे, उसको हम ओवर थिंकिंग करते हैं। बात छोटी है बट मैं उसको सोच सोच सोच सोच के इतना बड़ा बना देता हूँ कि मुझे उसका टेंशन होने लगता है।
0: ये तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम है दीदी, ओवर थिंकिंग के बारे में तो बहुत कहते हैं कि हम बहुत ओवर थिंक करते हैं, रात को सोने से पहले ओवर थिंक करना है जैसे पार्टी बन गया है।
1: जी, दैट शोज बैगेजेस क्लियर नहीं हुए, नेगेटिव सोच होना, फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। किसी भी काम को करने के लिए अगर आपको कहा जाए तो आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं मैं नहीं करता हूँ, तुम लोग करो, क्योंकि मुझमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है कुछ काम करने। मुझे लाइफ के डिसीजन लेने पड़ते हैं, मैं डिसीजन नहीं ले पाता हूँ, खुद के डिसीजन खुद नहीं ले पाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास हमारे यहाँ जो नर्सिंग स्कूल है, कॉलेज है, तो नर्सिंग स्टूडेंट से जब हम मिलते हैं तो कई बार मैं पूछती हूँ उनको कि आपने ये नर्सिंग क्यों चुना, तो वो कहते हैं कि मम्मी पापा ने कहा इसलिए चुना, मुझे आना था नहीं आना था मुझे नहीं पता, बट मम्मी पापा ने कहा इसलिए चुना। अभी भी मैं डिसाइड नहीं कर पाता हूँ कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, टेंथ के बाद मेरे जैसे मार्क्स थे उस अकॉर्डिंग मुझे कॉमर्स कॉलेज में डाला गया
0: जी।
1: अब मैं कॉमर्स में जाकर बैठी हूँ एक साल भर, मुझे वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई वॉज लिटरली कंफ्यूज्ड कि ये मेरा नहीं है पार्ट, ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ। सो उस एक साल में मैंने सोचा कि मैं और क्या कर सकती हूँ, अगर मैं कॉमर्स नहीं कर सकती हूँ तो मैं और क्या कर सकती हूँ। सो बचपन से मैंने देखा था कि मुझे टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट था। सो मैंने एक साल के बाद अपना स्ट्रीम चेंज किया, मैंने आर्ट्स लिया और बाद में टीचर बनने का निर्णय लिया। पर मेरा एक साल गया था क्योंकि मैं खुद के बारे में खुद डिसीजन नहीं ले पाई थी। तो निर्णय लेने में कठिनाई होना, ये कुछ मानसिक और भावनात्मक संकेत हमने देखे, आगे चल के शारीरिक, व्यावहारिक, सामाजिक संकेत भी हम देखेंगे।
0: और ये सारे संकेत जब आप बोल रहे हैं, मुझे लगता है हम रिलेट कर पा रहे होंगे, किसी को लग रहा होगा ये होता है, किसी को लगता है ये होता है, बट अभी कारण समझ में आया कि वो कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है जो बैगेज के रूप में है मौजूद। तो हील सिर्फ उसको सिम्टम को नहीं करना है, उस प्रॉब्लम को करना है। श्रीनिधि जी, आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने वही बैकपैक का एग्जाम्पल दिया आगे, तो आपको क्या लगता है कि आप यूथ को बहुत क्लोजली देखते हैं, जनरेशन चेंज हो गई है, अभी का जो यूथ है आपको लगता है वो थोड़ा कम कैरी करते हैं, ज्यादा कैरी करते हैं, क्या कुछ चेंज नजर आता है आपको?
2: मैं समझता हूँ, मैं यूजुअली इंटरजेनरेशनल टॉपिक्स पे कमेंट नहीं करना पसंद करता, क्योंकि ये मैंने अपने युवा साथियों से ही सीखा है, जो मेरे हम उम्र हैं और मेरे से छोटे भी हैं, उनसे मैंने ये चीज सीखा है। वो इस बात को बहुत बुरा मानते हैं जब उन्हें उनके जनरेशन के आधार पर कमतर आता जाता है कि अरे आपके जनरेशन से तो क्या ही उम्मीद है, अरे आपके जनरेशन तो क्या ही समझ पाएगी। हमारे जमाने में ऐसा होता था, जब ये चीजें उनको सुनने को मिलती हैं तो वो बिल्कुल असहज महसूस करते हैं, जैसे उन्हें अज्ञानी या उन्हें इग्नोरेंट लोगों की तरह ट्रीट किया जाता है, या हम उन्हें रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस करते हैं। हालांकि कहने का भाव वो नहीं होता, इसलिए मैं इंटरजेनरेशनल चीजों पे कमेंट नहीं करता। मैं समझता हूँ कि हर एक पीढ़ी के अपने स्ट्रेंथ्स होते हैं, अपने समय के अनुसार उनके पर्यावरण बदलते हैं, उनको जो स्टिमुलस मिलता है या जो चीजें उनको इनपुट्स के रूप में मिलती हैं, उसके आधार पर हर एक जनरेशन चीजों को अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। और लोग हालांकि ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जेन जी, मिलेनियल्स, जेन अल्फा, ये ठीक है कि हम बच्चों को किस समय पर वो पीढ़ी आई है उसके अनुसार उनके आसपास टेक्नोलॉजी कैसा था, वातावरण कैसा मिला है, परवरिश कैसी मिली है, उसके आधार पर हम इन चीजों को डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। ये बात सत्य है कि इन चीजों का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है और पीढ़ी पर पड़ती है। मगर ये भी बात मैं मानता हूँ कि आज मैं ऐसे युवाओं को जानता हूँ जो जेन जी के कैटेगरी में अपने आप को देखते हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा ऐसे साथी में देखने को मिलता है कि वो लोग शराब नहीं पीते।
0: हाँ, एक्चुअली मैं यही पूछना चाह रही थी कि क्या सिम्टम कुछ अलग है, जैसे दीदी ने सिम्टम बताए जो ट्रॉमा कैरी कर रहे हैं उसके, क्या कुछ और साइंस दिखाई देते हैं, कुछ अलग तरीके के भी साइंस दिखाई देते हैं, क्या उसका फर्क पड़ता है या नहीं?
2: डेफिनेटली मैं समझता हूँ उसका प्रभाव तो पड़ता ही होगा। मैं समझता हूँ जिस प्रकार से आज हम पोस्ट कोविड वर्ल्ड में मेंटल हेल्थ इश्यूज की राइज देख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण हमारा ऑनलाइन बिहेवियर हो गया है कि हम बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर आश्रित हो गए, हमारा सोशल इंटरेक्शन बहुत कम हो गया। वहीं अगर आप देखेंगे कि कोविड के समय पर भी जो ऐसे पीढ़ी के लोग हैं जैसे मेरे माता पिता की उम्र के लोग, उससे भी थोड़े और उम्र दराज लोग हैं, वो इन चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से कोप कर पाए क्योंकि उनको उस चीज की आदत है कि भाई वो सोशल इंटरेक्शंस को ज्यादा महत्व देते रहे हैं, और वो कारणवश कोविड में वो नहीं कर पाए, मगर बाद में वो उन चीजों को उन्होंने तुरंत बाउंस बैक कर लिया उन चीजों। मगर हमारे युवा साथी, जो खासकर ऐसे बच्चे जो कोविड के दौरान अपनी 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे या 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तो वो 2 साल के लिए ऑनलाइन स्कूलिंग की, तो उनके सोशल स्ट्रक्चर्स टूट गए, तो उस तरीके से उनको रिस्पॉन्ड करने में आज डिफिकल्टी होती है। तो मैं समझता हूँ ये जनरेशन की बात से ज्यादा वो किस परिवेश और किस एनवायरनमेंट में है वो चीजें ज्यादा मायने रखती है। इसका उदाहरण देने के लिए मैं ये चीज कहूंगा कि अगर भारत में ही ग्रामीण परिवेश के बच्चे होंगे, वो भले जेन जी क्यों ना हो, वो कुछ चीजों को बेहतर रिस्पॉन्ड कर पाएंगे मुकाबले इसके कि जो शहरों में रहने वाले बहुत ही अर्बन लैंडस्केप में रहने वाले बच्चे उन चीजों को बेहतर नहीं समझ पाएंगे। इसमें दोनों चीजें हैं, पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं।
0: बिल्कुल, और जैसा आपने कहा परिवेश डिफरेंट है तो कई बार एक्सप्रेशन करने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। कई बार पुरानी जनरेशन चाहे शायद वो चीज सोच रही थी, अभी जनरेशन शायद वही चीज सोशल मीडिया में दिखने लगी है, मगर साइंस तो सब जगह है, हो सकता है वो थोड़े से बदल जाए, पर डेफिनेटली भी आगे बढ़ेंगे। हमारे पास जैसा आपने कहा बहुत सारी चीजें सोशल साइंस और क्या क्या है, और भी टॉपिक्स हैं कवर करने के लिए, लेकिन क्योंकि इस एपिसोड में हम पहुंच गए हैं, हमारे समय हमें जहां तक इजाजत देता है वहां, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या कुछ ऐसा मेडिटेशन कर सकते हैं, हमने जो पहले स्टेप की बात की थी कि उसको हम समझ पाए, वहां पे कैसे खुद को ला सकते हैं एक पॉइंट पर।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, हमें उसको समझकर उसको अपने जीवन में इन्वॉल्व करने के लिए, शामिल करने के लिए सोच के लेवल पर कुछ अभ्यास करने की आवश्यकता है। सोच के लेवल पर जो अभ्यास करते हैं उसे ही मेडिटेशन कहा जाता है या ध्यान कहा जाता है। सो हम अपने विचारों में किस तरह से सकारात्मकता ले आए ताकि हमारा ये जो बैगेज हम कैरी कर रहे हैं वो धीरे धीरे हम रिलीज भी करते जाएं और हम हील भी होते जाएं। तो मैं अपनी श्रोताओं से अनुरोध करूंगी कि वे जहां कहीं भी हैं, रिक्वेस्ट है कि 2 मिनट के लिए आप साइलेंस में किसी निश्चित स्थान पर बैठ जाएं। अगर वो स्थान बालकनी हो, कोई आरामदायक ऐसी जगह हो जहां से खूबसूरत नजारा दिख रहा हो, या अपने कमरे का एक कुर्सी जहां पर आप शांति से बैठ सकें, तो आराम से बैठ जाएं। अपने शरीर को रिलैक्स पोजीशन में रखिए, गहरी और लंबी सांसें, गहरी और लंबी सांसों का ये अभ्यास हमारे माइंड, ब्रेन और बॉडी को रिलैक्स करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। इसलिए मेडिटेशन की शुरुआत गहरी और लंबी सांसें लेते हुए किया जाना चाहिए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर एकाग्र करें। हर सांस के साथ अपने मन को, शरीर को रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स फील करें। गहरी और लंबी सांस लेते हुए अपने आप में एक विचार को दोहराएं, मैं जो हूं जैसी हूं मैं खुद का स्वीकार करती हूं। एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर। कुदरत ने मुझे विचारों के साथ भावनाओं की सुंदर शक्ति दी है। उसमें कुछ नकारात्मक भावनाएं हैं तो बहुत सारी सकारात्मक भावनाएं भी हैं। गहरी और लंबी सांस ले। मुझे खुशी है कि मेरी नकारात्मक भावनाओं की तुलना में सकारात्मक भावनाएं बहुत अधिक है। जो भी नकारात्मक भावनाएं आज तक मुझ पर असर कर रही है, आज मैं उनको अच्छी तरह से जानने की, समझने की कोशिश करती हूं। मैं अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से समझती हूं। गहरी और लंबी सांस ले। जैसे ही मुझ में नकारात्मक भावनाएं आने लगती हैं, मैं अपनी अलमारी में से उन सकारात्मक भावनाओं को निकाल कर उनकी जगह उनको स्थान देने का प्रयास करती हूं। और मेरा ये प्रयास मुझे सफलता दिलाता है। मैं अपनी नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक शक्ति में बदल सकती हूं। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। उससे भी ज्यादा मुझे परमात्म शक्ति और ब्रह्मांड पर संपूर्ण भरोसा है। मेरी इस उपलब्धि के लिए मैं परमात्मा, प्रकृति और खुद का भी शुक्रिया अदा करती हूं। धन्यवाद।
0: धन्यवाद दीदी। हम भी शुक्रिया अदा करते हैं आपका और श्रीनिधि जी का, दोनों का, कि हमें आप जैसे स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे हैं। और स्टेप्स बहुत जरूरी हैं, ये भी हमने समझा, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हीलिंग के लिए हमने पहला कदम आज बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, आशा करते हैं इस कार्यक्रम से आपको वो मदद मिली होगी जो आपको जरूरत है, और इस वादे के साथ कि नेक्स्ट स्टेप्स को लेकर भी जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल लेते हैं इजाजत। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी को दिल खोल के कहिए कि लव यू जिंदगी।

आवश्यक सूचना। 9 अगस्त 2026 रविवार को आयोजित होने वाली 8वीं दादी प्रकाशमणि हाफ मैराथन के कारण सुबह 5:30 बजे से सुबह 9 बजे तक तलहटी आबू रोड से आबू राज मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। यदि किसी को इस दौरान आबू राज से बाहर जाना हो तो कृपया सुबह 5 बजे से पहले ही जाएं। सुबह 9 बजे के बाद सभी मार्ग पुनः यातायात के लिए खोल दिए जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अपने यात्रा कार्यक्रम की योजना इसी अनुसार बनाएं और इस सूचना को अपने परिचितों तक अवश्य पहुंचाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

मैं सलमा आगा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

नमस्ते, मैं हूँ आरजे केवल। दादी प्रकाशमणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाए। याद रखें, 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: वंदे मातरम गीत भारत की आजादी की लड़ाई का प्रतीक था। इसमें स्वशासन की सामूहिक इच्छा और लोगों का अपनी मातृभूमि के प्रति भावनात्मक जुड़ाव झलकता था। शुरुआत में स्वदेशी और विभाजन विरोधी आंदोलनों के दौरान लोकप्रिय हुआ ये गीत जल्द ही क्षेत्रीय सीमाओं के ऊपर उठकर राष्ट्रीय जागृति का गीत बन गया। बंगाल की सड़कों से लेकर बॉम्बे के मुख्य इलाकों और पंजाब के मैदानों तक वंदे मातरम का स्वर ब्रिटिश शासन के विरोध के प्रतीक के रूप में गूंज उठा। ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि देश के अनेक वीर क्रांतिकारियों का प्रेरणा मंत्र भी था। फिर वो अमेरिका में गदर पार्टी के प्रमुख क्रांतिकारी रहे करतार सिंह सराबा ही क्यों ना हो। वंदे मातरम का नारा उन्हें वतन पर मर मिटने का हौसला देता था। आज के एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा कार्यक्रम में हम सुनेंगे इन्हीं वीर क्रांतिकारी करतार सिंह की कहानी, जो मात्र 19 साल की आयु में फांसी पर चढ़ा दिए गए।
1: दीदी, सच में वंदे मातरम गीत में बड़ी शक्ति है। आज भी सुनती हूँ तो अंदर एक जोश भर जाता है।
2: हाँ बन्नू, सोचो आज जब ये गीत हमारे दिलों को इतना झंझोर देता है, वैसे में स्वतंत्रता आंदोलन के समय इसका कितना प्रभाव रहा होगा कि इसने देश के अनेक युवाओं में क्रांति की लौ जगाने का कार्य किया। वंदे मातरम गीत न सिर्फ क्रांतिकारियों में नया जोश, शक्ति और उम्मीद भरता था, बल्कि वो उनका बीज मंत्र बन गया था। गदर आंदोलन के दौरान भी इस गीत ने क्रांतिकारियों के हृदय में जल रही ज्वाला को बुझने नहीं दिया।
0: आप श्रोताओं को याद होगा कि कैसे 15 जुलाई 1913 को कैलिफोर्निया के पंजाबी भारतीयों ने एकत्रित होकर गदर पार्टी का गठन किया था। उसका उद्देश्य था सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाना। वीर क्रांतिकारी लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना पार्टी के संस्थापकों में से थे। उन्होंने गदर नाम से एक समाचार पत्र भी निकाला था, जो पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती और पश्तो भाषाओं में प्रकाशित होता था। देखते ही देखते वो अंग्रेजों की आंखों की किरकिरी बन गया था। वो उसमें प्रकाशित होने वाले लेखों से भयभीत रहने लगे थे। लेखकों में एक नाम था करतार सिंह, जो अखबार के लिए देशभक्ति की कविताएं और लेख लिखा करते थे। साथ ही साथ अखबार की गुरमुखी संस्करण की छपाई का जिम्मा भी संभालते थे। बहुत कम समय में गदर पार्टी गदर आंदोलन के माध्यम से प्रसिद्ध हो गई और इसने समाज के हर वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया।
1: गदर पार्टी के ये करतार सिंह आखिर कौन थे दीदी, जिनके लेख अंग्रेजों को बिल्कुल नहीं सुहाते थे?
2: अरे बन्नू, उनके बारे में बताऊंगी तो दांतों तले उंगली दबा लोगी तुम।
1: अच्छा, ऐसा क्या था उनमें?
2: बेजोड़ साहस, बेखौफ युवा जिसे किसी का डर नहीं था।
0: सोहन सिंह भाकना करतार सिंह को बाबा जनरल कहा करते थे। देश की स्वाधीनता की लड़ाई में मर मिटने को तैयार करतार ने अमेरिकियों से बंदूक चलाना और विस्फोटक उपकरण बनाना सीखा था। साथ ही हवाई जहाज उड़ाने का प्रशिक्षण भी लिया था। यह साल 1914 की घटना होगी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। ब्रिटिश हुकूमत अपने मित्र देशों के साथ युद्ध में तल्लीन हो गया था। तब गदर पार्टी के नेताओं ने इस अवसर को भुनाने का फैसला किया।
3: क्यों ना गदर पत्रिका के जरिए कुछ वड्डा किया जाए।
4: कोई सुझाव हो तो बताओ,
3: एक दमदार आलेख प्रकाशित करते हैं।
0: इस तरह 5 अगस्त 1914 के अंक में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का निर्णय शीर्षक से एक लेखक प्रकाशित हुआ। पत्रिका की हजारों प्रतियां सैन्य छावनियों, गांवों और शहरों में वितरित की गई। इसके साथ ही पार्टी के नेताओं ने कलकत्ता जाने का निर्णय लिया ताकि आगे की कार्रवाई को संपन्न करा सकें।
4: हम कलकत्ता कैसे जाएंगे?
3: आप लोग ऐसे सलामिन जहाज से कोलंबो और वहाँ से कलकत्ता पहुँचेंगे।
4: मेरे साथ और कौन कौन जा रहे हैं?
3: आपके साथ सत्यन सेन, विष्णु सेन, विष्णु गणेशन पिंगले और गदर के स्वतंत्रता सेनानी भी होंगे।
4: ठीक है, फिर हम जाने की तैयारी करते हैं।
3: जुगंतर नेता जतिन मुखर्जी के परिचय पत्र के साथ कलकत्ता पहुंचकर आप और पिंगले बनारस जाएंगे और वहां राज बिहारी बोस से मुलाकात करेंगे। उन्हें सूचित करेंगे कि 20,000 और गदर सदस्य जल्द ही आने वाले हैं।
0: हालांकि इस बीच ब्रिटिश अधिकारियों को इस योजना की भनक लग गई और बड़ी संख्या में गदर पार्टी के नेताओं को बंदरगाहों पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।
1: फिर क्या हुआ दीदी?
2: होना क्या था, गदर के क्रांतिकारी कहां से पीछे हटने वाले थे। गिरफ्तारियों के बावजूद पार्टी के सदस्यों ने लुधियाना के पास लादोवाल में एक बैठक की। बैठक में सशस्त्र कार्रवाई के लिए वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अमीरों के घरों में डकैती करने का निर्णय लिया गया।
0: तय योजना के तहत सब ठीक ही चल रहा था, तभी एक छापे के दौरान हुए बम विस्फोट में दो गदरी वार्याम सिंह और भाई राम रखा मारे गए। उधर 25 जनवरी 1915 को राज बिहारी बोस अमृतसर पहुंचे और 12 फरवरी को साथियों के साथ एक बैठक की।
5: साथियों, हाल ही की घटनाओं से तो आप सभी वाकिफ ही होंगे। हमें बहुत सोच समझकर और संभल कर विद्रोह का निर्णय लेना है।
6: आपने क्या सोचा है?
5: अगर आप सभी की सहमति हो तो 21 फरवरी को विद्रोह शुरू किया जाएगा। पहले हम मियां मीर और फिर फिरोजपुर की छावनियों पर कब्जा करेंगे। उसके बाद अंबाला और दिल्ली के पास विद्रोह को अंजाम दिया जाएगा।
6: ठीक है, हम सब आपके साथ हैं।
0: पार्टी के सदस्य योजना अनुसार तैयारी में जुटे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके बीच कोई पुलिस मुखबिर है जो सभी योजना पर पानी फेर सकता है।
7: जनाब, गदर पार्टी वाले बड़ी योजना बना रहे हैं।
8: What is their plan? Tell me.
7: साहब जी, मेरा नाम नहीं आना चाहिए वरना वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। आप गारंटी दें तो मैं बताऊं।
8: Don't test my patience. Just tell their plan.
7: वे सभी 21 फरवरी को बड़ा धमाका करेंगे। छावनियों पर कब्जे की बात कर रहे थे। दिल्ली अंबाला किसी को नहीं छोड़ेंगे।
8: Oh, how dare are they?
0: किरपाल सिंह की मुखबिरी के कारण 19 फरवरी को ही बड़ी संख्या में पार्टी के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने देशी सैनिकों को निहत्था कर दिया। इससे विद्रोह विफल हो गया। क्रांति की विफलता के बाद जो सदस्य गिरफ्तारी से बच गए थे उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला किया।
9: मुझे कहां जाना है सोहन सिंह जी?
3: आप हरनाम सिंह तुंदिलाद, जगत सिंह और कुछ अन्य साथी अफगानिस्तान जाएंगे। ईश्वर सिंह चीन जाएंगे।
0: सोहन सिंह ने तो फैसला सुना दिया था, लेकिन करतार सिंह के मन में कुछ और ही चल रहा था। 2 मार्च 1915 को वो दो दोस्तों के साथ वापस आए और सरगोधा के चक नंबर 5 में चले गए, जहां एक सैन्य अड्डा था। वहां उन्होंने सेना के जवानों के बीच विद्रोह का प्रचार करना शुरू कर दिया। लेकिन इसकी भनक रिसालदार गंडा सिंह को मिल गई और उन्होंने करतार, हरनाम सिंह तुंदिलात और जगत सिंह को लायलपुर जिले के चक नंबर 5 से गिरफ्तार करवा दिया। गदर पार्टी में खलबली मच गई।
1: आगे क्या हुआ दीदी? गिरफ्तारी के बाद करतार सिंह और उनके साथियों के साथ क्या हुआ?
2: बन्नो, तुम क्यों घबरा रही हो? क्रांतिकारी सदा अपनी जान हथेली पर लेकर चला करते हैं। उन सभी पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ षड्यंत्र रचने का गंभीर आरोप लगा था, लिहाजा सजा भी बड़ी होनी थी।
1: क्या सजा मिली दीदी?
2: फांसी।
1: ओह, ये तो बहुत दुखद हुआ।
2: हाँ, लेकिन सच यही है।
1: किसी ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की?
0: ब्रिटिश पुलिस ने करतार सिंह और उनके साथियों पर जो षड्यंत्र के आरोप लगाए थे उसे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने तर्क दिया था कि ये सिर्फ विदेशी हुक्मरानों को एक खुली चुनौती थी, जिसे राजद्रोह का नाम दिया जा रहा था।
9: सारे आरोप गलत हैं। मुझे अपने किए पर किसी भी प्रकार का पछतावा नहीं है। ये तो सत्ता हथियाने वालों की महज एक चुनौती थी जिस पर मुझे गर्व है। प्रत्येक दास को विद्रोह करने का अधिकार है। अपने देशवासियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उठ खड़ा होना कभी अपराध नहीं हो सकता।
0: करतार सिंह की अपनी दलील थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार उसे कहां मानने वाली थी। उन्होंने राजद्रोह का मुकदमा चलाया। करतार सिंह भी पीछे हटने वाले नहीं थे।
9: आप अपनी करो, मैं अपनी। सारा दोष मेरा है।
10: I'm really surprised to see this man. He is so fearless.
0: न्यायाधीश इतने कम उम्र के लड़के को इस तरह बेपरवाह व्यवहार करते देखकर चकित थे। करतार की उम्र को देखते हुए उन्होंने उनसे अपना बयान बदलने की सलाह दी। उनसे अपील करने को कहा गया। तब करतार ने पलटवार किया।
9: मैं ऐसा क्यों करूं? अगर मेरे पास एक से अधिक जीवन होते ना, तो अपने देश के लिए उनमें से प्रत्येक का बलिदान करना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान होता।
0: करतार को वापस जेल भेज दिया गया। उन्हें एहसास था कि ब्रिटिश सरकार उन्हें छोड़ेगी नहीं, इसलिए वो अपने साथियों के साथ जेल से भागने की योजना बनाने लगे।
9: सुनो, अगर हमें कुछ औजार मिल जाए ना, तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं।
11: कौन करेगा हमारी मदद?
9: कोई ना कोई देशभक्त तो मिल ही जाएगा, उसे ढूंढो।
11: ठीक है, देखता हूँ।
0: और एक दिन करतार के साथियों को एक मददगार मिल गया, जिसने उन्हें सलाखों को काटने वाला एक औजार उपलब्ध करा दिया। सभी बड़े सावधानी से अपनी योजना को अंजाम देने में लग गए, लेकिन किस्मत ने फिर से धोखा दिया। किसी गद्दार ने जेल अधिकारियों को इसकी खबर दे दी।
12: साहब, करतार और उसके साथी जेल से भागने की योजना बना रहे हैं।
13: तुम पागल हो, इस जेल से कोई भी भाग नहीं सकता।
12: जनाब जनाब, आप उसके सेल में छापा तो डालिए। मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे दो कोड़े लगा देना।
13: ओह यू फूलिश, चलो देखता हूं।
0: जेलर अचानक से करतार सिंह के सेल के पास पहुंचता है और ताला खोलने को कहता है।
13: तुम साहब एक साइड खड़े हो जाओ। सिपाही, तलाशी लो पूरे सेल की।
14: जी जनाब।
12: लगता है किसी ने गद्दारी कर दी है।
14: सर जी, ये देखिए, इस मिट्टी के गड्ढे के नीचे क्या मिला।
13: औजार, चप कर लो सबको और अलग अलग सेल में डाल दो।
0: जेलर करतार को घूरते हुए बाहर निकल जाता है। फिर सुनवाई की तारीख आती है। एक बार फिर से सभी जज के सामने थे।
15: करतार, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है?
12: नहीं जी, जो कहना था मैं कह चुका हूं।
10: Then I must announce the judgment.
15: करतार और उसके साथ षड्यंत्र में शामिल सभी लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है।
0: इस तरह जज ने सजा सुना दी और फिर वो मनहूस तारीख आई, 17 नवंबर 1915, जब करतार सिंह और उनके साथियों को लाहौर के केंद्रीय जेल में फांसी दे दी गई। फांसी के समय करतार की उम्र मुश्किल से 19 वर्ष थी। लेकिन उसका साहस ऐसा था कि कैद के दौरान उसका वजन 14 पाउंड बढ़ गया था।
1: इतनी छोटी उम्र में इतना साहस, वो तो सच में बड़े निडर थे।
2: हाँ बन्नो, करतार सिंह की रगों में देशभक्ति इतनी कूट कूट कर भरी थी कि वो कैसे भी उस पर अपनी जान न्योछावर करने को तैयार रहते थे। जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाती उसे सहर्ष स्वीकार करते थे।
1: देश को तो उन पर नाज है, उनके परिवार वालों को भी बेटे पर फक्र होगा।
2: तुम जानना चाहोगी कि करतार सिंह ने भावी क्रांतिकारियों के सामने कितनी बड़ी मिसाल पेश की? यहां तक कि शहीद भगत सिंह भी उनसे प्रेरित थे। भगत सिंह की गिरफ्तारी पर उनके पास से करतार सिंह सरबा की तस्वीर बरामद हुई थी। वे हमेशा इस तस्वीर को अपनी जेब में रखते थे।
0: यह थी एक महान युवा क्रांतिकारी के शहादत की कहानी। वो क्रांतिकारी जिसका जन्म पंजाब के लुधियाना के समीप सरभा गांव में मंगल सिंह ग्रेवाल और साहिब कौर के घर हुआ था। वो एक जट सिख परिवार से थे। बहुत छोटे थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। दादा ने उनका पालन पोषण किया। गांव में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद करतार सिंह का लुधियाना के मालवा खालसा हाई स्कूल में दाखिला कराया गया। वहाँ 8वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद जुलाई 1912 में उन्हें बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए सैन फ्रांसिस्को भेज दिया गया। हालांकि उनके वहाँ अध्ययन के भिन्न भिन्न प्रमाण हैं। बाबा ज्वाला सिंह के एक ऐतिहासिक नोट में उल्लेख है कि जब वो दिसंबर 1912 में एस्टोरिया ओरेगन गए तो उन्होंने करतार सिंह को एक मिल कारखाने में काम करते हुए पाया। विश्वविद्यालय के पास करतार सिंह के दाखिले का कोई रिकॉर्ड नहीं है। बर्कले में भारतीय छात्रों के नालंदा क्लब के साथ उनके जुड़ाव ने उनकी देशभक्ति की भावनाओं को जगाया। जो भी हो, वंदे मातरम के मूल मंत्र को अपने दिल में बसाए इस वीर क्रांतिकारी ने देश को आजाद कराने का ना सिर्फ सपना देखा बल्कि उसे पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में सुनेंगे एक और वीर क्रांतिकारी के शहादत की कहानी।

0: सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। बढ़ाए प्रकृति की ओर दोस्ती का हाथ, कैसे जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, अगर अपच की समस्या है तो क्या करेंगे, सोचिए जरा। हम तो उपाय देंगे ही, लेकिन आप भी जरा सोचिए। और जी हाँ, आज सिखाने वाली हूँ सलाद, परंतु कौन सा वाला, वो तो आप आशियाना सुनेंगे तभी जान पाएंगे। और स्पोर्ट्स का जीवन में कितना महत्व है, और हमारी बहनों को, बेटियों को खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, इस तरह के हम खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें करेंगे एक विशेष जो एक बिटिया आई है उसके साथ, और आप सभी भी जुड़ेंगे, ठीक है। और आज की पहेली तो बड़ी शानदार है, पहेली पूछने वाली हूँ, ठीक है, जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। तो ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: रन रन रन,
2: दौड़ो दौड़ो दौड़ो।
3: आओ दोस्तों, दौड़ लगाते हैं 9 अगस्त को
2: दादी प्रकाश मणि आबू हाफ मैराथन।
3: जी हाँ, इसका थीम है रन फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड। संडे अगस्त 9 को ये मैराथन शुरू होने वाला है
2: सुबह 5 बजे।
3: तो आप सभी का इस मैराथन में भरपूर स्वागत है, और आप सभी इस मैराथन में भाग लेकर रन फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड को जरूर बढ़ाइए। जी हाँ, इस भाईचारे को दुनिया भर में जरूर फैलाइए। इस मैराथन में भाग लीजिए और खुशियाँ दुनिया भर में बांटिए।
2: दादी प्रकाश मणि आबू हाफ मैराथन।

आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, बढ़ाइए प्रकृति की ओर दोस्ती का हाथ। बढ़ाइए प्रकृति की ओर दोस्ती का हाथ, कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे। इस सृष्टि रंगमंच पर सदियों से पुरुष अर्थात आत्मा प्रकृति का खेल चला आ रहा है। प्रकृति से हमारा तात्पर्य पांच तत्वों जल, वायु, आकाश, अग्नि और धरती से है। अनंत काल से प्रकृति हमारी पालना करती आ रही है, परंतु हमने कभी रुककर मां प्रकृति को धन्यवाद भी नहीं किया है ना। यूं तो भक्ति में हम पांचों तत्व का पूजन वंदन करके मतलब प्रकृति का मान रखते हैं। सदियों से हम इस तरह पूजा और वंदन करते हुए उनका मान रखते आए हैं, परंतु निश्चित प्राकृतिक आपदाओं से आहत होते मनुष्य का मन अब प्रकृति का उतना मान नहीं रख पा रहा है। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, कभी कड़ाके की ठंड में ठिठुरते होठ, कितनी ठंड है कह करके प्रकृति के प्रति असंतुष्टता जताते हैं। कभी तपती धूप में पिघलते हौसले प्रकृति को बदनाम कर जाते। कभी बारिश में हुए कीचड़ से प्रकृति कुरूप नजर आती। मतलब कि चाहे मौसम कोई भी हो, खुले दिल से प्रकृति के प्रति अपनी असंतुष्टता का प्रदर्शन प्रत्येक जन करता ही है। वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति का कोई दोष नहीं है। जैसा मनुष्य होता है वैसे ही उसके आसपास की प्रकृति होती है। प्रत्येक के घर का वातावरण आबोहवा एक दूसरे से भिन्न होती है। मंदिर के पवित्र वातावरण और किसी कत्लखाने के वातावरण में जमीन आसमान का फर्क होता है। है तो वही पांचों तत्व सभी जगह एक ही, फिर भी वहां रहने वाले मनुष्यों के मन का प्रभाव प्रकृति पर पड़ने से ये अंतर दिखाई देता है। जापान के वैज्ञानिक इमोटो ने पानी पर किए गए प्रयोग से ये बात सिद्ध की थी कि किस तरह मानव मन में उत्पन्न विचारों का प्रभाव पानी पर गहरा पड़ता है। ऐसे ही बहुत समय पहले लूथर बर्बेंक नामक वैज्ञानिक ने कैक्टस से बात कर करके एक बिना कांटों वाला कैक्टस उगाया था। इसके अलावा वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि पौधों को यदि हल्का क्लासिकल संगीत सुनाया जाए तो पौधों पर सकारात्मक परिणाम देखने में आते हैं। इन सब बातों से हम ये तो समझ ही रहे हैं कि किस तरह ये प्रकृति मनुष्यों के संकल्पों और क्रियाकलापों से प्रभावित होती है। जिस तरह राजा के महल की वस्तुएं और एक गरीब की झोपड़ी में मौजूद वस्तुओं में फर्क दिखता है ना, ऐसे ही एक सकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति और नकारात्मकता से भरे व्यक्ति के रहने के स्थान का वातावरण अलग अलग महसूस होता है। मेरे प्यारे श्रोताओं, व्यक्ति के निवास स्थान को देखकर उसकी मानसिकता का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। हम जितना जितना स्वयं को सकारात्मक ऊर्जा से भरते जाते उतना उतना हमारे आसपास का वायुमंडल भी शक्तिशाली बनता जाता है। आदिकाल में जब मनुष्य आत्माएं सत्वप्रधान थी तब प्रकृति भी सत्वप्रधान अर्थात सुखदायी थी, तो आज तप प्रधान क्यों बनी है सोचिए। इसलिए प्रकृति की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें प्रकृति के प्रति सकारात्मक रहना है और सकारात्मक वाइब्रेशन हमें फैलाना है। ये हुआ आज का सुंदर सा विचार जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: नमस्कार, मैं हूं सुरेश वाडकर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पे। आप सब मुस्कुराते रहें, आनंद में रहें और गुनगुनाते रहें।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे अपच पर। भाई देखिए, गर्मी के मौसम में अपच की समस्या बढ़ जाती है। अपच या खाना न पचने पर खाद्य प्रणाली के अंगों में दर्द होने लगता है, गैस भरती है जिसमें भारीपन, बेचैनी, जी मिचलाना, बमन वगैरह वगैरह चलता रहता है। अग्निमांद, अपच, अजीर्ण, बदहजमी सभी का अर्थ एक ही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, कि खाने का नहीं पचना, जो भोजन हम कर रहे उसका नहीं पचना। तो बदहजमी में क्या होता है, दस्ते भी लग सकती है या फिर गैस, वमन ये होने की शक्यता रहती है। तो बदहजमी के दस्तों को संग्रणी भी कहते हैं। तो अपच की समस्या है तो बहुत ही सुंदर आपको उपाय दे रही हूँ, इसको आप आजमा करके अपने अपच की समस्या पर निजात पा सकते हैं। देखिए, हींग, छोटी हरड़, सेंधा नमक और अजवाइन सब आप समान मात्रा में लीजिए, ठीक है। और सबको समान मात्रा में लेकर के इसको पीस लेना है, पाउडर बना लेना है। फिर एक चम्मच तीन बार पूरे दिन में गर्म पानी से फाकी लेना है, सुबह, दिन में और रात को। सुबह उठने के बाद एक बार ले लीजिए आप नन्हे कोटे, फिर दिन में ले लीजिए कि भोजन के डेढ़ दो घंटे के बाद, दो घंटे के बाद, फिर आप रात को सोने से पहले ले लीजिए। तो ये जो अपच की समस्या है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। क्या क्या लेनी है फिर से दोहरा रही हूँ। हींग लीजिएगा, छोटी हरड़, सेंधा नमक और अजवाइन समान मात्रा में लेनी है सभी, ठीक है। जैसे एक एक छोटा चम्मच ले रहे तो सभी एक एक छोटा चम्मच लीजिएगा, फिर इन सभी को पीसिएगा, पाउडर बना दीजिएगा और इसके तीन बार फाकी लेनी है दिन में, पूरे दिन में। तो फाकी लेकर के नौ सेका पानी आपको पीना है, इससे अपच की समस्या ठीक हो जाएगी। और भी सुनेंगे आप अगला उपाय। एक चम्मच पीसी हुई अजवाइन और स्वाद के अनुसार सेंधा नमक मिलाइए और भूखे पेट पानी से फाकी लीजिएगा। खाली एक चम्मच पीसी हुई अजवाइन ले लीजिए और उसमें स्वाद के अनुसार सेंधा नमक मिलाइए और भूखे पेट आप वही सुबह सुबह नन्हे कोटे आप इसकी फाकी लेकर के नव सेका पानी आप पी लीजिएगा, इससे भी अपच की समस्या ठीक होगी। अगर ये नहीं कर सकते तो और भी सुनेंगे आप सुंदर सा उपाय, कि 25 नीम की पत्ती, 3 लौंग, 3 काली मिर्च, इन सबको पीस करके थोड़ा पानी और शक्कर मिला करके सुबह शाम रोज आप 3 दिन पीजिए, 3 दिन में ही आपको आराम महसूस होगा। 25 नीम की पत्ती, 3 ले लीजिए लौंग, 3 काली मिर्च, इन सबको पीसिए और इसमें थोड़ा सा शक्कर और पानी मिला करके गट गट गट गट गट पी जाइए, ठीक है। ऐसा आपको 3 दिन तक लगातार करना है, सुबह और शाम, तो अपच की समस्या में राहत मिलेगी। और लास्ट उपाय आपको बता रही हूँ कि खाना नहीं पचता है, बदहजमी हो जाए तो एक दिन केवल पानी पीकर ही रहे, अन्य कुछ भी नहीं खाना है। कब्ज रहे तो फिर आप भोजन के साथ घुट घुट पानी पीते रहिए, ठीक है। सुबह उठते ही एक गिलास पानी पीना जरूरी है। तो अगर संग्रहणी है, बदहजमी है, तो उस दिन आप कुछ मत लीजिए, खाना मत खाइए, पूरे दिन आप ऐसे ही उपवास करिएगा, बीच में घुट घुट पानी पी लीजिएगा, ठीक है। तो आपके वापस हाजमा सिस्टम, मतलब उसका लेवल आ जाएगा, बैलेंस बन जाएगा वापस, ये जो अपच की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। और लास्ट उपाय यही है कि कब्ज रहता है तो भोजन के साथ घुट घुट पानी पीजिए और सुबह उठते ही एक गिलास पानी तो हमेशा पीना ही है। तो ये हुए उपाय आज के सुंदर से नुस्खे। और आइए अब आज के पहेली की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहेली ध्यान से सुनिएगा और सोच समझ करके जवाब दीजिएगा, बहुत ही सरल पहेली है, आराम से आप जवाब दीजिएगा। चार

जाए। चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए, शांत रेवे तो खुद ने निहारू, हलचल में तो मिट जाए। क्या चीज है पहेली? बहुत ही सुंदर और सरल है। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज की पहेली का जवाब दे सकते हो। आइए अब एक गीत सुनने के बाद पुनः हम आशियाना में आगे बढ़ेंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: आप हो रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM होबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो हम व्यंजन तो जरूर सिखाएंगे परंतु क्या बात है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, बहुत ही सरल आपको पहेली पूछी है फिर भी सोचिए कोई बात नहीं, सोचने का अवसर तो मिलना ही चाहिए, समय तो आपको मिलना ही चाहिए और आप सोच करके जवाब जरूर दीजिएगा। आज की पहेली फिर से दोहरा रही हूँ। चार

फट जाए। चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए, शांत रहे तो खुद ने निहारूं, हलचल में मिट जाए। बहुत ही सरल है, जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही आवश्यकता है। ये चीज नहीं है तो जीवन नहीं है। अब आप सोचिए, मैंने बहुत ही अच्छा हिंट दे दिया आपको, ठीक है? अब तो आपके लिए सरल हो चुकी है पहेली, तो जवाब जरूर दीजिएगा। रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15। और अब पधारिए आशियाना के किचन में, आज बना देते हैं सलाद। परंतु कौन सा वाला? केरी और दाल का। वैसे तो सलाद हर मौसम में खाना चाहिए, लेकिन गर्मी के मौसम में तो ऐसी चीजें खाने की ज्यादा इच्छा होती है ना? रोटी के ऐसा लगता है रोटी बहुत कम खाए, कुछ फल फ्रूट, जैसे फल फ्रूट में भी पानी वाले फल फ्रूट, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, अंगूर है, आम, तो भाई वैसे ही गर्मी का सीजन का राजा ही है ये तो, सब फलों का। तो इस तरह की चीजें खाने की ज्यादा इच्छा रहती है। तो सामग्री आप लेंगे, पेन और डायरी तैयार है ना? बिल्कुल लिख लीजिएगा। चने की दाल 1 कप, कच्ची केरी आप लीजिएगा 1/2 कप, मतलब कद्दूकस किया हुआ, ठीक है? और तेल ले लीजिए 2 बड़े चम्मच, कड़ी पत्ता लीजिए 5-6, नमक और चीनी अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। फिर आप लीजिएगा हल्दी पाउडर भी अपने टेस्ट के हिसाब से। हरी मिर्च का पेस्ट लेना है आपको 1 छोटा चम्मच, और राई, हींग, जीरा तड़का के लिए ले लीजिए थोड़ा थोड़ा सा। हरा धनिया अपने स्वाद के अनुसार, मतलब आवश्यकता के अनुसार लीजिए, और जीरा पाउडर लेना है 1 छोटा चम्मच। तो ये सलाद की सामग्री हो चुकी है, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ। देखिए, सलाद भी बहुत तरीके से बनाया जाता है। वैसे आप कच्चा भी मिक्स करके खा सकते हैं, लेकिन दाल के साथ आप कैसे खाएंगे? तो आपको एक अलग ही प्रकार का सलाद सिखा रही हूँ। चने की दाल 1 कप, कच्ची केरी कद्दूकस की हुई 1/2 कप ले लीजिए, 2 बड़े चम्मच क्या लेना है? तेल, 5-6 लीजिएगा कड़ी पत्ते, नमक, हल्दी पाउडर, चीनी, ये सब अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। फिर हरी मिर्च की पेस्ट लेनी है 1 छोटा चम्मच, राई, हींग, जीरा तड़का लगाने के लिए लेना है थोड़ा थोड़ा सा आवश्यकता के अनुसार। हरा धनिया भी अपने आवश्यकता के अनुसार लीजिएगा, और जीरा पाउडर लेना है 1 छोटा चम्मच। आइए अब केरी और दाल का सलाद कैसे बनाएंगे, विधि आपको बता रही हूँ। चने की दाल को 3-4 घंटे के लिए आप पानी में भिगो दीजिए, ठीक है? फिर पानी निकाल करके बिना पानी दरदरा पीस लीजिए। तेल में राई, जीरा और थोड़ी सी हींग डाल करके तड़का लगाइए। अब इसमें पीसी हुई हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डालकर थोड़ा सा इसको फ्राई करिए। इस तड़के में हल्दी डाल करके तुरंत दाल में डाल दीजिए। अब दाल में बाकी सभी सलाद की सामग्रियां डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और गैस तुरंत बंद कर दीजिए। ठंडा होने पर सलाद सर्व करिए, पिरसिए। तो ये बन गए केरी दाल का सलाद। फिर से दोहरा रही हूँ विधि। देखिए, इसको भी आप 2-3 तरीके से बना सकते हैं। एक बार तो विधि यही दोहराऊंगी, फिर इसकी दूसरी विधि भी आपको बताऊंगी। आप क्या करेंगे, चने की दाल जो हमने ली है ना, इसका 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए। फिर पानी निकाल दीजिए 4 घंटे के बाद, और इसको दरदरा ऐसे ही पीसिए, पानी नहीं रखना है, ठीक है? फिर आप तेल रखिए कढ़ाई में, और तेल गर्म हो जाए तो इसमें राई जीरे का तड़का लगाइए, थोड़ी सी हींग भी डाल दीजिए, और तड़का लगाना है। अब इसमें पीसी हुई हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डालकर थोड़ा सा इसको फ्राई करिए। इस तड़के में हल्दी डाल करके तुरंत दाल डाल दीजिए, ठीक है? अब दाल में बाकी सभी सलाद की सामग्रियां डाल करके अच्छी तरह से मिला लीजिए और गैस बंद कर दीजिए। ठंडा होने पर आप सलाद पिरस सकते हैं। एक तो ये तरीका। दूसरा ये है कि आप चने की दाल को 4 घंटा के लिए पानी में तो आपको भिगोना ही है, ठीक है? तो फिर आप दाल की मात्रा थोड़ी सी कम कर लीजिए, और भिगो दिया 4-5 घंटे के बाद पानी निकाल दीजिए, और इसी दाल में आप कैरी कद्दूकस करके डालिएगा। फिर इसी में आप स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए, हरा धनिया डाल दीजिए, जीरा पाउडर डालना है, और काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा, ठीक है? तो ये सब डाल करके आप कच्चा ही खाइएगा तो भी स्वादिष्ट लगेगा, ठीक है? अब आपको जिस तरह खाना हो खाइए, मैंने आपको विधि बता दी है। भले आप इस तरह छोक लगा कर खाइए, भले आप कच्चा खाइए। तो ये बन गया केरी दाल का सलाद। अब मैं आपको एक और सलाद सिखाऊंगी, परंतु कौन सा वाला, वो तो आप ब्रेक के बाद ही जान पाएंगे।
तो आज की पहेली फिर से दोहरा रही हूँ। चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए, शांत रेवे तो खुद ने निहारू हलचल में मिट जाए। अब ये पहेली का जवाब आपको देना है। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज की पहेली का जवाब दे सकते हो। अब हम सुनेंगे यहीं पर एक प्यारा सा गीत, उसके बाद पुनः आपसे मिलेंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

हो रेडियो मधुबन। आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बना रहे थे कैरी और दाल का सलाद। ठीक है, अब मैं दूसरा भी आपको सलाद ही सिखा रही हूँ, क्योंकि भाई सलाद का नंबर लिया है तो मैं आपको पूरा ही सिखा देती हूँ। इच्छा हो ऐसा सलाद बना करके खाइएगा, लेकिन गर्मी का मौसम है, अपना ध्यान रखिएगा और इस तरह पानी वाली चीज़ें ज़्यादा खाइएगा। सलाद में जो हम चीज़ें डालते हैं उसमें भी पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे खीरा ककड़ी है, हरा धनिया है, पालक है, ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। तो मैं आपको मिक्स सब्जी का सलाद अब सिखाने जा रही हूँ, परंतु आप जानते हो परंतु मैंने क्यों बोला है, पहली फिर से सुना रही हूँ इसलिए बोला है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा कि पहली क्या है। चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए, शांत रेवे तो खुद ने निहारू, हलचल में मिट जाए। अब ऐसी कौन सी चीज है जो हलचल होते ही फिर हम स्वयं के फोटो को नहीं देख सकते, स्वयं के चेहरे को, स्वयं को नहीं निहार सकते, बाकी आराम से हम निहार सकते हैं। अब मैंने इतना हिंट दे दिया हो, अब इससे ज्यादा नहीं दे सकती मैं। अब आप सोचिए कि इसका जवाब क्या होगा। और अब मिक्स सब्जी का आपको सलाद सिखा रही हूँ, इसके लिए आप सामग्री लीजिएगा। पत्ता गोभी बारीक कटी हुई, ठीक है, 1 कप ले लीजिए, भले आप कद्दूकस करके 1 कप ले लीजिएगा। पालक ले लीजिए बारीक कटा हुआ 1/2 कप। ककड़ी एक छोटी लेनी है आपको, ठीक है। टमाटर 1 लेना है। अंकुरित मूंग 1/2 कप ले लीजिए। नींबू का रस 1/2 छोटा चम्मच लेना है। चीनी अगर पसंद है तो लीजिएगा, स्वाद के अनुसार नहीं हो तो कोई बात नहीं, मत लीजिएगा। फिर आप लीजिएगा नमक अपने स्वाद के अनुसार, काली मिर्च पाउडर भी अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा, और नारियल कसा हुआ लीजिएगा 2 छोटा चम्मच। यही सामग्री है जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पत्ता गोभी कद्दूकस की हुई लीजिएगा 1 कप। फिर पालक ले लीजिएगा, मतलब ये सब धुलाई करके ही आपको लेना है, ठीक है। पालक लीजिएगा बारीक कटा हुआ 1/2 कप। ककड़ी 1 लेनी है, उसके भी गोल स्लाइस कर लीजिएगा, छोटी वाली ककड़ी। फिर टमाटर भी 1 लेना है, इसको भी आप बारीक उतर लीजिएगा, और ककड़ी का भी आप स्लाइस मत करिए, इसको भी कुतरिएगा, क्योंकि हम स्लाइस वाला सलाद नहीं बना रहे हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा अंकुरित मूंग ले लीजिएगा। नमक काली मिर्च पाउडर अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। नींबू का रस 1/2 छोटा चम्मच लेना है, और नारियल कद्दूकस किया हुआ 2 छोटे चम्मच लीजिएगा। अब मैं आपको मिक्स सब्जियों का सलाद कैसे बनाया जाता है सिखा रही हूँ। सामग्री सारी इकट्ठी कर ली, अब इन सभी सामग्री और अंकुरित मूंग को सभी को मिक्स कर देना है, और एक जार में डाल करके अच्छी तरह इसको मिला लेना है। इसके बाद नींबू का रस, चीनी, काली मिर्च पाउडर और नमक मिला दीजिए। इसमें नारियल मिला करके सब मिक्स करके आप पिरसिए, ठीक है। तो ये बन गया, इसको हम एनर्जी सलाद भी कह सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें एनर्जी की है, तो एनर्जी से भरी हुई। तो क्या करेंगे, जो भी हमने सलाद किया, जो सब्जियां सवार के रख रखी है, जैसे कि पत्ता गोभी, ककड़ी, पालक, टमाटर, ये सब आप मिक्स कर दीजिएगा, ठीक है। और इसमें ही आप मूंग भी, जो अंकुरित मूंग लिए हैं, इनको भी मिक्स कर दीजिएगा, और स्वाद के अनुसार नमक और काली मिर्च भी डाल दीजिएगा, और नींबू का रस भी निचोड़ करके सबको मिक्स कर दीजिए, ठीक है। और फिर आप जब प्लेट में रखते हैं ना सलाद, तब ये कद्दूकस किया हुआ नारियल ऊपर से डालिएगा, तो एक डेकोरेट लगेगा और सलाद को देखते ही इच्छा होगी कि अरे भाई ये स्पेशल सलाद है, ये तो मैं जरूर खाऊंगी, ऐसी इच्छा हो जाएगी। तो भोजन के पहले एक प्लेट सलाद खा करके फिर आप भोजन करें, ताकि क्या है कि रोटी कम खाएंगे और ये सब्जियां ज्यादा खाएंगे तो एनर्जी बनी रहेगी। आप सुबह भी खा सकते हैं, जैसे नाश्ता नहीं करके सलाद खा सकते हो। अब आपकी इच्छा पर छोड़ा कि आप कब खाते हो, ठीक है। तो आइए, दोनों ही प्रकार के सलाद बन चुके हैं, लीजिए एक स्वच्छ थाली, थाली में आप 2 प्लेट में दोनों ही सलाद रखिए। फिर जो भी सब्जी चपाती जो भी बनाई है वो भी रखिएगा,
तुलसी पत्र और जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए। ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद अब आप पूरे परिवार सहित, बच्चों सहित, मेहमानों सहित आनंद लीजिएगा। कौन कौन से सलाद का? केरी और दाल का और मिक्स सब्जी वाला, दोनों ही सलाद का आनंद लीजिए। और फिर आज की पहेली की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। चार

0: तो ऐसी क्या चीज है जो शांत रहने पर हम आराम से निहार सकते हैं स्वयं को उसमें, और जब हलचल होती है तो मिट जाता है सब कुछ। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज की पहेली का जवाब दे सकते हो। आप सुनेंगे गीत, उसके बाद पुनः हम आपसे रूबरू होंगे, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।
1: नमस्ते, मैं हूँ आरजे केवल। दादी प्रकाश मणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाए। याद रखे 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रुक, ओए रुक, ओए रुक, हेलमेट कहाँ है तुम्हारा?
1: सर वो सर सर
0: ओए क्या सर सर करके सरसरा रहा है भाई? आए ओए तुम्हारे सर के लिए ही बोल रहा हूँ।
2: ओए चेहरे से तो समझदार लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो, ओए इतनी धूप है धूल है वो कम से कम अपने चेहरे का ही ख्याल रख लो। ये चमकते हीरे जैसा चेहरा कहीं जीरे जैसा नहीं हो जाए।
1: सर आगे से ध्यान रखूंगा।
2: आगे से तो नहीं, मुझे तो तुम पीछे से निकलने वाले लगते हो हैं?
0: पर मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार। सड़क पहले वो सामने की दुकान से लो हेलमेट फिर गाड़ी।
3: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
4: छोटी सी मुसीबत से जो घबरा जाए वो अनाड़ी होता है। छोटी सी मुसीबत से जो घबरा जाए वो अनाड़ी होता है। हार को भी सामने देखकर जो लड़ जाए वो खिलाड़ी होता है। हार को भी सामने देखकर जो लड़ जाए वो खिलाड़ी होता है। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में अब हम खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि स्पोर्ट्स का हमारे जीवन में कितना महत्व है और विशेष करके स्पोर्ट्स पर बहनों पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगा दिया जाता है, खुल करके बहनें सामने नहीं आ पाती है, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। हमारे सामने बैठी है सेजल। सेजल गोस्वामी आबूरोड की रहने वाली है और 10th क्लास अभी एग्जाम दिया है 10th का और 11th में आई है। तो सेजल को स्पोर्ट्स का बहुत ही शौक है, तो सेजल से तो बातचीत करेंगे ही, लेकिन आप भी जरूर जुड़िएगा। आपको तो आप जानते ही हो कि भाई खुशनुमा जीवन में आपका खुलकर स्वागत है और आज की पहली भी बहुत ही सुंदर है जिसको दोहरा रही हूँ। बीच में भी आप फोन कॉल्स करके पहली का जवाब दे सकते हो। चार खुणारी बावड़ी भरी ही लोरा खाए, शांत रहे तो खुद को निहारू हलचल में मिट जाए। ऐसी कौन सी चीज है जो शांत रहने पर स्वयं को देख सकते और हलचल में ये मिट जाती है? जवाब देने के लिए और खुशनुमा जीवन में जुड़ने के लिए नंबर हमारे हैं 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और खुशनुमा जीवन में भी आप अपने बात रख सकते हो, प्रश्न का इस पहेली का जवाब भी दे सकते हो। आइए सेजल से मिलते हैं। सेजल आपका स्वागत है रेडियो मधुबन में। सेजल आपको स्पोर्ट्स का बहुत ही शौक है, आप कौन कौन से स्पोर्ट्स खेलती है?
5: जैसे कि रनिंग है, कबड्डी है, मतलब और भी कई खेल है।
4: जी जी, हमारे श्रोता बंधु भी जुड़ चुके हैं। हेलो
6: हेलो।
4: हाँ जी नमस्ते कमलेश बहन।
6: हाँ नमस्कार जी, थोड़ा कसरत की है
4: जी
6: खेलने के लिए, तो उसमें मेरे को समझ में आ रहा है थोड़ा कि भाई समुन्दर समुन्दर ही होता है।
4: अच्छा।
6: तो बहुत ज्यादा आवाज आती है, शांति से देखे तो मजा आता है।
4: अच्छा
6: हेलो।
4: हाँ जी हाँ जी सुन रही हूँ मैं।
6: हाँ जी।
4: अच्छा
6: आज का मेले का उत्तर है मैडम जी समुन्दर।
4: अच्छा ठीक है,
6: क्योंकि और... उनको देखने के लिए अपन शांति से देख सकते
4: हैं।
6: हलचल रहती है, आवाज होती है पानी की बहुत, तो शांति से देखे तो उसमें निहारने में मजा आता है।
4: अच्छा
6: ठीक है मैडम।
4: और कमलेश बहन आप जुड़ ही चुके हैं रेडियो मधुबन से, तो स्पोर्ट्स के बारे में बताएंगे, आपको स्पोर्ट्स का शौक है?
6: इसका मैडम जी
4: आपने कभी कभी स्कूल में आपने जैसे कि अपने कंपटीशन होता है ना 100 मीटर की दौड़,
6: हाँ जी
4: 500 मीटर की दौड़, दो टांग रेस, फिर कभी कबड्डी खो खो, इस तरह के गेम आपने खेले?
6: हाँ जी मैडम जी खेले थे।
4: तो आपको कैसा लगता है इस तरह के गेम खेलना?
6: बहुत मजा आता है, आनंद आता है बहुत, इससे बहुत एक्सपीरियंस, शरीर भी अच्छा रहता है।
4: जी जी जी
6: बहुत तो, मजा आता है
4: जी। तो ये कम हमारी बहनें थोड़ा कम खेलती है, आप क्या कहना चाहेंगे?
6: ये तो मैडम सबको खेलना चाहिए, ये तो अपने शरीर के लिए अच्छा रहता है, ये भी एक योगा है।
4: बहुत सुंदर, परंतु है ना जो माता पिता ज्यादा परमिशन नहीं देते बच्चों को, वो माता पिता की नजर में क्या होता है, अरे उछल कूद नहीं करना है, शांति से रहना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है, आप क्या कहेंगे?
6: नहीं मैडम जी, पढ़ाई की जगह पढ़ाई, ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, पढ़ाई जैसा ही है।
4: बहुत ही अच्छी बात है कि ये भी पढ़ाई अपनी जगह है और गेम्स अपनी जगह है।
6: हाँ सही बात है मैडम जी,
4: जी
6: ये भी जीवन में बहुत जरूरी है।
4: बहुत सुंदर। तो ठीक है कमलेश बहन, और भी आप कुछ कहना चाहेंगे? कभी आप किस में भाग लेते थे, कौन से गेम आप खेलते थे?
6: मैं तो मैडम जी बास्केटबॉल में खेलती थी, खो खो में खेलती थी।
4: क्या बात है।
6: कबड्डी कबड्डी सब में भाग लेती थी, जीतती थी मैं तो हर बार।
4: अरे वाह, तभी आप फिट एंड फाइन है।
6: घर वाले घर नहीं परमिशन नहीं देता, साथ ही तक ही पढ़ी, ज्यादा नहीं पढ़ी
4: जी,
6: पर जब तक पढ़ी तब तक मजे लिए हमने खूब।
4: बहुत अच्छी बात है, खुलकर जीवन जीना चाहिए। और स्टूडेंट लाइफ तो बात ही क्या कहना है, गोल्डन लाइफ है।
6: तो वो तो मिसने तो किसी को मानती नहीं थी, खेलने के लिए भागती थी।
4: बहुत
6: और शौक नहीं था मैडम जी, और कोई शौक नहीं था मुझे, एक तो खाना बनाना, नई नई चीजें सीखना
4: जी,
6: और ये खेलना कूदना, गाने गाना।
4: बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। तो ये भी किसी से कम नहीं है, आप वैरायटी खाना बनाकर परिवार वालों को खिलाओ, वैसे ही वो खुश रहेंगे कि अरे वाह क्या भोजन मिला है। इंसान काम करता है 24 घंटे, लेकिन खाना अच्छा मिल जाता है तो सारा टेंशन खत्म हो जाता है,
6: सब खत्म हो जाता है, शांति हो जाती है, आत्मा को तृप्ति हो जाती है।
4: जी जी जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश मैन, बहुत सुंदर आपने बात की है।
6: थैंक यू
4: जी। तो सेजल आप क्या कहेंगे गेम्स के बारे में, जैसे आपको रुचि है, आप टूर्नामेंट में भी जाते हैं?
5: एक बार गए थे।
4: अच्छा, फिर क्या रिजल्ट रहा?
5: मतलब आगे जाने, मतलब फर्स्ट आए थे।
4: फर्स्ट आए, कौन सी क्लास में आप गए थे टूर्नामेंट में?
5: छोटे ही थे उस समय तो, मतलब होंगे 6th 7th में।
4: अच्छा, और कौन सा गेम खेला था आपने?
5: बैडमिंटन में।
4: अच्छा, अरे वाह, कौन से गांव आप गए थे टूर्नामेंट में?
5: अनादरा।
4: अनादरा, और वहां से जीत के आए। उसके बाद कभी जाना नहीं हुआ?
5: उसके बाद स्कूल की तरफ से कभी लेके तो गए नहीं।
4: हेलो
7: हेलो, हाँ नमस्कार दीदी, मैं सुरेश भाई दानेरा।
4: हाँ जी नमस्कार सुरेश भाई, कैसे हो आप?
7: बस अच्छे हैं, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं।
4: जी जी जी, सेजल हम आपसे बात जरूर करेंगे, हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं तो इनसे बात करेंगे। अच्छा सुरेश भाई, स्पोर्ट्स के बारे में आप क्या कहेंगे?
7: बस जीवन जी। में दीदी, इंसान के लिए, खास करके यंग इंसान के लिए स्पोर्ट का बहुत महत्व है, चाहे कुछ भी स्पोर्ट खेले। और अभी जो आपने बात भी बताई कि लड़कियां जो बहुत, अब तो ऐसा हो रहा है कि लड़कियां भी आगे आ रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन गांव में अभी भी बहुत कम, जैसे ही बड़ी होती है तो शादी कर दी जाती है, और गांव की ये चीजें रीति रिवाज है। और मैं पहले की बात बताऊं तो लड़कियां लगभग 5 साल से ऐसी खेल खेलते, जो 5 पत्थर के लेते, वो नाम भी पता नहीं, वो
4: सितोलिया,
7: किसी को भी
4: सितोलिया,
7: अरे हाँ वही नहीं जीतने देती, या रस्सी कूद में, ऐसे बहुत सी ऐसे खेल है, वो बचपन में बहुत हमने भी खेले हैं।
4: जी क्या बात तो, है। जी
7: जी, तो सभी को, माँ बाप को बस ये समझ लेना चाहिए कि किसी भी लड़की को अगर स्पोर्ट में, किसी भी स्पोर्ट में रुचि है तो जरूर आगे बढ़ाने की कोशिश करे, वहीं पर रोक दिया ना जाए, तो बस मैं यही कहना चाहूंगा।
4: जी जी, बहुत सुंदर बात आपने कही है।
7: और जी, और जो आपकी पहेली है थोड़ी सी कठिन है, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ तो मेरे हिसाब से आईना होना चाहिए, आईना।
4: अच्छा,
7: तो काट बोलते हैं हम। हाँ
4: ठीक है, तो आप कार्यक्रम सुनिएगा, आपके प्रश्न का जवाब जरूर हम देंगे, पहले का जवाब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए बहुत ही सुंदर बातें हो रही हैं। तो सेजल आपकी ओर बढ़ते हैं हम फिर से, आपने बताया कि आप बैडमिंटन खेलते हैं, और किस किस में रुचि है, और क्या आप ही खेलते हो या आपके क्लास के लगभग सभी बच्चियाँ खेलती है?
5: सारी बच्चियाँ खेलती है।
4: अच्छा, तो जैसे आप एक बार टूर्नामेंट में गए, दूसरी बार नहीं गए फिर?
5: दूसरी बार स्कूल की तरफ से लेके नहीं गए कभी।
4: अच्छा, जीत करके आए फिर भी?
5: जीत करके आए, फिर स्कूल वालों ने नाम तो लिखवाए थे, पर कोरोना आ गया था बीच में, इसलिए वो मना हो गया।
4: अच्छा, तो अब कोरोना तो हट गया है, अब फिर से आप बच्चियां मिल करके सर से बात कर सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं?
5: बीच में हुआ था तो, मतलब बॉयज का था आपके भाई, गर्ल्स का नहीं था।
4: अच्छा जी जी जी, तो बहुत सारे देखते हैं हम गांवों में क्या है, माता पिता, जैसे सुरेश भाई भी बता रहे थे कि गांवों में माता पिता थोड़ा अलाउ नहीं करते बच्चियों का, बच्चों को तो परमिशन दे देते लेकिन बेटियों को परमिशन नहीं देते, क्या कारण है?
5: उनके तरफ से रीति रिवाज होगा शायद कोई कि मना करना, पर मना नहीं करना चाहिए, इस पे उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए।
4: जी जी,
5: गांव की हो या शहर की हो, कोई ना कोई खेल खेलने देना चाहिए।
4: जी जी, तो सेजल आपको तो घर से मना नहीं करते हैं?
5: नहीं, मुझे पूरी छूट है।
4: चलिए अच्छी बात है, तो यहीं पर अब हम एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौट रहे हैं। आप जो भी जुड़ना चाहते हैं, खुशनुमा जीवन में अपनी बात रखना चाहते हैं, जिसको भी स्पोर्ट्स का शौक है, जो खेलते हैं वो भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। हमारे श्रोता बंधु का जाते जाते फोन उठा देते हैं। हेलो।
8: हेलो, ओम शांति।
4: हाँ जी नमस्ते, ओम शांति मंजू जी, कैसे हो आप?
8: बस बढ़िया है।
4: बहुत अच्छी बात है, हमेशा खुश
8: रहिए। बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है।
4: जी जी, आप भी कुछ कहेंगे स्पोर्ट्स के बारे में? आपको शौक रहा है, कभी आपने भी गेम्स खेले?
8: बिल्कुल, इतने मतलब खेलते थे, खेल बैठे घर पे, अंदर बाहर मैदान में, अब तो याद ही नहीं है। मतलब हर प्रकार के जो गेम होते थे सब खेले थे बच्चे थे तब।
4: जी जी जी।
8: और मेरे को कैरम खेलना बहुत अच्छा लगता था, हम स्टूडेंट लाइफ में टीचर के साथ भी खेलते थे, फिर घर पे छुट्टियां होती थी तब भी खेलते थे, और भैया वगैरह ये क्रिकेट खेलते थे तो कभी कभी हमें भी बॉल फेंकने का मौका मिलता।
4: अच्छा, बॉलिंग करते थे आप?
8: दोनों ही,
4: बैटिंग और बॉलिंग।
8: हाँ, बहुत अच्छा लगता था।
4: जी,
8: उनको
4: जी,
8: भी
4: जी।
8: अच्छा लगता था, हमको भी। लेकिन आजकल है ना, लड़कियां बहुत आगे बढ़ गई है खेल, मतलब खेल के मैदान में हर जगह अव्वल रहती है लड़कियां, और खेलना भी चाहिए। हमारा मानसिक और शारीरिक विकास ये मतलब खेल से बहुत ज्यादा बढ़ता है, और खुद में आत्मविश्वास बढ़ता है, और दिमाग के घोड़े तो ये खेल में ही दौड़ते हैं।
4: जी
8: बिल्कुल, इतना मतलब हर खेल में दिमाग का ही उपयोग होता है सबसे ज्यादा तो।
4: जी,
8: और दिमाग के साथ साथ अपनी बॉडी भी मजबूत रहती है।
4: बहुत सुंदर। तो मंजू जी, गांवों में अभी भी माता पिता थोड़े बेटियों को परमिशन नहीं देते हैं, आप क्या कहेंगे?
8: देते भी है, कम लोग हैं जो नहीं देते हैं। आजकल तो मतलब ऐसा कोई परिवार भी नहीं है हमारे आसपास देखें तो लड़की स्कूल पढ़ाई नहीं कर रही है या किसी खेल में भाग नहीं ले रही है, सांस्कृतिक प्रोग्राम हो या खेल कूद का हो, हर प्रकार के प्रोग्राम में उठ जाती भी है और अव्वल भी रहती है, कबड्डी तक ऐसे खेल, खो खो है।
4: जी चलिए, बहुत अच्छी बात है, गेम्स में आगे बढ़ना ही चाहिए, रहना ही चाहिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, परमिशन हाँ, सभी को
8: मतलब
4: मिलनी चाहिए।
8: दस साल में तो बहुत परिवर्तन हो गया।
4: जी जी जी जी। और आज के पहेली का जवाब देंगे?
8: पहेली का जवाब पानी हो सकता है मैडम जी, और क्या।
4: अच्छा तो ठीक है, आप कार्यक्रम सुनिएगा, हम आपके जवाब जरूर सुनाएंगे।
8: बावड़ी तो आपने बोल दिया, पानी है।
4: ठीक है, तो देखते हैं आपका जवाब सही है गलत है, वो आप सुनिएगा कार्यक्रम। ठीक है,
8: कोई बात नहीं, ये भी एक दिमाग की प्रैक्टिस है।
4: जी शुक्रिया,
8: धन्यवाद।
4: हाँ जी, तो आइए यहीं पर हम भी एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो

0: चलती हवा के कान में जलते हुए दीपक ने ये बात कही। चलती हवा के कान में जलते हुए दीपक ने ये बात कही, मेरे हौसले के आगे तेरी कुछ भी औकात नहीं, मेरे हौसले के आगे तेरी कुछ भी औकात नहीं। हेलो
1: हेलो शमन जी।
0: हाँ जी नमस्कार कंचन भाई, कैसे हो आप?
1: बस नमस्कार नमस्कार बहन जी, दुकान पे एक काम करते हैं
0: जी, जी
1: लड़का खेती का काम पूरा हो गया, उस लड़का काम करना पड़ेगा क्योंकि आस पास आदिवासी भाइयों का जो लग्न की चीजें देने पड़ेगी, तो सुबह शाम काम चलता है, दोपहर तो गर्मी बहुत पड़ती है
0: जी,
1: तो रेस्ट भी करना
0: जी जी बिल्कुल, और सुबह सुबह हो जाता है वो हो जाता है, फिर गर्मी तो है ही है।
1: हाँ सुबह में उसके बैठ जाना पड़ता है ना, उसके पूजा पाठ करके आ जाते हैं दुकान पे।
0: जी जी जी, तो कंचन भाई स्पोर्ट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप भी कभी खेल कूद किया करते थे?
1: हाँ जी बहन जी, स्पोर्ट्स की बात चल रही है तो देखो हमारे यहाँ स्कूल थी तो व्यायाम का पीरियड रहता, व्यायाम पहले तो क्या था, टीचर किए हुए व्यायाम टीचर्स होते थे
0: जी,
1: तो 4 से 5 बजे एक घंटे हमें मैदान में ले जाते थे और कबड्डी है, खो खो है, ऊंची कूद है, ये सब हमें करवाते थे
0: जी,
1: ठीक है, तो जी। हम भी भाग लेते थे और हमारे यहाँ आस पास आदिवासी एरिया है तो बहनों ज्यादा करके कई जिला पहुंचे थे, जब पढ़ते थे बाला बैग बच्ची बैग ये सब बहने भी और धनुष सिर काम था
0: जी,
1: ऐसा ये भी मैंने भाग लेती थी, अब तो ये बंद हो गया है बहन जी, ये सब है ना व्यायाम का कोई ये ही बंद हो गया पीरियड, और कोई शिक्षक भी नहीं है, कोई टीचर भी नहीं है,
0: तो समय के साथ विकास होना चाहिए उसकी जगह बंद हो गया।
1: हाँ बंद हो गया, और जिसने देखो सीपीएड बीपीएड ये सब किया है ना जिसने
0: जी,
1: वो अभी घर पे बैठे हैं, वो भर्ती या होती ही नहीं,
0: अच्छा
1: क्या करे यार।
0: जी जी जी जी,
1: तो वहाँ से शुरू होता था हमारे हमारी बात करे तो, ये तो सब अब तो टेक्नोलॉजी और इंटरनेट और ये सब कंप्यूटर ये सब आ गया है तो छूट गया है इस।
0: जी जी जी, और कंचन भाई आज की पहेली का जवाब देंगे?
1: पहेली क्या है
0: जी? पहेली है, चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए, शांत रहे तो खुद को निहारू हलचल में मिट जाए। कोई बात नहीं, सोचिएगा जी, आप सोच के फिर से आप जवाब दे सकते हो, ठीक है?
1: हाँ जी
0: हाँ जी, शुक्रिया। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, सेजल हमारे साथ बैठे हुए हैं। सेजल आपके यहाँ पर जैसे आपने कहा कि बाहर ले जाना बंद कर दिया कोरोना के बाद, है ना, टूर्नामेंट्स में अभी तक नहीं हुआ है लड़कियों के। अच्छा, तो आपके स्कूल में होते हैं?
2: हाँ।
0: अच्छा, और ग्रुप वाइज होते हैं या क्लासेस टूर्नामेंट होते हैं, किस तरह के होते हैं?
2: ग्रुप वाइज होते हैं।
0: ग्रुप वाइज होते हैं, तो उसमें आप भाग लेते हैं?
2: हाँ।
0: अच्छा, कितने गेम्स आप खेल सकते हैं?
2: बैडमिंटन, बहुत तरह के गेम्स खेल सकते हैं।
0: नहीं, जैसे एक स्टूडेंट को कितने गेम्स खेलने की छूट है टूर्नामेंट में, कंपटीशन में?
2: तीन
0: तीन गेम्स, तो आप कौन कौन

0: से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और हमारे अंदर एनर्जी भी बनी रहती है। मोटे लोग भी गेम खेलते हैं
1: जी,
0: तो जिनकी वजह से उनके जो बॉडी है ना वो फिट रहती है।
1: जी, बहुत सुंदर बात कही सैजल कि गेम्स के बहुत सारे फायदे हैं, एनर्जी रहती है, शरीर स्वस्थ रहता है। जो मोटे लोग हैं ना वो भी गेम्स अगर खेलते हैं तो उनका भी मोटापा कंट्रोल में आ जाता है, फिट एंड फाइन हो जाते हैं और एनर्जी और एक्टिवनेस बढ़ती है, तो बहुत ही अच्छा है। और आप पढ़ाई के बारे में थोड़ा बताएंगे कि आप पढ़ाई में कैसे हैं?
0: पढ़ाई में मीडियम है।
1: अच्छा, तो आगे कोई लक्ष्य बनाया आपने?
0: हाँ, ब्यूटिशियन का है।
1: अच्छा, क्यों गेम्स में आपको रुचि और ब्यूटिशियन बनना, दोनों ही अलग अलग हो गई फील्ड?
0: गेम्स में है पर गेम्स में जाते हैं ना आगे, कभी कभार खेलते हैं, मतलब गेम्स के अंदर स्कूल से लेके जाते हैं
1: जी,
0: आगे बड़े होके
1: और
0: देखते
1: ब्यूटिशियन
0: हैं।
1: तो अपना सेल्फ रहता है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि स्कूल से आगे नहीं ले जा सकेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन ब्यूटिशियन पर अपना सेल्फ सेल्फ डिसीजन है, जब चाहे तब खोल सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा?
0: सीखना पड़ेगा, मतलब 1 साल का कोर्स होता है इसका
1: अच्छा
0: अहमदाबाद से, कोई भी बड़ी सिटी होती नंद से।
1: अच्छा फिर कहीं पर भी आप खोल सकते हो?
0: हाँ, आप कंपनी से भी जुड़ सकते हो, किसी कंपनी से जुड़ के भी आपको हो सकता है।
1: अच्छा, अपना अपना शौक है, अच्छी बात है, कोई ना कोई लक्ष्य बनाना बहुत अच्छी बात है। तो सैजल, आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने बहुत ही सुंदर बातें बताई है कि स्पोर्ट्स में आपको किस तरह रुचि है और आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, सभी के सामने रखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहीं पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेकर के पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ अब तो बस करो।
0: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्नी परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है। चलो
3: शोक को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।
4: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, काफी अच्छे रहे हैं, सुंदर सा विचार भी दिया तो नुस्खे भी अपच पर दिए। जरूर ध्यान दीजिएगा, रेसिपी में आपको जो सलाद बनाना सिखाया है जरूर बना करके खाइएगा। और आज की पहेली बहुत ही सुंदर थी जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। और जवाब भी आप जो आपने सुनाया है वो मैं अभी बताऊंगी। चार

मिट जाए। ये आज की पहेली थी जिसका जवाब दिया है कमलेश बहन माउंट आबू ढूंढई से। उन्होंने कहा है कि समुद्र पहले आत्मा कहा फिर बाद में समुद्र कहा है, लेकिन ये गलत है। फिरोज भाई पालनपुर से, उन्होंने पर्यावरण कहा है, ये गलत है। कुपराम जी कोजरा से, सबसे पहले इनका जवाब सही है परंतु क्या है वो मैं बाद में सुनाऊंगी। सुरेश भाई थानेराव से, आपने कहा आईना, ये गलत है। मंजू जी बाड़मेर से, आपका भी जवाब सही है जो मैं बहुत ही शीघ्र सुनाने वाली हूँ। सुरेश भाई झोटाना से, आपका भी जवाब गलत है, उन्होंने भी आईना ही कहा है। कंचन भाई मंडाली से, आपने जवाब नहीं दिया है, तो जवाब दिया है कुपाराम जी और मंजू जी बाड़मेर से, पानी। तो ये जवाब सही है, ढेर सारी ताली आप दोनों के लिए। और देखिए आपने भी बहुत अच्छी कोशिश की है सभी ने, इसके लिए आप सभी के लिए भी ढेर सारी ताली। देखिए आपने कांच वगैरह कहा, आईना कहा, वो ठीक है, लेकिन पहली बहुत ही सुंदर थी कि चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए। अब किससे हिलोरा खा रही है? पानी से खा रही है ना। और शांत रहे तो खुद को निहारू, हलचल में मिट जाए। शांत पानी में आप देखिएगा आपका चेहरा साफ दिखाई देगा, आपका प्रतिबिंब साफ दिखाई देगा, लेकिन एक कंकड़ भी अगर पानी में गिर गया तो फिर आप अपने आप को निहार नहीं सकते, देख नहीं सकते, है ना, हलचल हो जाती है ना, उसमें आपका फोटो फिर चारों तरफ फैल जाएगा, दिखाई नहीं देगा। इसलिए पानी जवाब सही है। आज का मीठा मोती है, सरलता में महान सौंदर्य होता है, जो सरल है वह सत्य के समीप है। अब मैं आपको एक प्यारी सी कविता सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है हंस हंस मारे छक्का। गेम्स के ऊपर ही है। आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन। खेल खेल में चुन्नू मुन्नी करते हैं तकरार, खेल खेल में चुन्नू मुन्नी करते हैं तकरार, चुन्नू भैया रूठ गए तो दिल में पड़ी दरार, बने मूर्ति ऐसे वह तो फूल के हो गए कुप्पा, बने मूर्ति ऐसे वह तो फूल के हो गए कुप्पा, करी गुदगुदी मुन्नी ने तब हंस हंस मारे छक्का। इधर उधर का दोनों दौड़े, इधर उधर को दोनों दौड़े, हंस हंस देके कक्का, कोई किसी के हाथ न आए, हो रही धक्कम धक्का, हो रही धक्कम धक्का, खेल खेल में चुन्नू मुन्नी करते हैं तकरार, चुन्नू भैया रूठ गए तो

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। जीना इसी का नाम है। कितना खूबसूरत है ना दोस्तों, अगर हमें ये फॉर्मूला पता चल जाए हमारे जीवन को कैसे जीना है, और ये भी पता चल जाए कि हम जो जीवन जी रहे हैं इसी को जीना कहते हैं, फिर जिंदगी में क्या मुड़ के देखना है दोस्तों। ऐसे कुछ फॉर्मूलाज के साथ आज हमारे साथ है आदरणीय राजयोगिनी उर्मिला दीदी जी। उर्मिला दीदी जी ब्रह्म कुमारी मुख्यालय में एक वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका है। जैसे हम राजयोग की बातचीत कर रहे हैं, एक साधना तपस्या के द्वारा अपने जीवन को निखारने का जो साधन है वो राजयोग मेडिटेशन है। पिछले 4 दशकों से आप इस राजयोग की अभ्यास कर रहे हैं और उससे उन्होंने अपने जीवन में जो परिवर्तन को देखा है या अपने जीवन को जीने की कला को उन्होंने सीखा है आज हमारे साथ शेयर करेंगे। कार्यक्रम जीना इसी का नाम है। दोस्तों हम स्वागत करते हैं आदरणीय उर्मिला दीदी जी को आज के इस कार्यक्रम में रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। नमस्ते दीदी जी।
3: नमस्ते जी।
2: दीदी हम सबसे पहले संक्षिप्त में ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो लौकिक जीवन है, आपने कहाँ पे जन्म लिया, आपका लौकिक परिवार और कहाँ पर थे, आपने क्या पढ़ाई किया, ये सारी चीजें।
3: ओम शांति। मेरा लौकिक जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ। उस समय उस गांव की आबादी जहां तक मेरा ख्याल है 2000 भी बड़ी मुश्किल से रही होगी। एक प्राइमरी स्कूल था, बस गाड़ी किसी के यहाँ होती नहीं थी। अगर गांव में भूले भटके गाड़ी आ भी जाती थी तो बच्चे झूम जाते थे। ये गांव मेरे दादाजी का गांव था और इसमें केवल मेरा जन्म हुआ था। इससे पहले मेरे माता पिता असम में तिनसुकिया में रहते थे और हम 4 भाई बहनों में से मैं सबसे छोटी हूँ। तो बड़े 3 भाई बहनों का जन्म वहीं बाहर हुआ, मुझे लेने ही वो इस गांव में आए थे। तिनसुकिया में पानी में थोड़ा सा पेट्रोलियम का अंश है, उसके कारण पिताजी को शारीरिक तकलीफ हुई तो वो एक गाँव के स्वच्छ वातावरण के हिसाब से यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। मेरा जब जन्म हुआ तो मुझे हमारे आंगन में एक चांदी का सिक्का मिला था खेलते हुए। कहते हैं बच्चे को चांदी का सिक्का मिले तो बहुत भाग्यशाली होता है। तो माता पिता ने मुझे उसी भाव से देखना शुरू किया कि ये घर में लक्ष्मी आई है। मेरे जन्म से पहले मेरी माँ ने 9 महीने अटूट भक्ति की थी कि मेरे घर में कोई अवतार जन्मे, कोई देवी जन्मे, कोई देवता जन्मे। और जब मैं जन्मी तो घर का माहौल बदला, पिताजी की आमदनी बढ़ी और भी बहुत सारे शुभ संकेत घर के लोगों को मिलने लगे। तो मुझे उसी प्रकार की ट्रीटमेंट मिली कि ये सबसे अधिक भाग्यशाली बच्चा है। सबसे छोटी थी, बहुत अधिक प्यार मिला, अनलिमिटेड प्यार मिला, अनएक्सपेक्टेड प्रेम मिला और वो प्रेम सबसे अधिक हमारे पिताजी की तरफ से मिला। आप यूँ समझिए कि वो मेरे बिना एक पल भी नहीं रहते थे। खाना पीना सोना, बाहर जाते थे तो भी मुझ छोटी सी को साथ ले जाते थे और अगर मेरे बिना जाते थे तो उन्हें मेरी याद बहुत आती। तो इतने अधिक प्रेम के कारण आप यूँ समझिए कि घर की मैं लीडर बन गई।
2: जी, लाडली।
3: लाडली, मेरे मुँह से जो शब्द निकल जाए वो पूरा होगा ही होगा हर हाल में।
2: अच्छा।
3: और बड़े भाई बहन मुझे कुछ भी नहीं कहते, वो भी मेरी आज्ञा का पालन करते। तो एक कन्या को जब आप इस तरह से पालेंगे तो उसमें कन्या वाले संस्कार तो रहेंगे नहीं। मतलब किसी की बात मानना, किसी के अंडर चलना, वो जो लीडरशिप का संस्कार था। माँ को भी मैं बहुत प्रिय थी, काम को कभी छुआ नहीं। काम क्या चीज होती है, अगर कभी मुझे एक छोटा सा काम करते हमारे पिताजी ने देख लिया तो वो दौड़े आते थे, मेरी बेटी से काम क्यों करवा रहे हो।
2: अच्छा।
3: हाँ, तो कभी जिंदगी में घर का काम नहीं किया मुझे। थाली हाथ में मिलती थी, झूठी थाली मेरी उठा ली जाती थी, कपड़े धुल के मिलते थे।
2: तो ऐसे में कभी आपकी भाई बहनों के बीच नोकझोंक या कुछ होता था दीदी?
3: भाई बहनों के बीच अगर नोकझोंक हो भी गई तो पिताजी को रिपोर्ट जाती थी, मैं ही बताती थी कि आज इसने मेरी गेंद ले ली।
2: अच्छा।
3: और फिर पिताजी आते थे पूरा धर्मराज का रूप धारण करके कि मेरी बेटी के हाथ से गेंद किसने ली।
2: जी।
3: इसके पीछे बहन जी मुझे थोड़ी सी बैकग्राउंड ये समझ में आती है कि हमारे पिताजी का अपनी बहनों से बहुत प्रेम, और उनकी एक बहन की अनटाइमली डेथ हुई
2: जी।
3: उसका उनको शौक लगा तो उनके मन में ये था कि मैं अपनी बेटियों को बहुत अच्छे से पालू। मेरी जो बड़ी बहन है वो भी ज्ञान में है
2: जी।
3: लेकिन उसके साथ उनका इतना छोटे बच्चे के साथ थोड़ा अधिक होता है ना
2: जी,
3: तो वो थोड़ी चुप और शर्मीली टाइप थी और मैं उसके बिल्कुल ओपोजिट थी कि अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो उसकी पिटाई कर दो
2: जी,
3: और उसकी शिकायत कर दो और हल्ला मचा दो, इस प्रकार की नेचर की थी
2: जी।
3: तो इस तरह से मेरा बचपन बीता। लेकिन मैं पढ़ाई में इतनी अधिक ब्रिलियंट थी कि मेरा टीचर बोर्ड पे कुछ लिखे उससे पहले मैं उस सेंटेंस को पूरा कर देती थी।
2: अच्छा।
3: तो टीचर घर में आके जब मेरे पिताजी को ये बात बताते थे बहुत पहली क्लास में, तो मेरे पिताजी का ना जिसको कहते हैं छाती फूल जाती थी और वो मुझे कभी बेटी नहीं मानते थे, बेटा मानते थे। एक बार हमारे स्कूल में एक इंस्पेक्शन वाला आया प्राइमरी स्कूल में
2: जी,
3: तो उसने कहा कोई हिंदी की बुक पढ़ के सुनाए। तो मैंने पहली क्लास में हिंदी की बुक ऐसी पढ़ी थी जैसे सुपर फास्ट ट्रेन चल रही
2: जी।
3: तो उसने हैरान होकर के देखा, छोटा सा गांव और छोटा सा प्राइमरी स्कूल और उसमें एक ऐसा इंटेलिजेंट बच्चा। फिर मेरे टीचर क्या करते थे कि पांचवीं क्लास में अगर किसी बच्चे को हिंदी नहीं पढ़ने आती तो मुझे पहली क्लास से उठा के पांचवीं में ले जाते थे। अब यहाँ तुम पढ़ तो इनको शर्म आएगी
2: जी।
3: तो मुझे वहाँ भी मॉनिटर की तरह से पांचवीं क्लास में डील किया जाता था। तो जो मेरे भाई के फ्रेंड्स थे या बाकी जो बच्चे थे उनकी भी मैं लीडर बन गई क्योंकि टीचर इतना मुझे आगे रखते थे। हाँ, तो डर क्या होता है, झुकना किसी के आगे क्या होता है, वो मैंने जीवन में उस समय कभी सीखा ही नहीं। हर बात

0: में गीत गाना है कि डांस करना है कि कोई और भी दौड़ लगानी है कि पहाड़ पे चढ़ना है या किसी सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, तो मैं सबसे आगे मिलती थी। घर में मुझे कोई काम नहीं था,
1: रोक टोक भी नहीं,
0: कोई काम रोक टोक भी नहीं, सबको रोक टोक थी, भाइयों को बहनों को, मुझे रोक के कोई तो मैं मानती नहीं थी। हमारे पिताजी ऐसे रोकते थे मैं हाथों के नीचे से निकल के भाग जाती।
1: सो दीदी, इतनी लाड़ प्यार और पढ़ाई में अव्वल रहना, ये सभी चीजों के बीच में आप धार्मिक भी थे?
0: हाँ, देखो
1: या परिवार भी धार्मिक थे?
0: अब मैं आपको ये भी बात बताती हूँ, मेरी माँ जो थी ना वो अव्वल दर्जे की भक्त थी। मतलब मंगलवार को व्रत करना है, घर की धुलाई करनी है, भगवान को भोग लगाना है, कोई झूठे हाथ ना लगा दे उसको बहुत ध्यान रखना है, और सिवाय भगवान के घर में कोई बात नहीं करनी है। पढ़ाई की बात तो करनी है, इसके अलावा संसार की बात, पड़ोसी की बात, इधर की बात, उधर की बात, सहेलियों की बात, वो नहीं करनी है। मंगलवार को मेरी फ्रेंड्स को वो बुलाती थी और भक्ति के हम भजन गाते थे हमारे आंगन में बैठ के, फिर माँ उनको प्रसाद देती थी। और रोज शाम को नियम था, जब तक माँ भक्ति की कहानी ना सुनाए तब तक मैं तो खास सोती नहीं।
1: अच्छा, आपको भी रुचि थी?
0: बहुत ज्यादा रुचि थी मुझे, वो वाली कहानी सुना दो, वो वाली कहानी सुना दो, वो वाली कहानी सुना दो, फिर वो रिपीट होती रहती थी। ध्रुव की आज सुनाई, प्रहलाद की सुनाई, रुक्मणी ने कैसे भगवान का वरण किया वो सुनाई, सीता स्वयंवर कैसे हुआ वो सुनाई, और फिर वो रिपीट हो जाती थी, लेकिन सुननी जरूर है। और मैं किताबें पढ़ने की इतनी शौकीन थी क्योंकि हमारी शॉप थी, मेरे पिताजी शॉप की।
1: तो इतनी सारी जब भक्ति की कहानियां सुनना और भक्ति में इतना विश्वास रखने वाले, अध्यात्म की ओर कैसे मुड़े हैं, संस्था की परिचय में कैसे?
0: हाँ, वो भी मेरी जो गुरु है वो मेरी माई है। 76 में हमारे घर में हमारी माँ की एक बहन आई, मैं 6th क्लास में थी उस समय। तो जो मेरी माँ की बहन थी उसकी भी थोड़ी सी स्टोरी सुना दूं। वो केवल 5 क्लास पढ़ी थी, मेरी माँ तो एक भी क्लास नहीं पढ़ी थी, लेकिन वो घर में रह करके हिंदी पढ़ना सीखी थी। जो मेरी नानी का परिवार था वो टू मच धार्मिक था, सारे तीर्थ करना, तीर्थों पे बड़े बड़े सोने चांदी के छत्र चढ़ाना, ब्राह्मणों को दान देना वगैरह वगैरह, मंदिर बनवाना उनकी थी। तो हमारी मौसी जो थी उसकी शादी हुई एक MBBS डॉक्टर के साथ असम में, फैमिली तो वहीं पे था ना। अब मौसी भी धार्मिक संस्कारों के, घूंघट निकाले, ज्यादा बोले नहीं, और MBBS डॉक्टर जो था उसको चाहिए थी मॉडर्न पत्नी। तो इनके संस्कार आपस में बिल्कुल नहीं मिले। एक बेटा हुआ और उसके बाद वो लंदन चला गया, कुछ नहीं बताया। इधर ये लोग इंतजार करते रहे, और वो जमाना ऐसा था कि लोग तलाक वलाक नहीं लेते थे, केस वेस नहीं करते थे। 37 में मेरी माँ का जन्म है, तो ये 50 के अराउंड की बात होगी, 55 की, अभी भारत आजाद हुआ था, ये सब कुछ भी नहीं होता था। तो बस मौसी पियर चली गई और मामा के साथ रहने लगी, और जो हमारा भाई था मतलब मौसी का बेटा था उसको पिलानी में स्कूल में उसी ने डाल दिया हॉस्टल में, और लंदन से सीधा उसका खर्चा वहां।
1: अच्छा,
0: मौसी से उसकी नहीं बनती थी पर उस बच्चे की पूरी पालना वो करता।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो मौसी ठीक है, आराम से रह रही थी, नो प्रॉब्लम। पर इसी बीच क्या हुआ कि साकार बाबा 69 में गए ना, तो आप यूं समझिए उससे 2-3 साल पहले कलकत्ता की बहन थी जो बाद में तिनसुकिया की टीचर बनी, क्या नाम था उनका, सत्या बहन, सत्या बहन बाबा से मिलने आई थी,
1: ब्रह्मा बाबा से,
0: और वो गोलगप्पे बहुत अच्छे बनाती थी, तो बाबा उसको गोलगप्पे वाली बच्ची बोलते। तो वो बाबा के पास गोलगप्पे बना करके लेके गई, तो बाबा ने कहा बच्ची मुझे आप जैसी एक दर्जन माताएं चाहिए। वो मैरिड थी, 2 बेटियां थी, फिर भी इतनी समर्पित बुद्धि थी दोनों पति पत्नी, बेटियों ने तो शायद बाद में शादी की होगी मुझे ठीक से याद नहीं है। तो बाबा की बात को गांठ बांध ली, वो गई कलकत्ता, और वहां टिबरेवाल धर्मशाला में उन्होंने प्रदर्शनी लगाई, और उसमें मेरी नानी आई।
1: अच्छा,
0: नानी मतलब माँ की बुआ, सगी नानी तो तिनसुकिया में थी
1: जी,
0: ये माँ की बुआ, और माँ की बुआ का बेटा छोटा सा 5th या 6th क्लास में, रमेश उसका नाम था, स्कूल से आते हुए उसने टिबरेवाल धर्मशाला में वो प्रदर्शनी के चित्र देखे, घर गया और माँ का पल्ला खींचा कि तेरे को इतनी अच्छी चीज दिखा के लाता हूँ, चल चल। तो नानी गई, नानी भी बहुत भक्ति करती थी, टू मच भक्ति थी इनके घरों में। तो नानी जैसे ही प्रदर्शनी देखी नानी ज्ञान में आ गए, अब ये माँ बेटा दोनों ज्ञान में, और बाकी पूरा परिवार एंटी, मतलब नाना और इसका बड़ा बेटा और इसकी बेटी, पूरे एंटी। अब ये स्टूडेंट बने दादी निर्मल शांता, और मेरी जो नानी थी जबरदस्त भाषण करती थी और ज्ञान के ऐसे पॉइंट सुनाती थी, तो दादी निर्मल शांता ने उसका नाम रखा था वकील। रुक्मणी बहन हमारी पूरे फैमिली को जान
1: जी।
0: तो उसके मन में एक विचार आया, बाबा कहते थे ना ज्ञान सुनाओ, ज्ञान सुनाए बिना नाश्ता नहीं करो, तो नौकर को ज्ञान सुना दिया, छिप छिप के बहुत दान करती थी, बर्तन उठा के दे दिए, कपड़े उठा के दे दिए, सोना उठा के दे, ऐसे बहुत दान करती थी छिप छिप के। तो उसने सोचा कि मेरे भाई की बेटी घर में खाली बैठी, पति विदेश में है, बेटा हॉस्टल में, उसको कोई काम थोड़े, उसको बुला ले। तो मौसी को कलकत्ता बुलाया, उसको ज्ञान सिखाया और निर्मल शांता दादी के पास उसको समर्पित कराया।
1: अच्छा।
0: 70 के आसपास बाबा के जाने के बाद वो वहाँ सेंटर पे रहने लगे। गुवाहाटी की शीला बहन, ये सब लोग उनको जानते थे, उनके साथ ही रही है। तो बाद में उसका नाम था निर्मला बहन। बाद में क्या हुआ कि उसको थोड़ी सी हाथों में खुजली हुई वहाँ रहते रहते, तो डॉक्टरों ने कहा कि कलकत्ता की हवा अच्छी नहीं है, पोल्यूशन है, तुम ऐसी जगह जाओ जहाँ पोल्यूशन ना। तो उसको मेरी माँ याद आई, क्योंकि हम लोग भी तिनसुकिया छोड़ के गाँव में रह रहे थे, तो वो मेरी माँ के पास आ और अपने साथ दो मुरली लेके आई। और यहाँ मेरी माँ तो भक्ति में पागल थी, तो उसने मेरी माँ को कहा बहन तू तो भक्ति करती रह जाएगी, भगवान तो धरती पे आ गया। मेरी माँ ने कहा कहाँ आ गया? बोले माउंट आबू में। तो कैसे आता है? बोली देखो दिल्ली में उसका रथ रहता है और वो रथ माउंट आबू जाता है और उसमें भगवान उतर के आता है और उसके मुख से ना ये मुरली बोलता है, ये देखिए मुरली। तो वो मुरली मेरी माँ को दिखाई, मेरी माँ ने मुरली पढ़ी, मेरी माँ को एकदम फिट बैठ गई कि यही है। और वो एक हफ्ता रही, थोड़ी ट्रीटमेंट कराई, और ट्रीटमेंट तो क्या कराई, बस सुबह घूमने जाती थी मेरी उंगली पकड़ के और मुझे पूरे रास्ते सुनाती थी, देख भगवान ना ऊपर रहता है, वो ज्योति बिंदु है और वो सफेद सफेद, तो तुम अपनी बुद्धि को ऊपर ले जा करके उसको देखो। 76 में उसने मुझे ये बात सुनाई थी सड़क पे चल, वो सड़क भी मुझे याद है और ये बात भी मुझे याद है।
1: कोलकाता में
0: ना ना हमारे पास आ गई थी ना वो
1: जी,
0: हरियाणा में। तो 6-7 दिन रह के वो तो चली गई और हमारी माता जी को तो कारून का खजाना मिल गया, दो मुरली मिल गई। तो उस जमाने की जो मुरली थी ना वो बड़े साइज की होती थी और कागज आज जैसा बढ़िया नहीं होता, तो थोड़ा पीला पीला होता, बार बार खोलो बार बार बंद करो तो वो बीच में से क्रैक हो जाती थी,
1: तो प्रिंट निकल जाता।
0: हाँ, दो पन्ने हो जाते थे ऐसे। तो दो मुरलियां एक दिन एक पढ़ती है, दूसरे दिन दूसरी पढ़ती है। सुबह उठती है 4 बजे, बाल खोल लेती है, नहाती है और जब मुरली पढ़ती है तो चेहरे पे ऐसी रौनक आ जाती है जैसे इसे तनी कारून का खजाना या सतयुग की बादशाही मिल गई है। और हम बच्चे उसी कमरे में होते थे माँ के दाएं बाएं, हम रजाई में से मुंह निकाल के देखते, माँ का मुंह देख कितना मुस्कुरा, एक कागज के टुकड़े में ऐसा क्या है। फिर वो जब रख देती थी मुरली को तो हम दिन में ऐसे देखते थे ये माँ की मुरली है, हाथ मत लगाना, गंदे हाथ मत लगाना, वो दूर से फिर ऐसे बोलती थी तो फिर हम लोग चौकन्ने हो जाते थे
1: जी।
0: तो माँ ने 1 साल 2 मुरली पढ़ी और 1 साल बाद वो फिर आई तो साप्ताहिक पाठ्यक्रम ले आई और मेरी माँ को अब तो आप समझो कि दुनिया की दौलत मिल गई। उसने साप्ताहिक पाठ्यक्रम को फटाफट याद कर लिया और याद करके वो कोर्स कराने लगी लोग, मतलब हमारे घर में कोई भी आए, शॉप होने के कारण पूरा विलेज एक ही शॉप थी वो।
1: फिर आपको कब निश्चय बैठ गया कि ये परमात्मा का ज्ञान है?
0: ये उसको देख देख के ही, तो उसी के तो चरित्र सुना रही हूँ
1: जी।
0: मेरी गुरु वो, मेरी मार्गदर्शक वो, मुझे जीवन में त्याग सिखाने वाली और मेरे जीवन में मुझे वैराग्य सिखाने वाली, ये ज्ञान उसने मुझे दिया नहीं, मैंने उसको देखा। जो चीज देखी जाती है वो फिट बैठती है। वो ज्ञान कभी कभार सुनाती थी तो हम सुनते थोड़े थे, वो तो हम भाग जाते थे, हमको पढ़ना है, हमको खेलना है, हमारे फ्रेंड्स आए हैं। लेकिन उसको देखा कि इसका जीवन बदल गया, मतलब खुशी इतनी, नहीं तो पहले तनाव तो होता है ना, 4 बच्चों को स्कूल भेजो, हम चारों स्कूल जाने वाले सुबह सुबह। अच्छा, गांव में फैसिलिटीज भी कम होती हैं, आप समझ सकते हो
1: जी।
0: तो एक तो खुशी, दूसरा उसको एक बीमारी थी जिसके कारण वो इस गांव से एक शहर में जाती थी और पुड़िया लेके आती थी वैद्य जी। तो जब इस ज्ञान में आ गई, बीच बीच में कपड़े धोएगी, बीच में उठ के जाके मेडिटेशन करी, बाबा कहता है बीच में बाबा को याद करो फिर काम करो, फिर आके कपड़े धोएगी, बर्तन मांजेगी, बीच में बाबा को याद करेगी फिर बर्तन मांजेगी। तो हम उसको देखते थे तो उसकी पुड़िया बंद हो गई।
1: अच्छा।
0: बिल्कुल सीढ़ी नहीं चढ़ सकती थी तो सीढ़ी चढ़ने लगी, दौड़ नहीं सकती थी वो दौड़ने लगी, वजन नहीं उठा सकती थी वो वजन उठाने लगी, किसी के आगे बोल नहीं सकती थी तो वो भाषण करने लगी, मुरली पढ़ के अंग्रेजी बोलने लगी, और लोग हमारे घर आते थे तो कहते थे सेठानी तो तू दोबारा जवान हो गई, मतलब हेल्थ अच्छी हो गई, चेहरे पे रौनक आ गई। तो हम कहते थे माता जी आपकी बीमारी कहाँ गई, कहते थे शिबाबा ले गए, अब शिबाबा तो दिखता नहीं, कौन ले गया, कुछ भी तो नहीं दिखता इस ज्ञान में। फिर ज्ञानामृत की मेंबर बनी तो हम लोग ज्ञानामृत पढ़ते थे, जगदीश भाई का आर्टिकल पढ़ते थे, तो हमको एक एक दिखाती थी, ब्रह्मा कुमारी ऐसी होती है, ये ऐसी होती है, रावण का चित्र दिखाती थी वगैरह वगैरह सब। तो आप समझ लीजिए 76 से लेकर के और 78 तक थोड़ा गुप्त मामला रहा। फिर वो माउंट आबू आई, वही लेके आई उसे माउंट आबू, बाबा से मिली, माउंट आबू आई, फिर तो नशा आसमान में चढ़ गया, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। और किसी को काम नहीं कहती थी, पहले हम बच्चों को कहती थी पर अब खुद करती थी सारे काम, तो ये भी एक परिवर्तन। फिर मैंने 5th क्लास में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसको टॉप किया था, मुझे 108 रुपया छात्रवृत्ति मिली। और अब आप समझ लो अब तो मेरा दर्जा बहुत ऊंचा हो गया था, पूरे गांव में पूरे डिस्ट्रिक्ट में आसपास के लोग भी जानने लगे थे। तो मेरी माँ के मन में एक विचार आया, और मुरली में बाबा कन्याओं की बहुत महिमा करता है, अगर मेरी ये बेटी ज्ञान में चल पड़ी तो ये बाबा की बहुत सेवा कर। तो पर ये चलिए कैसे, क्योंकि वो ज्ञान सुनाती थी हम सुनते नहीं, और कोई कोई उससे सवाल पूछते थे तो वो बेचारी हमारे, मान लो हमने डार्विन की थ्योरी पूछ ली उससे, आप सोचो स्कूल हमारी माँ क्या जवाब देगी। तो उसने एक तरकीब निकाली, मैं स्कूल जाती थी तो बेटा मेरी दृष्टि लेके जा, पेपर अच्छा होगा, मैं उसकी दृष्टि लेती थी, उसकी आंखें बदली बदली दिखती थी मुझे, सारे रास्ते उसकी आंखें ही दिखती। हमारे लिए तो हमारी माँ ही रोल मॉडल थी, क्योंकि आसपास सेंटर ही नहीं था, 60 किलोमीटर पे एक सेंटर था जहाँ हमारी माँ मुरली लेने जाती थी, 4 बसें बदल, तो वही और कोई ब्रह्मा कुमारी हमारे गाँव में आ जाए वो तो होना ही नहीं था, और हम तो अभी वहीं पढ़ रहे थे आसपास ही, शहर में हम भी नहीं गए, तो हमारी माँ ही हमारे लिए रोल मॉडल थी। तो उसने तरीका अपनाया, 2-3 तरीके अपनाए मुझे, मेरे ऊपर जो उसने मेहनत की है शायद मैं कई जन्मों तक भी उसका ऋण ना उतार पाऊं, इतनी मेहनत की है उसने मेरे ऊपर। उसने रात दिन एक कर दी कि मेरी, क्योंकि जो मेरी बड़ी बहन थी वो बोलती नहीं थी बाप के आगे तो बिल्कुल नहीं, उसने कहा इसको ब्रह्मा कुमारी बनाऊंगी, ये बाप के आगे बोलेगी नहीं, वो शादी के लिए बोलेगा, उसने बोली, और अगर इसको बना दिया तो ये बाप के कान खींच लेगी। मैं उसकी गोद में बैठ के उसके कान खींच लेती थी, बाल खींच लेती थी, सब काम कर लेती थी जो मार पिटाई बाप की, और वो चुपचाप सहन कर लेता था, बच्चा होता है ना घोड़ा बन जाता था, मैं उसके ऊपर बैठ जाती थी, ये चीज ला के दो और मुझे दुकान में ला के खड़ा कर देता था, जिस कपड़े को हाथ लगाएगी ना वही से। तो वो दुकान वाले भी उनके दोस्त होते थे, अब छोटे बच्चे को क्या पता घूमते घूमते साड़ी को हाथ लगा दी, नहीं बेटा दोबारा राउंड लगा, फिर कहीं जाके शर्ट को हाथ लगाया तो वही शर्ट सिलवा दी, हम पिताजी ऐसे काम करते। तो माँ ने देखा कि अगर ये ज्ञान में चल पड़ी तो इसको कोई रोकने वाला नहीं। हमारे पिताजी ज्ञान के बिल्कुल ओपोजिट, मतलब माँ अगर रात है तो बाप दिन है, और माँ दिन है तो बाप रात। माँ भक्ति करती है, ज्ञान में आ गई, भोली भाली है, और बाप तेज तर्रार है, पॉलिटिक्स वाला आदमी है, लोगों के बीच बैठता है, उसको अपने बच्चे अच्छे बनाने हैं, पढ़ाने हैं, दुनिया में नाम चाहिए उसको, ओपोजिट संस्कार। तो बाप माँ को कहता है कि देखो तुम ज्ञान में चली सो चली, मेरे बच्चों को ज्ञान मत सिखा, और माँ को मेरे ऊपर अटेंशन है, दोनों बड़े भाई हैं, वो तो माँ का इतना नहीं, बाप के साथ बिजनेस में धंधे में है, मैं ही हूँ ना फ्री पल्ला पकड़ के घूमने वाली। तो माँ ने एक तरीका तो ये अपनाया कि वो जब यहाँ बाबा से मिलने आई 78 में, मैं 14 साल, तो उसने बाबा को बोला, बाबा मेरी एक बेटी पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है, भाषण बहुत अच्छा करती है, किसी से डरती नहीं है, मैं उसे आपको अर्पित करके जा रही हूँ। तो बाबा हाथ में हाथ लेके मिलते, और मेरी जो मौसी थी ना उससे ज्यादा मेरी माँ से बात करते थे, क्योंकि माँ की लगन बड़ी जबरदस्त। उसने अपनी बीमारी ठीक कर ली, स्वभाव बदल लिया, बहुत उसमें परिवर्तन आया, योग योग रात दिन योग, रात को बैठे देखो योगी कर रहा है। तो बाबा के हाथ में हाथ लेके बाबा को बोल दी, बाबा तो मुस्कुराते हैं, और वहां जाके मुझे कहती है कि मैं आपका दान, मैंने कहा कहाँ दान करके आई, बोला भगवान, हमने कहा भगवान धरती पे है क्या जो माँ भगवान को दान करके आई, हमारी माँ भोली भाली है तो पता नहीं कोई होगा उसको माँ ने कह दिया होगा, हमने कहा माता जी आजकल बच्चे माँ बाप की बात मानते नहीं है, मैंने आपकी बात नहीं मानी तो आपका वचन झूठा हो जाएगा। बोली मैं जिसको कह के आई हूँ ना वो बड़ा पावरफुल है, कुछ छोड़ेगा नहीं, लेके ही जाएगा, कौन है कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं। फिर 8th क्लास में बहन जी मैंने हरियाणा टॉप किया और हरियाणा की मुख्यमंत्री ने मुझे इनाम दिया और फिर मदर टेरेसा को उसी समय नोबेल पुरस्कार मिला। अखबार में हमने पढ़ा तो मैंने घर में चर्चा की कि मैं मदर टेरेसा की संस्था में जाऊं, मुझे बच्चों की, बीमारों की, गरीबों की सेवा करनी है। और हमारे पिताजी को ये बात तो जब मैं होश संभाला तब से कहती थी कि जो शादी करते हैं वो महामूर्ख होते हैं। वो कहता था बेटा मैंने मूर्खता की, तू मत। तो मेरा सपोर्ट।
1: बहुत खूब दीदी, लेकिन अभी वक्त कहता है कि हमें यहाँ पे रुकना होगा। दोस्तों कहानी बहुत रोचक होता जा रहा है, तीन अलग दिशाओं में जाते हुए ये कहानी कहाँ मोड़ लेती है और आखिर कौन जीतता है, क्या वो परमात्मा को दिया हुआ वचन साबित होता है। तो चलिए अगली कड़ी में हम सुनेंगे आगे की कहानी को। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। जीना इसी का नाम है कार्यक्रम।

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: मालिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते सभी वर्गों से मिलते हैं तो हमें खुशी है, क्योंकि इस तरह कार्यक्रम को लेकर बच्चों का पास पहुँचते हैं, बच्चों को एक मंच एक स्टेज मिलता है, बच्चे भी धीरे धीरे सीख जाते हैं और हर स्कूल में जाते तो बच्चों का भागीदारी देखने को मिलता है, बढ़ चढ़ कर लेते एक का बाद एक देते हैं प्रस्तुतिकरण। उनका पास जो हुनर है, जो टैलेंट है, जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन आज पहुंचा है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लुनियापुरा, जो कि आबू रोड का पास ही नजदीक है, रेलवे स्टेशन का पास है। और आबू रोड को कौन जानते हैं, सभी तो जानते हैं। तो आज बच्चों का आवाज़ को बारी बारी सुनने को मिलेगा, क्योंकि कम्युनिटी रेडियो होने के नाते कम्युनिटी का आवाज़ जन जन तक पहुँचाने के लिए हमें पहुँचते हैं। तो आज प्रार्थना से ही हम शुरू करेंगे, क्योंकि कोई भी कार्य प्रार्थना से शुरू होता है, क्योंकि माँ शारदा को याद करते हैं। प्रार्थना में हमें सरस्वती माँ को वंदना करते हैं, उनका आशीर्वाद उनका भाव और भावना हमारा भाव और भावना उनका तक पहुँचे और माँ सरस्वती का गीत प्रस्तुत करेंगे जिसे प्रार्थना सत्र मिलते हैं। हमारा 7-3 छात्र है तो अपना अपना परिचय देंगे प्लीज, अपना नाम और कौन सा क्लास और कहाँ से।
1: मेरा नाम सुमित्रा सिंदल, मैं कक्षा 8वीं की विद्यार्थी हूँ।
0: वेरी गुड।
1: और मैं सोनियापुरा आबू रोड शिक्षक की कॉलोनी में रहती हूँ।
0: वेरी गुड। नेक्स्ट।
2: मेरा नाम वंदना कुमारी है, मैं लुनियापुरा में रहती हूँ, मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ।
0: वेरी गुड, बहुत अच्छा। पहला बार आए थोड़ा झिझक किसको होता है, किसको डर लगता है, किनको डरने का बात नहीं, क्योंकि रेडियो आपका रेडियो है, आपके द्वारा ही प्रस्तुत करना होता है। तो चलिए एक प्रार्थना करेंगे वंदना एंड ग्रुप, ओके शुरू करेंगे। वेरी गुड। हमारे श्रोता मित्र ध्यान से सुने, वो भी अपना वॉल्यूम को तेज रखते हुए ध्यान मुद्रा में माँ सरस्वती की याद में बैठेंगे, वो भी अपना अपना जगह में। और सभी बच्चे भी रेडी है, सभी बच्चे प्रार्थना मुद्रा में रहेंगे। जोर से बोले नहीं, जोर से बोलो हाँ जी। क्या बात है, पूरा छत तो उठ जाएगा और हमारा सीनियर साहब का पास भी पहुंच सकता है ये आवाज। चलिए शुरू करते हैं माँ सरस्वती को वंदना और वंदन का ग्रुप।

0: बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर प्रस्तुति। और खासकर जब प्रार्थना सत्र में बच्चे स्कूल में आते हैं तो माँ सरस्वती की याद में शुरू करते पढ़ाई, और जिसका चलते हमें बहुत कुछ शक्तियाँ और ज्ञान मिलता है। ज्ञान शक्ति और ध्यान से हम भरपूर हो जाते हैं, और बच्चे आगे होकर अपना स्कूल का, खुद का और गांव का और देश का नाम रोशन करते हैं। बनना बढ़ोकर क्या बनेगी?
1: आईएएस।
0: अरे वाह, उसके लिए प्रिपरेशन तो अभी से करना पड़ेगा। हाँ। बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कलेक्टर बनेंगे तो उस तरह सभी प्रश्न का उत्तर भी देना पड़ेगा। आज रेडियो में आपको प्रश्न उत्तर कार्यक्रम में आपको इंटरव्यू मिल रहा है, तो आप बड़ा होकर क्या बनेंगे, उसके लिए क्या प्रिपरेशन, क्या मेहनत कर रहे हैं बताओ, क्योंकि हमारा श्रोता भी सुन रहे हैं आपको।
1: सर, मैं अभी जी के बनने की तैयारी कर रही
0: हूं। अरे वाह, अभी से 8वीं क्लास से उनका लक्ष्य है, तो अभी स्कूल का नाम रोशन जरूर करेंगे, और हमारे मैम भी सुन रहे हैं, उसके लिए बहुत प्रोत्साहन दे रहे। तो मैम, ये बड़े होकर तो बनेगी आईएएस ऑफिसर, और उसके लिए मेहनत भी करते, आप उनको क्या, जब तक है तो आप कहीं भी पढ़ाई करें तो उनको क्या संदेश देंगे, क्या उनको वार्ता देंगे?
1: हम उनको नियमित रूप से पढ़ाई करने के लिए कि कितने घंटे पढ़ाई करने चाहिए, तो उस हिसाब से उनको पढ़ाई करने के लिए बोलेंगे, और बार बार उनको अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की बार बार उनको मोटिवेट करेंगे, उनको जिससे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।
0: तो वंदना मैम का आवाज़ से आप खुश है?
1: हाँ।
0: मैम जैसे बताया है, आपका फोकस रहना चाहिए, एक टारगेट लक्ष्य जो रखे हैं उसके लिए आपको लक्षण दिखाना चाहिए, तो इसलिए आपका मम्मी पापा आपको कितना सहयोग देते हैं?
1: सर बहुत ज़्यादा, सर वो बोलते हैं कि पढ़ते रहना चाहिए।
0: पढ़ते रहना, जब तक आप ना मंजिल तक नहीं पहुँचे तब तक पढ़ाई 20 नाखून लगा कर जब पढ़ेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। ये हमारा वंदना का आवाज़ है, और हमें भी ऐसा है जरूर बंदना आगे जाकर कुछ अभी से मेहनत करेंगे तो जरूर, और 5 साल 12 साल तक मेहनत करेंगे, बारीक तक पढ़ाई करेंगे तब तक मेहनत करेंगे। अभी से जीके शुरू कर दिए और होना चाहिए। और आपका अच्छा दोस्त का नाम बताओ देखिए बंदना।
1: सुमित्रा।
0: अरे वाह सुमित्रा, सुमित्रा नाम सुनकर तो कौन सा रामायण महाभारत को याद होता है? सुमित्रा पाठ जो करते हैं, सुमित्रा कौन सा रामायण में है ना महाभारत में, सुमित्रा का जो नाम है?
1: सर रामायण सर वो एक देवी है, उनका नाम
0: सुमित्रा है। अच्छा, देवी भी सुमित्रा और रामायण में भी सुमित्रा का है ना, तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि तुमको अभी से जीके पूछ रहे का आगे जाकर ऐसा पूछ रहे कितना पूछ लेगा जीके का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लेते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, और हमारा साथ सुमित्रा भी है। सुमित्रा आप अपना नाम को कौन दिया? सुमित्रा
1: फादर
0: ने रखा नाम। धन्यवाद देंगे, अच्छा नाम है, खुश है नाम से, जैसे नाम उस तरह काम भी करना चाहिए, बहुत अच्छा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हमारा और एक छोटे से बच्चे भी आएंगे, बड़े बच्चे से भी धीरे धीरे छोटे बच्चों की तरफ हम जा रहे हैं, और आप सुन पा रहे हैं खासकर रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लुनियापुरा का आवाज़।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन।
2: चले बच्चे शुरू करें। परमिशन मिल गया, बच्चे बोल रहे हमें परमिशन दे दी। ओके चलिए शुरू करते हैं और अगला कड़ी में, अगला भाग में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा साथ चार छात्र है। हेलो, नाम बताए।
3: मेरा नाम प्रीतम है।
2: ओके,
3: मैं लुनियापुरा में रहता हूँ, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ।
2: वेरी गुड।
4: मेरा नाम हितेश है, मैं चोरियाफली में रहता हूँ और 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ।
2: वेरी गुड।
5: मेरा नाम द्रोण चौधरी है और मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ और लुनियापुरा स्कूल।
2: सो 8वीं क्लास।
6: मेरा नाम धीरज राणा है, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लुनियापुर में पढ़ता हूँ, मेरी क्लास कक्षा 8वीं है।
2: वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी इसमें खेल कौन खेलता है? सभी खेल खेलते हैं। कौन सा खेल अच्छा लगता है?
7: क्रिकेट।
2: अरे वाह, क्रिकेट तो बहुत अच्छा गेम है ना। क्रिकेट में कितने आदमी खेलते हैं?
7: 11।
2: एक दूसरा वाला 11, 11, 22। ओके वेरी गुड, पास हो गया सभी बच्चे, सभी को शाबाश। चलिए एक प्रस्तुति सुनाएंगे और भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम काल तक जा रहा है और भारत पूरा आगे बढ़ रहा है और बच्चों का आवाज़ से देश का प्रति जो जज्बा देखने को मिलेगा, क्योंकि देशभक्ति गीत सुनाएंगे सभी बच्चे। सुनाएंगे बच्चे, रेडी? ओके शुरू कर दीजिए।

0: बहुत सुंदर प्रस्तुति, और हमें खुशी लग रहा है ऐसे बच्चे देश का प्रति अभी से शुरू कर दिए हैं, और जिस देश का नाम इतना सुंदर है और उस भारत भूमि में हम रह रहे हैं, और भारत माँ कहते हैं, भारत को क्या कहते हैं, भारत माता की, भारत माता की। बच्चे तो तुरंत जाए, वेरी गुड, छोटे बच्चे भी पीछे से बोले जाए, ऐसे होना चाहिए शुरू से बच्चों को। हाँ बहुत अच्छा, उसे रोक नहीं पा रहे वो आवाज को, छोटी सी बच्ची है फिर भी, फिर से बोलो वंदे वंदे भारत माता की। वाह कितना सुंदर, सब जय जय गान करना चाहिए, और इस गीत के माध्यम से हमारा रक्त खून में पूरा देश का प्रति भक्ति भावना आता है। तो इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में हमारा साकी दृष्टा रूप में हमारा मैम भी सुंदर है, मैम आपका परिचय दीजिए। बच्चों का जो एक गीत में इतना सुंदर से भर पाला देश का प्रतिमा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप, अपना परिचय दीजिए मैम।
1: मेरा नाम अनिता है, मैं आज की योजना के माध्यम से मैं आज बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगी कि जैसे माता सीता ने अपने जो त्याग किया था और जिस वजह से वो इतने प्रसिद्ध हो गए, वैसे ही आप सब भी अपनी माता सीता की तरह ही अपना चरित्र बनाकर रखें और उनकी तरह ही रहें, और आप भी अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान ना करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, हमें अच्छा लग रहा है बच्चों का साथ, हम भी बच्चे बन रहे, बीच बीच में मैम और सर का भी इंटरेक्शन हो रहा है और उनका दिल का भावना रख रहे हैं। बच्चों का प्रति कैसे नस्वार होकर अपना जीत जान देकर बच्चों को आप समान बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। पाली जिला से भी आकर यहाँ पर बच्चों को अपना हुनर को उजागर करने के लिए तत्पर रहते। तो चलिए, और एक छोटी सी परी, नन्ही परी आई है, तो वो भी अपना तोतली तोतली आवाज़ में कुछ सुनाएगी, क्योंकि इस कार्यक्रम को सजाने के लिए ग्रुप का साथ एक सिंगल एकल भी होना चाहिए। हेलो, क्या नाम है?
3: राधिका।
2: हाँ राधिका, कितना सुंदर प्यारी नाम है ना राधिका। और कौन सा क्लास राधिका?
3: फिफ्थ
2: क्लास। तुम्हारा अच्छा दोस्त कौन है राधिका?
3: नीतू।
2: सभी दोस्त अच्छा नहीं, सभी बच्चे नीतू ही अच्छा लगता है तुमको? उसके पास क्या विशेषता है, क्या गुण है जो आपको अच्छा लगता है? सहयोग देता है, सहाय करता है, क्या करती है?
3: वो मेरा हर समय साथ देती है और पढ़ाई में मेरा साथ देती है।
2: कौन सा विषय आपको अच्छा लगता है राधिका?
3: हिंदी।
2: और घर में कौन कौन है?
3: मेरे पापा, भाई।
2: कोई भी चीज़ आपको घर में आता है नया चीज़, जैसे आम का सीजन हो, चाहे केला का सीजन हो, कोई ड्रेस हो नया साल में हो, पहले किसको देते, भाई को ना तुमको?
3: भाई को।
2: ना प्यार करता है ना भाई का प्रति? भाई छोटे ना बड़े?
3: छोटे।
2: छोटे फिर भी उनको बहुत प्यार है ना, तुम्हारा भी प्यार है उससे? प्यार करता है तुम? सब कुछ उनको मिलता है, तुमको बाद में, ऐसे तुमको भी मिलना चाहिए। दोनों को पापा को बोलना मुझे पहले दो, हम लड़की है, हमें आगे जाना है। लड़का तो आगे जाता है लेकिन लड़की और लड़का दोनों बराबर है, ऐसे सोचना, मम्मी को पापा को बोलना। भाई का नाम क्या है?
3: हिमांशु।
2: चलिए, कौन सा प्रस्तुति करेंगे अभी? कुछ गीत गाएगी, कविता गाएगी, सुना।
3: मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी।
2: अच्छा, ये गीत कविता किसको किस आता है, हाथ उठाओ। देखिए बच्चे, किसको किस कविता आता है हाथ उठाओ, मछली वाला किसको किस आता है हाथ उठाओ, लंबा हाथ। अरे बच्चे भूले नहीं, छोटे क्लास नर्सरी स्कूल में और आंगनबाड़ी में होती है, फिर भी बच्चे बड़े आठवीं क्लास का बच्चों को भी याद है। चलो बहुत अच्छा, सभी मिलकर गाएंगे, फिर से इनका साथ देंगे, ठीक है? बोलो। अभी नेक्स्ट प्रस्तुति।
3: ऊपर पंखा चलता है, नीचे बबलू सोता है, सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा ने, मामा गया दिल्ली, दिल्ली से लाया दो बिल्ली, बिल्ली ने मारा पंजा, मामा हो गया गंजा।
2: देखो ये बच्चे, ये गीत सबका अभी भी याद है सभी को, अभी ये बोल रही थी राधिका, सभी बच्चे धीरे धीरे अपना मुंह को हिला रहे थे, लेकिन अभी उनको चांस मिलेगा राधिका का साथ, पुनः मिलकर गाएंगे सभी बच्चे।
4: यस सर।
2: चलिए शुरू करिए।

0: तो सबके लिए मैं ताली बजा देता हूँ। मैंने अभी देख रहा था क्लास में सभी बच्चे 40-50 बच्चे सभी का मुख से पूरा गीत चल रहा था, ये गीत अभी भी याद है, कहीं भी बड़े हो जाएंगे तब ये गीत याद रहेगा, है ना, रहेगा ना सभी को ये गीत याद रहेगा।
1: यस सर।
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधिका तुम्हारा स्कूल में कितना टीचर्स है? कितना?
1: चार।
0: याद है मैम का नाम बताओ देखिए?
1: संतोष मैम, अनीता मैम और पीटीआईजी सर।
0: ओके।
1: और दूसरे सर का नाम है?
0: कोई बताएगा दूसरा सर का जो एचएम कौन प्रभारी को नाम क्या बताएंगे? हाँ बताओ जोर से।
2: मोहित सर।
0: मोहित सर के लिए ताली बजाओ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मोहित सर भी सुन रहे अभी यहाँ पर नहीं है, फिर भी मोहित सर जब रेडियो सुनेंगे तो उनको बोलेगा इंटरशिप वाला। तो सभी को मिलकर धन्यवाद देते हैं, मोहित सर को भी और सभी सर को, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और राधिका बताओ आबू रोड कभी गए?
1: हाँ।
0: आबू रोड में क्या क्या है?
1: आबू रोड में बहुत सारे मंदिर है।
0: ओके।
1: बहुत सारे पे दुकानें है, बहुत सारी चीजें भी है, स्कूल वगैरह भी है, कॉलेज भी है,
0: अरे वाह,
1: हॉस्टल वगैरह है,
0: हॉस्टल भी है, अरे वाह,
1: मेले भी है,
0: मेले भी होते हैं, और प्ले ग्राउंड है कि नहीं खेल खेलने के लिए? दरबार स्कूल देखा है?
1: हाँ,
0: उसका पीछे बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है, जब भी आप लोग जाते होंगे, कभी गए सही बच्चे गए प्ले ग्राउंड दरबार स्कूल? नजदीक है। और शांति कुंज पार्क, अरे वाह बताया नहीं राधिका शांति कुंज। हाँ सबको धन्यवाद। चलिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद अंतिम प्रस्तुति की ओर हम चलेंगे। रेडी है अंतिम प्रस्तुति? ग्रुप आएंगे। राधिका के लिए जोर से ताली बजाओ राधिका। राधिका गुड, वेल डन।

मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा।

0: चलिए एक का बाद एक प्रस्तुतियाँ मिल रहे, बच्चे भी अपना आवाज़ को रोक नहीं पा रहे हैं और एक को देखकर दूसरे भी सीख जाते हैं, बड़े भी सीख जाते हैं। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए और तीन छात्र उपस्थित है, वो अपना परिचय देंगे। आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, खासकर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लुनियापुरा का आवाज़, वो भी सबका आवाज़ मिलकर का गुलदस्ता बन गया। और हमारा मैम भी इस कार्यक्रम को सजा रहे, सभी स्टाफ को धन्यवाद देते हुए। रेडियो मधुबन इस तरह कार्यक्रम को लेकर जो गांव और अंचल में जाते हैं, सभी को एक मंच देते हैं और जिसका चलते उनका आवाज़ को जन जन तक पहुंचाते हैं। तो हमारा साथ तीन छात्र है, अपना अपना नाम बारी बारी बताएंगे प्लीज। ओके,
1: मेरा नाम हिमांशी है, मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ, मैं गुरु कृपा के आगे रहती हूँ।
0: वेरी गुड, नेक्स्ट।
2: मेरा नाम दीक्षा कुमारी है, मैं कक्षा 6वीं में पढ़ती हूँ, मेरा स्कूल का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लुनियापुर आबू रोड है और मैं गुरु कृपा कॉलेज में रहती
3: हूँ। मेरा नाम दिव्यांशी है, मैं कक्षा 6वीं में पढ़ती हूँ, मैं कहाँ मोहल्ले में रहती हूँ।
0: वेरी गुड। देखो बच्चों का अंदर में कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, और अपने बात को, क्योंकि ये शहरी बच्चे हैं किन्तु लुनियापुरा आबू रोड का ये एक पार्ट है, इसलिए बच्चों का अंदर में कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं। तो पूरा शहरी बच्चों को भी अपना टक्कर देंगे और जब भी कंपटीशन होगा तो लोग बच्चे आगे जाएंगे। तो चलिए सभी को स्वागत करते हैं प्रोग्राम के लिए। कौन सा गीत प्रस्तुत करेंगे वो उनके पास है, मैं बताऊँ तो मुझे मालूम नहीं, फिर भी बच्चे करेंगे। कविता सुनाओ।
4: झुका है नीचे चरण तले, नित सिंधु झुमका है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लह रही है, जगमग छटा न्यारी पग पग चल रही है, वह पुण्य भूमि मेरी, वह सर्व भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मात्र भूमि मेरी, झरने अनेक चढ़ते है जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है मस्त झाड़ियों में।
0: क्या बात, प्रकृति को ये समर्पित है।

0: तन मन सवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाते रघुपति, जन्मी जहाती सीता। श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। श्री गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुहृद बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह युद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी।
1: सभी का आवाज में थोड़ा सा आया, तो अभी एकल में वो सुनाएगी।
2: ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लह रही है, जगमग छटा निराली पगपग छर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ग भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते हैं जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है, मस्त झाड़ियों में अमराई घनी है। कोयल पुकारती है, बहती मल्ल पवन तन मन सवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मे जहाँ थी सीता। श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सूर्य बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दया सिखाई। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी।
1: सुंदर उसने अपनी प्रस्तुति को दी और भारत को पूरा रिप्रेजेंट करता है। भारत में सब कुछ है, जो चीज कहीं नहीं वो भारत में है। भारत इसलिए मातृभूमि कहते हैं। जन्मभूमि, कर्म भूमि, तपस्या भूमि, सिद्ध भूमि, देवताओं का भूमि, तपोभूमि कहते हैं। और खासकर हमारा आबू राज में 33 करोड़ देवी देवता का वास कहते हैं। और बच्चे इस गीत का माध्यम से, कविता का माध्यम से सुंदर प्रस्तुति दिए हैं, हमें खुशी है। और क्या नाम बताए?
3: हिमांशी।
1: हिमांशी, क्या कहना चाहेंगे अपना जो दोस्त लोग को, क्या कहेंगे? पढ़ाई में कितना मेहनत करना चाहिए, क्या बोलूँ मैं क्या बोलूँ, कितना घंटा तुम मेहनत करते हो? पढ़ाई स्कूल में 6 घंटा पढ़ाई करते, इसके बाद घर में?
3: घर में मैं शाम को पढ़ती हूँ और छुट्टियों में सुबह 2 घंटे पढ़ती थी और शाम को।
1: आओ थोड़ा मेहनत करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। चलिए हमारे साथ, हमारा कार्यक्रम को हमारे साथ कैसे छोड़ेंगे सर? आपको भी स्वागत करते हैं। आप अपने बच्चों के लिए, बच्चों के लिए क्या खजाना लेकर आए?
4: नमस्ते, मेरा नाम मोहित टाइगरमणि, मैं माधव यूनिवर्सिटी में अध्ययन करता हूँ और यहाँ पर इंटर्न के रूप में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय यूनियापुर में। मैं बच्चों को यही बोला जाऊँगा कि अपने आने वाले समय में इस प्रकार से शिक्षा को अपने जीवन में और विद्यालय को अपने घर जैसा माने, और विद्यालय में जिस तरह शिक्षण होता है उसी तरह घर पर जाकर भी उसी चीज़ का अध्ययन करें। इससे आने वाले समय में आपको अध्ययन करने में दिक्कत नहीं आएगी। जो विद्यालय में पढ़ाया जाता है वही आप घर पर जाके पढ़ेंगे तो आपके लिए फायदा है।
1: तो रिवाइज हो जाता है,
4: रिवाइज हो जाता है, रिविजन के बाद आपको काफ़ी दिक्कत नहीं आती है।
1: कोई चीज़ बार बार हम अभ्यास एक्सपर्ट बन जाते हैं और पढ़ाई जो करते हैं उसका घर में जाकर होमवर्क तो मिलता ही है, तो उसको रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तो पढ़ेंगे ना बाप, है ना सर? बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर रेडियो मधुबन का ब्रह्मा कुमारी के बारे में क्या जानते हैं आप?
4: ब्रह्मा कुमारी का नाम सर रेडियो को आज पहली बार सुना, लेकिन मेरे को आज
1: रेडियो, क्योंकि रेडियो पर जैसे साइकिल कौन जानता है आजकल, मोटर कितना एरोप्लेन तक लोग पहुँच रहे हैं, साइकिल लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन साइकिल का मतलब साइकिल का जगह ना आज भी रेडियो जो देते जहाँ दुरुस्त जगह में राइफल एरिया में वो खबर वगैरह सुनते रेडियो पे। अभी तो 50 साल का अंदर बाद 30 साल का अंदर में सब इंटरनेट पर, इसका बाद पहले तो रेडियो ही सबका घर में, हम भी देखे होंगे, मैं भी देखा हूँ घर में रेडियो से हम सुनते हैं, इतना जारी किया था सब चीज़, है ना? तो रेडियो अभी उसका जगह में, वो अपना जगह में बैठे रहा, साइकिल कितना बड़ा हम मोस्ट गाड़ी ले हमारा साइकिल घर में काम साइकिल का जब यही तो रेडियो में होता है, मन का बात हो जाए कोई भी चीज़ जो खबर मिलता है एफएम के माध्यम से। कार में ड्राइविंग कर रहे तभी मिले, आजकल मोबाइल में भी आता है एफएम आता है, आजकल भी इंटरनेट सब सुविधा है, आप भी बहुत है पूरा ऑल इंडिया के और वर्ल्ड का भी सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं और ब्रह्मा कुमारी और रेडियो मधुबन का बारे में आपको लगा होता है। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। ये खास सभी का आवाज़ बच्चों का साथ बड़ों का भी आवाज़ लेकर उनकी हमको खुशी लगा। तो क्या कहना चाहेंगे जाते जाते, क्या मैसेज की मैसेज देने का माध्यम से आप जैसे अभी नौकरी के लिए तलाश करें और आगे पोस्टिंग आएगा तो उसके लिए आप क्या मेहनत करते हैं, आपका अनुभव दूसरा स्टूडेंट के लिए, हम जिन्स के लिए प्रेरणा का स्रोत बने की हम चाहते क्या एक मैसेज बात
4: मेहनत करती रहनी चाहिए और शिक्षण को कभी जीवन से दूर नहीं करना चाहिए।
1: ताली बजा बच्चे। तो लेते हैं आप सबसे इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय, आप इस बात को लेकर सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा धन्यवाद सभी को नाम का साथ।

अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: काए हम।
1: रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते
2: सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
3: मैं हूं अवधेश पंडित जीएम फाइनेंस बेसिल और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

0: नमस्ते, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। यह है कार्यक्रम जीवन रोशनी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लाइव कार्यक्रम है ये। गुड मॉर्निंग, अब कार्यक्रम के अंतर्गत मैं पहुंच नहीं पाई थी, इस बात के लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन अभी जीवन रोशनी में मैं लेकर के आई हूँ एक ऐसे एक्सपर्ट को जिनसे आप बहुत सारे सवाल कर सकते हो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर के, क्योंकि उन्होंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दिया, इसलिए वो जॉब छोड़ कर के इस लाइन को अपनाए हैं जिसको कहते हैं आध्यात्मिकता। और साथ ही साथ लोगों के सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे बढ़ाया जाए बहुत सारे रिसर्च करते हुए वो यूथ के साथ बात करते हैं। सिर्फ यूथ ही नहीं, हम कह सकते हैं देश के वीर जवानों के साथ बात करते हैं कि उनके सेल्फ रिस्पेक्ट तो ऊंचे लेवल पर होता ही है, लेकिन उसे कायम कैसे रखा जाए। तो मान लीजिए हमारे साथ आज कौन है, गेस करिए। जी हाँ, बिल्कुल, हितेश जी हैं। बहुत दिनों के बाद हम सभी के साथ रूबरू होने जा रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप एक ऑथर हैं, एक इंजीनियर हैं, लाइफ कोच भी हैं और रेडियो पर भी बात करते हैं, रेडियो जॉकी भी बोल सकते हैं हम, है ना। जी, तो हमारे गेस्ट आज हितेश जी हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे हम डिग्निटी के बारे में, सेल्फ रिस्पेक्ट, इसे अलग सिनोनिम्स हम कह सकते हैं। तो आज का विषय लेकिन डिग्निटी है, तो डिग्निटी को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे कि क्या है गरिमा, डिग्निटी?
1: ये हिंदी में कितना सुंदर वर्ड है कि बहुत बार सुनते हैं ना हम कि अरे इस बात की गरिमा तो रखो, है ना, डिग्निटी तो रखो। सच में बहुत ही महान शब्द है असली में, और मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी लाइफ का गोल होना चाहिए। ऐसी लाइफ होनी चाहिए कि कोई भी कहे कि यार ये इंसान में ना गरिमा बहुत है, डिग्निटी बहुत है। लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि कुछ लोग बहुत जल्दी बोल देते हैं कि अरे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आई थी, मेरी डिग्निटी पर बात आई थी, तो मुझे तो ये करना ही था, मुझे तो ये बोलना ही था। वो बोलते हैं ना कि एक थिन लाइन का डिफरेंस होता है बिटवीन ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो कभी कभी वो ईगो होती है, कभी कभी वो रिस्पेक्ट होती है। बट लाइफ में हमारी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनकॉम्प्रोमाइज होनी चाहिए, मतलब कि ये तो मैं नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, उसे ही डिग्निटी कहा जाता है। फिर वो सर्कमस्टांसेस कैसे भी हो, अब ध्यान से देखोगे तो बहुत गहरा है ये, लेकिन हम अपनी लाइफ में ज्यादातर चीजें लोगों को खुश करने के लिए करते हैं, पीपल प्लीजिंग में बहुत है, और वो अनकॉन्शियस है, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई घर में रहते हैं, उनको डर लगता है कि मैं अपनी बात रखूं या नहीं रखूं। और जब हम अपनी बात नहीं रखते ना, तो वो जो हमारी डिग्निटी है, वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, गरिमा है, वो कम होती जाती है, सेल्फ इस्टीम कम होती है। मतलब अपने बारे में हम अच्छा फील करना बंद कर देते हैं, चाहे लोगों की गुड बुक्स में आ गए कि अरे ये तो कुछ नहीं बोलते, ये तो बहुत शरीफ हैं जी, ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो कुछ नहीं कहते, सबसे मिलकर चलते हैं, ये सब तो करना ही है। बट जिस मोमेंट पे मैंने देखा कि ये सही चीज़ नहीं है, तो फिर ये नहीं देखना मुझे कि वो मुझसे सीनियर कितने हैं, पोस्ट क्या है, मुझे कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा, मैं कुछ बात रखूंगा तो लड़ाई तो नहीं हो जाएगी, आर्ग्यूमेंट्स तो नहीं हो जाएंगे। वो फिर अपनी गरिमा के खिलाफ जाना है, डिग्निटी के खिलाफ जाना है। इसका कुछ हार्डकोर रूल नहीं है, बट जिस मोमेंट पे आपको लगे कि यार ये तो ठीक नहीं है, एग्जांपल आप घर में कुछ गलत होता हुआ देखें, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, चाहे आपके साथ नहीं, चाहे किसी और के साथ, चाहे आप ये देखें कि किसी न किसी तरीके का गलत बातें आ रही हैं, चाहे वो महिला को लेकर हो, चाहे वो पुरानी जो कहते हैं कुरीतियों को लेकर हो, बहुत सी चीज़ें हैं, तो फिर मुझे स्टैंड लेना है, मुझे बोलना प्यार से है, लेकिन उसके लिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी है।
0: ओके,
1: इसे ही डिग्निटी कहेंगे।
0: आपने कहा कि पीपल प्लीजिंग हम करते हैं, कई बार कंपनीज में हो या फिर अपने कार्यक्षेत्र में हो, हम कहते हैं कि अगर इनके साथ बना के नहीं रखा तो हमें ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगे। तो कई बार हम अपने ही एथिक्स के खिलाफ जा करके उनके साथ तालमेल बना के रखते हैं। तो क्या थिन लाइन डिफरेंस है, एडजस्टमेंट? कॉम्प्रोमाइज आप अपने एथिक्स के साथ कर रहे हैं, डिग्निटी के साथ, कैसे पता चलेगा?
1: ये मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, इस बात का अटेंशन रखता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ. जैसे आपने कहा, मैं जब जॉब करता था फिर मैं इस लाइन में आया, पर मैं अभी भी एक चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि वो लाइफ छोड़कर आया हूँ. ऐसा तो नहीं कि यहाँ भी मैं पीपल प्लीजिंग में चला जाऊँ, या जैसे आपने कहा कि इनके साथ बना कर रखोगे तो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, गुड बुक्स में रहोगे तो अच्छा रहेगा. लेकिन देने वाला वो इंसान नहीं होता है जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, देने वाला भाग्य है हमारा, भगवान कह सकते हैं. तो वो बोलते हैं ना, जो मेरे भाग्य में है वो कोई छीन नहीं सकता है.
0: एब्सोल्युटली, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जिनके साथ बना के रख रहे हो वही आपको आकर के अपॉर्चुनिटीज दें. अगर आपकी नीयत अच्छा है तो
1: और ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. पर हाँ, वही कि एक हमें डर रहता है कि अरे यार ऐसे तो नहीं हो जाएगा, वैसे तो नहीं हो जाएगा.
0: पर जी बिल्कुल,
1: मन खाता है. जो बोलते हैं कि एक बहुत फेमस बुक है, टॉप 5 रेग्रेट्स ऑफ द डाइंग. तो वो एक नर्स थी, तो उनका काम था कि वो उन लोगों को की सेवा करती थी जो जिनके पास लास्ट जीवन के 6 महीने 1 साल हैं, किसी को कैंसर है, ऐसी बीमारियां हैं. तो वो उनसे पूछती थी, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रेग्रेट क्या है? वो वैसे ही पूछती थी, बाद में उन्होंने बुक बनाई. नंबर 1 रेग्रेट लोगों का यही होता है कि वो पीपल प्लीजिंग में रहे. उन्होंने वो नहीं किया जो वो करना चाहते थे. और आप भी देखिएगा ध्यान से कि ज़्यादातर फ्रस्ट्रेशन इसी बात की होती है कि मैं वो नहीं कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए. अब उसमें बंधन खुद के होते हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, या जैसे मैंने कहा कि जब हम स्टैंड लेते हैं तो क्रिटिसिज्म भी सुनने को मिल सकता है. आपको रूट भी समझ सकते हैं, आपको ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे आजकल ये नई जनरेशन सुनती है ना, आजकल के बच्चे तो बहुत बदतमीज हैं. बदतमीज कौन कह रहा है? वो ये कह रहे हैं कि आप मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहे हो? आप किसी के हिसाब से नहीं चलोगे, वो आपको सीधा डिक्लेयर ही करेंगे, सर्टिफिकेट दे देंगे कि ये तो रूट है, ये तो बदतमीज है, ये तो सुनते नहीं है. बट मैं वो क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्लियर होना चाहिए कि मुझे स्टैंड लेना है सही चीज को लेकर. तो बस वही गरिमा, वही डिग्निटी की बात आ जाती है. लोगों को खुश नहीं करना है. अब जैसे ये लेटेस्ट प्रोटेस्ट हुए, तो सोचिए कि बहुत से बच्चे नहीं गए, है ना, बहुत से बच्चे गए. अब सही गलत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट जिनको लगा कि इनफ इज इनफ, आई हैव टू टेक अ स्टैंड, तो फिर किसी को लाठी भी पड़ी है, किसी ने अनकंफर्टेबल हुए हैं कुछ दिन. बट वो गरिमा की बात है ना कि इट्स ओके, थोड़ा अनकंफर्ट सहन कर लेंगे, थोड़ा पिट लेंगे, कोई बात नहीं. बट आई हैव टू टेक अ स्टैंड, क्योंकि ये उसके खिलाफ है जो मैं नहीं अलाइन नहीं कर रहा हूँ जिन चीज़ों को लेकर, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना.
0: ओके जी बिल्कुल. तो अपने आप से सवाल पूछना है कि जो आप कर रहे हैं उसमें आपकी इंटेंशंस क्या है, क्या आप उसमें कंफर्टेबल हैं, नहीं है, कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं. और कुछ अगर सहन करना पड़ता भी है तो अच्छे के लिए कर रहे हैं,
1: हाँ,
0: गरिमा के साथ, तो भी आप अपने आप से ही सवाल कर सकते हैं.
1: जी
0: ओके.
1: अब ये वही मतलब, ये मतलब नहीं है कि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में ही चलूंगा जो दुनिया कह रही है, इसका ये मतलब नहीं है. इससे फर्क नहीं पड़ता है. जरूरी नहीं है कि लोग लेफ्ट में जा रहे हैं और आप राइट में जाओ तो आप सोचो कि मैं तो रेबल हूं, मैं तो सही कर रहा हूं. नहीं, हो सकता है जो लोग जा रहे हों वो डायरेक्शन भी सही हो, बट आप किस इंटेंट से वो कर रहे हो. सभी लोग कॉलेज जाते हैं, आप कहो कि नहीं मैं तो खुद पढ़ाई करूंगा, कुछ लोग होते हैं ना, इसका यह मतलब नहीं कि वो सही है. हो सकता है मैं कॉलेज गया हूं पर किस इंटेंशन से गया हूं, मैं क्या सीखने आया हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, वो मैटर करता है कि आपकी इंटेंशन क्या है कुछ भी करने के लिए.
0: जी. और हितेश जी, आज फ्रेंडशिप डे है तो कुछ क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास. कहते हैं कि दोस्त अच्छे हों लेकिन गलत आदतें हो, जैसे स्मोकिंग ड्रिंकिंग है. आज भी हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुन रहे थे, नशा मुक्ति के अभियान के तहत, तो वो छोड़ने को तैयार नहीं हो वो आदतें, तो हमारे साथ बहुत अच्छे हों लेकिन हमें भी प्रेशर करते हों, फिर भी कहते हैं कि संग का रंग लगता ही है, तो ऐसे दोस्तों के संग में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, अपने डिग्निटी को मेंटेन करते हुए कैसे हम मना कर सकते हैं उनको?
1: पता है, दोस्ती कहें है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी फ्रेंडशिप डे,
0: बिल्कुल आपको भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे और हमारे सभी लिसनर्स को भी
1: जी। असली में दोस्ती का मतलब क्या होता है, देखिए बहुत इजी होता है, जब सब कुछ अच्छा अच्छा हो ना तो सब खुश रहते हैं, सब अच्छे दोस्त है। पता तब चलता है जब कोई सिचुएशन आती है, है ना,
0: राइट।
1: एंड ये एक सिचुएशन हो सकती है कि आप थोड़े अलग डायरेक्शन में है दुनिया से, मान लीजिए आजकल तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक नॉर्मल थिंग कह सकते हैं जो है ना लोगों में, तो आप कहो कि मैं आई डोंट स्मोक, मैं कुछ नहीं करता हूँ, तो आपको प्रेशराइज किया जाएगा, है ना। बट रियल फ्रेंडशिप ये होती है कि वो आपको एक्सेप्ट करे। मतलब मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में था, जब मैं ऑफिस में था, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है बचपन का ही, है ना, तो मुझे याद है कि जब मैंने लाइफ में कोई भी डिसीजन लिया है, मुझे ये करना है ये करना है, तो वो एक्सेप्टेंस मिलता है। असली फ्रेंड्स वो हैं। कंडीशनल फ्रेंडशिप होगी तो फिर जब तक आप अगेन उनकी गुड बुक्स में हो तो वेल एंड गुड, जब से आपने कहा कि नहीं, आपने अपनी गरिमा के लिए सवाल उठाया, स्टैंड लिया, तो वो आपको जज करेंगे, आपको कमेंट करेंगे, आपको पुश भी करेंगे,
0: राइट।
1: तो फिर वो आपको समझना है कि ज्यादा जरूरी क्या है। दोस्ती हमें लगता है, लेकिन वही बात है कि कुछ भी आप देखें, आपके जीवन का अनुभव होगा, हमेशा चलनी बहुत मुश्किल है अगर मैं खुद से संतुष्ट नहीं हूं तो, है ना, खुद मैं स्टैंड नहीं लेता हूं, मेरी डिग्निटी नहीं है, तो फिर दोस्ती भी लाइफ टाइम चलनी मुश्किल है, है ना। तो इसलिए अगर ऐसा है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं आपको या पुश करते हैं, तो इट्स बेटर कि धीरे धीरे मैं अपना एक हल्का एक सेफ डिस्टेंस बना के रखूं। ये भी फिर सेल्फ रिस्पेक्ट में आता है, गरिमा में आता है कि मुझे मेरा रूटीन, मेरी क्या नीड्स है, मेरी उन्नति के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है,
0: ओके
1: उससे अलाइन होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ को। कोई भी चीज़ अलाइन नहीं होती, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हों चाहे रिलेटिव्स हों, इंटेलेक्चुअली एनर्जी वाइज फिर सेफ डिस्टेंस बना कर रखना बहुत ज़रूरी है। इसका ये मतलब नहीं आप हेट करते हो उनको, आप उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, नहीं, बट मैं अपने लिए एक हेल्दी डिस्टेंस बना कर रखूँगा, वो मैं करूँगा,
0: ओके, क्योंकि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, गरिमा के लिए, और जो मेरे सेहत के लिए अच्छा है, सेल्फ लव के लिए अच्छा है।
1: yes.
0: तो यहाँ पर एक बात मैं सेल्फ लव से रिलेटेड पूछना चाहूँगी आपको, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट, गरिमा को बना के रखने के लिए आजकल सेल्फ लव इतना हम कर लेते हैं कई बार कि हम सेल्फिश बन जाते हैं, तो इसमें कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं?
1: ओके, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने शुरुआत की थी कि अब एक असमंजस होता है, स्पेशली जब एक क्लोज रिलेशन्स होते हैं जिनसे हमें प्यार होता है, तो आपने सुना भी होगा बहुत बार कहते हैं कि जहाँ प्यार होता है वहाँ फिर सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, है ना, मतलब वो इंसान, वो रिश्ता आपके लिए कितना ज़रूरी है, तो फिर आपको कई बार आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है, ईगो तो बिल्कुल ख़त्म करनी होती है, है ना, पता है आपको उनको मेरी ज़रूरत है, तो फिर आप, हो सकता है कुछ आपने रूल्स बनाए हैं, एग्जांपल मान लीजिए आप जल्दी सो जाते हैं पर आपके किसी क्लोज वन को नीड है आपकी, तो ऐसा नहीं कि नहीं नहीं मैं तो टाइम से सो जाता हूँ, उस समय उस इंसान को ज़रूरत है मेरी, है ना, तो उस समय उस रिश्ते की वैल्यू हमें करनी है, है ना, तो उसमें फिर डिग्निटी की बात सिर्फ ये आती है कि अगेन कुछ चीज़ें हैं जो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, उसके अलावा यू नो फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। मतलब एक पिकासो जो बहुत फेमस पेंटर रहे, उन्होंने एक लाइन बोली थी कि लर्न रूल्स लाइक अ प्रो, सब रूल सीख लीजिए एंड ब्रेक लाइक एन आर्टिस्ट। उन्होंने सब रूल सीखे, लेकिन आर्टिस्ट क्या होता है, जो रूल पता है उसे क्या है, पर वो ब्रेक करता है, कुछ चेंज करता है। तो हमें रूल सब पता होने चाहिए, बट कुछ रूल्स ब्रेकेबल हैं, है ना
0: जी।
1: तो वो किस लिए कर रहे हैं हम, ताकि उस रिश्ते को मैं बना कर रखूं।
0: क्योंकि ऐसा लाइफ का कोई रूल नहीं, कुछ कह सकते हैं कि ये रूल सही है ये गलत है।
1: बिल्कुल सही बोला आपने, ये कुछ नोटबुक नहीं है कि हमें दे दी रूल बुक कि ये सही है ये गलत है।
0: संविधान के अनुसार,
1: संविधान के
0: वो देश में है, लेकिन अपने लाइफ में तो कुछ गलत कुछ सही नहीं होता, लेकिन आपकी इंटेंशन सही होना चाहिए, किसी और को आप हार्म ना पहुंचे।
1: अब उस केस में आप ये कह सकते हो कि इस रिश्ते की गरिमा क्या कहती है, है ना। तो रिश्ते की गरिमा के लिए हो सकता है मुझे अपनी गरिमा पर कुछ लेवल तक सेक्रीफाइस करना पड़े। अगेन वही बात कि कुछ लेवल तक ये
0: फ्लेक्सिबिलिटी हो,
1: फ्लेक्सिबिलिटी हो, लेकिन कुछ रूल्स कभी नहीं टूटने चाहिए, है ना
0: जी।
1: तो वो बात का बस ध्यान रखना है
0: जी। और यहाँ पर दोस्ती पर एक और सवाल, अगर दोस्तों को लगता है कि मिलते रहना ही फ्रेंडशिप है और आप जिम्मेदारी के कारण नहीं मिल पाते हो, क्या फोन पे अच्छी दोस्ती रह सकती है, जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस रिलेशनशिप कई बार, तो क्या कहेंगे आप?
1: मैं तो बहुत बार बोलता हूँ, मैं इस बात का बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि फिजिकल कनेक्टेडनेस रहना बहुत बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इमोशनल कनेक्टेड रहना। इसका मतलब ये है कि मैं सामने वाले इंसान के इमोशंस को समझ पाऊँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा बेस्ट फ्रेंड, बचपन का बेस्ट फ्रेंड, वो कभी कभी मुझे रात को 2 बजे कॉल करता है और मैं 9:30 सोने वाला, पर जब भी वो मुझे रात को कॉल करता है ना तो मैं उठाता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कुछ तो इमरजेंसी है, तभी उठाता हूँ, है ना। अगर मैं शांत नहीं हूँ, अगर मैं हील्ड नहीं हूँ, तो मैं यही सोचूंगा देखो मतलब के टाइम पे कॉल करता है और इसको पता नहीं कितने बजे कॉल करना चाहिए। बट इमोशनली मुझे पता है कि मैं कनेक्टेड हूँ उस इंसान से, है ना। तो मैं बहुत बार ये बात बोलता हूँ कि चार दीवानी में रहना, या जैसे कहा कि मिलते रहना, फोन पे बात करते रहना, ज़्यादा बात करना, ये फ्रेंडशिप की चेकिंग नहीं होती है। चेकिंग वही बात कि एक इंसान की चेकिंग होती है कि मुसीबत के समय में, क्राइसिस में वो क्या कर रहा है ना, वो मैटर करता है, बाकी तो इंडिपेंडेंट होकर रहना चाहिए
0: जी। बिल्कुल।
1: मतलब मुझे अभी लेटेस्ट कुछ ऐसा आया मेरे सामने कि किसी भाई ने अपने बहन को बोला प्रॉपर्टी इश्यूज एंड ऑल, तो ही सेड कि यू नो अब प्रॉपर्टी पे सबका इक्वल हक होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, बट इलॉजिकल माइंड क्या करता है, ग्रीड क्या करवा देती है, तो वो कहते कि आपको भाई चाहिए या प्रॉपर्टी चाहिए। जैसी मैंने ये लाइन सुनी ना, मैंने सोचा भाई की डेफिनेशन क्या हुई फिर। बहन को जरूरत है, वो कह रहे भाई चाहिए, मतलब भाई मतलब ये कि रिश्तों त्योहारों में आओ,
0: राखी
1: बांधो, खुश रहो, मस्ती करो। अच्छा जब ये क्राइसिस है तब तो क्या डेफिनेशन हुई, ये सब कुछ नहीं होता है। तो ये फ्रेंडशिप क्या होती है, अगर मैं उस इंसान के भावनाओं को समझकर मैं कंपैशनेट होकर, ये नहीं कि जैसे रिश्तों में होता है, हस्बैंड वाइफ में होता है, फ्रेंडशिप मतलब कोई भी रिश्ता है ना, एक ने कुछ कहा, सास ने बहू को कहा, बहू ने सास को कहा, एक वो दुखी है, हम 3 बातें और ऐड कर देते हैं, तो क्या फायदा हुआ चार दीवारी में एक छत के नीचे रहने का, इससे अच्छा दूर रहो लेकिन इमोशनली स्टेबल रहो, वो बेटर है।
0: राइट।
1: तो फिर वो बस ध्यान रखना है कि फिजिकल कनेक्टेड से कुछ फर्क नहीं पड़ता,
0: क्योंकि सबके जीवन अलग अलग दिशाओं में है, सबके लाइफ अलग है, इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। अच्छा है कि आप मिलो नहीं मिलो, लेकिन दोस्ती कायम रहे।
1: यस
0: जी। एक और सवाल दोस्ती से ही रिलेटेड है, आज फ्रेंडशिप डे भी है, तो अगर किसी फ्रेंड ने पास्ट में कुछ गलत बोला हो आपके लिए और अलग मतलब दूसरे लोगों के सामने, और वो इस बात के लिए सॉरी भी है, उन्हें ये रियलाइज भी है, लेकिन आपको डर है कि कहीं वो फिर से ये रिपीट ना कर दे दोबारा, तो उन्हें क्षमा कर देना चाहिए या नहीं?
1: देखिए जैसे बोलते हैं कि सॉरी सॉरी कहना विदाउट चेंजिंग बिहेवियर इज कॉल्ड एज मैनिपुलेशन. मतलब कि अब आप श्योर तो नहीं हो कि उन्होंने अपने व्यवहार को बदला है या नहीं बदला है, है ना. हम क्या कर सकते हैं, हम उन्हें माफ कर सकते हैं, लेकिन माफ करने के साथ साथ ये ध्यान रखना है कि मैं उस पोजीशन में अभी नहीं आऊं कि वो चीज फिर से हो जाए. इट कैन बी वट एवर, है ना, जो
0: हमें ध्यान रखना
1: है, हमें ध्यान रखना है,
0: अपने मिस्टेक से भी सीख लेना चाहिए.
1: एग्जैक्टली, तो अपनी मिस्टेक से सीखना, मैं इसको डिग्निटी से कनेक्ट करूंगा और यही अपनी बाउंड्री से कनेक्ट करूंगा, विच मीन्स कि अपने आप को फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करके रखना है
0: और डिटैच भी होकर रहना है.
1: इमोशनली मतलब अपने आप को बचा कर रखना है कि मतलब कि हम क्या करते हैं ना, हम सिर्फ एक इंसान की बात नहीं होती है, किसी ने गलत किया, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि ये इंसान ने ऐसा किया, फिर आगे किसी इंसान से कनेक्शन में आते हैं और सेम पैटर्न रिपीट करते रहते हैं. ये नहीं सीखते आज के समय में, दुनिया में सबसे बड़ा जो सुनने को आता है, मैं बहुत अटैच हो गया, मैं बहुत अटैच हो गई और वो मेरे लिए आसान नहीं है. हम लोग बदलते हैं लेकिन लेसन नहीं सीखते हैं.
0: तब तक वो एग्जाम अपने सामने
1: आता रहता है
0: जब तक आप सीखते नहीं,
1: जब तक सीखते नहीं हो. तो मतलब कहने की बात यह कि माफ तो सबको करना है. इसका मतलब क्या है, मैं एक छोटी सी स्टोरी से आपको बताता हूँ. एक बार एक बुद्धिस्ट मॉन्क्स कहीं जा रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है कहानी. तो एक महिला, एक लेडी थी, तो उनसे नदी पार नहीं हो रही थी. तो उन सब मॉन्क्स में से एक मॉन्क ने क्या किया, उनको अपने कंधे पर बिठाया और नदी पार करवा दी. तो जो बाकी मॉन्क्स थे ना, बहुत गुस्से में थे कि तुम एक फीमेल को कैसे हाथ लगा सकते हो. तो वो मोनेस्ट्री में गए और अपने सबको, मतलब वो गुस्सा करते रहे, बोलते रहे, अपने सीनियर को भी बताया कि तुमने उसको कैसे उठाया. तो उस मॉन्क ने बड़ी अच्छी बात बोली, उन्होंने बोला कि मैं तो उस लेडी को उठाकर वहां छोड़ भी आया, लेकिन तुमने अभी तक अपने मन में उसको बिठा रखा है.
0: सही बात है जी.
1: तो गलती हुई, लेट गो किया, लेसन सीखा, उसको इम्प्लीमेंट किया, उस नेगेटिविटी को कैरी करके नहीं रखा है, है ना. ये बहुत ज़रूरी है कि ये नहीं हो कि वो इंसान देखते ही आपको सिर्फ उनकी वो गलती दिखाई दे रही हो. ठीक है, आई एम जस्ट नॉट माई मिस्टेक, द अदर पर्सन इज जस्ट नॉट देयर मिस्टेक. ठीक है, चाहे गलती छोटी हो बड़ी हो, पर वो इंसान उस गलती से बियॉन्ड भी कुछ है. सीखा होगा उसने, नहीं सीखा हो तो भी कोई बात नहीं, मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करके तो रखना ही है, ये मेरा लेसन है.
0: बिल्कुल, क्योंकि हम सब भी गलतियां करते हैं और मौका देना चाहिए, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करना है.
1: exactly. का. इसलिए मैं एक लाइन बहुत बोलता हूँ और लोग हंसते हैं इस बात पर, मैं बोलता हूँ कि आप ये प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं भी करता हूँ, कि मैं तो चाहता ही नहीं कोई मुझसे प्यार से बात करे. तो लोग हंसते हैं कि तो ये क्या अटपटी सी बात है. तो मैं बोलता हूँ, हम तो बहुत बार बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, पर जब हम ये बोलते हैं ना तो 20-30% एक्सपेक्टेशन रहती है. तो मैं बोलता हूँ नेगेटिव में चलो, कि मैं चाहता ही नहीं कोई मुझसे प्यार से बात करे. क्यों नहीं चाहता, क्योंकि मैं खुद को प्यार देता हूँ ना. और यही गरिमा की बात आ गई कि आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, कोई मेरी इंसल्ट नहीं कर सकता, मैं चाह ही नहीं रहा हूं कि वो मुझसे मुझे प्यार करे. और जब ये चाहना खत्म हो गई, एंड एक्चुअली बात ये है कि जब हम खुद को इतना प्यार देते हैं, खुद से प्यार से बात करते, खुद को एक कंपैशनेट करुणामयी लेंस से देखते हैं, तो फिर हमें चाहना नहीं होती है कि दूसरे मुझे रिस्पेक्ट करें. तो ना तो मेरी कोई डिसरिस्पेक्ट कर सकता है और ना ही मेरी कोई प्रेज, ना ही कोई मुझे रिस्पेक्ट दे सकता है. ऐसी कोई चीज होती नहीं है, बोलते हैं ना, अरे रिस्पेक्ट तो दो. रिस्पेक्ट देने की चीज थोड़ी होती है, या तो आती है या नहीं आती है. तो रिस्पेक्ट ना मुझे किसी से मांगनी है, क्योंकि कोई दे नहीं सकता है. वो शैलो है, वो खोखलापन है. मुझे मिल भी जाएगी तो उससे क्या फर्क पड़ता है. सिमिलरली अगर कोई 50 लोगों के बीच में भी मुझे गलत बोल रहा है, तो मैं तो एक ही चीज प्रैक्टिस करता हूँ कि टेक डिसरिस्पेक्ट एज इन्फॉर्मेशन, कि वो एक इन्फॉर्मेशन है, जो भी उन्होंने कहा है वो जरूरी नहीं है सच है.
0: ओके
1: है ना. तो बस ये बातें हैं.
0: बिल्कुल. तो इस बात जरूरी है जो बात आपने कही कि मैं कोई मैं चाहता ही नहीं हूँ कोई मुझे प्यार से बात करे मेरे से,
1: क्योंकि मैं खुद को प्यार से बात करता.
0: हाँ, तो ये सेल्फ लव को याद करेंगे.
1: I give myself the love I am seeking.
0: ओके, ठीक है. तो अपने आप से प्यार करें आप. अगर अपने आप से प्यार करते हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं 94-14-15-14-15 इस नंबर पर. आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर. जब जैसे आपने कहा कि कोई आपकी आलोचना करता है या आपका डिसरिस्पेक्ट करता है तो आप उसे एज ए इन्फॉर्मेशन लेते हैं, है ना. तो क्या हम अनजाने में भी किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं कभी कभी? तो ऐसा कब कब होता है और हमें कैसे पता चलेगा कि हम उनकी गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं या उनके डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं?
1: बहुत बार होता है. एग्जांपल मैं आपको अपने पिछले कुछ दिनों से दूं, तो मैं टूर पर गया था. तो कई जगह ऐसा था कि हम लोग कार लेकर गए थे यहाँ से, और महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ गए थे इतनी दूर. तो कुछ जगह पर मुझे खुद ड्राइव करके जाना था, है ना. तो कई जगह क्या होता है कि गाड़ी के पीछे देखते हैं, कहते अच्छा तू प्रोग्राम कौन करवाएगा, सेशन कौन करवाएंगे. तो मैं बोलता था कि मैं ही करूँगा. तो लोगों के अंदर एक चीज बैठी हुई है. फॉर एग्जाम्पल हम बोल देते हैं अरे ये तो ड्राइवर है. लेबल्स, ये तो ड्राइवर है, ये तो
0: अगर स्पीकर है तो वो बैठ के आएंगे और ड्राइव.
1: हाँ, ये कहाँ की बात हुई, है ना. तो अब देखिए, मैं अगर मेरी रिस्पेक्ट अगर दूसरों पर निर्भर है तो मैं कहूंगा कि मैं क्यों ड्राइव करूं, मुझे एक ड्राइवर चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए. अननेसेसरी, पर मुझे पता है ना मैं कौन हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ. तो फिर वो लाइफ इजी हो जाती है बहुत. सिमिलरली हम कितने लेबल्स लगाते हैं अनकॉन्शियसली. अरे ये तो फीमेल है, ये तो सामान नहीं उठा सकते, है ना. अरे ये तो
0: मेडल्स ले सकते हैं इंडिया के लिए.
1: आज ही आया ना मेडल,
0: आज ही आया है और आ भी रहा है. बॉक्सिंग में तो 5 females में 4 females को गोल्ड मिला है.
1: ओ वाओ.
0: और 1 silver मिला है, मतलब मेडल्स ही मेडल्स मिले हैं.
1: हाँ, देखिए कई बार ठीक होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि चलो फीमेल्स को सीट देनी चाहिए, है ना, बस में ट्रेन में. लेकिन कई बार अननेसेसरी एक लेबल लगा लेते हैं कि फीमेल मतलब कमजोर.
0: हाँ,
1: तो ये भी तो उसकी गरिमा के खिलाफ हुआ ना. हम उसको एक कॉन्शियसनेस नहीं देख रहे, ये नहीं देख रहे कि उनकी मेरी चेतना सेम है. हम उनको एज अ जेंडर देख रहे हैं.
0: कई बार उनकी शारीरिक क्षमताएं कम होती है. हाँ, कुछ कारणों की वजह से. लेकिन आत्मा, जैसे आपने कहा, हाँ, चेतना तो
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल एक ही है. शक्ति भी चेतना में एक ही है, एक जैसे ही है. 8 शक्ति उनमें भी है, 8 शक्ति
1: बिल्कुल
0: आत्मा भी है.
1: तो जैसे हम फिर बोल देते हैं कि अरे ये तो मेड है, ना हाउस हेल्प है, ये तो सिक्योरिटी गार्ड है, ये तो ऐसा, मतलब बहुत
0: इंसान को हम इंसान नहीं समझते,
1: इंसान नहीं समझते. सीनियर जूनियर लेबल्स, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं. तो ये भी तो डिसरिस्पेक्ट करना हुआ.
0: जज करते हैं हम,
1: जज करते हैं. और हमारा माइंड बड़ा तेज है, वो तुरंत कैलकुलेट करता रहता है. अच्छा ये सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ये रिसेप्शनिस्ट हैं, इनको तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ. ये नर्स
0: हैं, उनको भी बोल देते हैं.
1: वेट्रेस हैं, ये नर्सेज हैं. वहाँ ये डिसरिस्पेक्ट है. उनको अपने बराबर समझना.
0: वो भी किसी फैमिली से आते हैं, किसी के भाई बहन, है ना, किसके इंसान पति पत्नी, इंसान है, किसी के माँ बाप है.
1: हाँ, इंसान है. तो इंसान तो बराबर है ना. तो मतलब अपने व्यवहार में ऐसा लाना, जैसे स्पेशली आप एक्स्ट्रा एफर्ट कीजिए चाहे शुरू में, पर आप किसी भी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो वर्ग में आपसे नीचे लेवल पे हैं, आपके सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जैसे हमने ये सब बातें की, हाउस हेल्प्स, आप उनसे प्यार से बात कीजिए.
0: क्योंकि उनके बिना तो आपका लाइफ है ही नहीं.
1: सिक्योरिटी गार्ड
0: की जॉब नहीं होती या वो नहीं होते तो आप सेफ नहीं रहते.
1: yes.
0: तो आप उनको थैंक यू बोल सकते हैं, जैसे आपने कहा. yes. कि प्यार से बात करें.
1: yes. आप उनको आज हैप्पी फ्रेंडशिप डे
0: भी विश कर सकते हैं. आप अपनी गरिमा के लिए, बढ़ाने के लिए उनसे बात कर सकते हैं प्यार से.
1: बिल्कुल, आपको अच्छा लगेगा. और ये दिल से ना, हो सकता है शुरू में एफर्ट लगे बाहर से, पर धीरे धीरे वो दिल से हो जाएगा.
0: बिल्कुल. तो कार्यस्थल और स्कूल में भी हम ऐसा ही कर सकते हैं अपने बिहेवियर्स में, ताकि लोग सम्मानित महसूस करें।
1: टीचर है तो बच्चों के साथ, बच्चे हैं टीचर के साथ, अपने ऑफिस में है वहाँ, तो मतलब ये तो एक ऐसी चीज है कि हम लाइफ में हर जगह यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट ये भी सोचना कि मतलब और डीप में जाए तो इवन ये भी थॉट आया ना कि यार ये ऐसे क्यों है
0: जी
1: ये भी डिसरिस्पेक्ट है,
0: तो आप माइनस वन में चले गए,
1: माइनस वन में चले गए, कार्मिक बन गया, आपने नेगेटिव थॉट क्रिएट किया है उनका।
0: मतलब दुनिया में बहुत सारे नेगेटिविटी है, लेकिन पॉजिटिव ढूंढने में भी बहुत सारी चीजें हमारे पास है जो कर सकते हैं अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए, अपने गरिमा को सही दिशा में रखने
1: मतलब
0: के लिए।
1: असली में गरिमा का मतलब ये हुआ कि सामने वाला व्यक्ति जैसा भी हो, आपको बिल्कुल उनकी बात समझ नहीं आ रही, अच्छी नहीं लग रही, आपके आइडियोलॉजी के बिल्कुल विपरीत है, फिर भी उनको रिस्पेक्ट करना, क्योंकि एक्चुअली में उस एनवायरनमेंट में अगर हम भी होते ना तो हो सकता है कि हमारी भी सोशल कंडीशनिंग वैसी ही होती। तो मतलब उनको चांस देना ठीक होने के लिए, और ठीक होने के लिए पहले मुझे उनको एक गरिमा से देखना पड़ेगा, तभी आप कुछ बोलेंगे कुछ समझाएंगे तो वो समझेंगे, नहीं तो वो एग्रेशन में गुस्से में रिजेक्शन में वो इंसान बदलेंगे नहीं, ये पक्का है।
0: राइट ओके तो हमें प्यार से बात करनी है, और लेकिन मान लीजिए हम ऊपर ऊपर से प्यार से बात कर रहे हैं बट हम अंदर में कुछ और सोच रहे हैं, तो ऐसा क्या अलाइनमेंट होनी चाहिए ताकि हम इंसानी टोटली मतलब रिस्पेक्टफुल रहें, सोच भी अच्छे रहें अच्छे तरीके से, और बिहेवियर में भी वो झलकना जरूरी है, तो क्या चीज कौन कौन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें?
1: एक ही चीज़ की चेकिंग करनी है, जब आप आराम से जब बैठें तो जस्ट चेक करें कि मेरे मन में मेरे दिल में प्यार का फ्लो एनर्जी का फ्लो कहीं ब्लॉक्ड तो नहीं है। मतलब जब मैं ये सोच रहा हूँ कि
0: कंडीशनल तो नहीं है,
1: ब्लॉक कंडीशनल तो नहीं है। ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, वो कहते हैं कि मैं सबको एक्सेप्ट कर सकता हूँ लेकिन ना ये एक इंसान मेरी लाइफ में है नहीं होता।
0: और खुद को भी नहीं करते हम एक्सेप्टेंस,
1: खुद पर, सही बोला आपने, खुद पर तो ध्यान ही नहीं जाता है। मतलब जैसे एक वो एक्सपेरिमेंट करवाते हैं कि जैसे अभी भी हम अपने श्रोताओं से करवा सकते हैं कि आप एक लिस्ट बनाइए जिसको आपको सबसे ज्यादा प्यारी है, वो इंसान हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं,
0: खुद की लिस्ट।
1: हाँ मतलब अब आप जो सुन रहे हैं तो पहले बच्चे आए होंगे कुछ आया होगा लेकिन खुद का नाम नहीं आया होगा, तो खुद सेल्फ लव तो है ही नहीं।
0: अगर खुद की गरिमा खुद नहीं रखेंगे तो दूसरे भी नहीं,
1: दूसरे रख ही नहीं सकते हैं, है ना?
0: राइट
1: तो आप क्या पूछ रहे थे?
0: जी बिल्कुल, मतलब कैसे अलाइनमेंट की क्या सूत्र है, कौन सी ऐसे तीन चार बातों का ध्यान रखना चाहिए या चेकिंग पॉइंट्स होना चाहिए, तभी हम जब हम बोल रहे हैं, मान लीजिए मैंने आपको अप्रिसिएट किया कि आप इतने अच्छे स्पीकर हैं और आप इतने अच्छे तरीके से लोगों को मोटिवेट करते हैं ताकि लोगों को नई दिशा मिले, लेकिन अंदर होगा बड़े स्पीकर हैं बहुत और भी स्पीकर अच्छे हैं, ये बड़े आए अभी अभी क्या आए हैं, है ना? तो ये अपने अंदर चल रहा है लेकिन बाहर में आपको प्रेज कर रही हूँ, इसका मतलब भी, इसका इम्पैक्ट भी नहीं पड़ा और मैं अपनी गरिमा के खिलाफ भी गई। तो ऐसे कौन से तीन चार चीजों का अलाइनमेंट अपने अंदर होनी चाहिए दूसरे को अप्रिसिएट करने के लिए या अपने गरिमा को रखने के लिए?
1: सबसे बड़ी चीज तो होनी चाहिए एक्सेप्टेंस, खुद की भी एक्सेप्टेंस, दूसरों की भी एक्सेप्टेंस,
0: दूसरों के रोल का
1: acceptance. दूसरों के रोल का एक्सेप्टेंस कि जिस कंडीशन से वो आए हैं, उन्होंने लाइफ में क्या देखा है, कैसे वातावरण में वो रहे हैं, किन लोगों के बीच में रहे होंगे जिसने उनको शेप किया है, है ना? तो एक्सेप्ट करना कि इट्स ओके। हमें क्या होता है कि वो बोलते हैं ना इट्स माय वे और हाई वे, हमें लगता है कि जैसे आपने शुरू में कहा कि एक रूल बुक बना ली हमने, और मजे की बात पता है क्या है
0: जी,
1: कि हम दूसरों को उन गलतियों के लिए जज करते हैं जो हम नहीं करते, और जो हम गलतियां करते हैं उस पर जज नहीं करते लोगों को,
0: नहीं क्योंकि इसे, हम करते हैं।
1: हाँ, इसे वो बड़ा अच्छा वर्ड है, बोलते हैं हिपोक्रेसी, है ना, कि मतलब मेरे साथ भी होता है कभी कभी जजमेंट्स आती हैं, मैं कहता हूँ यार ऐसे कैसे कर सकते हैं, फिर मैं ना तुरंत, अब वो काफी वर्षों की अभ्यास है, तो तुरंत क्या आता है मेरे मन में क्वेश्चन, हितेश तू हो गया परफेक्ट क्या?
0: सही बात।
1: फिर मैं अपने आप को तीन चार आ जाते दिखती हैं अपनी तीन चार गलतियां, बोलता हूँ पहले ये ठीक करना फिर बोलना कि उनको ये नहीं करना चाहिए।
0: सही
1: है ना, तो फोकस खुद पे आता है। तो पहला मैं कहूंगा कि एक्सेप्टेंस, कि जो जैसे हैं, अगेन एक्सेप्टेंस मतलब कि मैं उनके पास्ट को जज नहीं कर रहा हूं, मैं उनके प्रेजेंट जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी वो बोल रहे हैं कर रहे हैं, मैं उसमें कुछ भी जजमेंट्स क्रिएट नहीं कर रहा हूं, मतलब कमेंट्री नहीं कर रहा हूं कि दे शुड नॉट डू लाइक दिस, उनको ऐसे नहीं वैसे नहीं, ये सब ब्लेमिंग कंप्लेनिंग क्रिबिंग क्राइंग ये नेचर होता है, तो मुझे ये नहीं करना है।
0: ओके।
1: दूसरा खुद पे ध्यान देना है, जैसे मैंने कहा थोड़े दिन प्रैक्टिस लगेगी, जैसे ही आपको किसी की कमी दिखाई दे तुरंत खुद पर लेकर आइए कि मैं ठीक हो गया हूँ क्या, मैं भी तो गलती करता हूँ ना, तो पहले इसको ठीक करता हूँ फिर दूसरों का जज बनूंगा, है ना, तो वो मुझे करना है। और तीसरा वही बात कि बार बार चेक कीजिए कि मेरे मन में किसी के लिए ब्लॉकेज तो नहीं है, आपको दिखाई देगा लोगों की बातें कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो दो मिनट बैठिए एंड फील कि मुझसे बहुत अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस प्यार उन सोल तक जा रहा है, उन्होंने जो भी किया मैं स्वीकार करता हूँ
0: जी,
1: उनके लिए नहीं खुद के लिए।
0: और कहीं ना कहीं हम कार्मिक सर्कल में बंधे हुए हैं, इसलिए वो ही लोग हमारे सामने आए हैं, बाकी इतने करोड़ जनता है पूरे पृथ्वी में वो हमारे सामने नहीं है, तो अगर हम अभी से उन्हें अप्रिसिएट नहीं करते हैं, थैंक यू नहीं बोलते, भले सामने ना बोलो लिख कर बोलो,
1: माफ नहीं करते, माफी नहीं मांगते, तो लोग चेंज हो जाएंगे, हो सकता है लोग चेंज हो,
0: हम चेंज नहीं हो पाते।
1: हाँ, सिचुएशन वही आएंगी, वही कहते रहते अरे आजकल तो लोगों पर भरोसा नहीं करना, अरे तो 10 साल के बच्चों से भी पूछोगे ना उसको भी पता है क्योंकि वो भी सुन चुका है बहुत बार, लेकिन फिर भी हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं,
0: जी
1: सीख नहीं रहे ना,
0: इसलिए सीखना है। और इसके साथ साथ जैसे आप कह रहे थे कि जो कसौटी है या अप्रिसिएशन करने के तरीका, ये भी हो सकता है कि अगर हम किसी को अप्रिसिएट कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं या माफ़ी मांग रहे हैं, तो एक तो हमारे वृत्ति में भी होना चाहिए, हमारे बोल में तो होना ही चाहिए, और हमें दिल से भी करना चाहिए। और किसी को अप्रिसिएट कर रहे हैं तो बी स्पेसिफिक होके भी आप कर सकते हैं कि आपकी ये बातों के लिए आपको थैंक यू, ऐसा नहीं कि बस आप जाते जाते बोल दिया सिक्योरिटी गार्ड को थैंक यू भैया करके निकल,
1: और वो भी आंखें नहीं मिलाते।
0: यस यस
1: ये मेरे साथ भी होता था, ऐसे लगता था कि मैं बोलूंगा पता नहीं वो क्या बोलेंगे या नहीं, मेरी डिसरिस्पेक्ट ना हो जाए, तो हम डरते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा बी स्पेसिफिक, किसी बात को लेकर कि कोई बात अच्छी लगी आप उन्हें बताइए कि आपने वो किया ना बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच,
0: बोल इतने अच्छे से, मतलब खड़े होके ग्रीट भी कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड्स, खड़े होके ग्रीट भी करते हैं और खड़े होके ड्यूटी भी करते हैं उन्हें।

0: जी
1: तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो, कुछ पुरानी बुक्स हो अगर वो पढ़ सकते हैं, कुछ भी ऐसा सोचिए कि आप उनको बोलिए कि आप पूरा दिन ड्यूटी करते हो, बीच में टाइम मिलेगा आप थोड़ा पढ़ लीजिए ना, थोड़ा अच्छा रहेगा। किसी भी तरह से हेल्प कर सकते हो आप लोग।
0: बिल्कुल। और गरिमा के बारे में एक और सवाल, आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे हम आपसे कि अपने दिनचर्या में ऐसे कौन सा एक छोटा बदलाव करें जिससे हर व्यक्ति सम्मानित महसूस करें, हम खुद भी सम्मानित महसूस करें।
1: मतलब खुद के लिए कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट
0: भी, और आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण दूसरे भी सम्मानित महसूस करें, उन्हें भी इंसल्ट फील ना हो।
1: ओके। मुझे लगता है कि दूसरों को सम्मानित करने के लिए भी सबसे बड़ी चीज़ हम क्या कर सकते हैं वो ये है कि मैं खुद को कैसे देखता हूँ, क्योंकि लोग सीखते हैं, लोग
0: आप अपने आप को कैरी कैसे करते हो,
1: आप अपने आप को कैरी कैसे करते हो, बोलते परफेक्टली इम्परफेक्ट, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, आप अपनी इम्परफेक्शंस को भी कैसे कैरी करके रखते हो, है ना। मुझे पता है अगर मैं ये बात बोलूँगा तो लोग मानते नहीं हैं, बट जैसे मैं बोलता हूँ प्यार से आराम से बोलता हूँ, इसी रीजन की वजह से मैं 2 बार एक इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ था
0: जी।
1: और वो मेरी बहुत ड्रीम कंपनी थी, डिकैथलॉन, एक स्पोर्ट्स का वो है।
0: यस।
1: तो 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया, उसके बहुत से राउंड्स होते हैं, फिजिकल सब कुछ। तो मैंने उनसे पूछा कि 2 बार रिजेक्टेड, बोलते कि आप बहुत स्लो बोलते हो,
0: सॉफ्ट बोलते हो,
1: वो नहीं चलेगा। तो मैं, मुझे वो इम्परफेक्शन लगी, बट उसे कैरी करके कि मैं इस मैंने बहुत कोशिश की, हर तरीके से कोशिश की कि नहीं कि ये सॉफ्टनेस चली जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, पर वो नहीं हुआ, है ना। तो मुझे समझ आ गया कि दिस इज समथिंग, वो एक होता ना नेचुरल, तो फिर इसको कैरी करके मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। तो अगर आप लाइफ इम्परफेक्ट होते हुए भी खुश हो, आप इम्परफेक्ट होते हुए भी आप चीज़ें कर रहे हो, तो आप लोगों को इनडायरेक्टली सिखा रहे हो कि सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे रखी जाती है। अपनी विशेषताओं को भी यूज करो और अपनी कमियों को साथ लेकर चलो ताकि वो धीरे धीरे खत्म हो जाए, है ना। और दूसरों के लिए हम जैसे बोलते हैं कि होल्डिंग द स्पेस फॉर देम, कि आप एक ऐसे इंसान बने कि आपके सामने कोई इंसान कुछ भी बोल पाए, ये बहुत बड़ी चीज है। हमें कभी कभी ऐसा लगता है ना कि घरों में रहते हैं, हम लगते हैं ये मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हैं। आप थैंकफुल रहिए कि वो आपको बोल रहे हैं जो उनके अंदर चल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज आज के समय में है कि लोग वो नहीं बोलते जो उनके अंदर चल रहा है, क्योंकि वो डरते हैं,
0: क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा,
1: रिएक्शन मिलेगा, तो वो छुपाना शुरू कर देते। सो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं एक ऐसा इंसान बनूं कि अगेन डिग्निटी के साथ, ऐसे नहीं कि कोई कुछ भी बोले, लेकिन मैं एक ऐसा इंसान बनूं कि जिसके सामने इंसान फ्रीली होकर कुछ भी बोल पाए, दे शुड नॉट फील जज्ड, उनको एक एक्सेप्टेंस फील होना चाहिए।
0: ओके। लास्ट सवाल करने वाली थी लेकिन 2 और सवाल आ गए हैं, दोस्ती के ऊपर है ये। दोस्त अगर ज़्यादा अच्छे नए दोस्त बनाने लगे और उनके नए दोस्त बन जाए और वो हमारे साथ प्लान कैंसिल करते रहें, पहले जैसा ना रहें, तो हम चुपचाप डिस्टेंस को एक्सेप्ट कर लें या फिर दोस्ती बचानी चाहिए?
1: मतलब अगेन ये रूल
0: कोई रूल नहीं है,
1: आपके ऊपर डिपेंड करता है किस कंडीशन में क्या करना चाहिए। दोनों ही बातें ठीक है, मतलब एक तो ये कि अगर आपको दिख ही रहा है ना, तो इट्स अ साइन कि वो बोल नहीं पा रहे पर वो कर तो रहे हैं। बट मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं हमेशा ये करूँगा कि मैं उनसे पूछूँगा, प्यार से पूछूँगा कि क्या हुआ, एवरीथिंग ओके, कुछ इश्यू है। बट अगर मुझे दिख गया कि एंड इट्स ओके, मतलब
0: एक्सेप्ट कर लेना चाहिए,
1: हाँ
0: थोड़ा स्पेस देना चाहिए।
1: अब एक बच्चा है, बच्चा जब छोटा होता है तो मम्मी से चिपक के रहता है,

0: दो तीन साल बाद क्या होता है,
1: फिर दोस्तों से चिपक
0: जाता है। बिल्कुल सही बोला। तो मम्मी क्या करती है फिर, मम्मी ये थोड़ी बोलती है कि यार तू 3 साल तो तू मेरे साथ था, आज तेरे दोस्त बन गए बड़े। वो क्या कहती है, बच्चा है, बड़ा होगा, इट्स ओके, दोस्त बनाने दो, मैं अपने आप को ऐसा बनाऊं कि मेरी दोस्ती कोई रिप्लेस ना कर पाए, चाहे वो दुनिया भर घूमे,
1: राइट,
0: बट जो मेरे साथ कनेक्शन है। वो एक बहुत सुंदर लाइन है ना दलाई लामा की, कि गिव द वंस यू लव विंग्स टू फ्लाई, रूट्स टू स्टे एंड रीजन टू कम बैक। सबको उड़ने दो, बांधना नहीं है, लेकिन अपने आप को ऐसा बनाओ कि दे शुड हैव अ रीजन टू कम बैक अगर वो दूर भी हो गए तो, और रूट्स ऐसी हो कि वो रहें आपके साथ। आप अपने आप को इतना पीसफुल, हैप्पी, एक्सेप्टिंग बनाइए कि वो कहीं नहीं जाएंगे, और जाएंगे भी तो उनको रियलाइज हो जाएगा कि यार वो इंसान बेस्ट है, और अगर नहीं भी तो फिर ठीक है ना, क्या फोर्स तो हम वैसे भी कभी किसी को ना कर सकते।
1: कहते हैं ना, जो आपके हैं वो वापस
0: आएंगे।
1: हाँ। जो आपके नहीं है वो
0: किसी ना किसी कारण की वजह से चले जाएंगे।
1: कहते हैं अगर दोस्त मुझे रोस्ट करते हैं, मजाक करते हैं, पर मुझे बुरा लगता है, पर वो कहते हैं कि दोस्ती में मजाक मस्ती तो होती है, तो क्या करना चाहिए?
0: मुझे एक चीज याद आती है कि जब मैं ऑफिस में था तो मेरे एक सीनियर थे, 5-6 साल सीनियर थे, बट हम बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे, तो बहुत मस्ती करते थे, वो मेरा मजाक उड़ाते थे, मैं भी, है ना, ज्यादा नहीं लेकिन मैं भी।
1: आता है मजाक उड़ाना आपको?
0: आता है। तो फिर मैंने जॉब छोड़ा, तो मैं कुछ महीने बाद मिला उनसे, बट मैं इस दौरान, मैंने जॉब छोड़ा था क्योंकि मैं अपने मेडिटेशन प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से कर रहा था, और मैं 6 महीने में ही इतना ज्यादा ग्रो किया, जो आज का टॉपिक है, कि मेरी गरिमा इतनी बढ़ गई, सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी बढ़ गई, अंदर इतनी पावर बढ़ गई। वो इंसान अभी भी वैसे ही थे, वो मुझे मार भी रहे हैं, दोस्ती वाला मार रहे हैं, पर ऐसे मार रहे हैं जो पहले मुझे एक्सेप्टेड था। पता नहीं इतना पावर मेरे अंदर कहां से आया, मैंने उनको बोला कि आगे से मुझे टच करने की जरूरत नहीं है, और वो इंसान बिल्कुल सहम कर साइड हो गया, और उसके बाद उसने मुझसे कुछ कहा नहीं। मैंने सोचा कि ये कैसे हुआ, तो मुझे समझ आया कि असली में वो सब चीजें मैं एक्सेप्ट कर रहा था, मैं भी, मैं डर में था कि ये मेरे सीनियर हैं, दोस्ती खराब ना हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट अब मुझे डर नहीं था, तो मैंने उनको बोला। तो अगेन गरिमा कहती है, डिग्निटी कहती है कि अगर आपको बुरा लग रहा है तो आपको बोलना सीखना है, बाउंड्री क्रिएट करना सीखना है, इन सिंपल लैंग्वेज, क्या सॉरी बट दिस इज नॉट अलाउड, ये लैंग्वेज मेरे साथ नहीं चलेगी, ये बातें मेरे साथ नहीं चलेंगी, है ना। कभी कभी ऐसा होता है, कभी मैंने भी बहुत बार किसी को कहा है, कोई गलत लैंग्वेज यूज करता है, मैं बोल देता हूँ मेरे सामने ये बात नहीं चलेगी, यू कांट टॉक टू मी लाइक दैट, समझ जाते। तो बिल्कुल आप कह सकते और कहना चाहिए, अगेन बाउंड्री जैसे बोलते हैं पोरस होती है, फिक्स नहीं होती है, आप खींच भी सकते हो, आप बढ़ा भी सकते हो, थोड़ी बढ़ानी है तो बढ़ाइए। दोज हु मैटर वॉन्ट माइंड एंड दोज हु माइंड वॉन्ट मैटर। तो अगर वो सच में आपको रखना चाहते हैं लाइफ में, आप तो रखना चाहते हो, क्योंकि अगर नहीं रखना चाहते तो आप किसी भी कारण से उनको घोस्ट कर देते, वो रोस्ट कर रहे आप घोस्ट कर देते
1: जी,
0: लेकिन आप अगर रखना चाहते हो तो आप क्या कह रहे हो, आप उनको समझा रहे हो, तो उनको समझना जरूरी है
1: जी। अंत में एक बात पूछ लेती हूँ मैं
0: जी,
1: कि आपने कहा कि आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और गरिमा को बढ़ाया, यानी कि हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ा सकते हैं। आपने कहा कि मेडिटेशन प्रैक्टिस से आपने उसे बढ़ाया, तो अपने आप से आपने क्या बातचीत की मेडिटेशन प्रैक्टिस के दौरान, आप अभी भी कर रहे हैं, ताकि जो श्रोता सुन रहे हैं वो भी बढ़ा सके अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, गरिमा को?
0: हाँ, ये मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, जो मैंने शेयर भी किया शुरू में, कि आई एम लव, मैं प्रेम हूँ, और आई डोंट सीक लव, मैं प्यार को ढूंढ नहीं रहा,
1: मांग नहीं रहा हूँ,
0: मांग नहीं रहा हूँ कोई मुझे प्यार दे, आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि मैं किसी से अटैच हो गई और शी लॉस्ट हर मदर और उस वजह से वो इमोशनली डिपेंडेंसी आ गई। तो होता क्या है कि वो एक वैक्यूम हम सबकी लाइफ में क्रिएट होता है और अगर वो मैंने खुद से नहीं भरा ना तो हम हमेशा लोगों में ढूंढते रहेंगे। तो बार बार प्रैक्टिस करना कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है टू फील लव्ड, अच्छा फील करने के लिए मुझे किसी इंसान की बाहर की किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ।
1: जो लोग बोल देते कि आई एम इनफ,
0: आई एम जस्ट सो इनफ, बहुत प्रैक्टिस किया मैंने ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे याद है शुरू शुरू में जब आप टीनेजर होते हो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आई शुड फील इनफ, आई शुड फील कम्प्लीट, कि मैं भरपूर हूँ। तो ये बहुत, जैसे बोलते ना, ऐसे घोट कर अंदर डाल लेना।
1: जब भी कोई भी सिचुएशन आए उसमें आप अपने आप को ये याद दिलाते थे,
0: पहले ही याद दिलाइए। इट्स लाइक अ नेट प्रैक्टिस, जो मेरा अनुभव है कि आप अपने आप को फीड करते जाइए करते जाइए। जब सिचुएशन आएगी ना, ये जो फीडिंग है ये इतना वंडरफुली काम करती है कि आपकी जो बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, वो आपको याद दिला देती है, हितेश आप तो कंप्लीट हो ना, आप तो भरपूर हो ना, आप तो यू आर लव। एक बहुत सुंदर रूमी की लाइन है कि आई एम अ लवर विद और विदाउट एनी पर्सन। लवर का मतलब ये नहीं कि हम क्या कहते हैं कि डू यू हैव अ लवर, अरे
1: मैं खुद ही हूँ,
0: मैं आई एम लव, मेरे अंदर सबके लिए प्यार है, एनिमल्स के लिए प्यार है, आई फील लव, आई लव अनकंडीशनली, मैं बिना शर्त के प्यार करता हूँ। तो फिर अपने आप आपको बुद्धि आपको याद दिलाती जाएगी कि हितेश वो नहीं कर रहे कोई बात नहीं, कैपेबल नहीं होंगे, आप तो करो ना। ये सबसे बड़ी चीज आ जाती है कि हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देते,
1: प्यार की परिभाषा को ही नहीं समझ पाए हम, इसीलिए शायद हम एक्सेप्टेंस भी नहीं होता हमसे और बाकी सारी चीजें फिर
0: इसीलिए फिर वो डिग्निटी नहीं है। इसीलिए सबसे बड़ी चीज ये है, पता है, कि इंसान 5 मिनट 10 मिनट क्यों नहीं बैठ पाता, क्यों उसको कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ यूट्यूब पे देखना है, रील्स देखनी है, क्योंकि गरिमा नहीं है। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना तो
1: आपके साथ टाइम बिता
0: सकते, अपने आप के साथ ऐसे बैठकर आप 10 मिनट आराम से बैठ सकते हो, मतलब बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के, बस हवा में। अब सोचिए जो सुन रहे हैं, कब था ऐसा लास्ट टाइम जब आराम से, जी बारिश आ रही है, आराम से बैठे 5 मिनट 10 मिनट बिना किसी चीज के। ये होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, कि आप इतना खुद में भरपूर हो जाते हो कि आप अनकंफर्टेबल नहीं होते हैं, चाहे इंटरनेट ना चले, चाहे आपके पास फोन नहीं हो, कुछ भी नहीं हो तो भी।
1: सही बात। तो अपने गरिमा को बरकरार रखने के लिए अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो इस नोट के साथ यहीं पर रुकना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में।
0: थैंक यू सो मच।
1: हैप्पी फ्रेंडशिप डे वंस अगेन।
0: यस, हैप्पी फ्रेंडशिप डे सभी को। और फ्रेंडशिप का रियल मीनिंग समझते हुए इमोशनली अवेलेबल ज्यादा रहना है। उसके लिए चाहे फिजिकली दूर होकर आपको बुक्स पढ़नी पड़े, मेडिटेशन करना पड़े, पर आप उनकी मदद कर रहे हो अपने आप को अवेयर करके, अपने आप को कॉन्शियस बनाकर,
1: जागृत अवस्था में रखते हुए
0: करके। यस, ये सबसे बड़ी चीज है कि आप लोगों को एक गाइडिंग लाइट बन रहे हो। मेरे जो पुराने फ्रेंड्स थे वो सब देखते हैं, पूछ, क्राइसिस में कॉल करते हैं, ऐसे नहीं करते, उनको पता है कि बिजी हैं। मैं ये नहीं सोचता हूँ अरे मतलब में नहीं, मुझे अच्छा लगता है, चलो क्राइसिस में याद तो किया, लेट मी बी देयर गाइडिंग लाइट।
1: राइट,
0: तो वो बनना है मुझे।
1: बिल्कुल, गाइडिंग लाइट बनना है फ्रेंडशिप में।
0: यस,
1: और इसके लिए खुद को एक्सेप्ट करें और दूसरों को।
0: यस,
1: एज इट इज।
0: यस,
1: ओके, यहीं पर रुकते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। नमस्ते।
2: प्यारे दोस्ते और दोस्ती के वो दिन कितने

ओम शांति, मैं हूँ ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

मैं हूं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी परमात्मा मठ प्रयागपीठ से आप सभी सुन रहे श्रोताओं को ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन से रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं ढेर सारा शुभ प्रेम ओम शांति।

0: run, run, run.
1: दौड़ो दौड़ो दौड़ो.
2: आओ दोस्तों दौड़ लगाते हैं 9 अगस्त को
1: दादी प्रकाशमणि आबू हाफ मैराथन.
2: जी हाँ, इसका थीम है रन फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड. संडे अगस्त 9 को ये मैराथन शुरू होने वाला है
1: सुबह 5 बजे.
2: तो आप सभी का इस मैराथन में भरपूर स्वागत है और आप सभी इस मैराथन में भाग लेकर रन फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड को जरूर बढ़ाइए. जी हाँ, इस भाईचारे को दुनिया भर में जरूर फैलाइए. इस मैराथन में भाग लीजिए और खुशियाँ दुनिया भर में बांटिए.
1: दादी प्रकाशमणि आबू हाफ मैराथन.

मैं शांति। आज 8 अगस्त 2026 के बाबा के धारणा युक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहते, बच्चे तुमको शांति धाम में जाना है, इसलिए तुम्हारा स्वभाव बहुत बहुत शांत होना चाहिए। वैसे भी बाबा कहते हैं, दिन प्रतिदिन अब शांति की ओर ही जाना है। जिस तरह दुनिया में भी बड़े आदमी जास्ती नहीं बोलते हैं, तो बाबा कहते, तुम बच्चे तो कितने बड़े आदमी, बड़े आदमी भी क्या, तुम तो देवता बनने वाले हो, तो देवताएं तो कितने आहिस्ते बोलते हैं, बहुत थोड़ा बोलते हैं। तो बाबा कहते, अब तुम बच्चों को अटेंशन देना है कि टॉकी से हमें साइलेंस की ओर जाने का अभ्यास करना है। दूसरा बाबा कहते हैं, जो शांति में रहने वाले हैं उनके लिए ही समझा जाता कि इनका अपने ऊपर अटेंशन है। इसलिए बाबा कहते, जितना तुम शांति में रहेंगे उतना चारों ओर शांति के ही वाइब्रेशंस फैलाते रहेंगे। वैसे भी दुनिया में आवाज से बात करने वाला अच्छा नहीं लगता है, जोर जोर से आवाज से बात करता है, धीरे धीरे फिर क्रोध में आ जाते हैं। तो बच्चों में अभी कोई भी प्रकार का विकार नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा की शिक्षा है कि बच्चे, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। जो बातें तुम्हें पसंद नहीं है उन बुरी बातों से किनारा कर देना चाहिए। व्यक्तियों से किनारा करने की बात बाबा ने नहीं किया है, लेकिन बुरी बातों से किनारा जरूर करना चाहिए। या ऐसे समय में जब कोई बुरी बातें बोल रहे हो तो अपना मुख बंद रखना है। हर बातों में दैवी गुणों को धारण करने का अटेंशन रखना है। फिर बाबा कहते हैं, तुम ही सच्चे सच्चे पैगंबर हो और इसलिए तुम्हारी सबके ऊपर मेहर होनी चाहिए, कृपा होनी चाहिए। और मेहर करने वाले बच्चे मेहर तभी कर सकते हैं जब शांति में रहेंगे, बाप की याद में रहेंगे। बाबा कहते हैं, अब तुम बच्चे भी योग बल से स्वयं को संपूर्ण पवित्र बनाते हो तो चमकते जाते हो। तो सुनते हैं आज के बाबा के धारणा युक्त मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से ना बोलना अच्छा है। आज की मुरली से प्रश्न है, किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं, स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? उत्तर है, जो सभी की बहुत रुचि से प्यार से सेवा करते हैं उनको सभी प्यार करते हैं। तुम्हें कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप द्वारा जो ज्ञान की कस्तूरी मिली है वह दूसरों को देनी है। सबको शिव बाबा की याद दिलानी है। इस याद की यात्रा से ही तुम बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, समझा समझा कर कितना समझदार बना देते हैं। पढ़ाई भी सहज है ना, वह है स्थूल पढ़ाई और यह है सूक्ष्म पढ़ाई। दुनिया की पढ़ाई है स्थूल पढ़ाई और यह है सूक्ष्म पढ़ाई। यह पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकते हैं। ये सूक्ष्म पढ़ाई सिवाय बाप के और कोई नहीं पढ़ा सकते हैं। बाप आए ही है पवित्र बनाने और पढ़ाने। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है तो ऐसे बाप को याद कर खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। यह भी बच्चे जानते हैं
कि दिन प्रतिदिन हमको शांति में ही जाना है। शांति तो सबको बहुत पसंद होती है, बड़े आदमी जास्ती नहीं बोलते हैं और न जोर से बोलते हैं। बाबा कहते बड़े आदमी न जास्ती बोलते हैं और न ही जोर से बोलते हैं। तुम बहुत बहुत बड़े आदमी बनते हो। वास्तव में आदमी नहीं कहेंगे, तुम तो देवता बनते हो। देवताओं का बोलना बहुत थोड़ा होता है। तुमको भी जब देवता बनना है तो टॉकी से बदल साइलेंस में रहने का अभ्यास करो। शांति में रहने वाले के लिए समझेंगे कि इनका अपने ऊपर अटेंशन है। जबकि तुमको शांति धाम जाना है तो बोलना भी बहुत आहिस्ते है। आहिस्ते यानी धीरे से है। आहिस्ते बोलते बोलते शांति धाम में चले जाना है। जितना तुम शांति में रहते हो उतना शांति फैलाते हो, शांति के प्रकंपन फैलाते हो। तुमको बहुत शांति में रहना चाहिए। आवाज से बात करना अच्छा नहीं लगता है। बाबा ये रॉयल्टी सिखाते हैं कि आवाज से बात करना अच्छा नहीं लगता है। क्रोध भी अच्छा नहीं है। बच्चों में कोई भी विकार नहीं रहने चाहिए। देखना है हम कोई से लड़ते झगड़ते तो नहीं है। बाप ने समझाया है, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल, यानी बुरी बातें न सुनना है, न देखना है, न बोलना है। जो बातें तुमको पसंद नहीं है उन बुरी बातों से तुम्हें किनारा कर देना चाहिए, तो दोनों का मुख बंद रहेगा। हर बात में दैवी गुणों को धारण करना है। कोई आवाज से बात करे तो बोलो शांत, आवाज मत करो। कोई बहुत जोर जोर से बात करे तो बाबा के उनको कहो शांत, आवाज मत करो। तुम जानते हो हम शांति स्थापन करते हैं। बाबा कितने शांति की भी शालीनता बताते हैं। ये कितनी शालीनता है। सतयुग में शांति रहती है ना, मूल वतन में तो है ही शांति। शरीर ही नहीं तो बोलेंगे फिर कैसे। बाप बच्चों को श्रीमत तो बहुत अच्छी देते हैं, समझाते हैं, मीठे बच्चों अब तुम्हें अपने घर चलना है, टॉकी से मूवी में जाना है, यानी आवाज से शांति में जाना है, फिर साइलेंस में चले जाएंगे। टॉकी से मूवी, मूवी यानी इशारे से बात करना, और फिर धीरे धीरे शांति में चले जाएंगे। जो भी मिले उनको यही पैगाम देना है। तुम जितना साइलेंस में रहेंगे उतना समझेंगे, दूसरे लोग भी समझेंगे ये लोग किसी धुन में है। शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है, वो बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से न बोलना अच्छा है। फिर बाबा कहते हैं तुम सच्चे सच्चे पैगंबर हो, तुम्हारी सबके ऊपर मेहर यानी कृपा होनी चाहिए। मेहर करने वाले बच्चे बड़े शांत में बाप की याद में रहेंगे। मन शांति से कितने फायदे हैं, प्राप्ति है। शांति में रहने वाले बहुत मीठे लगेंगे। शांति में रहने वाले दूसरों को बहुत प्यारे भी लगेंगे। शांति में रहने से शालीनता अपने अंदर बढ़ती है, विकार समाप्त हो जाते हैं और दूसरों के ऊपर कृपा भी कर सकते हैं। सिर्फ पैगाम देना है कि बेहद के बाप को याद करो तो बेहद का सुख शांति मिलेगा। लौकिक बाप के पास बहुत धन है तो बहुत वर्षा मिलेगा ना। बेहद के बाप पास तो है विश्व की बादशाही।
जो हर 5000 वर्ष बाद तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है। तुम बच्चों को सभी की बहुत रुचि से सर्विस करनी है। बाबा कहते बहुत रुचि से सबकी सेवा करनी है, हर एक को सेवा के लायक बनना है। जो दूसरों की प्यार से सेवा करते हैं उनको सभी प्यार करते हैं। कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान की कस्तूरी मिली है वह दूसरों को देनी है। एक दो को याद दिलाते रहो कि शिव बाबा याद है। इसमें खुशी भी होती है। याद दिलाने वाले को थैंक्स देना चाहिए। याद की यात्रा से तुम बच्चे बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे बाबा कहते उतना सेफ रहेंगे, क्योंकि बाबा की याद का कवच जैसे स्वयं के ऊपर है। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। तुम्हें अपने कैरेक्टर्स बहुत बहुत सुधारना।

ऐसा वातावरण कभी ना हो जो कोई नाराज हो जाए। ऐसी कोशिश करनी है क्योंकि तुम बच्चे बहुत उच्च सर्विस पर हो। तुम्हें इस सारे मांडवे को रोशनी देनी है। तुम धरती के चैतन्य सितारे हो। कहा भी जाता है नक्षत्र देवता, तो धरती के चैतन्य सितारे यानी नक्षत्र देवता। अब वह सितारे कोई देवता तो नहीं है, जो आसमान में चमकते सितारे हैं, वो कोई देवता तो नहीं है। तुम तो उनसे महान बलवान हो क्योंकि तुम सारे विश्व को रोशन करते हो। तुम ही देवता बनने वाले हो। जैसे ऊपर सितारों की रिमझिम है, कोई सितारा बहुत तीखा होता है और कोई हल्का, कोई चंद्रमा के नजदीक होता है। तुम बच्चे भी योग बल से संपूर्ण पवित्र बनते हो तो चमकते हो। अभी तुम बच्चों को क्या मिला है? बाबा कहते अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। अंदर में खुशी की उछले मारते रहो। ये तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया जाता है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल बनते हो तो तुमको नॉलेज की खुशी रहती है। ज्ञानवान बनते हैं तो ज्ञान की भी खुशी रहती है। इन देवताओं से भी तुम श्रेष्ठ हो, तो तुम्हारा चेहरा सदा खुशी से खिला रहे। बाप बच्चों को आशीर्वाद करते हैं, मीठे बच्चे सदा शांत भव, चिरंजीवी भव, अर्थात बहुत जन्म जियो। चिरंजीवी भव अर्थात बहुत जन्म जियो, क्योंकि 84 जन्म है हमारे, तो ये नहीं कि हमारे जन्म कम हो जाए। बाबा कहते बहुत जन्म जियो। आशीर्वाद तो बाप से मिलती है, फिर भी हरेक को अपना पुरुषार्थ करना है कि हम चिरंजीवी कैसे बने, हम 84 जन्म कैसे ले। बाप को याद करने से तुम चिरंजीवी बन रहे हो, यह आशीर्वाद बाप देते हैं। ब्राह्मण लोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं? आयुष्यवान भव। बाप भी कहते हैं बच्चे सदा जीते रहो, इस ब्राह्मण जीवन में सदा जीते रहो। तुम्हें आधा कल्प के लिए काल नहीं खाएगा। सतयुग में मरने का नाम ही नहीं होता, मरना ये शब्द ही नहीं होता है। यहाँ तो मनुष्य मरने से डरते हैं ना, बाबा कहते यहाँ तो मनुष्य मरने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि हर इंसान इतना तो समझते हैं कि मैंने इस जन्म में जितने बुरे कर्म किए हैं उतने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, इसीलिए वो कर्म इंसान को डराता है कि पता नहीं अब कहां जाकर के जन्म मिलेगा, कैसी अवस्था में जन्म मिलेगा, ये सुख सुविधा के साधन होंगे या नहीं होंगे। ऐसे अनेक विचार उनको डराते हैं, लेकिन बाबा कहे तुम बच्चों को डर समाप्त हो जाता है क्योंकि बाबा ने आकर के हम बच्चों को इतने अच्छे कर्म करना सिखाया है कि हमें विश्वास है कि अगर यहां से शरीर छूटा तो भी उस कर्म के आधार पर बहुत अच्छे घर में ही जन्म लेंगे, जहां बहुत अच्छे कर्म अच्छी सुख सुविधा भी होगी। तो बाबा कहते सतयुग में मरने का नाम नहीं होता है, यहां तो मनुष्य मरने से डरते हैं ना। तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो मरने लिए। तुम जानते हो बाबा को याद करते करते हम ये शरीर छोड़ अपने शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। अभी तुम मोस्ट बिलवेड बाप के बच्चे बने हो, तो तुमको भी बाप जैसा बहुत बहुत मीठा बहुत प्यारा बनना है। बाबा पत्रों में भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मीठे मीठे लाडले सिकलधे बच्चों। बाबा बहुत

मीठा है ना, प्रैक्टिकल में अनुभव करती हो कि बाबा कितना मीठा कितना प्यारा है। हमें भी ऐसा बनाते हैं, यह भी तुम जानते हो कि हम कितने मीठे कितने प्यारे थे। हम ही पूज्य से फिर पुजारी बने तो खुद को पूजते रहे, जब पूज्य से पुजारी बने तो खुद को ही पूजते रहे। यह भी बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प के हमारे सब दुख दूर करने वाला बाबा अभी आया हुआ है। कहते हैं हर हर महादेव, अब वह महादेव तो नहीं है, दुख तो बाप ही हरेंगे, दुख हर कर सुख देने वाला बाप है। आधा कल्प तुमने बहुत दुख देखे हैं, पांच विकारों की बीमारी बहुत बढ़ गई है, इस बीमारी ने बहुत दुखी किया है, ये पांच विकारों रूपी बीमारी ने बहुत दुखी किया है, इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे यह जो कर्मों का खाता है उनको अब ठीक करो। व्यापारी लोग भी 12 मास का खाता रखते हैं ना। बाप समझाते हैं बच्चे अभी सारी सृष्टि पर देखो कितना किचड़ा है, यह है ही नर्क, तो बाप को आना पड़ता है नर्क को स्वर्ग बनाने। बाबा बहुत उकीर से आते हैं, उकीर माना प्रेम, तो बाबा कहते बाबा बहुत प्रेम से आते हैं, जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है, मैं कल्प कल्प तुम बच्चों की सेवा पर उपस्थित होता हूं। जब खुद आते हैं तब बच्चे समझते हैं बाप हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं। यहां बैठे सभी की सेवा हो जाती है, बाबा एक जगह बैठ के भी सभी की सेवा कर लेते हैं मुरली के द्वारा। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक ही है ना। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको मैं ही वर्षा देने आता हूं। बेहद के बाप की नजर दुनिया की आत्माओं तरफ जाती है। बल यहां बैठे हैं, मधुबन में बैठे हैं, परंतु नजर सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है। बाप की नजर सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है, क्योंकि सारी विश्व को ही निहाल करना है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहली मिसल सारे विश्व की आत्माएं निहाल हो जाने वाली है। बाप सब बच्चों को याद करते हैं, नजर तो जाती है ना। संगम युग पर ही बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित होते हैं, उनकी भेंट में कोई भी सेवा कर न सके, बाबा जैसी सेवा कोई विश्व के अंदर कर न सके, उनकी है बेहद की सेवा। तुम बच्चे भी बाप का शो तब कर सकेंगे जब उन जैसी सेवा करेंगे। सेवा करने वालों को फल भी बहुत भारी मिलता है, बच्चों को नशा भी चढ़ता है कि हम श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्य को सुख देते हैं। बाप कहते मीठे बच्चे अब ज्ञान रत्नों से अपनी खूब झोली भरो, जितनी भरनी है भरो, अपना टाइम बर्बाद न करो, बाप की याद में टाइम को आबाद करो। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वह फिर औरों की भी अच्छी सर्विस जरूर करेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है, अंतर आत्मा है ना, ये निश्चय करना है कि हम आत्माओं को बाप समझा रहे हैं। सोल कॉन्शियस हो रहना ही सच्चा सच्चा अंतर्मुखी बनना है। सोल कॉन्शियस माना आत्म अभिमानी हो रहना ही सच्चा सच्चा अंतर्मुखी बनना है। अंतर्मुखी अर्थात अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। बाप प्यार से बार बार समझाते हैं मात पिता और जो भी अच्छे अनन्य बड़े भाई बहन है जो अच्छी सर्विस करते हैं उनसे सीखते जाओ। अंदर में ये निश्चय करो
कि हमें फालतू टाइम नहीं गंवाना है, शरीर निर्वाह भी करना है, अपनी रचना को भी देखना है, सिर्फ ममत्व नहीं रखना है। बाबा कहते हैं जिम्मेवारी संभालनी भी है, शरीर निर्वाह भी करना है, सिर्फ उसमें से ममत्व निकाल देना है। ममत्व रखने से नुकसान हो जाएगा। ममत्व एक बाप में रखो, यहां तुम बाप के सन्मुख हो, आत्माएं और परमात्मा सन्मुख है, क्योंकि यहां स्वयं बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, वहां आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती है। ये सब बातें तुम बच्चों को अंदर मंथन होनी चाहिए। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है ना, तुम्हारी बुद्धि में भी सारी पढ़ाई है। यह है रूहानी पढ़ाई। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वह सदैव एकांत में जाकर पढ़ते हैं। स्टूडेंट आपस में मिलते जुलते हैं तो पढ़ाई पर ही वार्तालाप करते हैं। इस बेहद की पढ़ाई में तो और ही खुशी से लग जाना चाहिए। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हो। याद में रहना ही मदद करना है। बाबा की याद में रहना ही बाप को मदद करना है, क्योंकि याद की यात्रा माना शांति की यात्रा। इसलिए कहा जाता है हरेक अपने घर को स्वर्ग बनाओ। हरेक की बुद्धि में अलफ और बे है। अलफ को याद करो तो बादशाही मिलेगी। और कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपने को आत्म समझ बाप को याद करो तो राजाई तुम्हारी। तुम बच्चे सबको यही पैगाम देते रहो कि बाप को याद करो तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप की याद में अपना टाइम आबाद करना है। ये अमूल्य समय कहां भी बर्बाद नहीं करना है। पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी अर्थात सोल कॉन्शियस होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, अभी हम देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण है। अभी बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है। नॉलेजफुल बने हैं तो चेहरा सदा खुशी से खिला रहे। अंदर में खुशी की उछले मारते रहो। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है मनसा के महादान द्वारा। हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जो सच्चे मनसा द्वारा शक्तियों का दान करते हैं उन्हें मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मनसा द्वारा शक्तियों का दान करने से संकल्प में इतनी शक्ति जमा हो जाती है जो हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त होती है। वे अपने संकल्पों को जहां चाहे वहां एक सेकंड में टिका सकते हैं। संकल्प उनके वश होते हैं। वे अपने संकल्पों पर विजयी होने के कारण चंचल संकल्प वाले को भी थोड़े समय के लिए अचल व शांत बना सकते हैं। आज का स्लोगन है, निरंतर एक बाप के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे। निरंतर एक बाप के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे। आज का व्यक्त इशारा है, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, कोई भी विकर्म व व्यर्थ कर्म अगर बार बार हो जाते हैं तो इसका कारण है कि सदा साथी को साथ में नहीं रखते हो अथवा साथ का अनुभव नहीं करते हो।
जैसे शक्तियां